आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी शफाअत कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स के हक में उसकी इजाजत न दे जिसके लिए वो कोई अर्जदाश्त सुनना चाहे और उसको पसंद करे। मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते, जो फरिश्तों को देवियों के नामों से मौसूम करते हैं हालांकि इस मामले का कोई इल्म उन्हें हासिल नहीं है, वो महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं और गुमान हक की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स हमारे जिक्र से मुंह फेरता है और दुनिया की जिंदगी के सिवा जिसे कुछ मतलूब नहीं है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इन लोगों का मबलग इल्म बस यही कुछ है। ये बात तेरा रब ही ज्यादा जानता है कि उसके रास्ते से कौन भटक गया है और कौन सीधे रास्ते पर है, और जमीन और आसमानों की हर चीज का मालिक अल्लाह ही है। ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को उनके अमल का बदला दे और उन लोगों को अच्छी जजा से नवाजे जिन्होंने नेक रवैया इख्तियार किया है, जो बड़े बड़े गुनाहों और खुले खुले कबीह अफ़आल से परहेज करते हैं, इल्ला ये कि कुछ कसूर उनसे सरजद हो जाए। बिला शुबह तेरे रब का दामन मग़फ़िरत बहुत वसी है। वो तुम्हें उस वक्त से खूब जानता है जब उसने जमीन से तुम्हें पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेटों में अभी जनीन ही थे। बस अपने नफ्स की पाकी के दावे न करो, वही बेहतर जानता है कि वाकई मुत्तकी कौन है।

आद ने झुटलाया तो देख लो कि कैसा था मेरा आजाब और कैसी थी मेरी तंबीहात। हमने एक पैहम नुहूसत के दिन सख्त तूफानी हवा उन पर भेज दी जो लोगों को उठा उठा कर इस तरह फेंक रही थी जैसे वो जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हों। बस देख लो कैसा था मेरा आजाब और कैसी थी मेरी तंबीहात। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। समूद ने तंबीहात को झुटलाया और कहने लगे, एक अकेला आदमी जो हम ही में से है, क्या अब हम उसके पीछे चलें? इसका इत्तेबा हम कबूल कर लें तो इसके माने ये होंगे कि हम बहक गए हैं और हमारी अक्ल मारी गई है। क्या हमारे दरमियान बस यही एक शख्स था जिस पर खुदा का जिक्र नाजिल किया गया? नहीं, बल्कि ये परले दर्जे का झूठा और बर खुद गलत है। हमने अपने पैगंबर से कहा, कल ही इन्हें मालूम हुआ जाता है कि कौन परले दर्जे का झूठा और बर खुद गलत है। हम ऊंटनी को इनके लिए फितना बनाकर भेज रहे हैं। अब जरा सब्र के साथ देख कि इनका क्या अंजाम होता है। इनको जिता दे कि पानी इनके और ऊंटनी के दरमियान तकसीम होगा और हर एक अपनी बारी के दिन पर आएगा। आखिरकार उन लोगों ने अपने आदमी को पुकारा और उसने इस काम का बीड़ा उठाया और ऊंटनी को मार डाला। फिर देख लो कि कैसा था मेरा आजाब और कैसी थी मेरी तंबीहात। हमने उन पर बस एक ही धमाका छोड़ा और वो बाड़े वाले की रौंदी हुई बाड़ की तरह भुस होकर रह गए। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, अब है कोई नसीहत कबूल करने वाला।

0: जिंदगी देखने के बजाय अपनी नियमतों पर गौर करने की तालीम देता है।
1: आप सुन रहे हैं हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
0: शुक्र इंसान के किरदार को खूबसूरत बनाता है। एक शुक्रगुजार इंसान नरम दिल होता है, दूसरों की कदर करता है, छोटी चीजों में खुशी महसूस करता है, हसद कम करता है, उम्मीद नहीं छोड़ता और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है। ऐसे लोग दूसरों के लिए भी सुकून का जरिया बन जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अमीर नहीं होते लेकिन उनके चेहरों पर सुकून होता है क्योंकि उनके दिल में शुक्र होता है। और कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते क्योंकि दिल नाशुक्री और बेचैनी से भरा होता है। इसीलिए शुक्र सिर्फ एक इस्लामी तालीम नहीं है बल्कि दिल के लिए एक मेडिसिन भी है। आज माहिरे नफ्सियात भी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इंसान की मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है। जो लोग रोजाना अपनी नियमतों पे गौर करते हैं वो कम स्ट्रेस महसूस करते हैं और ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। लेकिन देखें, इस्लाम ने ये तालीम हमें 1400 साल पहले दी थी और एक तरह से देखा जाए तो हजरत आदम अलैहि सलाम से यही तालीम है जो हर किसी के पास आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये दिल की कैफियत है। जब इंसान दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो इसका मतलब होता है कि या अल्लाह, मैं तेरी नियमतों को पहचानता हूं। हमें सिर्फ बड़ी नियमतों पर नहीं, छोटी छोटी नियमतों पर भी शुक्र करना चाहिए। जैसे आपको पानी मिल जाए जब प्यास लग रही हो तो उस वक्त कहें अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का मुस्कुरा देना आपको देखकर, आपकी माँ की दुआ, बच्चों की हंसी, आपको सुकून की नींद नसीब होती है, जिस्म आपका सही तरह काम कर रहा है, ये सब ऐसी नियमतें हैं जिन्हें हम आम समझ लेते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक चीज भी चली जाए तब इंसान को एहसास होता है कि कितनी कीमती थी। इसीलिए आज से हम मिलकर कोशिश करेंगे कि अपनी जिंदगी को नई नजर से देखें, शिकायत कम करें। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है ये कहना कम करें और अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा कहें, क्योंकि मोमिन की खूबसूरती यही है कि वो हर हाल में अल्लाह के करीब रहता है। खुशी आए तो शुक्र करता है, मुश्किल आए तो सब्र करता है और दोनों सूरतों में दिल अल्लाह से जुड़ा रहता है। अब वक्त है हमारे इस शो का, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हमारा प्राइमरी मकसद है उसका। अब हम इस हफ्ते के हैबिट प्लान करेंगे क्योंकि हदीस टू हैबिट का मकसद सिर्फ अच्छी बातें सुनना नहीं है बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। हम सब जानते हैं कि अच्छी आदतें इंसान की जिंदगी बदल देती हैं। छोटे छोटे अमल अगर मुस्तकिल किए जाएं तो दिल, सोच और जिंदगी सब बदलने लगते हैं। इस हफ्ते हम एक बहुत ही खूबसूरत और आसान आदत शुरू करेंगे, रोजाना शुक्रगुजारी की आदत। यह आदत सिर्फ चंद मिनट लेती है लेकिन इसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि खुशी बड़ी कामयाबियों से मिलती है लेकिन हकीकत यह है कि सुकून उन लोगों को मिलता है जो छोटी नियमतों की कदर करना जानते हैं। इसलिए इस हफ्ते रोजाना एक छोटा सा कदम उठाएंगे ताकि हमारा दिल अल्हम्दुलिल्लाह का आदि बन जाए। सबसे पहले करना क्या है आपने कि रात सोने से पहले तीन नियमतें सोचें या लिखें। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके लिए लिखना आसान है तो आप लिख सकते हैं या कम से कम सोचें जरूर जिनके लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हो। ये बहुत बड़ी चीजें होना जरूरी नहीं है, ये भी हो सकती है कि आज आप खैरियत से घर आ गए, आपकी अम्मी ने आपको दुआ दी, आपको वक्त पे खाना मिला, सुकून से दिन गुजर गया और किसी ने मोहब्बत से बात की। आप चाहें तो एक छोटी डायरी रख लें या अपने मोबाइल के नोट्स ऐप में भी आप लिख सकते हैं। सिर्फ एक लाइन काफी है कि आज मैं इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता या कहती हूँ। जब हम नियमतों को सोचते हैं या लिखते हैं

क्या मेरी सोच में फर्क आया? क्या मैं पहले से ज्यादा सुकून महसूस करता हूँ? क्या शिकायतें कम हुई हैं? क्या मैं नियमतों को ज्यादा नोटिस करने लगा हूँ? हो सकता है लिसनर्स कि एक हफ्ते में जिंदगी मुकम्मल ना बदले, लेकिन यकीन मानिए दिल का रुख बदलना शुरू हो जाएगा और यही असल तब्दीली है। क्योंकि जब दिल बदलता है तो इंसान की जबान, रवैया और जिंदगी सब बदलने लगते हैं। अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह कल्चर शुरू करें। खाना खाते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अच्छी खबर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, मुश्किल वक्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कहना सीखें। अपने बच्चों को भी सिखाएं कि रोज एक नियमत बताएं जिस पे वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं। ये छोटी छोटी आदतें बच्चों के दिलों में पॉजिटिविटी और अल्लाह की मोहब्बत पैदा करेंगी। शुक्र का मतलब हरगिज ये नहीं कि जिंदगी में कभी गम नहीं आएगा, बल्कि शुक्र का मतलब ये है कि गम के बावजूद इंसान अल्लाह की रहमत को देखना ना छोड़े। एक शुक्रगुजार दिल ज्यादा मुतमईन होता है, कम हसद करता है, मायूस नहीं होता और लोगों के लिए आसानी पैदा करता है। और सबसे खूबसूरत बात, अल्लाह ताला शुक्र करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। तो आइए इस हफ्ते हम सब मिलके अपने दिल को अल्हम्दुलिल्लाह का आदि बना लेंगे। अब हमारे शो का बिल्कुल इख्तिताम आ गया, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की बातें सिर्फ प्रोग्राम तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनेंगी। आज हमने शुक्र की बात की, हमने सीखा कि एक मोमिन की जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है क्योंकि वो हर हाल में अल्लाह ताला से जुड़ा रहता है। खुशी मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, मुश्किल आए तो सब्र करता है और हर हालत में अपने रब पर भरोसा रखता है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी आसान दिन आते हैं, कभी मुश्किल वक्त आता है, कभी दिल सुकून से खुश होता है और कभी इंसान थक जाता है, कभी दुआएं फौरन कबूल होती महसूस होती हैं और कभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन एक चीज जो मोमिन को मजबूत रखती है वो है अल्लाह पर यकीन, और शुक्र इसी यकीन का हिस्सा है। जब इंसान दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लेता है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। उसकी नजर सिर्फ कमियों पर नहीं रहती, बल्कि वो अल्लाह की रहमतों को देखना शुरू कर देता है। आज के दौर में शायद हमारे पास पहले से ज्यादा चीजें हैं, लेकिन सुकून कम हो गया है। लोग हर वक्त मसरूफ हैं लेकिन दिल मुतमईन नहीं। हर वक्त जल्दी, फिक्र, कंपैरिजन, स्ट्रेस, इन सब ने इंसान को अंदर से थका दिया है। ऐसे माहौल में शुक्र एक रूहानी सुकून है। जब इंसान रुक कर अपनी नियमतों को महसूस करता है तो दिल नरम हो जाता है, मायूसी कम होने लगती है और इंसान को एहसास होता है कि अल्लाह ताला अब भी उसके साथ है। कभी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। हो सकता है आप इस वक्त किसी परेशानी से गुजर रहे हो, शायद कोई दुआ अभी तक पूरी ना हुई हो, शायद दिल में कोई खौफ हो, कोई गम हो, कोई थकन हो, लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह ताला की कितनी रहमतें अब भी आपके साथ हैं। आप सांस ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके दिल में ईमान मौजूद है, आपके पास तौबा का दरवाजा खुला है, आपके पास दुआ करने का मौका है। ये सब बहुत बड़ी नेमतें हैं। और याद रखें, अल्लाह ताला सिर्फ हमारी इबादत नहीं देखते, वो दिल की कैफियत भी देखते हैं। एक बंदा जो दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहता है अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि शुक्र सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल, अमल और रवैये से भी होना चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें वक्त दिया है तो इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह ने घर दिया है तो उस घर में मोहब्बत पैदा करें। अगर अल्लाह ने इल्म दिया है तो दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह ने जबान दी है तो उससे अच्छे अल्फाज निकालें। ये सब शुक्र है। आज से हम एक छोटा सा वादा करते हैं, हम शिकायत कम करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा कहेंगे, दूसरों से कंपैरिजन कम करेंगे, अपनी नेमतों पर गौर करेंगे और हर हाल में अल्लाह ताला से जुड़े रहने की कोशिश करेंगे। क्योंकि असल खुशी ज्यादा चीजें हासिल कर

करने में नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को पहचानने में। एक शुक्रगुजार दिल हमेशा अमीर होता है, चाहे उसके पास दुनिया की कम चीजें हों, और एक नाशुक्रा दिल कभी मुतमईन नहीं होता, चाहे उसके पास सब कुछ हो। इसीलिए अपने दिल को अल्हम्दुलिल्लाह का आदि बनाएं। सुबह उठें तो अल्हम्दुलिल्लाह, खाना मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, घर वापस आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल वक्त में भी कहें अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अब एक दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत, तक्वा, पाकदामनी और दिल की बेनियाजी मांगता हूँ। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपना शुक्रगुजार बना दे। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत, तक्वा, पाकदामनी और दिल की बेनियाजी मांगती हूँ। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपना शुक्रगुजार बना दे। हमें अपनी नेमतों को पहचानने की तौफीक अता फरमा। हमें नाशुक्री, हसद और बेसुकूनी से बचा ले। ऐ अल्लाह, जो इस वक्त परेशान हैं उनकी परेशानी आसान फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमा, और जो दिल से थके हुए हैं उन्हें सुकून अता फरमा, जो मायूस हैं उनके दिलों में उम्मीद अता फरमा। आमीन। लिसनर्स, ये था हमारा आज का शो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।

0: FM 107. Time check. Time
1: check. हाँ भाई, चप्पू चला दे रहा भाई। जब तक किनारा ना आ जाए किसी के हाथ रुकने नहीं चाहिए। दिख तो रहा है मुझे दूर से, ये कौन खड़ा है आइलैंड पे। चला दे रहा हूँ चप्पू। हाँ थके कुछ हो मेरे को मतलब नहीं है। लगता है आ गए। रुको तो यहीं रुको, हॉर्न मारो। हाँ यही लोग, यही लोग, इन्हीं से मिलना है, इन्हीं से मिलना है।

जी दो हवाला कभी FM 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है सर जी। बढ़िया चल रहा भाई, तुमने तो बेरा पाटक, आज बहुत कुछ होने वाला है। 6:02 मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले तो कश्ती से उतरने के बाद बहुत मजे आ रहे हैं। आज एक्चुअली मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, तो मैं आज आराम से बिल्कुल फैल के आलती पालती मार के कैब में आऊँ। मजा आ गया भाई, ओहो ये सुख खत्म भी नहीं होना चाहिए। खैर मैसेज कर देगा 666-22-107 पे, 666-22-107 इज द नंबर। प्लीज लेट मी नो आप किधर आई। मैसेज आया सुभाष भाई का, सुभाष भाई कह रहे हैं कैप्टन कबीर हुक। कैप्टन कबीर हुक। अच्छा अच्छा सुभाष भाई बहुत प्यार भाई, बढ़िया था कैप्टन कबीर हुक। एक मैसेज है मोहसिन भाई का, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कहते कैसे हो मैं जी? बढ़िया। कह रहे किधर जा रहे हो बोटल लेके? भाई बस मंसूरा से यहीं आया हूँ मैं तो कॉर्निश के रास्ते होता हुआ आ गया, मैं पीछे से बोट मोड़ के उधर से आ गया भाई मैं, बढ़िया आलम मौज करके। रिजवान भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिजवान भाई, क्या चल रहा है भाई? तौफीक साहब वालेकुम अस्सलाम। अलवकर से इन्होंने मैसेज किया है भाई, देखो आज की जो कहानी है ना, मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरे मैथ्स का एग्जाम है। बहुत भारी कहानी है भाई, बहुत ही भारी कहानी है। ये कहानी सुन के आपके दो ही रिएक्शन हो सकते हैं, या तो वो बोलेंगे भाई साहब क्या सुना दी कहानी, या तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी मिस्टर कबीर ये समझ में नहीं आई। तो इस कहानी के रिएक्शन को लेके कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है भाई, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। या तो ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, या आज के बाद आप बोलेंगे भाई तो रहने दे, वैसा वाला सीन है। तो आई एम रियली स्केर्ड, लेकिन मेरे भेजे में ना ये कहानी बहुत दिनों से अटकी हुई थी और मैं सोच रहा था कि क्या करूं इसका, क्या करूं, और इतनी बेचैनी होने लगी, मैंने कहा यार आज मैं सुना ही देता हूं, देखी जाएगी। तो आज की जो कहानी है ना मिस्ट्री है और साथ में सॉल्व करनी है आपने सुनते सुनते। हाँ ये मत कहिएगा एंड में जाके होशियार बन जाए, हाँ मुझे तो पता था कबीर भाई, मुझे तो पहले ही पता था। ये नहीं चलेगा, 7 साल सॉल्व करती जानी है, ठीक है? कंफ्यूजिंग है थोड़ी कहानी, बट आई बिलीव आप कर लेंगे, भरोसा है मुझे आप पे। हमारे अब्दुल जब्बार भाई ने मैसेज किया, भाई जब्बार वालेकुम अस्सलाम, मैं सईद से मैसेज कर रहे हैं भाई, सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकेंड आपकी डी पी देखूँ मैं, ये आप ही का फोटो है जब्बार भाई? यार आप तो बहुत ही मतलब सीधे सादे से मासूम से लग रहे, इतना भारी नाम रखा है, आपको दाढ़ी वाड़ी रखनी चाहिए भाई, बड़ी एकदम बहुत जब्बार वाली दाढ़ी। तो एक मैसेज, कल की कहानी ज़बरदस्ती, मैं पहले सोच रहा था कि मूवी 127 आवर्स फिक्शनल होगी, मुझे पता नहीं था ये रियल स्टोरी बेस्ड है। भाई जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मैं लिटरली मूवी का सीन देख रहा था। आफ्टर 10 ईयर्स के बाद मूवी रीवॉच किया कबीर भाई के ज़रिए, बहुत मज़ा आया। ये मूवी के बाद मैं ही मेन जेम्स फ्रेंको फ़ैन बन गया था, जैसे हम आप सबके फैंस बन चुके भाई। बहुत सारा प्यार सुभाष भाई, दैट इज़ सो सो नाइस एंड सो स्वीट ऑफ यू टू इवन मेंशन कल की स्टोरी इस तरीके से, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार आपको। और एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमर शहजाद साहब। तो सारे

बच्चों को और बच्चों के माँ बाप को जो सुबह सुबह निकले हैं उन सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। 10 मिनट 33 सेकंड के बाद अब से मुलाकात होगी, एज यू नो, उसके बाद मिलते हैं। तो तलाबाई की आवाज़ में सुबह के अधिकार, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जनाब ने

उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم, میں دو حوالہ کبیر ایف ایم 107 پہ. اینڈ کیا حال ہے بھائی آپ کے؟ میں ذرا یہ جو ہے نا ہوٹر نکال لوں, میں بھول جاتا ہوں پھر دقت ہو جاتی ہے, پھر مجھے بیچ شو میں نکالنا پڑتا. ہاں جی, ہوٹر چیک کر لوں میں. 1 2 3 ٹیسٹنگ اٹ از ورکنگ. اوکے, کچھ میسیجز جو میرے پاس آئے ہیں. محسن بھائی کہہ رہے کیا لایا ٹیفن میں؟ میں نے کہا بھائی بڑھیا, ایک دم اسپائسی والا سینڈوچ ہے. کہہ رہا ہمیں بھی بھائی, اگر میرا اسپائسی والا سینڈوچ آپ نے کھا لیا وہ آگ نکلنے کے برابر ہے. محسن بھائی بھلکے مطلب کہ بھائی کو. ایک میسیج سمی بھائی کا, سمی بھائی وعلیکم السلام میرا بھائی کیسے ہیں. ایک میسیج السلام علیکم گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, یہ ذیشان بھائی نے, ذیشان بھائی تھینک یو. اور ایک میسیج آیا, ہائی کبیر انکل ہاؤ آر یو, واٹ ڈیڈ یو ایٹ ان یور بریک فاسٹ؟ سویٹ ہارٹ آج جو ہے نا یہ مجھے پوچھا ہے انس ہورائزن, اف آئی ایم ناٹ رانگ. ہاں تو آج میرے بریک فاسٹ میں ہے سینڈوچ اور دو ابلے ہوئے انڈے. ایگ کبھی نہیں بھولنا چاہیے, ایگ ہمیشہ کھانا چاہیے بیٹا. ٹھیک ہے, کیا بات ہے, آج میں بچوں کو ایڈوائز دے رہا ہوں, فیلس ویری ڈفرنٹ. تو بیٹا ایگ تو ضرور ہے, یہ کبیر انکل ایگ نہیں بھول سکتے, مطلب سمجھ رہے ہیں آپ. اور سمبول بہن نے اپنی بٹیا کا اتنا پیارا ویڈیو بھیجا, وہ کہہ رہی ہیں گڈ مارننگ کبیر انکل. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج ان کا آخری ایگزام ہے. بیٹا آل دا بیسٹ فور یور ایگزام, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کا ایگزام ہے, مجھے پہلے یہ بتاؤ. میرے ایگزام آپ کا ہے, میرے دل میں دھک دھک ہو رہی ہے بہت تیز. کس چیز کا ہے بیٹے؟ آپ سب بہن گڈ مارننگ, کیا حال ہے بہن؟ ایک میسیج آیا اقبال بھائی کا, وعلیکم السلام اقبال بھائی. اچھا دس از نظمہ, ہاؤ آر یو؟ پھر لکھا اقبال, کیا مطلب نام کیا بولوں میں آپ کا, مجھے یہ بتائیں. ایک میسیج السلام علیکم کبیر بھائی, کیسے ہو بھائی؟ میں بڑھیا سلمان بھائی, گڈ مارننگ شاہد بھائی. وعلیکم السلام گڈ مارننگ. چیز آملیٹ اور سیخ کباب کھا کر آ رہا ہوں. ارے میرا بھائی, بھائی کے لیے سامی بھائی آج تو ہم نے مطلب آگ لا دی بھائی نے صبح صبح. بھائی چیز آملیٹ اور سیخ کباب, ارے رے رے رے رے کیا بات ہے سمی بھائی, یار آپ انسپریشن ہو بھائی. کہاں صبح صبح سیخ کباب کھانے کا من کر گیا آپ کا. تو ایک میسج ہے, میرا لڑکا احمد آپ کو گڈ مارننگ بول رہا ہے. یہ بڑا دیسی طریقہ ہے, یہ میرا لڑکا ہے احمد آپ کو گڈ مارننگ بول رہا ہے. بولے بیٹا انکل کو گڈ مارننگ. یہ اچھا تھا بھائی, دیسی ایک دم. جی آپ کے لڑکے احمد کو میری طرف سے بھی گڈ مارننگ میرا بھائی, بہت سارا پیار, لاٹس اینڈ لاٹس آف لو. اینڈ کچھ بچوں کے مجھے پتہ لگا فائنل ایگزام سے, ان تمام بچوں کو میری طرف سے بہت سارا پیار. اینڈ فائنل ایگزام کی ایکسائٹمنٹ بڑی زیادہ رہتی ہے, تو اس کے بعد ایک دم مطلب دھنیا بو دینا بچوں, ٹھیک ہے, ایسے بھر کے موج کاٹنا جس کی حد نہیں, مطلب ساری خوشیاں ایک ساتھ ہی. I'm with you on this. Go, go, go, go, go. ایک میسج ہے, آج تھوڑا ہیوی کھانے کا دل کر رہا تھا سمی بھائی, لیکن سیخ کباب میرا بھائی. ارے یار آپ کے چکر میں جو ہے نا میرا ہی من کر گیا, بٹ اینی وے. تو میں دو تین چیزیں بتا دوں آپ کو. ایک تو یہ کہ پہلی بات, آج کی کہانی وہ بھی میرے لیے ایگزام سے کم نہیں ہے. اتنی کنفیوزنگ کہانی ہے بھائی کہ مجھے سمجھانے میں مجھے لگ رہا ہے کہ آج یا تو آپ جو ہے مجھ سے سیدھا نفرت کریں گے, یار یہ کیا سنا دیا اس نے. اب محبت میں سچ تو بتانا پڑے گا اس کو اتنی بچ پر, یا تو آپ کو بہت اچھی لگے گی, دونوں میں سے ایک چیز ہے. ایک میسج ہے, لڑکی فائزہ غصہ ہے, اس کی طرف سے بھی گڈ مارننگ. ابا نے لڑکے کی طرف سے گڈ مارننگ بول دیا لیکن لڑکی کی طرف سے نہیں بولا. یہ آپ نے جو کیا پورے دن, جو آج فائزہ کا موڈ خراب رہنے والا ہے. فائزہ گڈ مارننگ بچے, ڈونٹ وری, ابا بھولے نہیں ہیں, وہ ابا جو ہیں شاید ڈرائیو کریں گے نہیں اس لیے. اور ایک میسج, السلام علیکم کبیر انکل ہاؤ آر یو. علینا سویٹ ہارٹ ہاؤ آر یو؟ میں بڑھیا ہوں ایک دم. اینڈ علینا کیا آپ کے بھی ایگزام ہے بچے؟ کیا چل رہا ہے ابھی؟ نو ایگزامس, ہیونگ فن, بڑھیا. ارشاد اللہ یوسف زئی صاحب لکھتے ہیں, السلام علیکم گڈ مارننگ کبیر بھائی. بھائی صبح صبح لوگ آپ کو اتنا بھائی بھائی بولتے ہیں, مجھے وہ فلموں والا क्या है, दादर का भाई एलजी फील कर रहा हो क्या है, क्या एक मैसेज है, कबाब मिल गए किधर से सुबह सुबह। अरे समी भाई जुगाड़ू आदमी भाई, समी भाई अलग पीस है भाई। एक मैसेज प्रभात भाई का, गुड मॉर्निंग भाई विदाउट ब्रेकफास्ट। अरे प्रभात भाई, वैसे प्रभात भाई एक बात बताओ, आपने ये डीपी जो है आपने बैग की फोटो क्यों लगाई है प्रभात भाई यार? माना आपने बढ़िया बुशर्ट पहनी है लेकिन शक्ल तो डालते हैं अपनी। एक मैसेज है, कबाब रात को होगा। रिजवान भाई कह रहे हैं बिल्कुल वो राजा राजशाही अंदाज में, कबाब रात को खाया जाएगा। अरे भाई आर एग्जाम्स आर इन अक्टूबर। अरे अलीना ऑल द बेस्ट, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अलीना कर लेगी, अलीना पे भरोसा है मुझे, आई नो होनहार बच्ची है, स्टाइल है प्रभात कह रहे हैं, स्टाइल है ये प्रभात भाई, एस्थेटिक मेरा भाई एस्थेटिक। तो मैं ज़रा सवाल की तरफ बढ़ जाऊँ बिफोर यू नो गेटिंग इन टू कॉन्वर्सेशन एंड भूल ही जाऊँ सवाल क्या। और समी भाई कह रहे हैं बूफे में मिला कबाब मुझे, कितने ऑनेस्ट हो यार समी भाई, यू कुड हैव सेड समथिंग एक्सट्रीमली बिजार लेकिन यू चोज बूफे में मिला भाई, कितने मासूम है। अच्छा तो मेरा सवाल ये है कि लोग अक्सर ना रिकमेंडेशन देते हैं और आज की तारीख में मैंने देखा है कि लोग किसी का रिकमेंडेशन लेते नहीं है। एक टाइम आपको याद है जब आपस में दोस्ती में लोग बता देते हैं भाई ये वाली क्रीम लगा के देख भाई बढ़िया क्रीम है भाई एकदम मतलब ओए होए होए होए, और लोग मान लेते थे कि चलो ठीक है यार कोई किसी प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन दिया या किसी ने बोल दिया भाई ये वाली चीज़ लेके देख भाई ओए होए होए होए। पर आज की तारीख में किसी के कहने पर कोई प्रोडक्ट लिया जाए तो पता नहीं, इंसान जो प्रोडक्ट लेता है किसी के कहने पे वो ऑलरेडी दिमाग में बना लेता है कि मैं तो इस प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज ज़रूर करूँगा, मतलब मैं तो इसकी बुराई ज़रूर करूँगा। तो आपने रिसेंटली किसी के कहने पे कुछ लिया है, कुछ कुछ चीज़ ट्राई करी है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में से क्या रहा हो ज़रूर बताइएगा। आई रियली वॉन्ट टू नो, क्योंकि एक सर्वे आया था जिसमें साउथ एशियन कम्युनिटीज़ और कंट्रीज शामिल हैं, उसमें कहा गया कि रिकमेंडेशन पे दुनिया अब चलना बंद कर चुकी है, रादर पीपल चूज़ ऑनलाइन रिकमेंडेशन, जो भी वो भी इंसानों ने दिए मगर सामने वाले पर भरोसा नहीं है, इंटरनेट पर पूरा भरोसा है। अगर मैंने इंटरनेट पर एक भाई साहब आलू छीलने वाला प्रोडक्ट देख लिया तो मैं वो लूँगा, आपके कहने पर नहीं लूँगा मैं। दैट इज़ हाउ द माइंड इज़ वर्किंग नाउ। एक मैसेज है, भाई आप टेंशन नहीं लो, आप कवर कर लोगे कहानी। भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस मोटिवेशन। मैसेज भाई गंजा हो गया, कभी बाल नहीं आया, बात है ऑयल का। अरे प्रभात भाई इतनी सच्चाई नहीं बोलने भाई, भाई सबका यही हाल है भाई। एक मैसेज है कमाल भाई का, कमाल भाई वालेकुम अस्सलाम। एक भाई कह रहे हैं प्लीज़ कॉल मी, पहले बताओ किस बारे में बात करनी है। तो अच्छा मैं कॉल कर लेता हूँ, सॉरी कर अब कॉल लड़ने आ गया, मैं यही सोच रहा था अरे अब फिर से लड़ना पड़ेगा। एक सेकेंड रुको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो एक मैसेज है, हाँ तो बताइएगा किसी कहने पर कोई अपने प्रोडक्ट का भी ट्राई किया है, कोई भी प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम।
2: क्या
1: हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप लड़की को कैसे भूल गए? लड़की की तरफ से तो गुड मॉर्निंग करा दिया आपने।
2: लड़का बोल हमेशा याद दिलाता रहता कि कबीर अंकल को मैसेज कर दो, वो मेरे नाम बोल देगा, बहुत खुश होते
1: हैं। अरे माशाल्लाह।
2: पीछे से लड़का गुस्सा हो गया, वो बोल रहे की मेरे नाम नहीं बोला।
1: ये तो देखिए आपकी ऑनेस्ट गलती है भाई, मान लेनी चाहिए आपको गलती है। नहीं पर दोनों को मेरा बहुत सारा प्यार भाई।
2: अभी कॉल करने के लिए लड़का तेरा कॉल करो लड़के बोले नहीं मुझे शर्म आ रही
1: है। दैट्स ओके, अब दोनों सुन, अगर दोनों सुन सकते हैं दोनों को मेरा सलाम और प्यार दीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर द स्कूल डे।
2: तो कुछ बोलना चाह रहा है, बोलो
1: जो बोलो बोलो।
3: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? क्या बात है, गा गा के जो दरा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या क्या क्या, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज आज क्या क्या है स्कूल में, क्या खास है आज?
3: नाम क्या है,
1: क्या है? बच्चे आज मेरे साथ खेल रहे
2: हैं। नहीं ऐसा है, वो आर्मी थोड़ा पहले आपको पूछा कि आपका नाम क्या है।
1: हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा नाम तो बता देंगे अब्बा, पर अब्बा से मेरा सवाल है, अब्बा ये बताओ कि आपने किसी के कहने पे कोई प्रोडक्ट ट्राई किया है भाई?
2: मैं प्रोडक्ट तो ट्राई किया लेकिन मुझे अच्छा हुआ।
1: अच्छा हुआ, क्या प्रोडक्ट था?
2: दूसरे को भी वो सजेस्ट किया है।
1: कौन सा?
2: तुर्की प्रोडक्ट था, वो मेरे गर्दन पे पहले बहुत कलर खराब हो गया था।
1: अच्छा,
2: वो तुर्की से वो लाया मंगवाया।
1: हाँ।
2: लगाया जबरदस्त,
1: क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये क्या है एग्जैक्टली, कोई क्या क्रीम नहीं मंगाई, क्या मंगाया आपने?
2: ये क्रीम है लेकिन ये ऐसा क्या मिक्स किया इसमें पता नहीं।
1: क्या बात है, दबी दबी आवाज में जो आपने इतना भारी रिकमेंडेशन दिया, अब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बताओ बताओ क्या है, क्या है? भाई फोटो भेज दीजिए ना, किसी के काम आ जाएगा। ठीक है ठीक है, जज़ाकअल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और दोनों को बहुत सारा प्यार। ओके वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो फायजा और अहमद दोनों के दोनों आज सुबह स्कूल के लिए निकले और हमें कॉल कर लिए, याद करने के लिए बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर अंकल रॉक्स, ऑलवेज रिमेंबर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मैं ये सवाल कर रहा था आपसे कि क्या आपने किसी के कहने पे कोई चीज़ खरीदी है, कोई चीज़ ट्राई करी है, कोई प्रोडक्ट, कोई जगह या कुछ, एंड हाउ डिड इट टर्न आउट? तो मुझे ये बताइएगा। एक मैसेज है सब के भाई, एक भाई कबीर भाई, कबीर भाई भाई बहुत सारा प्यार भाई, बहुत सारा प्यार सऊदी अरेबिया, ऐसे मैसेज किया अली भाई ने। सलाम वालेकुम, सलाम अली भाई, क्या हाल है आपके? एक बार ने मैसेज किया भाई, मैंने अपने दोस्त के कहने पे एक क्रीम ट्राई करी थी और उसके बाद मेरे समझ में नहीं आया कि मैं उससे क्या बोलूं, वो रोज़ मुझसे पूछता है कैसी है कैसी है कैसी है, और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे कहा भाई बहुत घटिया है। वेरी गुड वेरी गुड। पर क्या मतलब, क्या वो वाली वो स्कैम वाली क्रीम थी क्या? तो ये क्रीम लगा भाई गोरा कर देगी, ऐसे कुछ था क्या? हैं ये नाजिश क्या क्या था मेरे भाई, मुझे बताना। आसिफ भाई मैसेज कर रहे गुड मॉर्निंग, क्या शॉर्ट है भाई, मैंने बहुत बार ख़रीदा है मगर कभी मेरा भला नहीं हुआ। पर आसिफ भाई क्या किसी कहने पे क्या लिया आपने रिसेंटली, मुझे ये बताइए। आई रियली वॉन्ट टू नो। एक मैसेज है भाई, कतर आना ही किसी के कहने पर ट्राई कर रहे हैं। कतर आने का ही किसी कहने पर ट्राई कर रहे हैं। आप तो ऑलरेडी कतर में है ना वो साहब भाई, तो आपने किसी के कहने पर ट्राई किया था, ये तब तो बढ़िया रहा आपका डिसीजन। एक मैसेज है भाई, एक क्रीम था और आगे लिखा है रिजवान भाई ने, लेकिन क्या हुआ रिजवान भाई, आगे कहानी बता दो, सस्पेंस मत छोड़ो मुझे। आई रियली वॉन्ट टू नो हुआ क्या। एक मैसेज है जी, आई ऑलवेज बाय द मेडिसिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर। कासिम भाई डॉक्टर तो ठीक है मेरे भाई, दोस्त डॉक्टर के कहने पे तो आपको लेनी पड़ेगी दवाई, ये क्या बात हुई यार। वाह वाह वाह वाह कासिम भाई, वाह वाह वाह वाह, इनको मेडल दो, रेड एंड वाइट बहादुरी पुरस्कार कासिम भाई को। डॉक्टर के कहने पे तो लेंगे ना आप, मैं तो कह रहा हूँ किसी दोस्त के कहने पे, रिश्तेदार के कहने पे, कुछ आपने लिया हो भाई, किसी ने कह दिया भाई यो प्रोडक्ट एक नंबर है भाई, तब ना भेरा पाटेगा मजे आ जाएंगे। और माज भाई मजा है, किसी के कहने पे आपका शो सुनना शुरू किया था, नाउ डू यू रियली विश टू कंटिन्यू माज? ये सवाल यहाँ पे फिट बैठता है माज भाई, मतलब इट्स नॉट इवन एट दिस मोमेंट, ये सेंटेंस ही फेमस हो चुका है, तो ये तो बनता है, डू यू रियली विश टू कंटिन्यू माज लिसनिंग टू दिस शो? एंड इफ यू से नो, बेटे मैं घर का एड्रेस पता है आपका, है समझ में आ रही, मेरी आंखों में देख के बात करो। वेरी गुड वेरी गुड। माध भाई के बाद मैसेज आया है क्या लिखा, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, फेस क्रीम लगाया था, रिजल्ट अच्छा रहा, फेस पर एक्सीडेंट का निशान थोड़ा हल्का हुआ। चलो मुबारक हो यार, कुछ तो किसी के काम कोई क्रीम आ रही है, बढ़िया बात है। इश्तियाक अंसारी साहब अल्लाह ताला आसानी रखे भाई। एक मैसेज है भाई, अपना बता दो, मैं अपना बताऊंगा, डोंट वरी आई विल टेल। तब उसको मैंने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, प्रोडक्ट का तो मैं सोच के बताती हूँ कुछ देर में, लेकिन कतर वालों के हिडन जेम्स रिकमेंडेशन में कभी ट्राई ना करूँ। क्या बात है भाई, हमारे देसी इन्फ्लुएंसर जो होता था ना, हिडन जैम भाई, वो कहीं भी खड़े हो जाएंगे पता, किसी भी गली में देर रात को 12 बजे 1 बजे करीब कह देंगे, ये देखो ये गली गाइज यहाँ पे कोई नहीं आया गाइज, दिस इज अ हिडन जैम, आपको पता ये आपके भाई ने ढूंढी गली। मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करूँगा, क्योंकि मेरी पार्किंग तो किसी ने देखी नहीं है, तो मैं पार्किंग में खड़ा हो जाऊँगा अपनी मंजूरा की और बोलूँगा गाइज दिस इज अ ब्यूटीफुल पार्किंग, नोबडी इज हियर, दिस इज़ माई हाईली रिकमेंडेशन, अपनी गाड़ी यहाँ पे आके पार्क करें प्लीज़। एक मैसेज है आसिफ भाई का, मैं अपने दोस्त को बोलने का 1-10 से इलेक्ट्रिक का चूल्हा लिया, घर आते ही बंद मिला, नेक्स्ट डे उधर गया तो चूल्हा ख़त्म। चूल्हा लेके आए थे आप किसी के रिकमेंडेशन पे? चूल्हे के लिए आपको रिकमेंडेशन क्यों लेना पड़ा मेरे भाई? आसिफ भाई ये तो आप खुद भी ले सकते थे आसिफ भाई, वॉट इज़ दिस यार। ये एक मैसेज है, याद नहीं आ रहा. समीर भाई याद तो सब आ रहा है, आप बताना नहीं चाह रहे हैं, ये आपके मैसेजेस मुझे बता रहे हैं. इट्स जस्ट सम हिडन थिंग, यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी ब्रो. आई नो कुछ तो आपको रिकमेंडेशन दिया गया है या आपने किसी को रिकमेंड किया है जो चीज़ काम नहीं आई है. समी बेटे सच बोलो, सच बोलो, अभी के भी झूठ नहीं बोला करते. एक मैसेज है, दोस्त की रिकमेंडेशन पर कुछ नहीं बाय, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, अकल तो पास से गई नहीं है मेरे जैसी. अपने दोस्तों पे कासिम भाई को बहुत भरोसा है कि ये कुछ अच्छा बता नहीं पाएंगे. ये नहीं, ये इनके बस का नहीं बताना. एक मैसेज है, पाकिस्तान में अच्छा क्रीम सबसे पहले बेस्ट है, सुस्ती क्या सस्ती और क्या खुशबू होती है. भाई इस क्रीम का नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन पाकिस्तान की किसी क्रीम की तारीफ कर रहे हैं. खुशबू के लिए आप क्रीम लगा रहे हैं, ये तो बड़ी कमाल की बात है. मतलब एक मैसेज हसन भाई का, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, डॉक्टर है तो मेरा दोस्त, डॉक्टर ही तो मेरा दोस्त है, उसको मैं खुद रिकमेंड करता हूँ. ये पूरा पूरा डॉक्टर ही रिकमेंड कर देते हैं हसन भाई. ये मेरा दोस्त है, डॉक्टर है, ये सबको जानता है. किस चीज़ के डॉक्टर है वैसे हसन भाई? इज ही एन ऑर्थोपेडिक MBBS, क्या है मतलब, किस किस सेगमेंट के डॉक्टर हैं वो? हाँ तला भाई एकदम सही पहचाना, तला भाई ने क्रीम पहचान ली भाई. क्या बात है तला भाई, क्या बात है, क्या बात है, 10 out of 10 भाई. एक मैसेज है, मैंने दोस्त के कहने पर एवोकाडो ट्राई किया था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, प्लीज़ एवोकाडो लवर डोंट माइंड. अब मैं बताता हूँ मुझे क्या रिकमेंड किया गया था भाई. सेम चीज़, सेम चीज मुझे पता है, किसी ने कहा एवोकाडो खाओ, एवोकाडो, एंड उसमें से एक नाम है सरोवर भाई का. सो समबडी रिकमेंडेड मी एंड ही आल्सो रिकमेंडेड कि तू एवोकाडो ट्राई कर. मैंने ट्राई किया भाई, एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ ट्राई किया था कि नहीं यार अच्छी चीज़ होती है, खा के देखते हैं. नहीं मज़ा आया भाई, उसके बाद में वापस गया, मैंने कहा मज़ा नहीं आया. तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसे ना ब्रेड पे लगाओ, एकदम टोस्ट पे एकदम लिटा दो एवोकाडो को पीस पास के, और उसके ऊपर मसाला वसाला डालो फिर खाओ. मैंने वो भी ट्राई किया, नहीं है. सॉरी जितने भी एवोकाडो लवर्स हैं, सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट ब्रो, नहीं मज़ा आया. तो ये मुझे रिकमेंडेशन किया था. तो मैं सुभाष भाई आपकी बात से भाई मैं 10,000% अग्री करता हूँ भाई. एक मैसेज है, ऐसे लोगों की रिकमेंडेशंस कभी लेनी नहीं चाहिए जिनकी नज़र में उनकी हर चीज़ बेस्ट होती है. अरे बॉय क्या भारी भारी कोट कहा है कामरान भाई ने, क्या बात है. ये जो है भाई बहुत भारी डायलॉग कहा है कामरान भाई ने. कामरान भाई कह रहे हैं ऐसे लोगों की रिकमेंडेशंस कभी लेनी नहीं चाहिए जिनकी नज़र में उनकी चीज़ बेस्ट होती है. क्या कामरान किताब विताब लिख रहे हैं माशाल्लाह. प्रवेश भाई वालेकुम अस्सलाम. भाई प्रवेश की बात, बहन हमारी कह रही है, तबस्सुम बहन लिखती है, किसी के कहने वेट लॉस प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे, बहुत ही गंदा टेस्ट था. कुछ पाउडर सब मिक्स करके पीना होता है, कतर आने के 2 साल तक वैसे ही पड़े रहा और जितना यूज़ किया था उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ मूड ऑफ होता रहा. कतर में हर दूसरे बंदे के पास पतला होने के नुस्खे हैं, मत मानना इन लोगों के नुस्खे, मैं सही बता रहा हूँ. जस्ट डोंट ट्राई कुछ भी. कुछ भी ट्राई नहीं करना. पीपल जस्ट से एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ये वाला पाउडर लो, इसे गुनगुने पानी में डाल के इसको फिर पियो, कुछ नहीं हो रहा उससे भाई, वो अपने आप से ही होगा, वो करने से, परहेज करने से. समीर भाई कह रहा है कौन सी क्रीम कोई, कबीर भाई चुपके से बता दो. ये लो भाई बता दी चुपके से. और ये कह रहे हैं कौन सी, अच्छा इन्होंने फेस वाइटनिंग क्रीम मंगाई थी, कह रहे हैं बहुत बढ़िया चल रही है और टर्की की है, कह रहे हैं 100 कतरे रेल की, ये जरा सा डब्बा 100 का ये. अच्छा फराज भाई वालेकुम अस्सलाम, और आपका भी एकदम सही जवाब है भाई. अच्छा एवोकाडो चेहरे पे लगाना था भाई. तो यार खाया जा नहीं रहा है, चेहरे पे कैसे लगा लें हसन भाई? लगाते हैं क्या चेहरे पे? पता चला मैं ही यहाँ पे कम नॉलेज वाला साउंड करने लग जाऊँ. नहीं नहीं एवोकाडो तो नहीं लगाते होंगे यार, कैसी बात करो हसन भाई. 2 मिनट के लिए यहाँ पे भरोसा कर लिया था मैंने, हसन भाई बहका रहे हैं मुझे. और एक मैसेज आया है, वॉइस नोट है, तो वॉइस नोट अभी सुनूंगा मैं कुछ देर में. ये भेजा है मुझे फरहान भाई ने. फरहान भाई सिर्फ एवोकाडो, व्हाट अबाउट मैच है. ताहिर भाई सबसे पहले तो हाथ मिलाइए, अस्सलाम वालेकुम. और ताहिर भाई मैंने नहीं ट्राई किया भाई, आई हैवंट ट्राइड इट येट. आप कुछ रिकमेंड करें यार आप, ताहिर भाई आप बढ़िया हैं सामने. एक मैसेज है, फेस क्रीम तुर्की प्रोडक्ट पिक्चर प्लीज, सबको अब गोरा होना है रातों रात, सबको गोरा रातों रात. अरे यार अच्छा भाई ठीक है, देखो जो मुझे मिलेगा मैं तो बता दूंगा. किधर गया भाई इनका मैसेज, किधर गया? ये लो भाई दिलशाद, खुश हो जाओ। अच्छा तो एक मैसेज है बिग प्लीज। अच्छा एक मैसेज आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे किसी के किसी में क्या लगाने वाली क्रीम, पीने और लगा, पीने और लगाने वाली क्रीम है? मैंने सही तो पढ़ा, इसे मुझे धोखा तो नजरों का धोखा, दोबारा पढ़ता हूँ। मुझे किसी ने पीने और लगाने वाली क्रीम रिकमेंड की थी, वो इफेक्टिव रही, नीम के पत्ते। अरे भैया, अरे भैया, अस्सलाम वालेकुम। भाई एकदम बढ़िया, आपने क्रीम बहुत जल्दी पहचान लिया, चला भाई कमाल है भाई,
2: नसों में घुसी है भाई।
1: क्या भाई साहब इतनी मशहूर है क्या?
2: हम नर्सरी से चमकते दोस्त है भाई, क्या बात कर रहे हो?
1: अच्छा तभी मैं कहूँ,
2: इस क्रीम का नाम चेंज हो गया ना, अम्मी क्रीम होनी चाहिए।
1: अम्मी क्रीम नहीं, पर
2: भाई
1: हाँ, आपको किसी ने कुछ दिया है, कुछ रेकमेंड किया है तला भाई आपको, ये कर लो ये कर लो?
2: भाई बहुत भाई, बहुत भाई, हम बहुत कसे में, तुमने सुबह सुबह छेड़ दिया टॉपिक।
1: क्या क्या बताओ बताओ।
2: मैंने दोस्तों, मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी याद कर लिया, उनको फजीलतों से नवाज दिया। मेरे प्यारे दोस्त पत्नी कहाँ होंगे अभी,
1: तो क्या क्या दिया था
2: भाई? वो यार एक ना एक दोस्त है, वो प्रॉपर्टी में काम करता है, इसके वो है रियल स्टेट का काम करता है। अच्छा। तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे जिक्र हो गया था, मैंने कहा यार कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, अभी नहीं पुरानी बात है, मैंने कहा यार कुछ लेना है, पैसे लगा दूं वरना ये खर्च हो जाएंगे ये वो। मतलब यार यहाँ पे बड़ी कार्ड वो हाउसिंग स्कीम लॉन्च हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, वहाँ लगा दे भाई, बूम है भाई उसके, तो ये है वो है फराम भाई। मैंने उसके कहने पे लगा दिया और अच्छा अमाउंट था, मतलब डबल फिगर में था।
1: अच्छा
2: वो भाई वो तो वो अभी तक फंसा हुआ है, वो सिंगल फिगर नहीं दे रहा कोई उसको भाई, अभी यार कसम से यार। अच्छा भाई हाँ। देखो मैं दोस्त अच्छा हूँ, मैं बड़ा बड़ा मुखलिस दोस्त हूँ, तुम्हें अंदाजा है
1: हाँ।
2: भाई उसी कहने मैंने दोबारा इन्वेस्टमेंट करी एक और जाके, यार ये वाली रिकवरी ना उधर से निकलेगी।
1: और कितने कितने तो लग गए
2: भाई? होंगे कोई, होंगे कोई 70-80।
1: बेहतरीन भाई
2: ठीक है हाँ। अच्छा और वो क्या यार, ये वाली जो रिकवरी है ना, ये जो फंस गए ना, ये वाली रिकवरी इधर से निकाल लेंगे अपन ना, टेंशन वही फिकर रहा तू बस, बैठा तेरे लिए, टेंशन क्यों ले मैं, चल भाई एक दफा फिर से मेलोडी खा लेते हैं। तो वो मेलोडी खाई, पछता रहा हूँ बैठा हुआ ना, अब भाई 70-80 का समझोगे हाफ भी नहीं मिल रहा।
1: अरे भाई यार ये तो बहुत, ये पता सेकंड हैंड गम हो रहा है मुझे, मुझे गम हो रहा है सुनने के बाद भाई
2: साहब। भाई और भाई मेरा बचपन का दोस्त है, मैं कुछ कह भी नहीं सकता उसको।
1: अरे यार
2: तो, वाली कहानी है।
1: पर वो कहता क्या है फिर इस बात पे, कि वो कुछ कहता नहीं है आपसे, मतलब कि भाई हो जाएगा नहीं होगा, कुछ तो कह रहा होगा, अल्टीमेटम क्या है
2: यार? मना यार वो बताऊं क्या कह, वो जो भी कहता ना मना लेता, बस उसमें हुनर है। वो सेकंड वाइफ है वो मना लेता भाई।
1: अब ये थर्ड स्कीम क्या लेके आ रहा है फिर? थर्ड स्कीम कोई लेके आया नहीं अभी तक।
2: भाई मैं कॉल ही नहीं उठा रहा उसकी ना, तो लिटरली बता रहा हूँ, मैसेज दिखाऊंगी मैं तुम्हें स्क्रीन शॉट, अभी कॉल तो उठाए बात, मैं नहीं तुझसे बात ही नहीं करनी, जो करनी मैसेज में करते, कॉल पे नहीं करूंगा, मान जाता हूँ तेरी कॉल पे, कॉल पे नहीं करूंगा बात।
1: इतना अच्छा सेल्समैन है कि डर लग रहा है ये तो मना ही लेगा, तो इसलिए कॉल ही मत उठाओ।
2: मुझे करोड़ काटने वाली कहानी पे ला रहा है वो, मैं बता
1: नहीं नहीं
2: जाहिर है वापस तो आएगा, ये केला आएगा, आएगा तेरे बच्चे खाएंगे। मैंने कब खाएंगे, कौन से वाले खाएंगे? चौथा खाएगा तो कौन सा वाला बच्चा खाएगा? तीन है अभी, चौथे वाले की बात हो रही है तो चौथा करूं फिर मैं?
1: अरे ये तो यार बहुत भारी नुकसान है यार, बहुत भारी नुकसान हुआ है ये तो।
2: लोग देखो हंसते चेहरे के पीछे ऐसा नहीं है दुख नहीं होता,
1: नहीं मैं मैं मैं समझ पा रहा हूँ, मैं कसम से बुरा लगा है मेरे को यार, बहुत बुरा लगा।
2: अमीन भाई को बताओ, वो मेरा गम समझे थे कल?
1: हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं भी कम समझा भाई, मैं आंसू नहीं रोक पा रहा हूँ, माशाल्लाह क्या करें।
2: बाकी हाँ। बाकी वेट लॉस का मैंने करेक्ट रहा है भाई, ठीक है ना, वो सबको लग रहे होते मुझे नहीं लगते। तुझे लग रहा, मुझे क्यों लग रहा है? तेरा मेटाबॉलिज्म खराब है। मैं हाँ। मेरे ही खराब है और किसी का नहीं है खराब, सबको लग रहा मुझे नहीं लग रहा। एक मेटाबॉलिज्म की मुझे थ्योरी समझ नहीं आती, किसी को पता तो मुझे बता दो भाई,
4: मेरा वाले में क्या गड़बड़ है और सामने वाले का क्या सही है.
1: ये सेम चीज है भाई मेरे साथ भी, कुछ भी ट्राई करो. अरे तुम्हारा थोड़ा सिस्टम अलग है ना. अरे क्या अलग है भाई, सिस्टम अलग अलग होता है. कोई पता
4: क्या
1: है,
4: क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हलाल करके नहीं खा रहे हैं, क्या रहे हैं कबीर. सबका सही हो रहा है, अपना नहीं हो रहा, कुछ अपने में गड़बड़ है, यही मान के चल रहे हैं ना हम जिंदगी.
1: यही यही एग्जैक्टली एग्जैक्टली
4: Exactly. इतना यकीन करो मैं अपने आप को शिप के डीमोटिवेट कर रहा. नहीं नहीं तुझसे होगा ही नहीं, हो रहा है मुझसे भाई, बकायदा हो रहा है, भरपूर हो रहा है.
1: हाँ.
4: दूसरों से बेहतर हो रहा है.
1: हाँ.
4: लेकिन रोज आ रोज कह रहा नहीं नहीं तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा. क्योंकि जिस दिन कह दिया ना अबे अपन कर लेंगे, उसी दिन लग गया.
1: नहीं नहीं भाई, इससे बचना है, इससे बचना है भाई, इस चीज से बच के रहना है थोड़ा, ये बच के रहना है. लेकिन जो बात है, आपने क्रीम एकदम सही पहचानी भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी. सबसे पहले आपने जवाब दिया,
4: आप निकालो खून, निकालो सफेदी के साथ निकलेगा खून, निकालो खून. स्पेशली हाथ का, मुंह का, कान के पीछे के हिस्से का, गर्दन का, ये स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे अबे भाई अम्मी ने चमड़ी रगड़ दी थी हमारी.
1: ये तो कह रहे हैं इतनी अच्छी खुशबू है, मैं तो कुछ लगाता ही नहीं, वही लगाता रहता हूँ. ये इतनी अच्छी खुशबू है क्या
4: भाई, अब इतनी भी नहीं है यार, वालदा की यार आती है लगाते होंगे भाई मेरे को लगता है. लेकिन ना देखो, अगर आपको ड्राइनेस हो तो वो लगाओ, अगर आपको क्या कहते हैं कोई फट गया हो तो लगा लो, अगर आप गोरे होने चाह रहे हो तो लगा लो, स्कूल जा रहे हो तो लगा लो, टेढ़ी मांग लगा के
1: टेढ़ी मांग लगा लो. अरे यार मजा आ गया यार इस क्रीम के बारे में जान के. यार ये तो ये एक मैसेज क्या है, समी भाई ने कहते हैं कराची वाले सेल्समैन बड़े खतरनाक होते हैं. ये समी भाई कह रहे हैं.
4: समी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बेचना जानते हैं भाई मेरे, मट्टी को सोना करके बेच देंगे और आप ले लोगे हीरा समझ के. फिर जो होगा ना आपके साथ, आप कोयले में से हीरा निकालने की तलाश. मैं 4 साल से लगा हूँ, अभी तक नहीं निकला भाई. और सगा दोस्त है मेरा, सगा पक्का भी सगा दोस्त है मेरा.
1: नहीं भाई दूरी बना के रखें, दूरी बना के रखें चला भाई प्लीज.
4: नहीं
1: नहीं सही है, सही है, ये डिस्टेंस सही है आपका, मेरा दोनों का नुकसान बच रहा है इससे. आपको मैं हिडन जेम दिखाऊंगा, एक दिन हिडन जेम दिखाऊंगा. डोंट वरी
4: भाई, मेरे मुंह से निकल गई, मैं
1: ठीक है. अरे थोड़ा सा था भाई, थोड़ा सा.
4: कल मैं एक रील देख रहा था, एक भाई हमारे पाकिस्तान के नाम नहीं लेता. हाँ. वो भाई दबा के ना आजकल ना वो हर रेस्टोरेंट की तारीफ कर रहे हैं.
1: हाँ.
4: ठीक है.
1: हाँ.
4: और लिटरली मैंने उनको देखा, एक रेस्टोरेंट में थे वो, उसके प्रमोशन कर रहे थे, बराबर वाला रेस्टोरेंट वाला आया, सर मेरे रेस्टोरेंट की प्रमोशन करते हैं, मैं बराबर में उसके कह रहे इतने पैसे होंगे, कहला सही है, कहला अभी आधा घंटा रुको, इसको निपटा दो, तुम्हारे पास आ रहा हूँ. ये चक्कर है
1: मैं जैसे यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी है ना, सारे के सारे शावरमा खा के बोल देंगे भाई यहाँ का शावरमा तो सब सब सब बढ़िया है, सब बेस्ट है, सब जगह का बेस्ट है खाना.
4: भाई मैंने कहा यार ये तो धोखा, इन पे तो भरोसा करके मैं इस वाले रेस्टोरेंट का आया था, इसने तो आगे बुक कर
1: दिया. सब कुछ पैसे का खेल है तला, सब कुछ पैसे का खेल है मेरे भाई.
4: मैंने उनको सलाम दुआ करी, उनकी तारीफों के फूल बांधे, पहले उनको चांद पे लेके गया मैं.
1: हाँ.
4: फिर मैंने ये बताया कि ये वाले रेस्टोरेंट से खाऊं खाना या बराबर वाले में जहाँ जा रहे हैं आप वहाँ खाना है.
1: और तुम कसम खाओ
4: लगे नहीं, इसका बहुत अच्छा है, मैंने बराबर वाले का
1: किसका खाऊं बताओ. कहता मेरे घर चल गए. नहीं पर बहुत बहुत शुक्रिया तला भाई, आपने कॉल करी और आपकी बातों पे बहुत सारी और ही बातें आई हैं, वो ही पढ़ लेते हैं. थैंक यू सो मच मेरे भाई. ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़. और तला भाई के बाद मैं लगातार बस वाले मैसेज पढ़ देता हूँ. तो जमाल शेख साहब ने मैसेज किया है, कुदरती करीम नो नीड अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शादी का वक्त बीवी से डील हो गई है, ना कोई मेकअप करोगे, ना तुम मेकअप करोगे ना हम. जमाल भाई एकदम छीले हुए अंडे लग रहे हो आज, माशाल्लाह एकदम बढ़िया. एक मैसेज सलाम अलैकुम बब्बर जी, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे, तला भाई के साथ स्कैम हो गया बहुत भारी. तो मेरा सवाल ये था कि आपने किसी के कहने पर कोई प्रोडक्ट ट्राई किया है, ये और वो प्रोडक्ट कैसा रहा ये बताइएगा. एक जरा मैं कॉल उठा लूँ, मैसेज पे वापस आऊंगा. अस्सलाम वालेकुम.
5: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
1: जी मेरा भाई, आपका नाम?
5: अरे नंबर एंटीक पीस है.
1: नंबर एंटीक पीस है? अरे हाँ सच में एंटीक पीस है भाई, बहुत भारी नंबर है. क्या देना पड़ेगा इसके लिए, किडनी विडनी क्या लगता है इतना भारी नंबर के?
5: मुमताज, मुमताज नाम है मेरा.
1: वो तो मुमताज नाम है मेरा, क्या बात है हीरो. आप बताइए क्या कहना चाहते हैं मुमताज भाई, क्या क्या प्रोडक्ट है?
5: लोग परेशान कर देते हैं कि यहाँ कॉल लगाओ गाड़ी में आते ही.
1: है क्या क्या क्या? अरे तुम्हें तो पहचान लिया मैंने, तो मुमताज भाई से बात कर रहा था. खैर अब तुम बीच में आ ही गए हो, तो ये बताओ क्या है आज स्कूल में, खास क्या है?
3: आज खास कुछ भी नहीं है, आज खास है कि आज वेडनेसडे है, खास ये है आज.
1: यार ये बच्चा आरजे बनाओ इसको भाई. अच्छा एग्जाम हो गए सारे के सारे डन?
3: हाँ हो गए.
1: अरे माशाल्लाह, तो अभी क्या प्लान है, वीकेंड पे कुछ करोगे? क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई तो है नहीं अभी, आराम से एकदम चिल मोड में हो, क्या करोगे अभी?
3: वीकेंड नहीं है.
1: अरे तो कल आएगा ना वीकेंड, अभी थर्सडे आ जाएगा फिर छुट्टी हो जाएगी.
3: कल वीकेंड नहीं है, थर्सडे को हम लोग को फ्राइडे सैटरडे है.
1: हाँ तो फ्राइडे सैटरडे क्या करोगे ये पूछ रहा हूँ मैं.
3: फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे तो हम लोग आते हैं घूमने जाते हैं.
1: अच्छा.
3: और सैटरडे हम लोग घर में सोते रहते हैं.
1: वेरी गुड वेरी गुड.
3: छह बजे उठ के फिर उसके बाद हम लोग होमवर्क करके फिर खाना खाते फिर उसके बाद फिर सो जाते.
1: वेरी गुड. अच्छा और रिजल्ट कब आ रहे हैं तुम्हारे, रिजल्ट कब आ रहे
3: हैं? रिजल्ट नहीं पता अभी पर, लेकिन जो रिजल्ट है ना 10 अक्टूबर को आ रहे हैं, मतलब सैटरडे को पेरेंट्स टीचर मीटिंग है जब देते हैं हम लोग पेपर.
1: ओए होए डर लग रहा है, डर लग रहा है पेरेंट्स टीचर मीटिंग से? नहीं
3: लगता है.
1: अच्छा तो क्या लगता है, शिकायत करेंगी टीचर तुम्हारी शिकायत करेंगी नहीं करेंगी?
3: 100%
1: वेरी बड़े हो यार तुम.
3: कीड़े मकोड़े लिखूंगा.
1: कीड़े मकोड़े
3: बोल लो मम्मी मेरे को बोलते कि क्या लिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े लिखते हो क्या?
1: यार तुम तो कमाल हो यार, आर्टिस्ट आर्टिस्ट आर्टिस्ट बच्चा है रे.
3: अंकल अंकल बात करो.
1: हाँ बोलो ना, कौन कौन है, किससे बात करनी है मुझे?
3: मेरी कजन है जुमेरा, बोलो बात करो.
1: हाँ जुमेरा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये शाय हैं सब, सब तुम्हारी तरह एक्टिव नहीं है ना, एक एक ही बच्चा एक्टिव है इस पूरी.
3: इन्हें बहुत चुप है, इन्हें छोटे हैं ना, क्योंकि इनको स्कूल जाने का नहीं है, इनको स्कूल जाने का मन नहीं है इसलिए चुप है इन्हें.
1: और तुम्हारा मन है स्कूल जाने का?
3: हाँ.
1: अरे वाह
3: यार, क्योंकि आज स्पेशल डे है ना वेडनेसडे.
1: अच्छा स्पेशल डे मतलब आज क्या स्कूल में कोई एक्टिविटी है क्या आज?
3: हाँ स्कूल की एक एक्टिविटी है.
1: क्या है क्या है एक्टिविटी?
3: वेनसडे को वेनसडे को स्कूल जाना है ओनली.
1: तो एक्टिव
3: और एक्स्ट्रा पढ़ाई है वो है.
1: अरे मुझे लगा कुछ गेम्स वगैरह हैं, कुछ खास है आज, और मुझे ऐसा कुछ लगा, कुछ भी नहीं आज कुछ
3: कल
1: खास
3: है, कल है गेम्स, कल है.
1: अच्छा गेम्स कल है, ओके ओके डन हो गया. थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए. एंड
3: टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है? मैं टॉपिक के बारे
1: अच्छा टॉपिक कर रहा हूँ. अभी तुम बहुत छोटे हो उस टॉपिक के लिए, फिर भी चलो मैं ये कह रहा था कि कभी किसी के कहने पे कुछ ट्राई किया है, कोई चीज कोई प्रोडक्ट एनीथिंग? क्या ट्राई किया?
3: मारा बोले थे कि डंडा ट्राई करो, तो मैंने डंडा ले ले सर पे मारा ट्राई करने के लिए.
5: बहन के बारे में बोल रहा है.
1: अरे यार कमाल हो भाई, कमाल है कमाल, मान गया सलूट सलूट.
5: एक दिन कॉल नहीं किया वो परेशान कर दिया.
1: अरे नहीं नहीं नहीं, मैं हमेशा हमेशा मेरा नंबर मुझे याद है, मैं हमेशा कॉल करता
3: हूं. दो दिन पहले वो उसके अंदर से बीच में भूल गया मैं एक लाइन.
1: क्या क्या लाइन?
3: लाइन भी जलता है गरम पानी में ऐसा होता है.
1: क्या क्या क्या मुझे याद नहीं आ रहा, क्या कह रहे थे तुम?
3: वो जब लास्ट टाइम मैंने बोला था ना
1: क्या,
3: तो एक लाइन भूल गया मैं उसमें बीच में, वो बीच में की लाइन थी कि लोगों का खून भी जलता है
1: मेरे को देखते हैं. क्या बात है भाई, स्वागत है बच्चे. यार तुम कमाल हो यार, मैं फैन हूँ, मैं आई एम योर फैन ब्रो, सीरियसली आई एम योर फैन सीरियसली।
3: सब भी स्कूल में जाते हो क्लास में इंटर कर देंगे
1: ऑल द बेस्ट, लेकिन ना तुम्हारे दिन के लिए, पूरा दिन के लिए, और कल इंशाल्लाह फिर इसी टाइम बात करेंगे, ठीक है? मैं एकदम फ्री रहूंगा तुमसे बात करने के लिए।
3: है? मत करो।
1: कौन भाई? अरे सारे अरे सब तुम्हारी तरह नहीं है, सारे शाय बच्चे हैं तुम्हारे साथ माशाल्लाह। हैं?
6: अरे क्यों तो कल मेरा कल नेट और कॉलिंग पूरा दोनों चला गया था, तो ये तो नहीं नेट में मैसेज आ लो बोल।
1: नहीं मैं कल कॉल कर लूंगा मुमताज भाई, नो प्रॉब्लम भाई, मैं खुद कॉल कर लूंगा। मैं अभी जो है ना मैं नंबर भी नोट कर लेता हूँ, मैं पक्का कॉल करूंगा सर, ठीक है?
6: हाँ
1: ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज। तो ये मुकम्मल आरजे है ये, मैं आपको बताऊं, तैयार है ये मीडिया के फील्ड के लिए, एकदम तैयार। तो बस मैं लिखती हूं सारे बच्चों की तरफ से, ये बच्चा अटेंड करेगा पीटीएम, और टीचर्स बोलती हैं आरजे कबीर को लाजवाब करती है। मैन आई ट्रूली बिलीव सो, मेरे मेरे नाम की पर्ची पटेगी, इसको सुन रहे हैं बच्चे। अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी जनाब, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? ये कहाँ का कोड है मुझे पता है।
7: मैं
1: बहरीन से कॉल कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ये 7173 में, ठीक है? कैसे हैं आप?
7: बढ़िया सर, बढ़िया, आप बताएं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम शानदार, एकदम शानदार। जी बताइए।
7: तो टॉपिक क्या था?

0: मैं टॉपिक ये करता कि किसी के कहने पे भाई आपने कुछ ट्राई किया है, कोई प्रोडक्ट ट्राई किया है? लोग देते रहते हैं ना, बताते रहते हैं भाई ये ट्राई करो वो ट्राई करो, तो कभी किसी के कहने पे ट्राई, हाँ क्या ट्राई किया आपने?
1: मैं एक बार बहरीन से जा रहा था तो मुझे वो लेना था ग्राइंडर।
0: अच्छा,
1: तो एक दोस्त ने कहा कि मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, तो उसने कहा कि इस कंपनी का ले ले, एकदम जबरदस्त है वो। मैंने कहा यार ठीक है चल, तो उसके साथ मैं गया और ले लिया, और मैं बता रहा हूँ कि वो मैं इंडिया लेके गया, वो 3 महीने में नहीं चला है, खुश हो गया वो एकदम।
0: अरे दिल टूट गया भाई,
1: मुझे ये चीज हमेशा याद रहती यार। उसने बोला वो अच्छा, वो मालूम नहीं उसने यूज किया नहीं किया, बस वो बस किसी ने उसको बताया होगा, बस वो बोला कि नहीं ये ले ले, ये ले ले, बहुत अच्छा है
0: वो ग्राइंडर। एक चीज ग्राइंड कर पाया? कुछ भी ग्राइंड नहीं कर पाया, कभी तो कुछ ग्राइंड किया होगा?
1: नहीं, किया मतलब ये है कि ज्यादा दिन नहीं चला, मतलब 2-3 महीने में वो खराब हुआ।
0: 2-3 महीना तो बहुत कम टाइम है भाई, बहुत ही बुरा प्रोडक्ट था यार।
1: वही तो, वो तो सालों साल चलना चाहिए।
0: अरे रे रे रे। और बताइए बहरीन में क्या सीन है अभी, कैसा मौसम है
1: बहरीन में? मौसम अभी ठीक है, पहले से गर्म कम हो गया,
0: पहले से बेहतर है। अच्छा ओके, तो नाश्ता वाश्ता हो गया आपका? मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई, आप इतनी दूर से, इतनी दूर भी नहीं है, पास में ही आप इस तरीके से, लेकिन आप वहाँ से कॉल कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, दिल से प्यार आपको, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई। और एक मैसेज रियाज भाई का, अस्सलाम वालेकुम भाई, कबीर भाई आपके लिए मैं एक लाइन सोचिए, कबीर भाई से मिल, कबीर भाई माइक से दिल तक, क्योंकि आप सीधा हमारे दिलों पर राज करते हैं। बहुत सारा प्यार भाई, बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच रियाज भाई, दिल से शुक्रिया भाई, दिल से शुक्रिया। एंड एक मैसेज है, ये बच्चे आपको सुन रहे हैं, पूरे एक्टिव होते जा रहे हैं। टीचर्स बोलेंगे बेटा आप क्या करते हैं? ये सुबह वाले को सुनता हूँ बस, बेटा ये सुनना छोड़ दो आप। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, सैटरडे हम लोग घर में सो जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि ISD कॉल आया है। फरद भाई बहुत बहुत तेज है ये। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, बीच में हेयर फॉल ज्यादा हो रहा था तो किसी के रिकमेंडेशन पे अनियन शैम्पू यूज किया था, इट वाज इंडीड अ गुड सजेशन। इट इज ये पता काम का है भाई। ताहिर भाई भी कह रहे हैं, फ्रेंड्स के कहने पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनका इन्वेस्टमेंट चलता तो आपको थोड़ी बता रहे होते। कहते हैं बिजनेस में इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया, बॉट अपार्टमेंट एज फ्यू ऑफ देम वर बाइंग इन द सेम लोकेलिटी, कोविड केम एंड प्राइसेस गॉट फ्लैट, नो प्रॉफिट, नो मोर इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड से कहने पर सॉ समवन सेलिंग हेयर ग्रोथ ऑयल नियर गोल्ड सुक एंड ही हिमसेल्फ वाज ऑलरेडी हाफ बॉल्ड। बाल उगाने का एक बंदा तेल बेच रहा था, उसके सर पे खुद के बाल थे। आयरनी माई फ्रेंड, आयरनी। एक मैसेज है, अनरिलेटेड, अर्ज किया है, दुनिया में देखे हैं नज़ारे बहुत से ग्रेट, बस सूरत न थी कोई भी चीज़ सिवाय इरफान भाई की नंबर प्लेट। अरे रे रे रे रे रे रे रे रे रे। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम, इरफान भाई आर यू देयर? इरफान भाई चिक चिक चिक, इरफान भाई ओवर ओवर ओवर, इरफान भाई। एक मैसेज है माज भाई का, किसी के कहने पर शादी ट्राई की थी, अभी तक संभाल रहा हूँ। Do you still wish to continue, Mr. Maz? Assalamu alaikum.
2: Walaikum assalam wa rahmatullah.
0: Arbi, kya haal hai bache? Sab badhiya hai. Jo chacha hai, wohi bhatija hai bas.
2: Bhai sahab, aapke jo show mein wild card entry hoti hai na.
0: मैं तो कह रहा हूँ आहान इज ऑलरेडी, वो रेडी है वो मॉर्निंग शो के लिए, मैं उसके साथ शो कर लूंगा, मजा आ जाएगा मुझे।
2: अरे भाई बच्चे को लेकर आने लगा वो सुनाने के लिए कि मैं रेडियो पे बात करता हूँ।
0: मुझे तो इसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग का इंतजार है, मैं जानना चाहता हूँ उस दिन क्या होने वाला है। किसी के कहने पे ट्राई किया जयेश भाई कुछ?
2: भाई मैडम के कहने पर जो है ना एक बार क्रीम और सोप जो है ना इस्तेमाल किया था,
0: फिर क्या हुआ?
2: फिर क्या दूसरे दिन को कभी इस्तेमाल ही नहीं करा।
0: क्या बुरा था? एक दिन में थोड़ी असर दिखेगा भाई, ये तो
2: नहीं भाई। हाँ। ये चीज है ना कबीर भाई, मैं कभी जो है ना कोई क्रीम का किसी भी चीज का जो है ना यूज नहीं करता हूँ।
0: अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, हाथ मिलाइए, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बताइए।
2: वालेकुम सलाम भाई। हमारी वाइफ जाएंगे ना बहुत फोर्स कर रही है कि ये सही है स्किन के लिए, ये उसके लिए। अरे मतलब काले पीलो के लिए काहे की स्किन और क्या चीज है,
0: क्या
2: हमें झूठ नहीं करती है चीजें।
0: वाह वाह वाह वाह।
2: उसके बाद ना
0: हाँ
2: अब उसके बाद में यूज कर रहा हूँ, मैंने कहा हाँ यूज कर रहा हूँ, कहा है मैंने कहा वो उधर रख रखा है मेरे बॉक्स में है, टेंशन मत लो। और दूसरे दिन को भाई साहब उसका विसर्जन कर दिया था
0: यार। वैसे भाई मुझसे भी नहीं होती, मतलब ठीक है स्किन रूटीन होना अच्छी बात है, पर होता नहीं यार, पता नहीं क्या दिक्कत है जैस भाई, ये हम लोग के साथ की परेशानी है भाई। व्हाई
2: भाई नहीं होता यार हमें बिल्कुल भी, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता कि ये क्रीम यूज करो, ये सोप यूज करो, ये अच्छा है स्किन के लिए, ये परफेक्ट है, इससे ग्लो आया हुआ है। अरे काय का ग्लो, कैसा ग्लो,
0: मुंह धो काम पे चलो, मुंह धो काम पे चलो भाई, साफ सीधी बात है।
2: अरे सुबह को उठो जल्दी से, उठो ब्रश व्रश मारो और भाई से पानी के दो चार छपक्के मारो तो और चलो होगा रेडी।
0: वेरी गुड जस भाई, सही सही रहा भैया, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बोलेगा अभी आपकी भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी चाहिए भाई जरूरी है
2: अरे नहीं। और आज तो कोई भाई अगर भाई अगर आज अगर किसी के पेट में दर्द हो या कहीं और दर्द हो तो भाई सब कफ्स का चूरन लेके बैठे
0: मैं भाई कोई आज आज प्लीज मैं जैस भाई के साथ ही मैं विनम्र निवेदन करूंगा, कोई आज प्लीज लड़ने नहीं आना मेरे से, प्लीज लड़ने कोई मत आना, मेरा मूड नहीं है, ताकत भी नहीं है और वीकेंड भी करे वो प्लीज।
2: अरे भाई ये जो है ना हमारा मॉर्निंग डोज होता है की जो हर किसी को खुशी मिले बस।
0: हाँ भाई यही तो है मकसद, समझती नहीं है जनता, ये जनता तो समझती है कुछ इक्के दुक्के नहीं समझती
2: जो है ना, कोई कितना भी सैड उठेगा कुछ भी होगा सुनेगा भाई, जब आके सुनता है ना तो फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी रहता है पूरे दिन
0: भाई। जैस भाई के लिए भाई क्या बात है जैस भाई, बहुत सारा प्यार भाई, थैंक यू सो मच।
2: हाँ भाई अगर नहीं मिल रहा हो ना कब्ज का चूरन नहीं मिल रहा हो या बर्नोल की क्रीम नहीं मिल रही हो तो बता दियो, कॉन्टेक्ट
0: डन हो गया जैस भाई, आपका नंबर मेरे पास है, ठीक है भाई, ख्याल रखिए भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। और जल्दी से मैसेज पढ़ दूंगा उसके बाद कॉल की तरफ बढ़ेंगे भाई। एक दोस्त के कहने पर जर्मन गाड़ी यूज की थी, एक मेंटेनेंस एक सैलरी चली गई उसमें ये हुटर आपके लिए उसा भाई, अरे रे रे रे रे, ये गाड़ी पालने से पहले सोचना चाहिए था। मोहसिन भाई कह रहे हैं मौत से खेल रहे हैं माज भाई, माज भाई इज अ वेरी डेयरिंग गाय। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैरियत से हूँ, आप सुनाइए राणा जी माफ कर, आप कैसे। और हिदायत भाई ने मैसेज किया है, द किड इज मेकिंग इट, दिस किड इज मेकिंग इट लार्ज, ऑफकोर्स मैसेज करते हैं। आई विल से द सेम अगेन, ये सोना वोना बेल्ट ट्राई की थी, फोर्स्ड बाय पीपल टू ट्राई दिस, ट्राई ही नहीं कर पाए, साइज ही नहीं आया फिट। अरे अरे ये तो लोल मोमेंट हो गया हिदायत भाई, लेकिन हिदायत भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी वजन पे, एंड आई नो दिस फॉर श्योर। एक मैसेज है, पीपल रिकमेंडेड द सीरीज, लॉट ऑफ सीरीज टू मी, वॉच इट, बढ़िया है, बट इन रियलिटी इट वॉज नॉट माई टेस्ट, वेन आई चेक द रिव्यूज इट वॉज मैचिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, द सर्वे इज रिफ्लेक्टिंग द रियलिटी, आई गो विद द रिव्यूज ऑफ द प्रोडक्ट नॉट पर्सनल रिकमेंडेशन। यही है हाजा भाई आजकल, जैसे मैंने कहा ना सवाल पूछने का मकसद ये था, लोग पर्सनल रिकमेंडेशन पर नहीं जा रहे, ऑनलाइन भरोसा है उन्हें, ऑनलाइन में जो बोल रहा है वो सच है मेरे अपने वाले गलत हैं, इनमें प्रॉब्लम है। एक कॉल उठाऊंगा लेकिन मैं एक जिंगल के बाद। इरफान भाई आप चुप चुप क्यों हैं आज, इरफान भाई इज एवरीथिंग ओके, वेयर आर यू, व्हाट हैपेंड। एक मैसेज, आज का टॉपिक सुनकर मुझे एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा याद आया। अच्छा इश्ताक उस्मान भाई कहते हैं, एक बार मैंने एक दोस्त के कहने पर अपने बालों के लिए एक हेयर ऑयल और शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू किया था, दोस्त ने तो तारीफ की थी पर मेरे ऊपर उसका ऐसा बुरा रिएक्शन हुआ कि मेरे बाल तेजी से झड़ने लगे, आज हालात ये हैं कि मैं लगभग आधा गंजा हो चुका हूँ। मैं अपने सारे भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी के भी कहने पर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, पर दोस्त के कहने पर ला ला ला, ला। I'm not laughing at the situation. I'm laughing the way you narrated, mera bhai. You know it, right? अब ठीक है। और इरफान भाई आज बिजी लग रहे हैं, सिर्फ हंस रहे हैं, ही हो कर रहे हैं। आज कॉल कर दी उन्होंने, एक से उनको दो दो कॉल आ रही हैं। जमाल शेख साहब को भी कॉल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अरे रे कॉल ही कट गई और मेरा फोन भी टकरा गया। एक सेकंड रुको भाई, मैं काम करता हूँ, जिंगल के बाद तुरंत कॉल लगाता हूँ, दोनों को ही कॉल करूँगा, दोनों रुक जाओ। किधर की आ मीना, जिंगल जिंगल जिंगल जिंगल, एक सेकंड। हाँ

0: FM 107. Time check.
1: साथ दो और आप भी मेरे साथ देते रहो। कॉल पे हैं हमारे साथ जमाल शेख, साथ देने के लिए जमाल भाई अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: कैसे हैं मेरे भाई?
2: हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बखैर है और आप
1: हैं? हैं क्या क्या?
2: और आपकी आवाज सुनकर तो हम ऐसे मसरूर हो जाते हैं।
1: अरे वाह वाह वाह जमाल भाई, सुबह सुबह जो उर्दू फेंक फेंक के मार रहे हैं आप, कैच कर रहे हैं हम। बताइए जमाल भाई, आप तो किसी कहने पे कुछ लगाते नहीं। हाँ,
2: एक बात कहने की ये है कि आप है ना, आज सुबह सुबह दर्द का मदावा होने के बजाय जख्मों को खुरेदने का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं।
1: अच्छा, ऐसा है क्या? क्यों? आपने तो कहा आप कुछ किसी कहने पे लगाते ही नहीं।
2: उसकी वजह बता देता हूँ कि वो बेचारे जो किसी न किसी दोस्त, किसी न किसी अहबाब, किसी न किसी एजेंट, किसी न किसी खुशनुमा चीजों को देख कर लुभा कर जो अपने आप को खसारे में डाल चुके हैं। एक तो ऐसे ही एक टीस सी पड़ी हुई है, वो जख्म भरा होगा कि नहीं बेचारों का, आप उसको सुबह सुबह कुरेदना चालू कर।
1: मैं उस पे सी सॉल्ट, सी सॉल्ट डाल रहा हूँ। सी सॉल्ट
2: जाते हैं ना, उनको तसल्ली दी जाती है।
1: नहीं नहीं, सी सॉल्ट गिरा रहा हूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि सबक जो है वो दोबारा एक बार हो जाए, रिवीजन हो जाए एक बार ही, समझ रहे हैं?
2: अच्छा, मतलब वो दर्द खत्म नहीं करना चाहते आप।
1: वो खत्म तभी होगा जब एक बार दोबारा से एक बार दोबारा उठेगा दर्द। क्या बात है, मैं शायरी बोल रहा हूँ, तो दोबारा उठेगा फिर जाके खत्म होगा। क्या कहते हैं जमाल भाई?
2: नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। आप है ना, वो कुछ रकम ऐसे होते हैं जो भूलने नहीं देना चाहिए, ताकि वो दोबारा गलती का इम्कान बाकी ना रहे।
1: ये हुई बात जमाल भाई, ये हुई बात आपकी, वेरी वेल सेड। अच्छा, अब आप
2: एक चीज भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब क्या सच में क्रीम लगाने से आदमी गोरा होता है? मुझे बस एक सवाल ये
1: ये बचपन से सवाल है मेरा भाई, ये बचपन से सवाल है, किसी के पास इसका जवाब नहीं है।
2: टॉपिक किसी को बना के आज जवाब ढूंढ लेना था, कोई ना कोई तो हल मिलता था कम से कम, नहीं कुछ तो इस जवाब का एक, इस सवाल का एक मसला ही हल हो जाता।
1: नहीं पता क्या होता,
2: बचपन से अभी तक पड़ा हुआ है।
1: लोग ना लड़ने के लिए रेडी रहते हैं भाई, कोई ना कोई आता, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की, तो इसलिए मैंने कहा मत पूछो भाई ये सवाल, रहने ही देते। सेंसिटिव लोग हैं जमाल भाई, सेंसिटिव।
2: कबीर भाई आपका प्रोग्राम भी लड़ने वाला थोड़ी ना है?
1: नहीं, हो जाता है भाई, लोग ट्रिगर हो जाते हैं, खुश बर्दाश्त नहीं कर पाते भाई लोग एक दूसरे की, ऐसा है, क्या कर सकते हैं जमाल भाई, यही है
2: यार, दुनिया तो गम बर्दाश्त नहीं कर पाती है, खुशी तो हर किसी को चाहिए होता है।
1: अब क्या बताएं, अब क्या बताएं जमाल भाई, ऐसा ही है। आप सुनाइए, नाश्ता वाश्ता हो गया?
2: बस भाई, आपको प्रोग्राम सुनते सुनते वैसे ही मतलब क्या बोलते हैं, अरे शिकम शेर हो जाते हैं। शिकम शेर मतलब पेट भर जाता है।
1: क्या क्या वर्ड का यूज किया आपने?
2: शिकम शेर।
1: अच्छा, ओहो, क्या जमाल भाई आपकी डिक्शनरी भाई, वो कैबरी बहुत डेंजर है। वेरी गुड है जमाल भाई, लेकिन आज जमाल भाई कहानी जरूर सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा।
2: बस सुनिएगा, मतलब मिस भी नहीं करता हूँ मैं।
1: बस वो वेरी गुड, वेरी गुड।
2: हर कहानी पे रिएक्शन भी मेरा होता है।
1: हाँ, आई नो भाई, आप हमेशा साथ रहते हैं, इसके लिए बड़ा शुक्रगुजार
2: हूँ। थोड़ा कभी कभी है ना, मैं दिल बर्दाश्ता इस चीज को लेके होता हूँ कि यार मैं आजकल है ना, पहले कई सालों के बनिस्बत आजकल मैं हर दिन एकदम क्या कहते हैं जिहादी शक्ल में कॉल लगाता हूँ।
1: क्यों?
2: और तो कहता हूँ यार ये बंदे को कुछ काम नहीं है, रोज रोज आ जाता है, तो मैं सभी को इस चीज के लिए क्या बोलते हैं वो ऐलानिया तौर पर एक बात बता दूं कि कबीर भाई को कॉल करने में कबीर भाई से ज्यादा फायदा मेरा अपना होता है।
1: अरे मेरा भाई यार, क्या घुमा के आप जो बात घुमा दे रहे, मजा आ जाता भाई।
2: भाई
1: मैंने उस दिन आपको एक सच बात बोली थी, मैंने कहा देखो जमाल भाई, जब

0: से मुमकिन हो पाता है, इसमें हमारी कोई कलाकारी नहीं है।
1: यार क्या यार, कैसी खूबसूरती से बात कर जाते हो यार, क्या बात है जमाल भाई, थैंक यू सो मच भाई।
0: इसमें हाँ। मुखातब के माफी जमीर अदा करने के साथ साथ वो बाहुनर जब होता है तब इस तरह के हालात पैदा होते हैं यार।
1: जमाल भाई मगर थैंक यू सो मच भाई कि आपने कॉल करी, और बस आगे बढ़ते हैं। और
0: मैं रोज करता रहूंगा भाई,
1: करिए मैं खुद लगा लूंगा
0: उसको, है ना, 12 ग्राम मत समझ लेना,
1: नहीं डन है भाई, ठीक है, ख्याल रखिए अपना, और मैं अगली कॉल की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, जजाकल्लाह,
0: बहुत शुक्रिया,
1: जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। और अगली जो है ये बात मुझे, सॉरी कॉल लगानी है हमारे इरफान, ये फरहत भाई कह रहे हैं मुझे भी ऐसी उर्दू में बात करनी है, मैं आपको फ्रेंच सिखा रहा हूँ ना, आप उर्दू में तो कर ही लेंगे, फ्रेंच सीखिए आप। अस्सलामुअलैकुम।
2: अस्सलामुअलैकुम कबीर भाई, क्या हाल है
1: आज के, कैसे इरफान भाई को किसी ने चुप करा रखा है, किसकी हिम्मत हो इरफान भाई, नाम बताइए यार, आप कैसी बात कर दी।
2: सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी ने चुप कराया, कोई मुझे चुप करा भी नहीं सकता।
1: वेरी गुड,
2: चाहे लोग बहुत सारे पढ़ लें, अगर मैं पूरी गजल अगर भेज दूं ना तो फिर मैं उनकी बोलती बंद कर दूंगा, इतने तो गुण है मुझे।
1: अरे भाई भाई भाई भाई भाई भाई सैग मेरा देसी, सारे लोग की सानू जान दे। जी इरफान भाई, तो आपके, आपको किसी ने प्रोडक्ट सजेस्ट किया, कोई प्रोडक्ट वगैरह आपने ट्राई किया हो?
2: अरे प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने एक चीज रिकमेंड की थी, मेरे ऑफिस में कुलीक है और ही इज अ वेरी ब्रांड कॉन्शियस गाय,
1: तो ब्रांड का नाम मत लेना, बस ऐसे ही बता देना ब्रांड।
2: आई नो द टर्म्स, तो उसने मुझे कहा कि ना यार वो एक जगह प्रमोशन आई है, वो डेंटिस्ट की क्लींजिंग वगैरह कर रहा है और बड़ा जबरदस्त है, और जगह का नाम तो नहीं ले सकता क्लिनिक का, एन खालिद में कुछ था, तो उसने मुझे आने वाला हूँ, 75 रियाल है और टीथ क्लींजिंग है ना। मैंने कहा यार ये तो, अगर ये बंदा बोल रहा है तो डेफिनेटली मुझे जाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज प्रेफर नहीं करेगा। उसके बाद मैं भी उस जगह पे चला गया और फिर मैं रिसेप्शन पे गया, मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, और मैं जब डॉक्टर के पास गया, डेंटिस्ट के पास, जो मेरे दांत चेक कर रहा था, जो मेरी क्लींजिंग कर रहा था, उसकी उसी दांत टूटी हुई थी पहली चीज। अब वो जिस अंदाज से मुझे बोल रहा था ना, मुझे दिल में हो रहा था, मैंने कहा यार ये कैसा डेंटिस्ट है जिसका खुद का दाढ़ नहीं है, उसने अपने आप को फिक्स नहीं किया हुआ और मुझे इतने सारे बयान दे रहा है। बहरहाल अच्छा, मैं उसकी कास्ट भी नहीं बता सकता, मेरी अभी मजबूरी है। अब वो बड़े बड़े चश्मे पहन के उसने क्लींजिंग वगैरह कर दी, और जब सब कुछ हो गया, मैं कोस्ता को अंदर, तो मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो गया था, जब मैं बाहर आया रिसेप्शन पे, तो मैंने रिसेप्शन को बोला कि आपने जो मुझे डॉक्टर की लिस्ट दी थी उसमें तो वो डॉक्टर अंदर रूम में था ही नहीं। बोला डॉक्टर तो छुट्टियों पे, वो तो हमारा ट्रेनी था। फिर तो मैंने
1: क्या किया,
2: बात हालात सब बदल गए और आज तक मैं उसको दांत दबा दबा के कोसता हूँ कसम से। अच्छा ये एक सीन तो मेरे साथ हुआ था, एक सीन सलवा रोड पे भी हुआ था, एक क्लिनिक है, नाम नहीं ले सकता अगेन, वहाँ पे बाहर एक बंदा खड़ा हुआ था, बिल्कुल एकदम मड़ियल सा और बिल्कुल सिगरेट विगरेट पी रहा था।
1: अच्छा
2: क्लिनिक के बाहर ना,
1: ठीक है।
2: तो मैंने कहा यार इसकी खुद की हालत देखो यार, एक तो बंदा बेचारा मुझे तो कोई मरीज लग रहा है और सिगरेट भी पी रहा है, मैं अपने बेटे को कह रहा था। फिर उस दौरान मेरा बीपी थोड़ा शूट कर रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास मुझे जाना था, मैं क्लिनिक के अंदर चला गया रिसेप्शन से, मैंने कोऑर्डिनेट किया,
1: ठीक है,
2: मैंने कहा मेरा बीपी शूट हो रहा है और मुझे चेकअप करना है। उससे बोला जी आप बस नहीं इंतजार करें, डॉक्टर अभी आने ही वाले। जब मैं अंदर गया तो वही हुए खबीज डॉक्टर, वो वही था। तो मैंने लिटरली मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आर यू डॉक्टर, आर यू डॉक्टर, बोला व्हाई, मैंने कहा यू आर डूइंग स्मोकिंग आउटसाइड, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, आई वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। बोला नो आई एम द डॉक्टर, व्हाट हैपेंड टू यू। फिर मैंने पूरा ब्रीफ किया, हर बहरहाल फिर मैंने सब लोगों को रिकमेंड किया नाम ले लेके, इस क्लिनिक में मत जाना, इस डेंटिस्ट के पास मत जाना।
1: पता चला वो लाया इरफान भाई, ये लो ट्राई करके देखो, सब ठीक हो जाएगा।
2: अच्छा वो मेरा जो ऑफिस का कुलीग था ना, वो जब मैं टर्कर आया ना, तो मैं भी खामोश कि मैं उसके रिकमेंडेशन पे चला गया, और मैं कहूँ कि खबीज 2 दिन तक खामोश नहीं है मेरा ऑफिस का कुलीग, क्योंकि उसका खुद का एक्सपीरियंस तो बुरा था। अब वो जब भी मुझे सुबह आए ना, मुझे मुस्कुराए। फिर मैंने आखिरकार उसको पूछ ही लिया, मैंने कहा कि यार ये मैं क्लिनिक क्या था, बहुत जबरदस्त क्लिनिक था, उसकी तो हंसी निकल गई। उसने कहा मैंने तभी तो तुझे भेजा था कि वो 75 रियाल में तू भी एक्सपीरियंस करके, मुझे नुकसान हुआ तो तेरा नुकसान क्यों ना हो।
1: इरफान भाई
2: तो मैंने उसका बहुत डांटा,
1: आज सेकंड हैंड दर्द हो रहा है मुझे, एम्बेरसमेंट हो रही है इस बात में।
2: लेकिन इरफान भाई कम नहीं है, मैंने भी उसको छोड़ा नहीं।
1: क्या क्या आपने क्या एडवाइस दी थी?
2: मैंने क्या किया कि वकरा पे, मैं जगह का नाम नहीं ले सकता, किसी के बारे में, एक आउटलेट के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है आजकल, तो मैंने उसको बोला यार क्या जबरदस्त ब्रांडेड डिस्काउंट।

0: लगा हुआ है ब्रांडेड शॉप से, तू जरूर जाना अपने बच्चों को लेके, वो बेचारा रहता है कहीं दूर। मैंने उसको खास तौर पर वकरा भेजा उस जगह पे कि जाके तू देख उस आउटलेट में, उस आउटलेट में खाली, जब वो आया तो उससे मुझे बोला यार इरफान क्या था वहां पे, तो खाली हैंगर लटक रहे थे, कपड़े तो थे ही नहीं। मैंने कहा तभी तो तुझे भेजा था।
1: वेरी गुड भाई, बहुत मुझे लगता है कि आप ना बहुत जल्दी से बदला ले लेते, टाइम वेस्ट नहीं करते भाई आप।
0: ऑफ कोर्स मैं नहीं छोड़ता भाई किसी को भी, लेकिन ऐसी बात नहीं, वो मेरा दोस्त है, वो मैंने मजाक में किया था, मगर मैं किसी के साथ ऐसे रिवेंज नहीं ले सकता। देखिए कवर अप में फॉरन कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है।
1: पर आप मेरी एक एडवाइस लीजिए,
0: क्या
1: मेरी एक एडवाइस लीजिए, ये नंबर जो है वो नए लेने के गाड़ी का चुनाव।
0: खबरदार अगर किसी ने मेरे नंबर के बारे में एक लफ्ज भी कहा, और जिसने जो शेर पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले मेरे नंबर प्लेट के बारे में, उसको तो मैं, वो तो मुझे मिले तो फिर मैं इसको देख लेता हूँ, नाम बताओ, लाज उठा वाली बात है।
1: नहीं पर थैंक यू फॉर बीइंग सो स्पोर्ट भाई, क्योंकि क्या होता है ना कि
0: थैंक यू सो मच,
1: ये अच्छी आदत है आपकी कि मतलब खुद के किसी बात पे हंसना इज द बेस्ट काइंड ऑफ पर्सन आई रियली लाइक।
0: लेकिन ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जब आप किसी के साथ मजाक कर रहे हैं या किसी का मजाक कर रहे हैं तो फिर आपने मजाक सहने की भी आदत हो, वरना फिर ऐसे लोगों की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है।
1: अरे तो बहुत ही नॉर्मल सा मजाक है, इस पर ऐसी मजाक तो चलता रहना चाहिए।
0: थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच। और आप किसी के कहने पे कहीं मत जाना बस भाई, और कुछ नहीं है, ख्याल
0: रखिए। जी मैं बस अभी जा रहा हूँ नंबर प्लेट चेंज करने के।
1: ठीक है भाई, अल्लाह
0: हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़। तो ऐसे डेंटिस्ट जिनके खुद दांत की एक खिड़की खुली हुई हो मत जाइएगा। लेकिन इरफान भाई नंबर प्लेट बहुत बुरी है। इस गाने के बाद मिलते हैं चरण प्रीत बादशाह। क्या गाना है भाई, इस गाने का हुक, मैं फैन हूं उस गाने के हुक का, क्या बात है। बढ़ जा तुम मेरी चन्नू बुला के 666-2107। आज की कहानी भाई पूछदा मैगा जी, मैं नू कह रहा था 714 हो लिए।

इस गाने का हो के भाई कमाल है। और मुझे फराज भाई ने मैसेज किया, फराज भाई कह रहे हैं ये भी चला देना, साजन तेरी दिल है जिगर। अरे यार फराज भाई ये गाना पता है इस गाने के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्दी दिमाग में अटक जाता है और फिर पूरे दिन चलता रहता है, समझ रहे हैं आप, फंस जाता है दिमाग में। ये नहीं करो। पता चला गाड़ी में बैठे हुए आराम से कहते सहजी नहीं। ये फराज भाई गलती है आज। एक मैसेज है भाई, नॉर्मली है फोटो, नहीं नॉर्मल नहीं है भाई, हम तो मजाक बनाएंगे। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे अरसलान भट्ट साहब कहते हैं आई हैड अ स्टेक, अच्छा कल उन्होंने कहीं एक जगह स्टेक आया, फ्रेंड रिकमेंडेड, अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये तो बहुत बड़ी बात है अरसलान भाई, ये किसी ने कहा और वो अच्छा निकला। अरसलान भाई फिर चले, हम भी खाएंगे, आप भी लाएंगे। जावेद भाई वालेकुम अस्सलाम। और सैयद हमजा भाई कह रहे हैं भाई एक नंबर बात कही है ये। इरफान भाई आपके लिए लिखा है इन्होंने, कह रहे हैं कि बुंजो मिस्टर कबीर, और लिखते हैं 75 रियाल में तो ब्रश करवा देता। ये टीथ क्लीनिंग क्यों करा है, सीधा ब्रश ही करवा देता, लो ये वाला ब्रश कर लो। कितने हुए, 45 रियाल। कि डॉक्टर साहब ये तो मैं सुबह डेली करता, नहीं बेटा ये 75 रियाल वाला है, इससे ज़्यादा होता। एक मिनट कबीर भाई आप भी ध्यान रखें, रोज़ तंग करते हैं इरफान भाई को, कभी आपसे बदला ना ले लें। इरफान भाई से मुझे डर लगता है, लगता है थोड़ा बहुत, जब तुम 12 मना लेता हूँ ना मैं। इरफान भाई मेरे प्यारे इरफान भाई, एक मैं से इमेजिन डॉक्टर बोलेगा एक एक आप भी कश मान लो। अनीस भाई यही तो बस बहन, आई रियली एंजॉय व्हेन पीपल दो दिल का भड़ास ऑन योर शो। हाँ बहन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरे शो में लोग आते हैं, बहुत बहुत ही दिल से एकदम फ्लो में बात करते हैं, आई रियली लाइक इट। एक मैसेज, सलाम अलैकुम कबीर भाई, एडवाइस देने वाला डिस्क्लेमर नहीं देता, एप्लीकेबल ऑन ऑल एडवाइजर्स। ये बहुत बढ़िया था गुरु, वेरी नाइस सरवीर भाई, लाइक इट। और इरफान भाई को हेलो भेजा है ये मुजाहिद भाई ने। एक और मैसेज, प्लीज शेयर द स्टोरी, अभी तो टाइम है भाजी। एक मैसेज है, बीच बीच में ट्रेंड चला था, अच्छा हाँ, वो कोल्ड ड्रिंक में दूध मिला के पीने का वो ट्राई किया था, हाय वर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन मुना बहन मैं एक बात बताऊँ, वो एक्चुअली में मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ ट्रेंड नहीं है वो एक्चुअली में लोग ट्राई कर रहे हैं, आई एम नॉट किडिंग, मैंने भी ट्राई किया है वो, एंड वो बहुत बढ़िया है। पहली चीज थी मुझे किसी कहने में अच्छी लगी हो। माजिद भाई वालेकुम अस्सलाम, और लिखते हैं मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक सैलून वाला, अच्छा बाहर जाते थे, उसने मुझे एक शैम्पू बताया, बहुत बढ़िया रहा, हेयर फॉल रुक गया, बहुत बढ़िया भाई, किसी के तो काम कुछ चीज़ आई। उमर शहजाद साहब शानदार, कह रहे हैं माफ़ी मांगकर फिर भी नंबर प्लेट बहुत बुरा। मेहरबा ये करूँगा मैं इरफान भाई से, इरफान भाई सॉरी, लेकिन भाई नंबर बहुत बुरा। अरे यार क्या पुरानी फ़ोटो निकाली है भाई, वेरी नाइस, आई लव दिस, ये फोटो भी याद है मुझे, पर आप ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं इसमें, तो इसलिए मैं पोस्ट नहीं करूँगा ऐसे कभी। आयास भाई वालेकुम अस्सलाम, कबीर भाई मेरे दांत में दर्द है डेंटल के पास, ज़बरदस्त 7 स्टार जैसी फीलिंग। ये 7 स्टार वाली फीलिंग के लिए खर्चा भी तो करना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी हो जाता। एक मैसेज है भाई, वो गाना नहीं है अभी अपने पास अजीज़ भाई, बाकी अस्सलाम वालेकुम। एक मैसेज है, कबीर भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये मैसेज क्या है, अमन भाई ने, अमन भाई क्या हाल है भाई के। एक मैसेज है आरिफ अंसारी साहब का, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, एंड स्पेशल नंबर रिकमेंडेशन, ओके डेंटिस्ट वॉज अच्छा ओ। मैं कर नहीं पाऊंगा एक्टिंग, मतलब समझ रहे हैं आप इरफान भाई, वो बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा। और एक मुझे फोटो भेजा गया है और पराठे और छोले खाए जा रहे हैं, खाओ बेटे खाओ। अच्छा तो मैं पता है मैं सुबह से बड़ा नर्वस हूँ, मैं हंस हंस के अपनी नर्वसनेस को छुपा रहा हूँ, उसके पीछे एक वजह है, बिकॉज आज की जो स्टोरी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब मुझे खुद तैयार करते हुए पहली मरतबा किसी कहानी का रिविजन करना पड़ा है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं सही से इसको डिलीवर कर पाऊँ। और आज की जो स्टोरी है इट्स अ मिस्ट्री, आउट एंड आउट मिस्ट्री, तो आप अगर ये मिस्ट्री मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो हो सकता है यू ऑल्सो इन्जॉय द स्टोरी इक्वली। तो आज की जो मिस्ट्रियस स्टोरी है मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा इसे, क्योंकि मुझे पता है जब आप सॉल्व करने निकलेंगे, जब इसके आखिर तक पहुंचेंगे, यू विल बी लाइक हैं ये होगा। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर, दोहा वाला मेरा भाई, आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ, आई एम राउ फ्रॉम हैदराबाद। राउ भाई बहुत सारा प्यार। यासिन मोरस साहब वालेकुम अस्सलाम, क्या है, मैं आपका दांत निकाला 150 में, 5 महीने हो रहे मैंने तो मैसेज नहीं किया, समझा नहीं, मैंने आपका दांत निकाला, मेरा दांत कब निकाला भाई। ये क्या बात हुई, ये कौन सा जादू कर रहा है बैठे हुए।

अरबाज भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम कारी मौलाना साहब अरबाज भाई कैसे भाई, वालेकुम अस्सलाम। इरफान अली भाई का मैसेज है, भाई लेट एडवाइस सबकी हर तीन है अपनी, अच्छा बातों की बातें। बड़े इरफान भाई आपकी गाड़ी नंबर प्लेट बहुत बुरा लगता एक इरफान ने दूसरे इरफान से कहा भाई नंबर प्लेट चेंज करो भाई अभी जरूरत है। ओके सो एज आई मेंशन अर्लियर, प्लीज़ आज की कहानी सुनिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा। आई नो सुबह सुबह ध्यान देना बड़ा मुश्किल होता है, लोग ये कहते भी हैं सुबह कहानी का मतलब क्या है, क्यों कौन सुनेगा, पर जो लोग सुन पाएंगे इक्का दुक्का भी होगा मुझे चलेगा, लेकिन जो भी सुने ध्यान से सुनेगा, बिकॉज आज की स्टोरी विल ईदर इंगेज यू, या तो आप बहुत इंगेज हो जाएंगे कहानी से या तो आप बोलेंगे बीच का कोई सिस्टम ही नहीं भाई तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि मुझे पहले बता दें आपके कौन कौन लाइव सुनने वाला है, देन आई एम अबाउट टू स्टार्ट। एक मैसेज आया है मुझे, भाई ये सॉन्ग रिक्वेस्ट वाला आर नहीं है मेरी जान, तो वो जो गाना रिक्वेस्ट करना है वो 4 बजे आप कर सकते हैं, आमिता आएगी एंड शी विल डेफिनेटली प्ले योर ट्रैक, नो प्रॉब्लम। एक मैसेज कबीर भाई, मैंने दांत निकलवाया डेंटिस्ट का, 150 रियाल में दांत निकाल दिया आपका, लटक ही रहा होगा भाई पहले से वो। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम सैया सॉन्ग, अरे वही तो कह रहा हूँ हुसैन भाई कि मैं प्लेलिस्ट मेरी वाली तैयार होके आती है मेरे जान, रिक्वेस्ट वाला आर शाम वाला होता है, ऐसा नहीं कि मैं आपके खिलाफ जाके कह रहा हूँ कि नहीं मैं नहीं चलाऊंगा फॉर्मेट ही ऐसा है मेरे भाई, ये समझ रहे मैं इनको जानबूझ कह रहा नहीं मैं तो नहीं चलाऊंगा। कबीर भाई अभी चाय पी सकता हूँ, पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, ये नहीं समझा मैं, पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं। और एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, सब बढ़िया। तो मैं ये कह रहा था कि अब मैं बस एक गाने के बाद कहानी शुरू कर रहा हूँ, सो जितने भी लोग लाइव सुनने वाले हैं वो आ जाएं एंड देन वी विल बिगिन। एक और मैसेज है, भाई आई एम रेडी फॉर द स्टोरी। फिर ख्याल भाई ने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एक मैसेज है, डॉक्टर साहब ये नंबर प्लेट का क्या है, नंबर प्लेट का ऐसा है कि इरफान भाई की जो नंबर प्लेट है, इरफान भाई ने खुद चल के बताया कि उनके बहुत ख़राब नंबर प्लेट है, फिर हमने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर हमने देखा, फिर मैंने कहा हाँ सच में भाई बहुत ही बुरा है। लिखते हैं, मैं भी सर डॉक्टर हूँ, लोगों के दांत निकालता हूँ कटर से। अकीम साहब छुट्टी पर रहिए आप, मत आया करें अरे हाँ, अरे अरे अरे अरे अरे क्या दिन थे वो। मैं अभी रिवर्स एजिंग कर रहा हूँ इरफान भाई। एक मैसेज है, गाड़ी का नंबर प्लेट पर किस्मत ऐसी सोई, इरफान भाई को देखकर ट्रैफिक पुलिस भी रोई अरे भाई ये बहुत बहुत शानदार था भाई, ये बहुत शानदार था, क्या बात है। और ये जो है मैसेज इन्होंने किया है, पहले मैं टॉपिक बता दूं, टॉपिक ये था कि कभी किसी के कहने पे कुछ आपने ट्राई किया है, दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग। और ये इश्तियाक उस्मानी भाई कहते हैं, गाड़ी का नंबर प्लेट पर किस्मत ऐसी सोई, इरफान भाई का नंबर प्लेट दिखकर ट्रैफिक पुलिस भी रोई, अरे भाई। ओके खैर, एक सॉन्ग इन बिटवीन एंड देन हमारा मीटअप हो जाएगा। एक सेकेंड मैं ज़रा देख लेता हूँ कि क्या क्या है। ओके लगा हुआ, ओके तो मिलते हैं भाई इस गाने के बाद, ठीक है। अरे नंबर प्लेट नहीं मांग रहा था मैं यार बलोच, बेटे ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे किसी को नंबर प्लेट नहीं देते हैं। आशिकों ये लोग आना स्टेडियम

हाँ भाई, जितने लोगों को मीठे गाने सुनने से मिल गए, डोज बढ़िया हो गए, अभी बढ़िया लग रहा है, शुगर कंट्रोल में है। डीजे नोरियन फाहिम अब्दुल्ला भाई, फाहिम अब्दुल्ला की बात कुछ और है। तो यार ये टाइटल ट्रैक क्या, 7:30 तो लिए भाई।

हाँ जी, तो मैं सबसे पहले तो कुछ रिस्पॉन्सेज पढ़ देता हूँ क्योंकि वो रह गए हैं। जहरा बहन ने मैसेज किया है कि आपका जो पार्किंग लॉट है वो सच में हिडन जेम है। एक्चुअली में किसी ने दिखाई नहीं है तो हिडन जेम ही तो हुआ, गलत थोड़ी हूँ मैं। एक मैसेज है सिद्रा बहन का, वो कहती है कि ऑनलाइन रिकमेंडेशन पे तो एक कौड़ी भरोसा ना करूं, सबके सब पेड रिकमेंडेशन होते हैं। अरे इतना गुस्सा, और कितनी ही बार लोग हमने एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बना के रिकमेंडेशन देते हैं टू सी फायदा हुआ कि नहीं, ताकि खुद पर ट्राई कर सके। दैट इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एक मैसेज है, मैं तो प्रिंस भाई की रिकमेंडेशन का वेट है सो दैट आई कैन अप्लाई फॉर लोन टू इम्प्लीमेंट दैट रिकमेंडेशन। कह रहे प्रिंस भाई की रिकमेंडेशन का वेट कर रहा हूँ। कासिम भाई कह रहे हैं कि वो आए और कुछ ऐसा बताएं जिसको खरीदने के लिए मुझे लोन लेना पड़े। एक मैसेज है, एक दोस्त ने ड्रैगन फ्रूट को बहुत बोला था, ड्रैगन फ्रूट का जिसने रिकमेंडेशन दिया है ना, ब्लॉक कर दो उसे। हाँ जी, मैं भी ये करके बैठा हूँ, टाइम हो गया इस बात को भाई। फैजान भाई, इंसुलिन लेनी पड़ेगी, क्यों लेनी पड़ेगी? और कोई मैसेज तो मिस नहीं हो गया। एक भाई ने बोला है कि बस सरवर भाई से बिरयानी बनवा दीजिए, बाकी मैं ले आऊँगा। ये कुछ नहीं होने वाला, उन पर भरोसा मत करो भाई। कहाँ सरवर भाई भरोसा कर रहे हैं आप, कुछ नहीं हो रहा ऐसा। बाकी सारे मैसेज हो चुके हैं, एवरीथिंग राइट डन। देख लो भाई एक बारी, क्योंकि मुझसे लड़ने के लिए लोग तैयार रहते हैं एक टांग पे। एक मैसेज है, गोल्ड बहुत फेमस है। अच्छा ओके, और कोई मैसेज, एक वॉइस नोट था वो तो मिस हो गया मुझसे। ठीक है भाई, अगर किसी को बहस बूस करनी है तो कहानी के बाद लड़ना भाई प्लीज़। अभी नहीं।

है ना, ऑनलाइन रिकमेंडेशंस पे बर्तन की जगह ये अहमद भाई, भाई मैं आपके साथ हूँ भाई, आपके गम में खुशी हो रही है। एक मैसेज है सादिक भाई के, लिखते हैं एवोकाडो का सजेशन देने वालों पे लानत, खर्च क्या खर्चे की लिमिट नहीं हेल्दी के नाम पे। सादिक भाई हाथ बुलाइए, अस्सलाम वालेकुम। ये एवोकाडो के नाम पे रिकमेंडेशन देने वालों से मैं भी दूर रहता हूँ। ठीक है, चलो अब जरा खाने की तरफ बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट मैसेज क्या, मजिंदर सिंह जी, गुड मॉर्निंग मेरे वीर। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि आज की कहानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एंड हो सकता है कि आप इस कहानी को सुन के बोलें कि मैं समझ नहीं पाया। मैं ऑलरेडी अज्यूम कर रहा हूँ ये, तो मैं तैयार हूँ आज के ऐसे फीडबैक्स के लिए जहाँ पे लोग मुझसे बोलेंगे समझ नहीं आई कमीर भाई, तो मैं रेडी हूँ। बट फिर भी अगर आप कोशिश करके सुने और आपको अच्छी लगे तो मुझे बता दीजिए कि हाँ समझ में आई, मज़ा भी आया। ओके, तो मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ता हूँ। इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। एफएम 97 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता हूँ ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है। और आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी अ मिस्टीरियस स्टोरी। तो साथ साथ मेरे सॉल्व करते जाइएगा, देखते हैं कि आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। रेडी, वॉल्यूम बढ़ा ली जाए। तो मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आज का जो किस्सा है उसे सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं साल 2000 में। अक्टूबर 27th दोपहर का वक्त था, 27 अक्टूबर 2000, और इस वक्त एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में एक सेक्रेटरी अपने डेस्क पर बैठी हुई थी और काम कर रही थी। ये जगह थी ताइवान, ताइवान। और काम करते करते अचानक से उनके डेस्क का जो फोन था वो बजा, और काम करते करते मतलब ध्यान भी नहीं दिया, उन रिसीवर पे हाथ गया, उन्होंने रिसीवर उठाया और कान पे लगाया, और जैसे ही उन्होंने रिसीवर कान पे लगाया एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पता नहीं जैसे क्या हुआ, वो सेक्रेटरी एकदम से फ्रीज हो गई कि अरे ये क्या है। होता ना कई मरतबा आप फोन उठाते हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है और आपको उम्मीद होती है सामने वाला बोलेगा हेलो आप बात कर लेंगे, मगर यहाँ पे क्या हुआ, सेक्रेटरी ने रिसीवर उठाया, कानों पे लगाया और सीधे चीखने चिल्लाने की आवाज है। सेक्रेटरी ने अपने काम को छोड़ा और फिर एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई कि हो क्या रहा है। उससे पहले लगा हो सकता है कोई प्रैंक कर रहा हो, कंपनी में लोग एक दूसरे के साथ प्रैंक करते हैं, या हो सकता है रॉन्ग नंबर हो। फिर उधर से चीखना चिल्लाना बंद होने के बाद एक औरत की आवाज आई, और उसकी आवाज से पता लग रहा था कि ये कोई बुजुर्ग हैं और उन्हें शायद किसी किस्म की हेल्प चाहिए। और फिर जब उन्होंने बात करना शुरू करी तो पहले तो मफल्ड आवाज थी, समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी ने फिर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करी और उसने बोला कि मैम ठीक से बताइए, शुरू से बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं। और फिर उस बुजुर्ग औरत ने जब बताना शुरू किया और जो बताया, ये सेक्रेटरी अपनी सीट छोड़कर खड़ी हो गई, क्योंकि उस लेडी ने फोन पर सेक्रेटरी से कहा कि मेरा बेटा तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करता है, और ध्यान से सुनो, उसका तुम्हारी ही कंपनी के एक दूसरे एम्प्लॉय से झगड़ा हो गया था, वो इतना बढ़ गया ना कि मेरे पोते ने डिसाइड किया कि वो उसे किडनैप कर लेगा, लेकिन गलती से उसने किसी और को किडनैप कर लिया है, कन्फ्यूजन में किसी और को उठा लिया है उसने। एंड ये जब सेक्रेटरी ने सुना तो बहुत बिजार लगा। यू नो, आप खुद सोच के देखिए, आप कोई बोले कि भाई तुम्हारी कंपनी में ऐसा ऐसा है और गलती से कोई किडनैप कर, वो उसके होश उड़ गए, वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि ये आंटी जी क्या कह रही हैं। और इस बुजुर्ग औरत ने जो जो बताया बड़ा अजीब था, मतलब वो कहना चाह रही कि उनका पोता भी इसी कंपनी में काम करता है जिसमें सेक्रेटरी काम करती है, उसने किसी से झगड़ा मोल ले लिया कंपनी के अंदर ही, और फिर प्लानिंग की इसको छोड़ूंगा नहीं, और गलत किडनैपिंग हो गई, गलती से कंपनी के किसी और इंसान को उसने उठवा लिया गलती से, और बोला कि मेरे पोते ने उसको जिसको गलती से उठवा लिया है उसे पॉन्ड के एरिया में लेके गया, हॉस्टेज बना रखा है। एंड दिस वाज इनसेन, आउट ऑफ द बॉक्स, ये उस सेक्रेटरी की दूसरी

या तीसरी कॉल थी एंड वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या समझूं मैं इसे। पहले उसे लगा कि शायद ये जो औरत फोन पर है किसी मेंटल इलनेस की शिकार है, शायद बीमार है बेचारी। पर फिर स्प्लिट सेकंड में उसे कुछ ख्याल आया, सेक्रेटरी को कोई चीज ध्यान में आई, वो ये कि फोन आने से पहले कंपनी के जो डेप्यूटी मैनेजर साहब हैं वो आज काम पे आए नहीं है। ये बड़ा ऑड था क्योंकि वो हमेशा काम पे आते थे और दोपहर तक ना आना बहुत लेट है उनके लिए। और सेक्रेटरी को ये भी याद आया कि डेप्यूटी मैनेजर के जो बॉस हैं उन्होंने भी कॉल करने की कोशिश करी थी उन्हें, लेकिन वो भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए। तो कुल मिला के डेप्यूटी मैनेजर जो है कहीं वही तो गलती से नहीं उठा लिया गया है। अरे बाबरे। और सेक्रेटरी ने फिर अगला सवाल पूछा, अच्छा बताइए अब आंटी आपका आपके पोते का नाम क्या है जो उस कंपनी में काम करता है, प्लीज उसका नाम बताइए। पर उस औरत ने नाम नहीं बताया, वो बस बोलती रही सुनो बेटा पुलिस को बताओ, जल्दी से उन्हें कॉल करो, राइट नाउ, और कॉल काट दी, आगे कुछ नहीं बताया। एकदम आउट ऑफ द ब्लू कॉल आई, ये विद इन अ मिनट ये बात हुई और फिर ये लास्ट बात क्या कि उन्होंने कॉल काट दी। अब जाहिर सी बात है सेक्रेटरी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे किसको बताए, बट देन शी डिसाइडेड यू नो व्हाट मुझे कॉल करनी नहीं चाहिए। और उन्होंने जो पुलिस डिपार्टमेंट था ताइवान का उस पॉइंट पे उनको बता दिया। फिर एक पुलिस ऑफिसर जिनका नाम था जॉन ग्यू वो उसी एरिया में पहुंचे, उस पॉन्ड एरिया में जिसके बारे में उस बुजुर्ग लेडी ने बताया था। अब वहां पहुंचे और ये था बिल्कुल आउटस्कर्ट्स एरिया, मतलब मेन शहर से दूर। वहां पे पहुंच के उसने अपनी टीम को भी बुलाया, फॉरेंसिक टीम वाले थे, सर्च ऑपरेशन करने वाले लोग थे, सबके सब सुराग ढूंढ रहे थे कहीं से कोई तो दिखेगा, क्योंकि बताया गया है कि भाई यहीं पर किसी को बंदी बनाया गया है, हॉस्टेज बनाया गया है, किधर है कोई नहीं दिख रहा। क्योंकि ऑफिसर को जो टिप मिली है चंद घंटों पहले वो तो ये मिली है कि कुछ किडनैपर थे, उन्होंने गलती से किसी को उठा लिया और यहां ले आए, अब तो अभी यहां कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मगर फिर सर्च करते करते करते करते पॉन्ड का जो एरिया था वहां पे पानी में फ्लोट होता हुआ एक बड़ा सा कैनवस बैग नजर आया जो फ्लोट हो रहा था। और सारे के सारे उस तरफ भागे, पूरी फोरेंसिक टीम वाले और ऑफिसर जोंग यू वो उस तरफ भागे, उन्होंने उस बैग को निकाला पानी से, बहुत भारी था, उसे अनजिप किया और जैसे ही अनजिप किया उन्होंने अंदर थी बॉडी चन रंग चुंग की। चन रंग डेप्यूटी मैनेजर जिनको लेके सेक्रेटरी को डाउट था शायद इन्हीं को गलती से उठा लिया गया है। जो ऑफिसर इस केस को हैंडल कर रहे थे उन्होंने इस बॉडी को देखा और वो इसको देख के ये नहीं सोच रहे थे कि ओ मैंने सॉल्व कर दिया केस, ये बॉडी मिलने से ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। क्योंकि पहली बात शुरुआत में जो कॉल आई उन आंटी की वो कॉल ही अपने आप में अजीब है, वो तो कह रही है कि गलती से किसी को उठवा लिया गया है और उस दादी के हिसाब से उनके पोते ने गलत आदमी को उठा लिया, फिर रिलीज ना करके मार क्यों दिया, इसका कोई तुक नहीं बनता, सेंस नहीं बन रहा, क्यों ऐसा किसी ने किया। और ऑफिसर जो थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे, वो सोच रहे थे कि यार कोई सनकी होगा, हो सकता है कि पैनिक में आके जब डेप्यूटी मैनेजर को किसी ने उठवा लिया तो पैनिक में ही आके उसने अपनी दादी को बता दिया और पैनिक में ही आकर उसने गलत बंदा उठा लिया है, इस बात के एहसास से उसको मार दिया, शायद पैनिक में सब कुछ हो गया, या फिर ये पूरी की पूरी कहानी एक कवर स्टोरी तो नहीं है, कहीं वो दादी का कॉल आना वो महज एक कहानी तो नहीं है, कहीं सच में डिप्टी मैनेजर चंग रंग यही टारगेट तो नहीं थे और उसके पीछे ये दादी की इलेबोरेटेड कहानी बनाई गई हो। तो ऑफिसर की नजर में या तो ये कोई नौसिखिया है जिसने इस डिप्टी मैनेजर की जान ली है या कोई बेहद शातिर इंसान है। जब वो सोच ही रहे थे और पॉन्ड के पास सब थे तो उन्होंने देखा कि खातून थी वो भागती भी आई पॉन्ड की तरफ और रो रही थी पूरी तरीके से,
और वो जब भागती जा रही थी पूरी फ्लड लाइट्स उन पर पड़ रही थी, वो आई और इस बॉडी के पास आई और बहुत बुरी तरह रो रही थी, और इनफैक्ट

कोलैप्स हुए, वहाँ पे बेहोश हो गई, उनके वाइटल्स चेक किए गए और उन्हें जो होश में आए उनको एक गिलास पानी पिलाया गया और उनसे पूछा गया कि मैडम आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं जोंग इयोन हूँ और वो फियांसी थी डिप्टी मैनेजर की। उन्होंने बताया कि ऑफिसर हमारी 10 दिन बाद शादी होने वाली थी, एंड ऑफिसर साहब जो है वो पूछ रहे थे, इनफैक्ट समझने की कोशिश कर रहे थे सबसे पहले तो कि क्या हो क्या रहा है। और उस औरत ने पूछा ऑफिसर प्लीज बताइए, वो बैक टू बैक सवाल पूछने, ऑफिसर प्लीज किसने किया बताइए, बोलते क्यों नहीं। और फिर ऑफिसर क्या बताए उसको, एक अजीब सी कहानी बताई गई और उसने वही कहानी, वो दादी वाली कहानी बता दी। और वो औरत बोल रही ऑफिसर कैसी बातें कर रही हैं अभी, ये आपको अजीब बात नहीं लग रही। फिर ऑफिसर ने बोला कि आपको कोई कॉल वॉल आई रैंसम के लिए, ऐसे केसेस में होता है ना कि फिरौती मांगते हैं रैंसम मांगते हैं। पर वो बोली नहीं हमें तो कोई कॉल नहीं आई और मुझे तो लग भी नहीं रहा कि ये गलती से किसी इनको उठाया गया था। फिर ऑफिसर ने इस औरत से पूछा जिनसे 10 दिन बाद डेप्यूटी मैनेजर की शादी होने वाली थी, पूछा कि आपने पिछली मरतबा उन्हें कब देखा था, तो उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले देखा था, एक होटल सूट हमने बुक किया था शादी की तैयारी के लिए। फिर ऑफिसर साहब ने पूछा क्या कोई दुश्मनी ऐसा लगता है किसी से थी, तो उन्होंने बोला नहीं आई डोंट थिंक सो, काफ़ी शांत रहते थे चंगरंग, तो बहुत ज़्यादा शांत रहते थे, बस काम पर ध्यान देते थे, पहले किया करते थे पैसे वैसे लगाया करते थे, गैम्बलिंग करते थे, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया था उन्होंने, अभी इन पे कोई कर्जा नहीं है। अब ऑफिसर सोच रहे थे ओके, यानी ये पैसे लगाता था उड़ाता भी था, तो कहीं ना कहीं इसने शायद गैम्बल किया और इस पे कर्जा चढ़ गया और शायद इसने जिससे शादी कर रहा है उसे बताया नहीं। एंड ही मूव्ड ऑन, ये पॉइंटर्स बनाने के बाद अगले दिन ऑफिसर साहब जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जहां पे ये सब कुछ हो रहा था वहां पर पहुंचे और डिप्टी मैनेजर चन उनके डेस्क के पास पहुंचे और ढूंढ रहे थे हो सकता है कुछ मिल जाए। उन्होंने ऊपर की जो ड्रॉर थी वो खोली और पेपरों को खंगालने लगे, काश कुछ मिल जाए इसमें कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। और ऑफिसर सोच रहे थे कि यार ये किडनैपिंग तो नहीं, ये कुछ और ही बात है, कुछ तो अलग है। और वो जो ओल्ड लेडी जिसने कॉल करी थी वो दादी, उसकी कॉल भी ट्रेस नहीं कर पाए पुलिस वाले, एंड दे हैड नो आइडिया कि वो कौन थी किधर से थी, नो आइडिया, क्योंकि उन्होंने तो पूरी बात बताई भी नहीं। अब ऑफिसर सोच रहे थे ये कहानी का सेंस बन नहीं रहा, क्या कैसे सॉल्व किया जाए इसको। कंपनी में सबकी तफ्तीश, सबके बारे में एक एक जानकारी ली गई, जो लोग ऑफिस उस दिन आए थे जो नहीं आए थे सबके सब निर्दोष पाए गए, जो नहीं आए थे वो कहां पर थे वो भी वेरीफाई कर लिया गया, तो सबके सब क्लीन निकले। अब ऑफिसर श्योर था कि दादी ने बोला था मेरा पोता कंपनी में है और उसने गलती से किसी को उठवा लिया, तो डेफिनेटली कोई पोता तो कहानी में नहीं है, एटलीस्ट कंपनी के अंदर तो कोई भी नहीं है। अब तो पक्का उन्हें लग रहा था ये कॉल स्टेज्ड है, ये कोई दादी वादी नहीं थी। फिर ऑफिसर साहब वो अटके इसी बात पे कि पक्का ये डिप्टी मैनेजर चन इसने पैसे लगाए होंगे और ये हार गया होगा, पर सबूत मिल जाए बस। और ये सोचते सोचते जो है उन्होंने जो नीचे की ड्रॉर थी वो खोली और अब कहानी और कॉम्प्लेक्स होगी, अगर अभी तक यहां पे लग रहा है कॉम्प्लेक्स नहीं हुई तो और कॉम्प्लेक्स होने वाली है। उन्होंने नीचे की ड्रॉर खोली और वहां पे एक कागज मिला, हैंड रिटन था, प्रिंटेड नहीं था, हैंड रिटन था। और उसे निकाला उस कागज को जो मुड़ा हुआ था, उसे खोला, डेस्क पे रखा और क्लियरली दिख रहा था कि डिप्टी मैनेजर ने ये अपने लिए ही एक रिमाइंडर के तौर पे कागज पे लिखा था, अपने आप को याद दिलाने के लिए कि कितना हिसाब देना है, कितना अमाउंट जो है, कितना कर्जा है और किसको देना है। तो किसको देना है वहां पे एक नाम लिखा हुआ था, शीर नॉन फोंग, लेट्स कॉल हिम शीर। तो शीर नाम के बंदे पे डिप्टी मैनेजर का कर्जा है, ये कागज पे लिखा हुआ था। ऑफिसर ने बोला यस अब मैं समझ गया किसने क्या किया। और ऑफिसर ने ढूंढ निकाला शिर नॉन फोंग नाम के बंदे को, शिर को ढूंढ निकाला और इन्वेस्टिगेशन रूम में बिठा दिया, लग रहा था केस हो गया सॉल्व। और साथ साथ ऑफिसर्स ने बैकग्राउंड में जो कह रही थी कि 10 दिन बाद शादी होने वाली है उनसे भी बातचीत कर ली थी चीजें वेरीफाई करके, वो फिर बैठे हुए थे।
अब उन्होंने सामने शेर बैठा हुआ है, इन्होंने वो कागज़ निकाला और बोले हाँ भाई खुद बताओगे सब या फिर हम सब कुछ निकालें तुम्हारे अंदर से। तो बोला ऑफिसर किस बारे में बात कर रहे हो? तो बोला अरे तुम नहीं जानते चंद्रन को, डिप्टी मैनेजर को? हाँ इतना कर्जा था उसका तुम्हारे ऊपर उसका। बोला क्या बातें कर रहे हो? उसने फिर वो नोट निकाला, वो कागज जो थोड़ा पुराना हो चुका था, और सामने रख दिया। और वो देखने लगा कागज को शेर। तो बोला हाँ ऑफिसर क्या करना है इसका? तो बोले क्या करना है मतलब? और ऑफिसर लगातार उसकी नजरों को देख रहे थे कि आप शायद ही नर्वस होगा, मैं इसे पकड़ लूंगा, पर वो तो कंफ्यूज था। और उसने बोला इवेंचुअली मैं किसी चंद्रंग को नहीं जानता, कौन डिप्टी मैनेजर? ऑफिसर किसकी बातें कर रहे हैं आप, मुझे नहीं पता कौन है ये। ऑफिसर ने बोला है क्या कह रहा है ये, कह रहे तुम झूठ बोल रहे हो ना? बोला ऑफिसर मैं नहीं जानता। और फिर उसके फोन रिकॉर्ड्स देखे, सारे बैंक स्टेटमेंट्स देखे, और सच में वो नहीं जानता था, नहीं जानता वो डिप्टी मैनेजर को। ऑफिसर को लगा हो सकता है हमने गलत शेर नॉन फॉर्म को पकड़ लिया, कोई और होगा। अभी ऑफिसर रात में अपना सर पकड़े बैठे हुए थे अपने डेस्क पे, घर भी नहीं जा रहे थे, और जो वो कागज था उसे लेके हाथ में घुमा रहे थे। सोच रहे थे यार इसकी फियांसे कह रही है कि ये पहले की बात है, कागज जो है वो नया सा लग रहा है, कौन क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काफी पजलिंग सिचुएशन थी, कोई भी लॉजिकल सेंस नहीं बन रहा था। और फिर ये ऑफिसर देर रात इस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में गए और उन्होंने बाकी तफ्तीश, बाकी तलाशबीन शुरू कर दी। और उन्होंने कहा मैं और कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ, सारे कागज़ ढूंढे, वापस ढूंढे। फिर उनकी नज़र एक कागज पे जाके रुकी और उन्होंने अपनी जेब से ये वाला नोट जिस पे शेर का नाम था और एक और नोट निकाला और दोनों को सामने रखा। राइटिंग दोनों अलग अलग थी। वो भागे हॉल में अपने सुपरवाइजर के पास, बोले मुझे अभी के अभी सबकी हैंडराइटिंग चाहिए, जो जो डिप्टी मैनेजर के ऑफिस में एंटर कर सकता है सबकी हैंडराइटिंग मुझे चाहिए। और कुछ दिन बाद ऑफिसर जॉन को पता चल गया कि वो राइटिंग किसकी है, किसने वो नोट जो है वो धोखा देने के लिए हो सकता है डिप्टी मैनेजर के ऑफिस में रखा था। मगर फिर भी केस सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि जिसकी वो राइटिंग थी, वो जो महिला थी, उनका नाम था लाओ, लाओ नाम था उनका। और जीरो सेंस बनता है कि उनका कोई भी कनेक्शन हो इससे, एक रैंडम औरत, वो औरत जिसकी शादी हो चुकी है, उसका पति पुलिस ऑफिसर है, उसका क्या लेना देना इस केस से, वो रहती भी तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर है, उसकी राइटिंग डिप्टी मैनेजर के ऑफिस में क्या कर रही है, इट्स नॉट एडिंग अप। अब ऑफिसर साहब थोड़ा पास्ट में जाने लगे, खंगालने लगे, कुछ तो मिलेगा। उन्होंने ये जो लेडी लो थी, इसको लाओ, इसको बुलाया कि भाई तुम आओ। और जब वो ऑफिस में बैठी और उसने जो कहानी बताई, वो सुनने के बाद ऑफिसर ने अपना सर पकड़ लिया, बिकॉज ही कुड नॉट बिलीव। तो ये औरत लाओ, इसे ऑफिस में बुलाया गया पुलिस स्टेशन, और फिर इसने बताया कि उसका डिप्टी मैनेजर से 8 साल पुराना रिश्ता था। वो लोग एक यूथ कॉर्प्स नाम की कंपनी में मिले थे और उसने बताया कि 8 साल पहले से उनकी मोहब्बत जारी है। और ऑफिसर कह रहे थे हां और बताइए मैडम आगे। तो ऑफिसर सोच रहा था कि ये तो डिप्टी मैनेजर डबल लाइफ जी रहा है, लेकिन यहां तो ये औरत डबल लाइफ जी रही है। और फिर इस औरत ने बताया कि लाओ जो बंदी है उसकी शादी हो चुकी थी और उसे ये राज रखना था, तो इसलिए उसने एक नकली नाम यूज करके बात करना शुरू कर दी डिप्टी मैनेजर से। यहां तक क्लियर है? और वो चंद से दूर भागना चाहती थी डिप्टी मैनेजर से, लेकिन दूर नहीं भाग पा रही थी। उसे कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ बोला, मैं बाहर पढ़ने के लिए जा रही हूं, लेकिन चंद नहीं माना। फिर इन्होंने एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला,
ये लाओ नाम की बंदी, इसने बोला कि मैं इंटरनेशनल स्पाई हूं, और ये बिल्कुल अजीब

इसी बात पे डिप्टी मैनेजर ने भरोसा कर लिया क्योंकि वो प्यार में थे अंधे। और अब झूठों का क्योंकि पूरा पहाड़ पूरा टीला खड़ा हो चुका था तो क्या करें इससे बचने के लिए, इसको और बड़ा कर दिया। लाओ ने वादा कर लिया डिप्टी मैनेजर से कि मैं तुमसे शादी करूंगी। वो बड़ा खुश था, शादी होने वाली थी, लेकिन 8 साल से अपना सच्चा नाम बताया ही नहीं था क्योंकि जो नाम डिप्टी मैनेजर को पता था वो था जोंग येन, वही औरत जो भागती हुई आई थी पॉन्ड के पास, जो कह रही थी मेरी 10 दिन बाद शादी होने जा रही है। वो एक्चुअली में डबल लाइफ जी रही थी, यही आई थी बताने के लिए भागकर। और क्योंकि अब 10 दिन बचे थे और भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि अगर वो शादी करती तो उसे अपना लीगल नाम देना पड़ता तो सारा राज खुल जाता, 8 साल का इतना बड़ा राज धरा का धरा रह जाता। तो उसने कहा भाई अब तो इसको खत्म ही करना पड़ेगा। कवर करने के लिए उसने सबसे पहले तो इस दुनिया से डिलीट किया डिप्टी मैनेजर साहब को, फिर खुद ही बुजुर्ग की आवाज निकाली और एक और झूठ, एक और आइडेंटिटी क्रिएट करी और फिर कहानी बनाई कि मेरा जो पोता है उसने गलती से किसी को किडनैप कर लिया है। और फिर इस झूठ को और मल्टीप्लाई करने के लिए एक नोट जो था वो नोट छुपाया ड्रॉर में खुद ही की राइटिंग में। और इतना सब कुछ करने के बाद वो चली गई वापस 60-70 किलोमीटर दूर सुकून से रहने के लिए। मगर फाइनली इतना सब कुछ करने के बाद भी वो पकड़ी गई एंड लिटरली सजा हुई। मिसेस लाओ या फिर जोंग ग्यू, 2-3 नाम है इनके, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दिस स्टोरी मैन, क्या बताऊं, ये कहानी इट जस्ट टेल्स यू कि कुछ लोग बहुत अकलमंद होते हैं बट जस्ट इन द रॉन्ग वे। अब आप सोच रहे इन्होंने इस औरत ने कितना दिमाग लगाया हो, कितना दिमाग लगाया अपना, क्या क्या नहीं किया। यू कांट से कि इंटेलिजेंट नहीं है, शी इज जस्ट इंटेलिजेंट इन अ रॉन्ग वे। एंड अपेरेंटली इस पे एक सीरीज तैयार की जा रही है, उस शायद बाइलिंगुअल में है, वो 2 लैंग्वेज में लॉन्च होगी। तो जब वो लॉन्च होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट फिलहाल ये किस्सा अगर आपको समझ में आ गया तो मज़ा आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनिएगा। आई कैन अंडरस्टैंड शायद पहली बार में ना समझ में आया हो, बट इफ़ यू गॉट दिस स्टोरी एंड यू गॉट एवरीथिंग इन इट तो मुझे ज़रूर बताइएगा। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। मुझे सच में इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का, बिकॉज ये कहानी ऐसी है ना, मेरा सर घूम गया भाई, मैं सही बता रहा हूँ। इट इज सो कंफ्यूजिंग क्योंकि ये क्रिस्टोफर नोलन टाइप की कहानी है, ये कहाँ से कौन किधर आ रहा है भाई। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो इवन इफ यू डिडंट गॉट इट इन द फर्स्ट गो, इसे इस कहानी को मौका दीजिएगा, मैं खुद कह रहा हूँ इस कहानी को एक मौका ज़रूर दीजिएगा, एंड फिर यू विल बी लाइक हाँ यार कबीर सही कह रहा था, ठीक है ये। तो ओके, और कुछ नहीं बोलूँगा भाई। ठीक है, इस गाने के बाद मिलते हैं भाई, मेरा तो सर घुमा दिया इस कहानी ने। God damn man, कहानी

0: God damn.
1: तो आप मैसेज करते रहिए 666-2207 पर. फिलहाल तो एक भाई ने बोला है कि मुझे रीड करने के लिए चाहिए. अच्छा ठीक है, मैं रीड करने के लिए देता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट. क्योंकि सारा का सारा अगर मैं सिलेबस आपको दूंगा ये बैठ के, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा. जस्ट गिव मी अ लिटिल टाइम एंड आई विल गिव इट टू यू. बाकी कहानी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा 666-2207 पर. एंड डू लेट मी नो कि आपका इस कहानी पर क्या कहना है. ऑफ कोर्स इट वाज अ लिटिल कंफ्यूजिंग. एक कॉल उठा लेते हैं पहले हम. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
1: हाँ जी बताइए.
2: क्या दीवाना होता है
1: दीवाना
2: होता है खून करके हम गम से दीवाना होता है.
1: मजा आ रहे हैं मैनेजर साहब आपको भी.
2: बिल्कुल सर, यही तो आशिकी है.
1: यही तो आशिकी है. तो पर आपको आपको क्या लगी, कैसी कहानी है बताएं आप.
2: कहानी बहुत अच्छी लगी सर.
1: थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया.
2: तो क्या ट्रैफिक सुकून से गुजर गया.
1: हाँ चलो, आई एम रियली हैप्पी. ट्रैफिक सुकून से गुजर गया. बस यही है भाई, मैं इसलिए मैं कहानी जो थी मैं समझ रहा था ये कहानी मैं कैसे सुनाऊँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है ये स्टोरी.
2: ये लगता है जब ये मूवी होगी ना ये बहुत कंफ्यूजिंग होगी ये सीरीज, क्योंकि जारी बात है इसके कितने लोग कितने करेक्टर इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, क्योंकि वो कितने डायरेक्शन में गए हैं और इससे भी ज्यादा डायरेक्शन होंगे जब वो खोले वीडियो बनेगी. तो जारी बात है कि इतने डायरेक्शन में जाने के बाद और फिर कहां जाके आंटी को ढूंढा.
1: आंटी को ढूंढा.
2: खूनी आंटी को ढूंढा. फिर वो जारी बात है फिर कंफ्यूजिंग तो होगी ना.
1: हाँ नहीं है ये ऑफकोर्स है. और कंफ्यूजन के साथ साथ इसको बताना मेरे लिए बहुत भारी था भाई. मेरे तो बताऊँ मैं खुद ही 3-4 बार रिवीजन करने बैठे हुए, क्या करूँ कैसे बताऊँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा. बट ठीक है चलो, आ गया समझ में, अच्छी बात है. और फवाद भाई सब बढ़िया.
2: बस बेहतरीन. ट्रैफिक लगी हुई थी आज दोहा एक्सप्रेस से बहुत ज़्यादा.
1: अच्छा अभी ठीक है मामला वहाँ पे.
2: अब बेहतर है, चल रही है ट्रैफिक, चलती है सबसे अच्छा है. अल्हम्दुलिल्लाह किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, किसी का कुछ नहीं हुआ था, सुकून से चल रही थी.
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया फवाद भाई. और आपका वजन कम करने का कल से जो चल रहा है आपने बताया है, सॉरी वो उस पर लोग बड़े एक्साइटेड है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए.
2: इंशाल्लाह पूरी गाइडलाइन दे देंगे आप अपने ग्रुप में डाल देंगे.
1: बिल्कुल भाई ये बड़ा जरूरी है, दे दीजिएगा याद से.
2: पहले एक आपको मिल के सैंपल दिखाते ना.
1: सैंपल दिखाते ये कोई परफ्यूम है, सैंपल दिखाते हैं. अच्छा ठीक है जरूर देखेंगे, सैंपल भी देख लेंगे भाई. डन हो गया.
2: ठीक है और ठीक
1: ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान, सब एकदम शानदार.
2: प्रिंस साहब की कॉल नहीं आई, आज आई है कि नहीं आई है मुझे मिस कर.
1: प्रिंस भाई की नहीं, प्रिंस भाई की अभी कॉल नहीं आई भाई, आ जाएगी लेकिन.
2: अच्छा
1: हाँ
2: गैदरिंग पा रहे प्रिंस भाई, इनके ज्यादा अमीर तो वही है ना.
1: उनसे पूछूंगा मैं, आई विल आस्क समथिंग, कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा उनसे.
2: अच्छा बोले यार कोई अमेरिकन सिस्टम कर लेंगे, गैदरिंग करा लें.
1: डन हो गया. खर्चा करेंगे. इन्वेस्टमेंट
2: हाँ इन्वेस्टमेंट है सर. इन्वेस्टमेंट क्या आगे आपके इन्वेस्टर ढूंढने के लिए जिससे आप डबल करेंगे तो उसके लिए बहुत जरूरी है.
1: हाँ नहीं डन डन बिल्कुल सही, मैं आपके साथ हूँ फवाद भाई. हमारा नेता कैसा हो फवाद भाई जैसा हो. थैंक यू भाई.
2: चलो सर
1: ओके मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकअल्लाह. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. तो या तो मैं कहाँ था, मैं कह रहा था कि आपको ये बताना कि कहानी आपको कैसी लगी. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आपका इस पर क्या कहना है. मैसेजेस आ चुके हैं बट एक जिंगल का टाइम प्लीज़, टू टाइम्स.

0: हाँ जी, क्या हाल है? एक भाई ने कहा मुझे रीड करने के लिए, मैंने रीड करने के लिए दे दिया उन्हें। वो कह रहे हैं ये तो ताइवानीज भाई, तो वहीं की कहानी है ना। मैं थोड़ी अखबार छाप रहा हूँ बैठ के। आपको रीड करनी थी, मैंने आपको भेज दी। अस्सलाम वालेकुम, 8:05 और लोगों ने जो आज कहानी भी मैसेज किए बताया, तो एक एक करके। इश्ताक उस्मानी भाई कह रहे हैं कबीर भाई इस साइड इंस्पेक्शन में बिजी हो गया था तो पूरी स्टोरी नहीं सुन पाया, प्लीज़ आप स्टोरी। बिल्कुल भाई, डोंट वरी, यू विल गेट इट ब्रो। और एक और भाई इनको मैंने भेज दिया, वो अभी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुझे बताएंगे। ये दूसरे वाले भाई, इनका नाम भाई M7 मेड अप, थैंक्स, अप्रिशिएट, यू वेलकम ब्रो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, और कहा है मैसेजेस? रिजवान भाई ने दिया, रिजवान मिल जाएगा। मास भाई कह रहे हैं कि मुझे तो पहले से ही शक था उस औरत पे, शुरुआत से ही मैं सोच रहा था डिटेक्टिव ने पूछा क्यों नहीं इससे। कि डू यू स्टिल विश टू कंटिन्यू मास? अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताइए कैसे हैं?
1: जी ठीक हूँ, पहचान लिया ना अमन
0: हूँ। हाँ, अरे भाई भाई, हाँ भाई, दूसरे नंबर वाले अमन से भी चले, एक नंबर से व्हाट्सएप खेलते हैं हमारे साथ, बताइए।
1: जी बहुत बढ़िया, मैंने स्टोरी सुनी, अच्छी थी। तो मैंने तो भेजा इसलिए, हमारा इंडिया तरक्की नहीं कर पा।
0: इंडिया से क्या इसका मतलब तरक्की नहीं कर पा रहा? मैं
1: मजाक में बोल रहा हूँ, कुछ लोग, आपने एक लाइन बोली ना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन इन अ रॉन्ग वे।
0: हाँ हाँ हाँ, वो तो है भाई,
1: वो आपने लाइन बोली ना।
0: हाँ हाँ हाँ, अच्छा वैसा, ओ हो
1: लाइन थी ना वो।
0: हाँ बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला आपने
1: जी। और वो भी मतलब पॉइंट वाली लाइन थी, नोट करने वाली लाइन थी, कि वाकई में कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन वो अपनी अकल को इस्तेमाल गलत रास्ते में यूज करते हैं। और उमर कैद करवा के बैठ गई
0: रिविजन करके आया था भाई, ऐसी तैयारी, इतनी कन्फ्यूजिंग थी कहानी मेरे लिए भी, बहुत कन्फ्यूजिंग थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया।
1: बढ़िया थी, और टॉपिक आज का आपने बताया था लेकिन मैंने

0: जी थैंक यू
1: कबीर
0: भाई,
1: थैंक यू मेरा भाई, ख्याल
0: रखिए,
1: यू टू मेरा भाई, बाय बाय बाय बाय। और इनके बाद मैसेज किया है यूसुफ भाई ने, यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम। और फिर एक मैसेज आया है, ये अरशद खान साहब का मैसेज है, भाई ने लिखा है कि आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं और सबक आमोज होती हैं मेरे भाई, बहुत बहुत सारा प्यार आपको, जज़ाकअल्लाह अरशद भाई, थैंक यू। और दिशान भाई ने मैसेज किया, दिशान भाई कह रहे क्रेडेंशियल्स पूरे थे, खातून की हर मुल्क की एजेंसी बोलेगी लाओ ले आओ। दिशान भाई आपका लेवल ऑफ डार्क ह्यूमर मेरा वाला हो रहा है, हम लोग बॉर्डर लाइन पर खेलने लगे। आसिफ भाई लिखते हैं फेक नानी किलर स्टोरी नेम, स्टोरी नेम मैं आर्टिकल भेज दूँ कि आर्टिकल पढ़ लेना सीधा, और तो क्या है, आई थिंक दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू, आर्टिकल भेजूंगा। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: हाँ जी भाई, क्या हाल है भैया?
2: अल्हम्दुलिल्लाह कबीर भाई, हाल तो ठीक है
1: जी,
2: लेकिन आपने कहानी जो सुनाई है सैमसंग इंडिया वाली कहानी थी, अरे नहीं करना तो मत करती शादी। क्या जरूरत थी पावर से धक्का देने वाला हिसाब,
1: आप तो उसको डांट रहे हैं भाई।
2: नहीं अभी इंडिया में हुआ था ना एक, मालूम है?
1: हाँ, हमारे अपने तो आम बात है भाई, बहुत ही आम बात है,
2: लोग लगता वही कहानी उसने भी सुनी थी लगता।
1: देखिए यहाँ पे हो रहा है, मैं भी ट्राई करके देखते हैं एक बारी, पर सच में आप ये तो मानोगे बहुत ज्यादा ट्विस्टेड कहानी है, बहुत कॉम्प्लेक्स थी।
2: पहले तो मैं समझा कि वो जो सिक्योरिटी वाली थी लगता उसी का चक्कर उक्कर होगा, कहानी में घूम फिर के वही आएगा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि नहीं।
1: हाँ तो ऐसा ही है भाई,
2: को आपने जो अच्छा सस्पेंस बना के रखा था भाई।
1: अरे मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं तो लगातार डर रहा था, मैंने कहा पता नहीं ये बताते बताते किसी के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट इज डन नाउ मेरी साइड से।
2: लेकिन एक चीज और हुआ भाई
1: जी जी जी,
2: हफ्ते में पहली बार कोई मरा
1: है ना ये।
2: कल तो हाथ एक गए थे, मर गए।
1: ये पूरे हफ्ते की इकलौती कहानी हुआ जिसमें एक एक टपका है, बाकी नहीं होगा अभी। या कल हो भी सकता है, कल मेरे पास है कहानी, इसमें शायद कोई टपकेगा, बट मैं क्यों बताऊं,
2: चलिए देखते हैं।
1: हाँ डन डन,
2: नहीं नहीं बता भाई,
1: राज
2: खुलना नहीं चाहिए, तभी तो मजा है, सस्पेंस का मजा तभी है।
1: ये राज तो मेरे साथ ही जाएगा भाई, डन हो गया। ठीक है कमाल भाई, ख्याल रखिए मेरे भाई, थैंक यू सो मच।
2: ओके कबीर भाई, अच्छा हाँ वो जो आप जो सवाल आज किए थे किसी के बोलने पे,
1: हाँ
2: तो किसी ने मुझे कहा था कि भाई अगर कोई जो है बड़ा बुजुर्ग हो या कोई ऐसा हो जो चिल्लाए तो उसको मुस्कुरा के जो है सुन लिया करो,
1: हाँ
2: जवाब नहीं देना, मतलब मुस्कुराओगे तो वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा।
1: हाँ
2: 2017 की बात, 1997 की बात है।
1: अच्छा,
2: मैं उस टाइम पे नौकरी कर रहा था, तो मैं जिसपे ड्यूटी कर रहा था उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट होने के बाद उसने मेरे को ऑफिस से बुलाया, बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, बताया उसको।
1: हाँ।
2: लेकिन जब वो चिल्ला रहा था मेरे ऊपर,
1: हाँ।
2: बोल रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी, मतलब मुस्कुरा रहा था मैं। भाई उसने मुझे ऑफिस से निकाल दिया, बोलता जाओ नौकरी उसी जगह ढूंढ लो।
1: अरे यार कमाल भाई, आपने इतना सीरियसली क्यों लिया इस बात को भाई?
2: सीरियसली लिया नहीं भाई, उस टाइम पे पता नहीं दिमाग में वही बातें आ गई।
1: इतना कोल्ड वे में आपने इतनी कमाल की बात कहना, क्या बात है यार कमाल भाई, क्या बात है, बड़े प्यारे।
2: भाई उम्र भी ज्यादा नहीं थी ना उस टाइम पे, वही 19-20 साल की उम्र थी।
1: क्या मुस्कुरा दिए, वो डांट रहा है,
2: मुस्कुरा दिए। हाँ भाई उसका नुकसान हुआ, वो डांट रहा, अब समझ में आ रहा ना कि गलती मेरी थी। उस टाइम पे तो भाई गलती कहाँ समझ में आती है।
1: हाँ ये जो बात है ना कि कोई गुस्सा करे तो मुस्कुरा दिया करो, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है, प्लीज पब्लिक को पहले ही बता दूं। हर जगह अप्लाई नहीं करना है इसको। वेरी गुड कमल भाई, आपने जो है ये चीज रखी सामने, थैंक यू सो मच, इस पे भी टॉपिक पे बात करूंगा मैं। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एक मैसेज है, बेटी पढ़ाओ बेटा बचाओ। अली मकसूद साहब का मैसेज है ये, और क्या कह रहे थे ये, क्या है, डायन के बारे में हमने सुना मगर ये तो मैक्स लेवल की निकली। कबीर भाई थोड़ा बच के रहो। नहीं नहीं मैं तो भाई एकदम सिक्योर हूँ, मैं तो क्या बताऊँ, मैं तो एकदम अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सिक्योर हूँ। कमाल भाई की बात कमाल की, आसिफ भाई भी कह रहे हैं। और एक मैसेज है मोहम्मद इमरान भाई का, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कबीर भाई मेरे पास भी एक कहानी है, मैं कैसे सुनाऊँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर सुनाओ तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन मैं देखो मैं डन है, पर मुझे कहानी का सोर्स दो, कहाँ से वो कहानी का सोर्स होना चाहिए कि वो कहाँ से आपको मिली कहानी, किधर है कहानी, ये बताओ मुझे, मैं खुद सर्च कर लूँगा, आपको टेंशन नहीं दूंगा बिल्कुल मैं। खादिर भाई कहते हैं कबीर भाई जस्ट ओपन द रेडियो एंड डिड नॉट हैड चांस टू लिसन टू द स्टोरी, आई वॉज यस्टरडे इन हॉस्पिटल, आर यू ओके? खादिर भाई इज एवरीथिंग ओके? एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, ये जो क्या यूट्यूब पर क्या है मुझे समझ में नहीं आया। एक मैसेज है, प्लीज़ सेंड इफ पॉसिबल, यू विल गेट इट, नॉट ए प्रॉब्लम। और

तबसुम मैंने मैसेज क्या लिखते हैं, बहुत सच्ची मोहब्बत की सूली चढ़ गया, दादी बन के कॉल की थी तो मुझे लग रहा था खुद दादी ने निपटाया होगा, ब्रिलियंट सस्पेंस एंड नरेशन, आई एम सो हैप्पी कि पल्ले पड़ी कहानी बहनी है लोगों के। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, स्टोरी अच्छी थी। फराज भाई कह रहे हैं, अब्दुल भाई के बाद फराज भाई कह रहे हैं, कंफ्यूजिंग लेकिन बहुत मज़ेदार। एक मैसेज है भाई आपको, एक कंपनी वाले कह रहे हैं, फैजान भाई ढूंढ रहे हैं ओटीटी लिखने के लिए। एक मैसेज है, क्राइम पेट्रोल तो भाई इंडिया के बाहर भी हो रहा है, इंडिया के बाहर ज़्यादा हो रहा है भाई, हमारे यहाँ चटपटी मसालेदार कहानियाँ है। और मोहसिन भाई कह रहे हैं, मुझे तो पहले से शक था उस लेडी पे, ये आए कहने के लिए, मुझे तो पहले ही शक था। फरद भाई कह रहे हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरबाज भाई ने मैसेज किया है, भाई अब तो शादी के नाम पर भी पैर कांपेंगे, और सर उनकी पुलिस तो देखे ना, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी पूरी रात उस केस के बारे में सोच रहा था, और एक हमारे वाले ड्यूटी में भी किसी का नहीं सोचते। अरे भाई साहब, सुबह स्टोरी हो गई। हाँ जी, स्टोरी हो गई बहन, मैं भेजूंगा आपको, कति कॉम्प्लेक्स है। और आपका वाला भी आ जाएगा। एक मैसेज है, कहानी भाई की टक्कर की होनी चाहिए। हाँ भाई, टक्कर की होनी चाहिए, और एक्चुअली में उसमें रियलिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसी कहानी नहीं सुनाऊंगा मैं जिसमें बोला आपने, भाई एक बार की बात है, मेरा मामा जिस गाँव में रहता है ना भाई, उसको कुछ दिखा भाई, वैसी वाली कहानी नहीं सुनाने वाला मैं। सो जो मैं कहानी सुनाऊंगा, इट विल बी डॉक्यूमेंटेड, वो इंटरनेट पर अवेलेबल होगी, ताकि आप खुद जाके उसे पढ़ सकें, देख सकें, ठीक है। ऐसी नहीं कि अरे एक बार की बात है भाई, मेरा भाई एक दोस्त था, रात में को जा रहा, 2 बज रहे थे भाई, साइकिल पे था, किसी ने ना एकदम से पीछे से उसकी चूटी काट ली गुद्दी पे से भाई, जो भागा भागा भागा। ऐसी कहानी नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है। खादिर भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बढ़िया, शानदार। जरा गाना चला लें, मैं भी चलो वैसे इंट्रोड्यूस करता हूँ गाने को जैसे मैंने बताया। भाई एक बार की बात है भाई, पीछे से एकदम गुद्दी पे किसी ने स्पीकर रख के ये वाला गाना चला दिया भाई।

मेरे पास एक मैसेज आया ये इरशादुल्ला यूसुफ जाई साहब कहते हैं भाई आपकी कहानी तो बहुत बढ़िया है, ये जो बाहर के लोग होते हैं चाइनीज और ताइवानीज इनके नाम बड़े मुश्किल होते हैं, तो नाम चेंज करके देसी नाम रख के सुनाया करो जैसे कि राम कुमार यादव कितना अजीब लगे बोलूं जी। आज की कहानी है यादव साहब की फ्रॉम ताइवान

0: रूम करे शेक अप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप।
1: अजी
0: दोहा वाला में कबीर,
2: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप।
1: भाई ने और मैसेज किया, सब मजे कर रहे हो प्याले महसूस कर रहे हो। भाई मेरे दादा ने भाई बीड़ी पी थी एक के साथ, भाई शैतान के साथ खेतों में बैठ के, और वो कहते थे कुश्ती लड़ते थे हम उसके साथ, तो ऐसी कहानी चलेगी। एग्जैक्टली भाई, तभी ना मैं सिर्फ वो कहानी सुनाता हूँ जो एक्चुअली इंटरनेट पर अवेलेबल हो, वरना यही सारी कहानी आएंगी। भाई मेरे दादा बताते थे भाई हमारे खेतों में घूमती थी औरत भाई, और वो सबको डरा देती थी, कोई नहीं आता था। भाई ये वाली कहानी नहीं चाहिए। इफ़ यू रियली वांट टू सेंड मी अ स्टोरी, आपको लगता है ये कहानी मुझे सुनानी चाहिए, सो जस्ट लेट मी नो कि भाई ये कहानी यहाँ पर अवेलेबल है, पढ़ लेना और ऐसा ऐसा हुआ है इसमें। तो अगर वो इंटरनेट पर अवेलेबल है और अच्छे से मैं रिसर्च कर सकता हूँ, मैं भाई पूरी जान लगा दूंगा उसमें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब ज़रा खबरों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं जो आपसे आपके सामने रख रही हैं। सबसे पहली खबर है कतर पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगाल से जुड़ी हुई, जिन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है नेशनल प्रोजेक्ट का टू डेवलप हमद जनरल हॉस्पिटल फैसिलिटीज सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्टिंग सर्विसेज। काफ़ी काम तेजी से चला और काफ़ी काम पूरा हो चुका है, और अशगाल की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई है ट्यूज़डे को ही आई थी, और उसमें उन्होंने बताया कि जो प्रोजेक्ट रहा है ये नेशनल स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रखते हुए इसको आगे बढ़ाया जाएगा आने वाले वक्त में भी। और सिर्फ इसका मकसद ये नहीं कि हॉस्पिटल को इन्हांस किया जाए, मगर ऑपरेशनल रेडी भी बनाया जाए, सेफ्टी लेवल्स को और बढ़ाया जाए, और वाइड रेंज ऑफ मेडिकल सर्विसेज एक जगह पे जितनी हद से हद मिल सकें विद हाई स्टैंडर्ड्स लोगों को दी जाए। सो ये मकसद जो है ये आगे भी ऐसे जारी रहेगा इंशाल्लाह। एंड कतर तो मेडिकल फैसिलिटीज में, मेडिकल फील्ड में भाई रैंकिंग की जरूरत ही नहीं है, हमारे बाद ही हैं सारे के सारे। सो माशाल्लाह एंड कुडोस टू कतर फॉर बीइंग always at the top in medical field also. Iske alawa Ministry of Education aur Higher Education announced kiya hai opening of online application process. Ye hai for Qatar Education Excellence Award. Ye 1 October se 31 October ke beech chalega. जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं, उनको इनवाइट किया गया है ताकि वो रिव्यू कर सकें, जो अप्रूव्ड क्राइटेरिया है उससे मैच कर सकें, और रिक्वायरमेंट पूरी हो हर एक कैटेगरी की, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और उसके बाद एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए होगा, तो वो सबमिशन किया जाए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए, और उसके बाद फिर थोड़ा इंतज़ार। तो ये होल प्रोसेस दिस विल रन फ्रॉम 1st of October टिल द 31st of October। एंड इसके अलावा अंडर द पेट्रनेज ऑफ हिज एक्सेलेंसी द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी, 22nd दोहा जूलियन वॉचेस एग्जीबिशन 2026 जारी है, और ये DECC में हो रहा है, यानी कि दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। हमारा वीडियो भी आ चुका है, आई बिलीव हमारी सफा बहन गई थी वहाँ पे, तो वो वीडियो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे देख सकते हैं। FM 107 Qatar FM 107 Qatar इस जगह पर आपको वो वीडियो भी नजर आ जाएगा। सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर गो अहेड एंड डू इट। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम अमीर एंड हबीब कबीर भाई, स्टोरी लाइक बिरयानी। अरे भाई भाई भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार क्या, थैंक यू। अगर सुन रहे हैं आपके बॉस, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे कबीर भाई की सैलरी बढ़ाएं, जितनी मेहनत हमारे भाई करते हैं ये तो बनता है। सबसे पहले तो ये जो मैसेज किया है रियाज भाई को, जो रियाज भाई जो मांगे, रियाज भाई आपके लिए एकदम हर जगह एंट्री फ्री है, हमारे दिल से लेकर हमारे घरों पे आप आराम से ही। क्या खाएंगे आप, आपके लिए स्पेशल बिरयानी बनाऊं रियाज भाई? रियाज भाई यार हाउ स्वीट ऑफ यू, यार हाउ स्वीट ऑफ यू भाई यार, चार दिल भेज रहा हूँ आपको और दो खुशी के आंसू वाले इमोजी लगा के भेज रहा हूँ भाई। कह रहे हैं अपने बॉस से कहिए, मैं तो गुजारिश करूँगा कि आपकी सैलरी, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, इतनी नेकी कमा के कहाँ जाओगे मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन दैट इज सो काइंड ऑफ यू टू इवन मेंशन इट, थैंक यू। एक मैसेज अरबाज भाई का लिखते हैं, मैं अपने गांव की कहानी सुनाऊंगा कि वहां का क्या हुआ, क्योंकि हमारे गांव में एक है ये अभी तक, अच्छा ये वाले नहीं आए तो वो कैसे होंगे? अरे अरे अरे, पहाड़ी की तरफ रहते हैं ना भाई आप, तो आपकी तरफ नहीं आए होंगे, माफ कर दो उन बेचारों को भाई। अरबाज भाई भी जज्बाती हो जाते हैं। और एक भाई ने कहा कि भाई ये कहानी मैं कैसे पढ़ सकता हूँ जो आज आपने सुनाई है, ये तो सारी चाइनीज में लिखी हुई है। हाँ मेरे भाई, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करें और फिर पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। जब भी तो मैं कहता हूँ ये वाला रिसर्च करने वाला काम मुझ पर छोड़ दो, आप कहानी सुनो मजे करो भाई, ज़्यादा ध्यान नहीं देने का, ठीक है। और अभी एक ऐसा गाना चलेगा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी आपको फील आ जाएगी, मतलब अभी वीकेंड तो नहीं आया लेकिन फील वीकेंड वाली ही आएगी आपको। रेडी हैं आप? बढ़ा दूं वॉल्यूम यहीं से बैठे बैठे? अभी देखो ये मैंने हाथ घिसे, ये समझो चिराग घिस रहा हूँ, अभी देखो कैसे आपकी गाड़ी का वॉल्यूम बढ़ेगा, ये ये ये धीरे धीरे बढ़ेगा, देखो एक एक पॉइंट ऊपर जाएगा, एक एक पॉइंट ऊपर जाएगा, 22 तक तो पहुँचा दूंगा मैं यहीं से बैठे बैठे, वॉल्यूम सीधा 22 पे ले जाऊँगा।

wake up. 8:28 कुछ बहुत ही इंटरनेशनली मार्क्ड दिन है, अलग अलग किस्म के। आज बता आपको क्या है, आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है, दुनिया भर में क्या मतलब जिसको मनाना है मनाए, आज है ऑरेंज शर्ट डे। ऑरेंज शर्ट डे, मुझे याद भी नहीं मैंने कभी ऑरेंज शर्ट जिंदगी में कभी पहनी है, सही बता रहा हूँ मैं। मैं अभी जब मैंने पढ़ा कि आज ऑरेंज शर्ट डे तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा हाँ यार ऑरेंज तो नहीं पहना कभी मैंने, ऑरेंज के आसपास के रंग जरूर पहने होंगे बट एग्जैक्टली ऑरेंज तो मैंने आज तक शायद नहीं पहना है। आई डोंट थिंक सो, याद करने दो मुझे, नहीं मैंने नहीं पहना। भाई कोई ऑरेंज शर्ट में अगर घूम रहा है, शर्ट में हाँ टी शर्ट नहीं, तो सबसे पहले तो मैं देखना चाहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑरेंज शर्ट मैंने जिंदगी में नहीं देखी क्या। तो अगर गलती से किसी ने ऑरेंज शर्ट पहनी है, सेल्फी बनती है भाई, 666-22107 पे भेज दीजिएगा। आज ऑरेंज शर्ट डे है, सिर्फ आप ही मना रहे हैं यूं समझ लीजिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर इक्का दुक्का ज्यादा होगा नहीं। अरे नहीं भाई, डिलीवरी वाले भाइयों की बात नहीं कर रहा मैं, मेरी जान, मैं शर्ट की बात कर रहा हूँ। प्लीज आई मेंशन्ड प्रिसाइसली शर्ट, SHRIT, मेरा कला। एक मैसेज है, पिंक शर्ट डे वेंसडे। अरे मेरा भाई पिंक शर्ट डे तो निकले हैं माजिद भाई। माजिद भाई यार आप पे जज भी रही है भाई, हर किसी पे नहीं अच्छी लगती। हम पहन लेंगे ना पिंक शर्ट भाई, लोग ब्लॉक कर देंगे भाई। एक मैसेज है क्या आज है मतलब नहीं, अफजल उस्मानी भाई काश मैं बोल सकता बट आई कैन नॉट। जो ऑरेंज शर्ट पहने हैं प्लीज पिक्चर भेज। देखो ये भी हैरान है मेरे साथ साथ, ये भी हैरान है क्योंकि किसी ने ऑरेंज शर्ट में आज तक किसी को देखा ही नहीं। ऐसा ही नहीं लग रहा। अच्छा आपको सच्ची बताना, आपको कोई फीलिंग नहीं आ रही, कभी एलियनेटेड फीलिंग नहीं आ रही कि किसी को ऑरेंज शर्ट में नहीं देखा? मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैंने नहीं देखा, आई हैवंट सीन एनीबडी वेयरिंग ब्राइट ऑरेंज। एक मैसेज है, गाड़ी के नंबर प्लेट पर किस्मत ऐसी सोई इरफान भाई की गाड़ी चौराहे पर आके खोई, ग्रीन लाइट पर भी इनका चलान कट जाता है, भाई ने किस्मत शायद थाने के बाहर भी बोई। अरे भाई मैं इरफान भाई के नंबर प्लेट पर स्टक हो चुका हूँ, मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ उनका नंबर प्लेट जानने के लिए, मैं बस उनके नंबर प्लेट के बारे में सोच रहा हूँ कि कितना बुरा हो सकता है नंबर प्लेट। भाई मत पूछो, एक भाई ने मुझे मैसेज किया था जब गाना चल रहा था, कामरान भाई कह रहे हैं भाई देखो गाने बहुत बढ़िया चला रहे हो, अगर मैंने एक आध लाल बत्ती टाप दी तो गलती आपकी होगी। हाँ सही बात है भाई, मेरे भी पर्ची फाड़ो ना, मेरी गलती है। अब क्रॉस करें और हर जाना मैं भरूँ है। बहुत शानदार, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। हाँ तो जैसे मैंने कहा आज ऑरेंज शर्ट डे है, तो इफ़ एनीबडी इज़ वेयरिंग एन ऑरेंज शर्ट जस्ट लेट अस नो। इत्तफाकन आपने आज का दिन सेलिब्रेट कर लिया, मैं ये मान के चलूंगा। एनीवे आज और भी दिन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दिन है। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, मिर्ज़ा अमीर बेग, मेरा एक दोस्त मुल्क जा रहा है, मैं बोला है उसको क्या, मैं बोला मुश्किल नहीं मेरे साथ कबीर भाई हैं। अरे मेरा भाई, मेरा भाई, हूटर बाजेगा भाई इस बात पर, क्या बात है भाई, क्या बात है। और अब्दुल उस्मान भाई कहते हैं मेरा एक टीचर है वो ग्लॉसी शर्ट पहनते थे, फूल पत्ती वाली। अब्दुल उस्मान भाई ऐसा है, फूल पत्ती वाली मैं ही पहनता हूँ। व्हाट डू यू मीन फूल पत्ती वाली, ये अब्दुल उस्मान को उठवाओ भाई, मैं ही पहनता हूँ फूल पत्ती वाली भाई, कैसी बात करो, ग्लॉसी नहीं होती बस, वो ग्लॉसी वाली नहीं पहनता, चमकीली नहीं, आंखें चौंधिया थे। अरे भाई प्लीज कोट पहन लो, आंखों में ज्यादा रोशनी आ रही है। और नहीं देखो पाकिस्तान वाली फोटो मान सकता हूँ, ये भी प्रॉपर ऑरेंज। अरे क्या बात है रिजवान भाई, रिजवान भाई ने फोटो भेजी है लेकिन ये उनकी पुरानी फोटो है, इस पे वो ऑरेंज पहने हुए। एक मैसेज है, भाई ऑरेंज पहना तो नहीं लेकिन मेरे फोटो अच्छी नहीं आएगी आप देख के। आपने ऑरेंज पहना हुआ है क्या? अगर मैं फोटो भेजूंगा तो ब्लॉक कर दोगे? अरे नहीं यार इमरान भाई, यार आप एक लौते बंदे हैं, इसने ऑरेंज पहना है आज, आपको तो बनता है भाई फोटो भेजना। भाई कैसी बात कर रहे हो भाई। इरफान भाई, यूसुफ भाई ने मैसेज किया, कबीर क्या ये भी यू डे होता? हाँ हाँ कह रहे यही यही एक कलर की शर्ट है होती है भाई, कहता है नेवर वोर एन ऑरेंज शर्ट, याद ही नहीं कौन। मैं बता रहा हूँ मैंने कभी ऑरेंज शर्ट नहीं पहनी, आई डोंट इवन रिमेंबर वेयरिंग एन ऑरेंज और सीइंग एन ऑरेंज शर्ट इन कतर, मैंने नहीं देखी। ये भाई टी शर्ट है मिर्जा भाई, मैं रजीज भाई टी शर्ट की बात नहीं कर रहा,

मैं शर्ट की बात कर रहा हूँ, शर्ट आप समझिए फर्क है। एक में से आपका म्यूजिक मिलेनियल्स को तीन एज याद दिलाता रहता है। थैंक यू सो मच, आई थिंक दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट अली मकसूद भाई, आई बिलीव सो। हम पहनते हैं भाई ये टी शर्ट है, अरे आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं भाई यार, ये टी शर्ट है मेरी जान, मैं शर्ट की स्पेसिफिकली शर्ट की बात कर रहा हूँ। कैसे कैसे डे सेलिब्रेट करते हैं दुनिया में, और ये क्या जरूरी भी जरूरी नहीं है। अच्छा और भी बताऊँ, और भी दिन है वेट वेट वेट, आज है इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे। तो जो आपका दोस्त है जो फोन नहीं रखता है ना, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त है जो फोन नहीं काटता है, आप कुछ भी करते रहे और वो फोन नहीं रख रहा है, तो आज उसको मेरी तरफ से इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे बोल दीजिएगा। आज बहुत सारे लोग आएंगे जो कॉल पे आएंगे, जो ज्यादा बोले, जो ज्यादा बातें करे, उसको बोल देना भाई हेलो इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे मुबारक हो भाई, आपके लिए ही है। और फोन काटने के तरीके देखे लोगों के आपने, हाँ हाँ बस हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मैं रखता ओके। तो जो ज्यादा बोलने वाले आज उनको इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे, मुझे कोई विश नहीं करेगा क्योंकि मुझे इस बात के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ एनीवे आगे बढ़ते हैं, आज है विमेंस हेल्थ एंड फिटनेस डे जो कि बहुत बढ़िया दिन है, वेरी नाइस, होना भी चाहिए। आज है डॉग सेपरेशन एंग्जाइटी अवेयरनेस डे, जो लोग अपने पेट से स्पेशली डॉग से अलग हो जाते हैं, जो बोझ नहीं ले पाते हैं इस जुदाई का, उनके लिए आज का दिन है। आज है वर्ल्ड स्ट्रूप वॉफल डे, ये क्या होता है यार, वॉफल तो पता था, स्ट्रूप वॉफल क्या होता है, ये अंग्रेजी में क्या डेफिनेशन है इसकी पढ़ लूँ मैं, इज अ सेलिब्रेशन दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर टू एंजॉय वन ऑफ द नेदरलैंड का है, तभी मैं कहूँ भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। आज है नेशनल, अच्छा ये उधर की तरफ मनाया जाता है मड पैक डे, देखा मिट्टी वट्टी लगा लेते हैं लोकल स्पा वाले, अलग अलग किस्म की चीज़ें लगाते हैं चेहरे पे उनका है। आज है यही है ना बस, हाँ ठीक है ये वाले दिन है। बट मुझे सबसे ज़्यादा हैरान जिस दिन ने किया वो सच में यही है, अरे रे रे रे ऑरेंज ऑरेंज शर्ट वाला दिन मैसेज, आज एंड ऑफ सितंबर मंथ डे भी आज, हाँ अरे रे रे ये तो भूल गया मैं, आखिरी 31 का नहीं है ना ये, यू श्योर ना, ठीक है तो फिर लास्ट डे है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक मैसेज है यूसुफ भाई का लेते हैं, या अल्लाह कबीर ये डेज बोले भी ना करे। यूसुफ भाई डर गए ना, ये साउथ इंडियन मूवीज के ट्रांसलेशन की तरह बोलूंगा ना आपको, क्या हिला डाला ना। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, जिंदाबाद, बहुत सारा प्यार भाई को, मकसूद भाई भी जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। और एक मैसेज है, जब क्या जब छोटा था ऑरेंज इतना फ्री नहीं हुआ करो, ठीक है मैं गलती से पढ़ दूंगा ये मैसेज फिर। हाँ तो कुल मिला के मैं बिल्कुल सही निकला, आज ऑरेंज शर्ट डे भले ही, लेकिन ऑरेंज शर्ट ना तो मैंने कतर में किसी को पहने हुए देखी है और ना मुझे उम्मीद है कि किसी ने पहनी होगी, हालांकि एक फोटो मेरे पास आया, रुको उम्मीद है मुझे, अरे अरे सही में, ए भाई अरे क्या बात है भाई, ऑरेंज शर्ट पहनी हुई है एक भाई ने यार, मुझे मिल गए फाइनली। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहां से खजाना, मोहम्मद इमरान भाई ने एक्चुअली में ऑरेंज शर्ट पहनी है भाई, क्या बात है इमरान भाई, पूरे कतर में सिर्फ आप ही को आज ऑरेंज शर्ट डे मुबारक कह रहे हैं भाई, ब्लॉग मत करना भाई, हैंडसम लग रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो यार मेरा भाई, पर यार इमरान भाई आप अकेले निकले ये तो मानना पड़ेगा। रियर केस है भाई, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस, कह रहे एआई नहीं, अरे नहीं है एआई भाई, इतना तो भरोसा मुझे, अरे नहीं है, लोग हर किसी बात पे शक करके एआई है, अरे नहीं है यार भाई ने जेन्युइनली भेजी यार, पता लगता है, इतना तो मैं भी पकड़ लेता हूँ यार। दो गई। नहीं भाई इमरान भाई, इमरान भाई भरोसा है मुझे आप पे यार, कहने तो लोगों को, तो कहने वाली बात है इनकी भाई, मुझे भरोसा है, कह रहे एआई होगा जेन्युइनली, कोई यकीन ही नहीं कर रहा। मूविंग लाइक अ हनी।

और भाइयों हमारे साथ धोखा हुआ है, मैं आज के बाद जो है उस शख्स पे भरोसा कर लूंगा जिसने मेरे नाम की गुड़िया बनाई होगी, पर मैं इमरान हमें पे भरोसा नहीं करूंगा। मैंने भी खुद चेक किया, AI ही है ये आदमी। काली बुशर्ट या सफ़ेद बुशर्ट पहन के बैठ हो, इसने ऑरेंज कर दिया। इमरान भाई ब्लॉक तो नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा इस तपती धूप में कतर की सैंड ड्यून्स पे भाई। क्या है, मैं देखे मॉल में बहुत सारे लोग ऑरेंज या बिल्कुल और डिफरेंट कलर्स पहनते हुए। मैं बताऊं, मैंने एक इंसान को देखा था यहाँ पे, कहना पड़ रहा है मुझे स्पेशली इंसान, क्योंकि एक बंदा भाई इस गर्मी में, आई थिंक एक महीने पहले की बात है, और मैं शायद ग्रोसरी लेने के लिए गया था, मैंने देखा एक बंदा चटकदार पर्पल भाई, चटकदार पर्पल, मतलब उसका पर्पल कलर का जो कुर्ता था वो ऐसा चटकदार रंग था कि अगर आप पास से निकले तो उसके कुर्ते की रोशनी से आप ब्लाइंड हो जाएंगे भाई। ऐसा कुर्ता था वो, तो खुदा का वास्ता यार, ये कोई ज़बरदस्ती तो आपको कपड़े नहीं दिला रहा होगा, आई एम प्रिटी श्योर। ऐसे चमकीले कपड़े क्यों ले रहे हो यार, ये बताओ मुझे, हैं?

0: Wake up. Ey. Du hamala me kabir.
1: Yo.
0: Yehi kahunga. Subah subah. Wake up.
1: और मुझे एक मैसेज किया सलमान भाई ने, कह रहे हैं कि बताओ ये क्या कहते हैं, कहाँ गई आपकी ऑरेंज वाली चटाई? भाई मैंने वो फेंक दी भाई ज्यादा ट्रोल हो रहा था भाई मैंने फेंक दी, अब नहीं मेरे पास। एक मैसेज है, इन्होंने फोटो भेजा रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई क्या प्यारी फोटो है शकील भाई, भाई शकील। अच्छा अब जरा मैं कुछ रिकमेंडेशन दूंगा आपको, ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। पर मैं ऑरेंज की बात कर रहा था, सेल्फी नहीं मांग रहा था भाई मैं तो, पर अच्छी बात है सेल्फी दे दी आपने, प्यारे लग रहे हैं आप लोग। अच्छा तो रिकमेंडेशन, ओके रिकमेंडेशन टाइम। तो आज मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दूंगा, अगर ये मूवीज आपको मिल जाती हैं, वैसे भी दुनिया जुगाड़ पर कायम है तो आप ज़रूर देखिएगा। ये मूवीज ऐसी हैं जो आपको शुरुआत में वियर्ड लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे मूवीज आगे बढ़ेंगी, मतलब मूवी का प्रोग्रेशन होगा, स्टोरी में आप और इन्वॉल्व होंगे, आप उठेंगे आखिर में बोलेंगे वाओ क्या मूवी देखी है। तो रिकमेंडेशन लिस्ट पे सबसे पहले मैं बात करूंगा एक मूवी की जो 2013 में रिलीज हुई थी, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी है। मूवी का नाम है द डबल, सुना है कभी इस मूवी के बारे में? नहीं सुना। ये द डबल जब आई थी ना तो इस मूवी के बारे में बातचीत चल रही थी, लोगों ने बहुत कोशिश करी इसकी सस्ती कॉपीज बनाने की लेकिन बना नहीं पाए। तो उसमें होता है एक बंदा होता है बहुत ही चुपचाप, वो एक ऑफिस में काम करता है और फिर वो अपने एग्जैक्ट डबल से मिलता है बिल्कुल हूबहू, एंड वो सोचता है कि लोग जो हैं बाकी नोटिस कर रहे होंगे कि मेरा एक बॉडी डबल है यहाँ पे, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहानी बहुत वियर्ड होती चली जाती है, इट्स नॉट हॉरर डोंट वरी, मैं आप सिर्फ हॉरर नहीं बताता हूँ, ये बहुत कमाल की स्टोरी। सो अगर आपने मूवी नहीं देखी है वॉच इट, मूवी का नाम है द डबल, 2013 में ही आई थी, बहुत बहुत कमाल की मूवी है। ओके अनदर वन, एक और रिकमेंडेशन देता हूँ आपको। अगली मूवी इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, इसका नाम है बीइंग जॉन मैलकोविच, सुना है इस मूवी का नाम? 1999 में आई थी और हमारे जो केबल वाला था वो लगाता रहता था ये, तो मैंने उस चक्कर में देख ली थी, बट आई लव्ड इट। मूवी का नाम है बीइंग जॉन मैलकोविच, VICH आखिर में मैलकोविच के। इसकी कहानी ऐसी कि एक बंदा जो होता है वो डिस्कवर करता है एक दरवाज़ा जो कि वो जॉन मैलकोविच के भेजे के अंदर खुलता है। हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, ऐसी है मूवी। और अंदर जब वो भेजे के अंदर घुसता है तो लोग बाहर खड़े होके टिकट बेच रहे होते हैं माइंड में एंटर करने के लिए। ये जितना आपको वियर्ड लग रहा है सुनने में, ये मूवी उतनी ही वियर्ड और कमाल की है। तो बीइंग जॉन मैलकोविच, ये 1999 में आई थी, बहुत यूनिक मूवी है। इफ़ यू रियली वांट टू विटनेस अ सिनेमा जहाँ पे आपको लगे अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये किसने सोचा होगा, तो ये मूवी आप ज़रूर ज़रूर देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। और एक लास्ट मूवी रिकमेंडेशन देता हूं आपको, इस मूवी का नाम है बॉदरसम मैन, नाम सुना है कभी आपने? ये मूवी बहुत बढ़िया है, आई थिंक ये बन रही है अभी, इसका बॉलीवुड वाले भी ट्राई कर रहे हैं इसे बनाने का, पता नहीं कब तक आएगी, वो न्यूज में आया था। पर नाम है द बॉदरसम मैन, BOTHERSOME, बॉदरसम मैन। इस कहानी का प्लॉट बताता हूँ, प्लॉट बड़ा शानदार है। तो एक आदमी है वो एक ऐसे शहर में पहुंच जाता है जहां पर सबके सब खुश नजर आ रहे हैं उसको, सारे के सारे खुश है भाई, कोती जश्न मना रहे हैं, सब काम पे जा रहे हैं, मगर फिर भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है गुरु यार, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा है कि गड़बड़ ही गड़बड़ नजर आ रही है। तो वो जो गड़बड़ है वो मूवी का प्लॉट है। इट्स अ क्रेजी राइड। ये कुछ मूवीज हैं जो मैंने आपको रिकमेंड करी है, देखिएगा एंड आप सच में बोलेंगे यार कबीर भाई रिकमेंडेशन तो बढ़िया दिया आपने। तो यदि मेरी रिकमेंडेशन, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से, आपके पास कुछ रिकमेंडेशन हो तो आप भी दे सकते हैं 666-22107 पे, 666-22107 पे, और ट्रैफिक का हाल भी ज़रूर ज़रूर बताएगा, एंड आई विल बी वेटिंग। Alright, म्यूजिक चलेगा गिप्पी ग्रेवाल, मैं बोहेमिया की एक्टिंग करने में जो बड़ा मजा आता है। सो नेक्स्ट ट्रैक इज बोहेमिया गिप्पी ग्रेवाल, गिप्पी ग्रेवाल आ जाओ जी, गाड़ी खड़ी तेरे बंगलो दे बार, चेक चेक 8:45 घड़ी के पार बोहेमिया गिप्पी ग्रेवाल, मैं क्या जी मैसेज करो मैनू 666-22107, छेती छेती करो मैसेज।

पंकज लोते पर पहले हम बोहिमिया बाजी की बहुत एक्टिंग किया करते थे. ये रिमेम्बर वो गाना आया था, वो गाली थे नाली खाली थे नाली गड्डी दशी से खाले मेरे पीछे पीछे पड़े 24 घंटे पुलिस आली. यार आई लव टू डू इट दिस गाइस मिमिक्री मैन, मजा आ जाता है. खैर अस्सलाम वालेकुम. एक भाई ने पूछा था कि कह रहे लास्ट मूवी का नाम बता दो ज़रा, तो मैंने लिख के दिया उनको. तो बॉदर सम मैन लिखते हैं, भाई इतना फास्ट तो मेरी वाइफ भी रिप्लाई नहीं करती.

0: घूम कर शेक अप आंखों में फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अप दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप.
2: अब लोग जो है मेरी ही फोटो पे ऑरेंज शर्ट लगा रहे हैं, चैन नहीं है ना, मतलब सुबह से मैं ही मिला हूँ. अली भाई ने भी मुझे ऑरेंज शर्ट बना दी, दो तीन और भाई ने ऑरेंज शर्ट बना. अरे भैया एआई से नहीं, ओरिजिनल कपड़ा बोले हैं हम भैया, क्या गलत हो रहे हैं. फरत भाई ने मैसेज किया है, आज तो बहुत जल्दी अपडेट हो गई स्टोरी भाई, आपका बहुत तेज है, बहुत तेज. शहजाद सलीम और क्या हाल है, कह रहे हैं मेरी डीपी ऑरेंज है. शहजादा सलीम ये टी शर्ट है, शर्ट बेटे मैं शर्ट की बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए. हाँ मेरे को ऐसे गुस्सा नहीं दिलाओ आप. एक इरफान भाई ने उन्होंने मैसेज किया, बहुत स्वीट है, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम इरफान है और ये पहली मरतबा उन्होंने मैसेज किया है, बिल्कुल नए नए आए और आज तक किसी को मैसेज नहीं किया. इरफान भाई वेलकम भाई, आई रियली होप कि आप ऐसी डेली मैसेज करें, डेली याद रखें भाई, बहुत बहुत सारा प्यार आपको. एंड आप भी कुछ कहना चाहें तो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. अभी लेटेस्ट अपडेट भी हमने उस पर किए, दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन की पूरी कवरेज भी आपको वहाँ मिल जाएगी. हमारी सफ़र बहन वहाँ पे गई थी तो आप वो भी कवरेज पूरी देख सकते हैं. एरिक मैसेज है, तिरछी नज़र से जो देख रहे हैं आप तो, तिरछी नज़र से जो देख रहे हैं आप तो, मैं ऐं समझा नहीं, मैं ये नहीं समझा मैं फरत भाई क्या कह गए, इतनी इतनी हार्ड बातें कर जाती है ना पब्लिक सुबह सुबह. अच्छा ठीक है, अभी तो मेरे हिसाब से क्या 51 हो चुके हैं. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, बहुत जल्दी आ गए आप, अभी तो उठे थे हम, बस अभी चाय गुनगुनी होने रखी है. चलिए आप लोगों से ज़्यादा चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. कल क्या है, कल वेंसडे है, कल क्या है, ट्यूजडे थर्सडे, मैं दिन को ही लेके कन्फ्यूज हो गया यार, एक सेकेंड लेट मी सी. हाँ यार कल तो थर्सडे, ठीक है देखो वीकेंड स्पेशल कहानी लेके आएंगे. बट 9 बजे सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन एंड फॉर नाउ दिस इज़ दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं. मा सलामा.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती, आपका

0: निशानदेही ज़रूरी है। उन्होंने वजारती इजलासों और वर्कशॉप्स के नतायज को वाज़ह अमली इक़दाम में तब्दील करने और मुकर्रा मुद्दत के मुताबिक उन पर अमल दरामद की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उर्दुन के वज़ीर ख़ारजा एमन सफदी ने लाइबेरिया की वज़ीर ख़ारजा सारा बेसोलो नेंटी से टेलीफोन के ज़रिए रबता कायम किया है। इस टेलीफोनिक रबते में दोनों अतराफ़ ने मुश्तरक सतह पर बैन अलाक़वामी तंजीमों के दायरे में ताउन को मजबूत बनाने के तरीक़ों से मुतालिक तबादला ख़याल किया। इसके अलावा इलाकाई कशीदगी ख़त्म करने और बैन अलाक़वामी अमन इस्तेहकाम के हुसूल के लिए जारी कोशिशों का भी जायज़ा लिया गया। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद से इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने टेलीफोन के ज़रिए रबता कायम किया है। इस रबते में ख़त्ते के ताज़ा तरीन हालात वाक़ा से मुतालिक तबादला ख़याल किया गया। दोनों अतराफ ने अहम आबी गुजरगाहों में आज़ादाना बहरी जहाज़रानी की सलामती यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों की अहमियत पर ज़ोर दिया। इस मौके पर सऊदी अरब और इटली के दरमियान मुश्तरक ताउन के ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में इन्हें मज़ीद तरक्की देने के वसाइल का भी जायज़ा लिया गया। मस्जिद अक्सा के खतीब शेख इकरमा सबरी ने यहूदी त्योहारों के दौरान मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों के बढ़ते हुए दाखिलों पर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बाज़ महदूद सरगर्मियों को मुस्तकिल अमल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है जिससे मस्जिद अक्सा की शनाख्त मुतासिर होने का ख़दशा है। उन्होंने ख़बरदार किया कि ये इकदाम मस्जिद अक्सा को ज़मानी व मकानी तकसीम की तरफ ले जा सकते हैं। गवर्नरी ने बताया कि रवा साल के आगाज से अगस्त के अख्तिताम तक 40,661 से जायद आबादकार मस्जिद अक्सा में दाखिल हो चुके हैं। गज़ा में काबिज़ इसराइली फ़ौज की फायरिंग और हमलों के नतीजे में गुज़िश्ता कल मज़ीद 3 फ़िलिस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद दीगर ज़ख्मी हो गए। जबालिया अलबलद के हलावा कैंप में इसराइली ड्रोन हमले के नतीजे में 2 फ़िलिस्तीनी शहीद और 7 दीगर ज़ख्मी हो गए जबकि मुआसी रफ़ह में एक खातून ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गईं। गज़ा शहर खान यूनुस और शिमाली गज़ा के मुख्तलिफ इलाक़ों को भी हमलों में निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता कल सुबह गज़ा शहर के अन्नसर महल्ले में एक रिहायशी अपार्टमेंट पर किए गए हमले के नतीजे में 2 फ़िलिस्तीनी शहीद हो गए जबकि दैर अलबलह में एक फ़िलिस्तीनी फायरिंग से शहीद कर दिया गया। गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक शुहदा की तादाद 74,023 और ज़ख्मियों की तादाद 1,75,111 हो गई है। समाइन खबरों की इस मरहले में अब आप समाप्त कीजिए बिजनेस हेडलाइंस।
1: बिजनेस न्यूज हेडलाइंस विद सरवर मिर्जा। विद सरवर मिर्जा।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कतर ने मेड इन जीसीसी 2026 फोरम में शिरकत की जहां जीसीसी ममालिक में इंडस्ट्रियल कॉपरेशन मसनूआत की तरक्की और तजारती रवाबित को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। कतर ने अरब सेंट्रल बैंक्स और मॉनेटरी अथॉरिटीज के गवर्नर्स काउंसिल के 50वें आम इजलास में हिस्सा लिया जहां मालियाती सियासतों और अरब ममालिक के दरमियान माशी तआवुन पर तबादला ख्याल किया गया। कतर ने काउंसिल ऑफ अरब फिनेंस मिनिस्टर्स के 17वें इजलास में शिरकत की। इजलास में इलाकाई माशी तरक्की और मालियाती इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर गौर खौज किया गया। कतर और तंजानिया ने डबल टैक्सेशन से बचाव के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तजारती रवाबित को फरोग देना है। AIIB के इजलास के हाशियों पर कतर और उज़्बेकिस्तान के जिम्मेदारान ने मजीद माशी तआवुन और मुश्तरका सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत की है। वज़ीर ख़ज़ाना अली बिन अहमद अल-क़ुआरी ने आर्मीनिया भारत और अज़रबैजान के अपने हम मनसबों से मुलाकात की। मुलाकातों में मालियाती और माशी तआवुन को मजबूत बनाने के तरीकों पर बातचीत की गई।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने के प्रोग्राम आज की दुआ में एक मतलब फिर आप सबका खैर मकदम है। हम रोजाना कुरान करीम और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से रहनुमाई लेते हैं। आज की दुआ है सूरह आले इमरान की, जहां अहले ईमान अल्लाह ताला से अपने वादों की तकमील और क़यामत के दिन इज्जत और रहमत के तलबगार हैं। अल्लाह ताला ने अहले ईमान की जबान से ये दुआ जिक्र फरमाई है। अरे हमारे परवरदिगार, हमें वो कुछ भी आता फरमाइए जिसका वादा आपने अपने पैगंबरों के जरिए हमसे किया है, और हमें क़यामत के दिन रुस्वा न कीजिए। यकीनन आप वादे की कभी खिलाफ वर्जी नहीं किया करते। समझने के लिए आज की दुआ हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के वादों पर यकीन रखना और उनके हुसूल के लिए दुआ करते रहना ईमान की निशानी है। असल कामयाबी यही है कि हम क़यामत के दिन इज्जत और रहमत के साथ उठाए जाएं। आइए हम सब आजिज़ी के साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बना वआतीना मा वअअतना अला रुसुलिक वला तुखज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुखलिफुल मीआद।
2: एक खास शो जहां बात होगी ख़ातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबीइंग की।
3: वेलनेस इज finding yourself, finding what brings you joy and what keeps you whole.
2: Ek aisa program jo sirf health related information hi nahi dega balki healthy lifestyle ko adopt karne ke liye motivate bhi karega. Har episode mein hamare sath honge doctors, discuss karenge un topics ko jo aapki zindagi ko positively transform kar sakte hain. तो दोस्तों, सुनना ना भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से डीसी।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से डीसी।
5: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
6: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। unki qurbaniyan sabr aur Allah par yaqeen hame sikhata hai ki mushkilein aati hain magar iman hamesha jeetta hai stories of prophets stories of prophets jisme aap sunenge nabiyon ki dilchasp kahaniyan unki mehnat unke imtihan aur unke paighamat jo dil ko chhu lete hain aap bhi is safar mein shamil ho aur in paak kahaniyon se apne dil ko roshan kare
2: suniye show RJ Mehvish Khan ke saath har budh dopahar 1 baje se only on FM 107 dil se desi Qatar ka pehla desi radio station FM 107 dil se desi

इनका असल नाम था मार्कोस एवांजेलिस्टेला डी मोरेस, लेकिन लोग इन्हें काफू से जानते हैं, ब्राजीलियन फुटबॉल के वन ऑफ द लेजेंड्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। जी हां, बात आज हम करेंगे काफू के बारे में, ब्राजील का एक्सप्रेस ट्रेन। काफू 7 जून 1970 को ब्राजील के साओ पाउलो में पैदा हुए। उनका फुटबॉल करियर साओ पाउलो FC से शुरू हुआ और बहुत जल्द ही उनकी स्पीड, स्टैमिना, अटैकिंग रन्स और डिफेंसिव एबिलिटी ने उन्हें ब्राजील के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। काफू की सबसे बड़ी खासियत उनकी इनक्रेडिबल फिटनेस थी। आज भी वो बड़े फिट देखते हैं, आज भी वो पूरे मैच में राइट फ्लैंक पर कंटिन्यूअसली अटैक भी करते हैं और डिफेंस में वापस भी आते हैं। इसी वजह से इटली में उन्हें एक्सप्रेस ट्रेन कहा जाता था। कहा गया है कि काफू को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। फीफा के मुताबिक उनकी एनर्जी और स्टैमिना उनकी पहचान बन चुकी थी। ब्राजील के लिए काफू ने 142 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जो ब्राजील मेंस नेशनल टीम के लिए एक रिकॉर्ड है। उन्होंने नेशनल टीम के लिए 5 गोल्स भी स्कोर किए। उनका इंटरनेशनल करियर 1990 से 2006 तक फैला रहा। लेकिन काफू का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड फीफा वर्ल्ड कप से मुतालिक है। वो फुटबॉल हिस्ट्री के वाहिद प्लेयर हैं जो 3

कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप फाइनल्स में खेले 1994, 1998 और सन 2002। 1994 में ब्राजील ने इटली को पेनल्टीज पर हराकर वर्ल्ड कप जीता। 1998 में ब्राजील फ्रांस के खिलाफ फाइनल हार गया था, जबकि 2002 में काफू ने ब्राजील की कप्तानी करते हुए जर्मनी को 2-0 से हराकर अपना दूसरा वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिफ्ट की। सो टोटल देखा जाए तो 4 वर्ल्ड कप्स 1994, 1998, 2002 और 2006 में ब्राजील को काफू ने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल्स में 20 मैचेस खेले, जो ब्राजील के लिए रिकॉर्ड है। अच्छा, वर्ल्ड कप का सक्सेस भी थोड़ा बता देता हूँ। 1994 काफू के लिए खास था, वो टूर्नामेंट में रेगुलर स्टार्टर नहीं थे, यानी प्लेइंग 11 में वो कभी भी इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन फाइनल में राइट बैक चोर्गिनो के इंजर्ड होने पर काफू फर्स्ट हाफ में सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे और ब्राजील के लिए इटली को पेनल्टीज में शिकस्त दी। 1998 में वो ब्राजील के स्टार्टिंग लाइनअप में थे और राइट बैक पोजीशन उनका पोजीशन बन गया था और टीम फाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल में जिदान के मैजिक के सामने ब्राजीलियन टीम लॉस्ट 3-0। 2002 में काफू का करियर अपने पीक पर रहा। ब्राजील ने रोनाल्डो, रिवाल्डो, रोनाल्डिनो और काफू जैसे बड़े स्टार्स के साथ टूर्नामेंट में फतेह हासिल की। फाइनल में जर्मनी को 2-0 से हराकर ब्राजील ने अपना 5वां वर्ल्ड कप टाइटल हासिल किया और काफू ने कप्तान के तौर पर ट्रॉफी उठाई। एंड दैट वाज अ मेमोरेबल पिक्चर, स्टिल आज भी फ्लैश होते रहता है, बिकॉज उस वर्ल्ड कप के बाद ब्राजील अभी तक कोई भी वर्ल्ड कप टाइटल नहीं जीत पाई है। अब क्लब करियर के बारे में बात करूं तो काफू ने साओ पाउलो एफसी के साथ अपने करियर का इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो गुजारा है। क्लब के लिए उन्होंने ब्राजीलियन चैंपियनशिप, कोपा लिबर्टाडोरेस, सुपर कोपा लिबर्टाडोरेस, रिकोपा सुदामेरिकाना और 2 इंटरकॉन्टिनेंटल कप्स जीते। साओ पाउलो के साथ उनके इंटरनेशनल सक्सेस जो है 1992 और 1993 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप विक्ट्रीज तक पहुंची। यूरोप में भी काफू काफी हिट हुए। रियल जारागोजा के साथ 1994, 1995 वीएफए कप विनर्स कप जीता। इसके बाद इटली में एएस रोमा का हिस्सा बने और सन 2000 से 2001 सीजन में सीरी ए टाइटल भी जीता। 2003 में काफू एसी मिलान में शामिल हुए। मिलान के साथ उन्होंने 2003-2004 सीजन में सीरी ए, 2006-2007 सीजन में वीएफए चैंपियंस लीग, UEFA सुपर कप और 2007 फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता। इस तरह काफू ने यूरोप के फुटबॉल में यानी क्लब फुटबॉल में भी अपनी लेगेसी एस्टैब्लिश की। दोस्तों, काफू का करियर सिर्फ ट्रॉफीज और स्टैटिस्टिक्स की वजह से रिमार्केबल नहीं था। उन्होंने मॉडर्न अटैकिंग फुलबैक का एक ब्लूप्रिंट दिया। स्पीड, स्टैमिना, डिफेंस, क्रॉसिंग और अटैक सब कुछ एक ही प्लेयर में, और यहीं से मॉडर्न फुटबॉल का जो अंदाज है कि डिफेंडर्स सिर्फ डिफेंड नहीं करेंगे, डिफेंडर्स को अटैक में भी जाना पड़ेगा। एंड आज के डेट में अगर आप लोगों ने फुटबॉल थोड़ा बहुत फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, आई मीन अगर वर्ल्ड कप की बात करूं या नो यूफा चैंपियंस लीग की बात करूं या एएफसी एशिया में भी अगर आप देखें, जो दो यू नो विंग प्लेयर्स हैं यानी जो राइट बैक और लेफ्ट बैक पोजिशन में जो खेलते हैं डिफेंस के जो फॉर्मेट में, उन दोनों खिलाड़ियों को कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन करना पड़ता है, बिकॉज इन द मॉडर्न फिलोसॉफी ऑफ फुटबॉल एवरी प्लेयर कैन अटैक। ये वो पुरानी बातें नहीं है आज से 60 साल 50 साल पहले, जब डिफेंडर सिर्फ अपने ही पोजीशन, अपने ही जोन पे खड़े रहते थे, कोई भी बॉल आते है तो उसको किक आउट करते थे। नो, आज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है एंड काफू इज वन ऑफ द आई वुड से या ट्रेंड सेटर फॉर दिस। और आज कोचेज अगर इस पॉलिसी को, इस टैक्टिक्स को फॉलो करते हैं तो उसमें काफू यू नो इज द रोल मॉडल। 142 ब्राजील कैप्स, 20 वर्ल्ड कप मैचेस, 4 वर्ल्ड कप्स, 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप फाइनल्स और 2 वर्ल्ड कप ट्रॉफीज। ये नंबर्स काफू को फुटबॉल की तारीख के सबसे यूनिक डिफेंडर्स में शामिल करते हैं। काफू ब्राजील का कप्तान, वर्ल्ड कप चैंपियन और फुटबॉल का असली एक्सप्रेस ट्रेन। तो दोस्तों, आपको आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा उम्मीद है, और अगली बार एक और लाजवाब स्पोर्ट्स लेजेंड और स्टार्स के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: ने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Doha wala Kabir FM 107 pe and welcome to another tech update. Aaj bhi mere paas kuch websites hain jo aapki boredom ko khalas khalli wali kar di aur kuch aisi websites hain jo aapki bahut kaam aa sakti. So ek ek karke jayenge kyunki hum mere paas time thoda kam hota hai. To usse pehle kaam ki baat kar lete hain. Tech update. To aaj jo hai website ka naam hai goblin.tools. goblin.tools ठीक है goblin.tools. इसमें जाने के बाद आप कोई भी इसे टास्क बता सकते हैं कि भाई मेरे को बर्थडे प्लान करनी है, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या क्या करना चाहिए. ये आपको आइडियाज देगा, आपको बताएगा सबसे पहले ये करो, यहाँ जाओ, ये यहाँ जाओ, वहां जाओ, और आप उसको एक तरीके से चेक मार्क करके चलेंगे तो आपको मदद मिलेगी. मैं जानता हूँ बहुत लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सब कुछ पता होता नहीं क्या क्या करना है, पर कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं भाई, मेरे जैसे लोगों के लिए ये जिनको स्टेप बाय स्टेप बताया जाए, स्पून फीड किया जाए तो ज्यादा अच्छे से याद रहता है. एंड डेफिनेटली ये काम आएगा टीनेजर्स के लिए भी, इफ दे वर प्लानिंग समथिंग, यू नो आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, इट विल जस्ट हेल्प यू टू जॉट डाउन योर मेमोरी के भाई ये कर लिया, ये रख लिया रख लिया. इट इज अ वेरी हेल्पफुल टूल इन अ वे उन लोगों के लिए जो शायद मेरी तरह भूलते होंगे. सो goblin.tools. और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि यही टास्क है, और भी बहुत सारे टास्क हैं, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है. आप यूजुअली और भी टास्क दे सकते हैं और ये और भी टास्क में आपकी मदद कर सकती है वेबसाइट. ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, ठंड रखो अभी से गुस्सा रहा है. ओके, अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं. ये वेबसाइट बहुत बहुत काम की है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, या फिर आप बड़े हो चुके हैं, जस्ट यू जस्ट वांट टू नो कि कौन सा ये क्या है. आप किसी को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं केमिस्ट्री ये तो नो बताएगी नहीं, मुश्किल काम है, पर केमिस्ट्री से जुड़ी वेबसाइट है तो बच्चों की बहुत काम आएगी. इसका नाम है zperiod.app, यानी कि ऐप. तो जेड लाइक द अल्फाबेट जेड और पीरियड period.app. इस वेबसाइट पर जाके हर एलिमेंट की आपको जानकारी मिलेगी. फॉर एग्जांपल मुझे जानना है कि भाई आयरन के बारे में मुझे जानना है, तो आयरन के बारे में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी. उसका पूरा प्रोजेक्शन आपको दिखेगा, पूरे मोशन के साथ, एनिमेशन के साथ, फिर एक एक उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी क्या क्या खासियत है, सब आपको पता लग जाएगा. बहुत बहुत काम की चीज है, स्पेशली उन टीनेजर्स के लिए या बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री जिन्हें जिन्हें अच्छी लगती है. ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छी लगी यार, मुझे एलिमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं थी, बट मुझे अच्छा लगा कि मुझे भी थोड़ा सा जागरूक रख रही है वेबसाइट, ये थोड़ा अवेयर हूं इन चीजों से. ऑलराइट, नाउ वेबसाइट नंबर 3. तीसरी वेबसाइट है channelsurf.tv. चैनल channel सर्फर surfer.tv. सर्वर मत टाइप कर दीजिएगा, वो हमारे वाले नहीं, सर्फर, ठीक है. चैनल सर्फर डॉट टीवी, इस पर जाएंगे तो आपको यूट्यूब मिलेगा, लेकिन पता किस तरीके से, पुराने केबल जैसे केबल टीवी आते थे उस जमाने के स्टाइल में आप यूट्यूब देख सकते हैं. आपको सब बताएगा, अभी आप ये देख रहे हैं, आने वाला सेक्शन ये है, आने वाला सेक्शन ये है. भाई बहुत कमाल की चीज है, और सबसे खास बात बताऊं, कोई एडवर्ड्स नहीं है, कमाल है, बिल्कुल पुराने केबल टीवी के स्टाइल में यूट्यूब देख सकते हैं आप, और प्लस कोई एड्स भी नहीं है. मैं बता रहा हूँ इस वेबसाइट का तो मैं फैन हो गया, जाके देखिए, यू विल डेफिनेटली लव इट. और ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स. अब जरा बढ़ता हूँ मैं एक बहुत ही खास खबर की तरफ. और तो खबर जो है वो गूगल पिक्सल 11 प्रो एक्सएल के बारे में है. देखो लार्जेस्ट फोन की कैटेगरी में ये आ चुका है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि क्वालिटी स्क्रीन है यार. देखो लोग अभी ना दीवाने हो चुके हैं, आईफोन आ गया, आईफोन चाहिए, सैमसंग ने लॉन्च कर दिया, सैमसंग चाहिए, पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है, जबकि ध्यान देने की जरूरत है. जो न्यू मॉडल है वो 6 ग्राम लाइटर है, पिछले वाले से 0.1 mm स्मॉलर है. हर डायमेंशन के लिहाज से लास्ट ईयर के पिक्सल 10 प्रो के लिहाज से बहुत बढ़िया बनाया है भाई. तो अगर आप गूगल पिक्सल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि गूगल का तो फोन है क्या, बहुत बढ़िया है. इट रन्स एंड्रॉइड 17 एज इट्स स्मॉलर सिबलिंग, और साथ साथ जो अपडेट मिला है सपोर्ट का वो बहुत बढ़िया है. और अपडेट बता कब तक की है, अगस्त 2033 तक भाई, और कितनी सपोर्ट चाहिए. और साथ में 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है गूगल AI प्रो सब्सक्रिप्शन, और साथ में एक्सेस टू वीडियो जनरेटर, वो भी जेमिनी ओमनी, और हायर AI यूसेज लिमिट्स मिलती है, 5 TB ऑफ क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है, गूगल हेल्प प्रीमियम. भाई ऐसे अगर मैं बेच निकला, मैं बेच दूंगा गूगल पिक्सल आपको. तो अंडरस्टैंड गूगल पिक्सल की भी मार्केट उस तरफ जाके तो देखिए, झांकिए तो सही। हाँ, ये थी अपडेट्स, मिलते हैं अगली वाली में, स्टे ट्यून्ड।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
4: दिल से देसी
5: स्कैम अलर्ट।
6: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर दिन आपको एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में इत्तला करता हूं और आपको आगाह करता हूं कि कैसे आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। दोस्तों आज जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है और कुछ ऐसी फीमेल्स के लिए भी है जो गेमिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। वेल, वीडियो गेम बाइंग स्कैम, ये क्या स्कैम है? दोस्तों आजकल गेमर्स को नुकसान पहुंचाने का एक नया और बहुत चालाक तरीका है, जहां फ्रॉडस्टर्स गेमिंग कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। ये स्कैमर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अनऑफिशियल मार्केट प्लेस पर रेयर लिमिटेड एडिशन कंसोल, एक्सपेंसिव इन गेम कॉस्मेटिक्स और बहुत सस्ती डिजिटल गेम कीज के झूठे एड्स जो है वो लगाते हैं। कई बार आपके पास अगर कोई गेम नहीं है मार्केट में, आपको बहुत महंगा, या जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको बहुत ज्यादा महंगा गेम मिल रहा है, तो करते हैं ये लोग ऐसा है कि आपको एक कीज दे देते हैं या फिर एक URL देते हैं और कहते हैं कि अगर आपको गेम खरीदना है तो आप हमसे ये फला गेम खरीद लें जो कि ऑफिशियल 500 रियाल का है, 1000 रियाल का है, 300 रियाल का है, लेकिन हमारे पास ये सिर्फ 50, 60 या 100 रियाल का है। तो ऐसे में आप फंस जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये सस्ता गेम है, जल्दी से इसे खरीद लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन ये आपके साथ स्कैम हो सकता है। जब आप उसे डाउनलोड करते हैं तब जाके आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ स्कैम हुआ है। गेमर्स को लालच देने के बाद वो उनसे स्ट्रिक्टली डिमांड भी करते हैं पैसे सिर्फ नॉन रिफंडेबल पीयर टू पीयर पेमेंट एप्स के जरिए ही भेजे जाएं। इसलिए वो आपको प्रेशर डालते हैं और वादा भी करते हैं कि पेमेंट मिलते ही रिडेम्पशन कोड्स इंस्टेंट डिलीवर कर दिया जाएगा, मगर पैसे मिलने के बाद स्कैमर्स या तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं या फिर फेक, डुप्लीकेट या चोरी किए गए कोड्स भेज देते हैं और तब तक आपको चपत लग चुकी होती है। इसका नतीजा ये होता है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म उस बायर के अकाउंट को इमीडिएटली और परमानेंट बैन कर देता है, जिससे गेमर की पूरी डिजिटल गेम लाइब्रेरी और सालों की मेहनत हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने के कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, उन पर नजर अगर डालें तो सबसे पहली जो चीज है वो आपको यही करनी है कि हमेशा ऑफिशियल स्टोर्स का इस्तेमाल करें। देखिए इसके दो रीजन है, पहला स्कैम से बचने के लिए और दूसरा क्राइम से भी बचने के लिए। अगर आप इस तरह से कहीं से सस्ता गेम खरीद लेते हैं और वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है तो ये एक्चुअली में एक क्राइम है, और अगर आप क्राइम करते हैं तो इसकी सजा होती है कई बार फाइन और कई बार जेल भी होती है। रिपीटेड वायलेशन अगर आप करेंगे तो आपको जेल भी होगी। हमेशा किसी भी गेम की या कॉस्मेटिक आइटम को सिर्फ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही खरीदें, अनऑफिशियल या सस्ती थर्ड पार्टी वेबसाइट पर भरोसा बिल्कुल ना करें, पीयर टू पीयर एप्स से पेमेंट ना करें। अगर कोई सेलर आपसे सिर्फ नॉन रिफंडेबल पेमेंट एप्स, ऐसे बहुत से हैं, क्रिप्टो करेंसी वगैरह है या फिर गिफ्ट कार्ड्स है, वाउचर है, उनके जरिए पैसे मांग रहा है तो समझ जाए ये एक स्कैम है। हमेशा उन मेथड से पे करें जहां बायर प्रोटेक्शन और रिफंड का ऑप्शन मौजूद हो, और साथ ही साथ कई बार आपको ये डायरेक्ट बताते हैं कि रिफंड आसानी से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, आप बस पेमेंट करें, अगर आपको गेम पसंद नहीं आया तो आपको पेमेंट वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें रिफंड का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। उसके अलावा हमने हमेशा इस बारे में बात करी है विच इज टू गुड टू बी ट्रू डील्स। इन डील से बचे, अगर कोई बहुत ही महंगी या रेयर चीज आपको एकदम सस्ती मिल रही है, आसानी से मिल रही है, इसकी कीमत बिल्कुल मार्केट वैल्यू से कम है, तो लालच में ना आए। स्कैमर्स हमेशा गेमर्स की जल्दबाजी और लालच का फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं, और ये तरीके अपना के हमेशा आप अपने पैसे को आप अपने अकाउंट को बचा सकते हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। जैसे आज हमने वीडियो गेम के बारे में बात करी है दोस्तों, कल हम बात करने वाले हैं एक फेस्टिवल स्कैम के बारे में। क्या है वो फेस्टिवल स्कैम, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और मुलाकात होगी कल इस पर बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
5: स्कैम अलर्ट।
7: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
8: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
7: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
9: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
10: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
11: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया। और आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं सैंडविच जनरेशन की। आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म सुनने को मिलती है सैंडविच जनरेशन, और ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो एक ही वक्त में अपने बच्चों और अपने एजिंग पेरेंट्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और वो बीच में सैंडविच की तरह फंस जाते हैं। जी हाँ, इन इस जनरेशन को सबसे ज्यादा जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। एक तरफ उनके बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ है, फ्यूचर है, वहीं दूसरे तरफ पेरेंट्स की केयर है, मेडिकल नीड्स है और शायद इमोशनल सपोर्ट भी है। देखिए आज के जमाने में ये सिचुएशन बहुत कॉमन है, लोग ज्यादा लंबी जिंदगी जी रहे हैं और साथ ही बच्चों की एजुकेशन लिविंग एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। नतीजा ये है कि मिडिल एज अडल्ट को दोनों जनरेशन की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं और शायद इसी जिम्मेदारी के चलते उनका फाइनेंशियल स्टेटस डगमगाने लगता है। हर महीने बच्चों की फीस है, ट्यूशन है, घर के एक्सपेंसेस है, साथ ही अगर पेरेंट्स रिटायर कर गए हैं तो उनके हेल्थ इश्यूज हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, ये सारी जिम्मेदारियां, यानी एक ही वक्त में बच्चों के प्रोवाइडर और पेरेंट्स के केयर गिवर। ये है सैंडविच जनरेशन की असल तस्वीर। और इस सिचुएशन का सबसे बड़ा चैलेंज है फाइनेंशियल प्रेशर। एक तरफ बच्चों का फ्यूचर, उनकी प्लानिंग, दूसरी तरफ पेरेंट्स की मेडिसिन, हॉस्पिटल विजिट्स और उनकी डेली नीड्स। कई दफा इंसान की इनकम अच्छी होती है लेकिन फिर भी सेविंग्स नहीं हो पाती। हर महीने पैसे आते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में खर्च हो जाते हैं और शायद इसी वजह से लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस फील करते हैं। अब देखिए फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो प्रेशर नहीं, एक इमोशनल प्रेशर भी है। पेरेंट्स को वक्त देना, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, उनकी इमोशनल नीड्स को समझना और साथ ही बच्चों की सारी नीड्स पूरी करना बहुत ही चैलेंजिंग। कई लोगों को लगता है कि वो हर काम आसानी से कर नहीं सकते और शायद हर काम के लिए पैसे चाहिए, जबकि मैं कहूंगी हर काम के लिए मैनेजमेंट चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। दिन के 24 घंटे के लिए सबसे ज्यादा 24 घंटे को डिवाइड करना आपका सबसे बड़ा और टीडियस टास्क है। सैंडविच जनरेशन के लोग अक्सर जॉब, फैमिली और केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दरमियान बैलेंस बनाने की कोशिश करते रह जाते हैं और कई दफा ये बैलेंस क्रिएट ही नहीं हो पाता। इस सिचुएशन में हमें और आपको फाइनेंशियली खुद को सिक्योर और स्टेबल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सैंडविच जनरेशन के लोगों को अपने वेलबींग का भी ख्याल रखना चाहिए। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उठाने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही क्यों ना हो। अगर पेरेंट्स से रिलेटेड है और आपके भाई बहन हैं तो सब सिबलिंग साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं, वहीं आपकी लाइफ पार्टनर भी आपकी मदद कर सकती है। ये ना सोच हो कि आपके पेरेंट्स हैं मैं क्यों खर्च करूं, नहीं, आप भी उनके पेरेंट्स के लिए खर्च करें जिससे वो भी आपके पेरेंट्स पे खर्च कर सके। बजटिंग, इमरजेंसी फंड्स और क्लियर कम्युनिकेशन फैमिली को स्ट्रेस से निकालता है। सैंडविच जनरेशन के लोग फैमिली की बैकबोन होते हैं, वो दो जनरेशन के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं। ये रोल आसान नहीं होता।

थी कि हर चीज की प्लानिंग और ये प्लानिंग आप अकेले ना करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के करें सिबलिंग्स के साथ बैठ के करें हर चीज के लिए जो है बजट एलोकेट कीजिए और अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर आएंगे भले से आप सैंडविच जनरेशन ही क्यों ना हो सब आपको अहमियत भी देंगे आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर हेल्दी हैं तभी आप एक हेल्दी फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे अभी के लिए मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक

0: मुझे मेरा ये ख्याल है कि फिर वो बस एक चल रही है जिंदगी
1: रोबोट की तरह जैसे आप कहना वो रोबोट की तरह देयर इज नो नो इन इट
0: हां मतलब मुझे इंसान जो है ना वो थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है कि वो फ्लेक्सिबल होता है वो सही है वो अपनी रूटीन कायम करने की कोशिश करता है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बंदे का दिल चाहता है भाई अभी नहीं 15 दिन के बाद कह रही हूँ 15 मिनट के बाद उठ जाऊँ मतलब ये यहाँ पर डिसिप्लिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है लेकिन ये इंसानी नेचर है कि वो थोड़ा उसको मजा आता है कि नहीं यार
1: मुझे
0: 15 मिनट
1: वाली मिसाल याद आती है कि वो मोटिवेशन को अगर इन शॉर्ट बोला जाए ना तो वो माचिस की तीली होती है ना पुश करके जलती है
0: हाँ.
1: अब फिर थोड़ी देर बाद मध्यम पड़ जाती है बुझ जाती है लेकिन डिसिप्लिन जो होता है ना और दोनों में से कोई भी चीज गलत नहीं है डिसिप्लिन जो होता है ना डिसिप्लिन मुझे लगता है वो चलो वो किसी अच्छे ब्रांड वाली बैटरी की तरह होता है थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है ना चल जाता है माचिस की तरह तो नहीं होता एटलीस्ट कि आपका टॉर्च जो है ना वो ज्यादा देर तक चल जाता है जब तक है जहाँ
0: अच्छा पता क्या वो जैसे अभी तुम बात कर रही थी कि मैं तुमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो कि तजाद है उनकी लाइफ में एक तरफ कुछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ कर रहे हैं तो वो उनका डिसिप्लिन है वो मोटिवेशन नहीं है
1: वो बाकायदा देखने में यहाँ पर क्योंकि मेरी पैदाइश यहीं की है मेरा
0: अनफॉर्चुनेटली सफा अनफॉर्चुनेटली हमारी अगर इस वक्त हम मुस्लिम मेजोरिटी की बात करें तो हम यही कर रहे हैं या तो हम एक एक्सट्रीम पे होते हैं कि हम बिल्कुल ही किसी से ताल्लुक नहीं रखते किसी चीज से ना हम कहते हैं छोड़ो यार मतलब ठीक है देखा जाएगा हम अच्छे तो है ना हम दिल के अच्छे हैं ये वो या फिर हम दूसरे एक्सट्रीम पे होते हैं और उसमें हम डिसिप्लिन चल रहा होता है लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है उसके पीछे मोटिवेशन क्या होती है कि आप जो काम कर रहे हैं ना फिर आप उसको समझो कि आप कर क्यों रहे हो आपकी मतलब आपको पता होना चाहिए आपका मकसद क्लियर होना चाहिए ये नहीं कि ये तो मतलब आपने खाना भी खाया है तो ये सब कुछ चल रहा है ना लेकिन वो चीज आप परफॉर्म क्यों कर रहे हो उसके पीछे वो कहते हैं ना हम रमजान में जब अक्सर बात कर रहे होते हैं तो वो होता है कि अमाल का दारो मदार नियतों के ऊपर है तो आपकी नियत एक तरह से मेरे लिए मोटिवेशन है और वो मोटिवेशन अगर आपने उसमें से माइनस कर दी तो फिर रहेगा तो सब कुछ लेकिन वो मोटिवेशन नहीं होगी
1: अगर बेसिक नहीं होगा अगर इसे और नैरो डाउन करें ना और इसकी एक एग्जांपल दें कि मोटिवेशन ज्यादा जरूरी होती है या डिसिप्लिन जिंदगी में क्या जरूरी होता है तो मैंने लोग ऐसे भी देखे मामिश फॉर एग्जांपल अगर हम ऑफिस के बारे में बात करते हैं ठीक है अब तो नहीं अब तो लोग यूं स्विच करते हैं विद इन ईयर्स आपने 2 साल किसी सीट पे गुजार लिए तो लोग कहते हैं भाई 2 साल गुजार लिए डाडी थी अदा ये तो डाडी थी है ये इसने बड़ा काम कर लिया है 2 साल 3 साल गुजार लिए एक दौर खास तौर पे जो हमारे अम्मा अब्बा वाला दौर था या कुछ ऐसा दौर था उसके अंदर लोग 20-20, 25-25, 30-30 साल एक पोजिशन पे गुजार देते थे और उनका मोटिवेशन यही होता था कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो बेशक उनकी नहीं है दे डोंट ओन इट लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी को हाइप पे पहुंचाना है और उनका मोटिवेशन इससे भी नहीं होता था कि उन्हें पैसा ज्यादा मिलेगा या कुछ और मैंने कहा इससे ज्यादा जीएम की पोस्ट से ऊपर और क्या ही जाओगे भाई इससे मतलब आप कंपनी स्विच कर जाओ ना आप कुछ और आपको कहीं अच्छी तनख्वाह मिल रही है जीएम की पोस्ट तक आप फॉर एग्जाम्पल पहुंच गए हो तो आपको उसी पोस्ट पर आपको आगे जो है वो कोई और कंपनी वो दे रही है या कोई किसी और कंट्री में आपको और डॉलरों में मिल रहे हैं तो आप वहां ना ना ना ना वहां नहीं जाना हमने हम यहीं पे इसी कुर्सी पे पैदा हुए हैं और इसी से उठकर वापस जाएंगे लोगों का ये होता है और वो पता है क्या कहते हैं मैंने अपनी अम्मा से एक दफा ये सवाल पूछा था मैंने कहा अम्मा क्यों इज इट द जॉब दैट यू लव एक तो उनको अपने काम से बहुत मोहब्बत बेइंतहा मोहब्बत लेकिन ये वाकई में सच बात है कि उन्हें इस जगह की दीवारों से प्यार है ये क्या थ्योरी है ये मुझे नहीं समझ में आती इट इज नॉट जस्ट मोटिवेशन शी हैज डिसिप्लिन्ड हर माइंड सेट लाइक दैट कि बस वो दीवारों से प्यार है उन्हें उनको पता है कि भाई 4 बजे मैं इधर होती थी फॉर एग्जाम्पल मैं 5 बजे फलानी जगह पे होती थी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो सीट है ये वाली ये थी मतलब उनका दिमाग उसी
0: पिछले जनरेशन में कुछ था ये मतलब ये वाला जो मामला है ना ये
1: they don't like change discipline exactly कहीं उनको change से अग्री नहीं करवाता
0: ये दिल लगा लेना हर चीज के साथ चाहे वो इंसान हो या फिर कुछ भी हो दिल लगा लेना
1: दिल तो हर जगह ही लग जाता है
0: हैं अच्छा मेरा तो भाई मेरा मामला में पॉइंट थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है मैं कहती हूँ आप दिल किसी चीज के साथ ना लगाओ
1: ये अब समझ आ गई है पहले कि अगर शोखी में बात की जाए तो लोग शोखी में कहते हैं ना
0: मैंने तो ये बात बहुत बचपन में समझ ली मैं अकलमंद बहुत हूँ ना दरअसल बचपन से बहुत
1: मुझे बहुत ठुड्डे लाते खाकर समझ में आई थी ये बात कि
0: नहीं मुझे तो आ गई थी
1: इंसानों से तो बिल्कुल जानवर से दिल लगा लेना
0: दोस्त थी हमारी नेबर तो वो रहती थी

0: करने का, डेली सुबह उठ के पढ़ने का, दिस कम अंडर डिसिप्लिन.
1: ओके,
0: सो मेरा ख्याल से डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट, मोर ओवर देन मोर मोटिवेशन.
2: मैं खुद भी यही कहती हूँ, डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी होता है. मोटिवेशन तो आती ही रहेगी, बर्गर शर्गर खा लेंगे, पिज्जा शिज्जा ठूस लेंगे.
0: सम पीपल डजंट लाइक मोटिवेशन, यू नो, आपको कोई बंदे को आप बोलेगा आप ये करो वो करो, मोटिवेट करेगा, कोई इरेस्पॉन्सिबल आंसर देता है आप क्यों मेरे को इतना
2: पंप कर रहे हो, वो लोग कहते हैं पंप कर रहे हैं, चने की झाड़ पे चढ़ा रहा है.
0: Yeah, so motivation, okay, but the discipline is no more important for my option.
1: Okay, चलें ठीक है दुबई, thank you, thank you.
0: Yeah, thank you.
1: बहुत बहुत शुक्रिया. तो भाई सब लोग जो है वो डिसिप्लिन की तरफ ही जा रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रही कि मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे मतलब लाइफ डल लगेगी यार. मैं डिसिप्लिन को मैं करती हूँ, जबकि तुम्हें पता है कि मैं करती हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, लेकिन उसमें मैंने अपना रखना है.
2: आप ये बात कर रहे हो कि दाल बनाइए, तड़का नहीं लगाया,
1: तड़का नहीं लगाया, मुझे वो तड़का चाहिए.
2: मेरा प्रॉब्लम पता है क्या हो गया है, उम्र के इस हिस्से में आकर मेरा प्रॉब्लम ये हो गया है कि इस मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं कोई अल्लाह माफ करे 60-70 की हो गई, लेकिन वो मतलब हाफ ऑफ द लाइफ ऑलरेडी 30 से 30+ 30+ हो जाए तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई कुछ चीजें कंसिस्टेंट जितना आप रखो ना उन्हें, आपकी लाइफ उतनी अच्छी हो जाती है.
1: कंसिस्टेंसी के लिए आप जो काम कर रहे हो ना वो आप कर रहे हो, वो आपने करना है,
2: वो तो डिसिप्लिन भी रखना है, ठीक है, वो डिसिप्लिन ही है तभी आप कर रहे हो.
1: थोड़ा सा ना वो वाला एक स्पार्क लेकर आ जाओ ना, तो उसमें चार चांद लग जाएंगे. हाँ, चार चांद लगा दो, मतलब
2: हर किसी जरूरत है, वो स्पार्क समझ में नहीं आता.
1: अगर आप जैसे आप नाश्ता करते हो, इनकेस आप रोजाना एक ही नाश्ता करते हो, जो मैं करती हूँ, लेकिन मैं हर रोज उसको इतना ही इंजॉय करती हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि वो डिसिप्लिन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा मजा है. मुझसे तो होता है. चलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू.
1: जी, कौन बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आसिफ अंसारी.
0: जी
1: आसिफ अंसारी, आप वो कैसे बन गए, आप नूर मोहम्मद मंसूर, वो भी ऐसे ही बोलते हैं बिल्कुल. कॉल करके अस्सलाम वालेकुम. जी खैरियत, हमेशा उनका यही डायलॉग होता है. उनके भाई वही तो नहीं आप?
0: नहीं नहीं, भाई भाई नहीं.
2: अच्छा, आपकी खैरियत वाला वर्ड सुन के ना मुझे ऐसा लगा, मुझे मेरे हस्बैंड की याद दिला दी. वो फोन करके अगले से पूछ रहे होते हैं, हाँ भाई और सुनाओ, अरे भाई फोन तुमने किया, हाँ खैरियत, अरे फोन मैंने थोड़ी किया, आपने किया, आप सुनाए ना खैरियत.
0: सामने वाले बंदे की खैरियत तो पूछनी चाहिए ना.
2: नहीं नहीं, बंदा पूछा हाँ भाई आप कैसे हो. अच्छा, वो पूछेंगे ऐसे कि
1: ऐसा लगा जैसे हमने आपको, हम आपसे पहले से कुछ बोल रहे थे और आपने कहा ओके भाई खैरियत, मतलब क्या हुआ, क्यों कॉल की?
0: एक्चुअली लखनऊ का जो है एक अदब है.
2: अच्छा हाँ, अच्छा का है,
1: तो भी लखनऊ से होंगे. आजकल बहुत दिनों से कॉल नहीं आ रही उनकी, मुझे अचानक से याद आ गई उनकी, आपकी कॉल पे.
0: तो ये हाँ, ये खैरियत पूछना जो है, सलाम करके
1: ऐसे ही मतलब जी खैरियत.
2: आपका खैरियत पूछना जरा वो सवालिया निशान, पता नहीं वो क्या था, वो ऐसा लग रहा था जैसे
1: ऐसे ही ऐसे ही
2: जैसे कंसर्न हो के आगे से कह रहे हैं कि हाँ भाई क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ.
0: स्टाइल हो जाता है ना लोगों का.
1: स्टाइल.
2: तो भाई आप बताएं, आप क्या मानते हैं कि ये मोटिवेशन जो है वो जरूरी होता है, या ये जो हमारा डिसिप्लिन लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है?
0: डिसिप्लिन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, रूल्स ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. आदमी को, हर बंदे को जिंदगी जीने के लिए एक रूल्स बनाने चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एक दायरा बनाना चाहिए हर चीज का. मोटिवेशन का क्या है, मोटिवेशन तो घर में किसी के भी साथ आप बैठ गए, कोई प्रॉब्लम हो गई तो एटलीस्ट कम से कम वो हमें सहारा दे सकता है,
2: या उनकी बातें
0: हमारे साथ में बात कर सकता है, फ्रेंड है, दोस्त है. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के पास गए, हमें कोई बीमारी, हम परहेज भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोटिवेशन अपने आप को दे रहे हैं, हाँ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, हमने दवा लेनी नहीं है, हमने कुछ करना नहीं है, लेकिन ठीक हो जाएगा, तो फायदा क्या उसका.
1: लेकिन ये मोटिवेशन के तहत भी तो दवा ले सकते हैं ना, कि नहीं मुझे ठीक होना है, मेरी जिंदगी बहुत जरूरी है.
0: आप डिसिप्लिन नहीं बनाओगे, नियम नहीं बनाओगे तो कैसे हो जाएगा. आप हर चीज का एक नियम बनाना जरूरी है ना बंदे को लाइफ में,
2: कंसिस्टेंट रहना. जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मिसाल के तौर पे एक बात बोली जाए, किसी को अल्लाह माफ करे, किसी को कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल डायग्नोस हो जाए, प्री डायबिटिक डायग्नोस हो जाए, अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी रूटीन फॉलो नहीं करेगा ना खाने पीने की, तो एक दिन खा पी कर या एक दिन नागा करके तो ये नहीं होगा ना कि भाई मैं प्री डायबिटिक नहीं रहा, या मैं जो हूँ ना वो कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा कम हो गया. वो आपको लाइफस्टाइल में लेकर आना पड़ेगा, और लाइफस्टाइल में लाने को डिसिप्लिन कहते हैं, वो आपकी आदत को डिसिप्लिन कहते हैं मेरे ख्याल से.
0: मैं अलखोर में था, एक कंपनी में जॉब करता

0: वहाँ पे एक साथ थे आजमगढ़ के हमारे रूम पार्टनर थे, काफी मतलब शुगर वगैरह थी, तो एक दिन हम लोगों ने खीर बनाई। हालांकि उन्हें मालूम है मुझे प्रॉब्लम है, तो हमने थोड़ी सी उन्हें दे दी। अब उन्हें बार बार बार बार उन्होंने इतनी खा ली कि दूसरे दिन उनको 450 शुगर हो।
1: अल्लाह खैर करे।
0: ठीक है, लेते हुए हैं तो डिसिप्लिन जब तक आप लाइफ में नहीं, हर चीज का एक खाने का भी एक नियम है कि इतना खाना है मुझे, उससे ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम
1: होगी।
0: जितना आपकी कैपेबिलिटी है उतना ही करो जो काम है, उससे ज्यादा आप करोगे उससे ज्यादा परेशान हो जाओगे।
1: सही,
0: डिसिप्लिन नहीं है परेशान हो जाओगे। एक के साथ में कई चीजों को
2: मजे की बात ये ओवर डिसिप्लिन्ड होना भी ना एक गले में फंदा बन जाता है। कुछ लोग इतने ओवर डिसिप्लिन्ड होते हैं कि मतलब वो कहते हैं
0: तो गलत हो जाता
2: है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं,
0: टॉक्सिक हो जाता है बंदा।
2: हाँ, वो ऐसा लगता है जैसे मेंटल कोई इशू है उनके साथ, बिल्कुल टाइम टेबल की तरह चलते हैं वो, अंदाज अपना अपना में जो है ना वो कैरेक्टर था ना उसका हो गया था, हाँ 8 बज गए मेरा चाय पीने का टाइम हो गया, तुम 15 मिनट लेट हो।
3: राजपाल यादव ऐसे कुछ नहीं, पता नहीं क्या नाम था, गोपाल।
0: वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए। मोटिवेशन के साथ कोई भी देता है फिर अपने आप को भी मोटिवेशन करते, तो मेरा लॉस हो गया, यहाँ अल्लाह का शुक्र है किसी तरीके से लॉस हुआ, अल्लाह ताला ने मुझसे ये छीना उससे बेहतर देगा आने वाले टाइम।
2: ये ओ भाई, ये जो तवक्कुल है ना, ये वाला जो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है ना कि अल्लाह ताला ये गया है तो इससे बेहतर चीज मुझे तू देगा, जाहिर बात है
3: तवक्कुल इस मोटिवेशन।
2: उफ, ये बड़ा शदीद किस्म की चीज है।
0: फिर अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क यहाँ लिखा हुआ था, मैं वापस आया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सारा सेट हो गया धीरे धीरे करके, बिजनेस भी आज चल रहा
2: है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अल्लाह को जो है आने वाले टाइम के लिए अल्लाह ताला ने मेरे लिए और रास्ते खोल दिए।
2: अरे भाई, इस बात को तो मैं भी बहुत बहुत ब्लाइंडली इस बात के यकीन करती हूँ कि जहाँ मैं, मेरा ये मानना है कि दो पहाड़ों के बीच में भी होगा तो आपको मिलेगा, तवक्कुल इसे कहते हैं, और वो मिलता है।
0: ये हो कि आज मेरा बिजनेस भी वहाँ चल रहा है, यहाँ से मैं उसको फॉलो अप भी करता हूँ और अपना जॉब भी कर रहा हूँ।
3: तो आसिफ भाई, आपको नहीं लगता कि तवक्कुल मोटिवेशन है? तवक्कुल क्या है?
0: बिल्कुल
3: है ना, तो ये मोटिवेशन है। अगर हमारा तवक्कुल है कि हर चीज हमें मिलनी है और सब कुछ, उसके तहत फिर हम अपने आप को डिजाइन करते हैं, हम उसके तहत जिंदगी गुजारते हैं।
2: नहीं ना, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग जो है ना वो फैक्ट्स को नजरअंदाज कर जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, अल्लाह ताला कहता है अपना ऊंट बांध के रखो ना।
3: अच्छा, मतलब ओके
2: कुछ और मतलब
3: लापरवाही और उसके साथ
2: मिक्सअप कर जाते हैं।
3: ओके सही सही सही। हाँ, तो उसके लिए तो डिसिप्लिन आपको चाहिए,
2: डिसिप्लिन लाजमी होता है फिर उसके लिए।
0: आप जो है लापरवाही करोगे और उसके बाद मोटिवेशन, तो वो गलत हो जाता है ना।
3: नहीं, दोनों चीजें मेरे हिसाब से ना साथ चलनी चाहिए।
2: हाँ, दोनों चीजें
3: साथ चीजें चलनी चाहिए, वो तो नहीं हो सकता ऐसे।
0: अगर कुछ लॉस होता है या कुछ भी होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: अल्लाह ताला कुछ ना कुछ
0: ज्यादा नहीं हुआ। आने वाले टाइम में उससे ज्यादा हो सकता था, अगर अल्लाह चाहता तो उससे भी ज्यादा हो सकता था, इतने पे उसने हमें एक आगाह कर दिया हमें इस चीज के लिए।
3: सही।
0: अब हम गलती पे गलती करते ना तो वो अलग बात है, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग
2: अच्छा
0: दिया।
2: गलती, मजे की बात ये, गलती के बारे में बोला जाता है बाय मिस्टेक हो गया ना, गलती एक दफा होती है, वो बार बार दोहराने वाली चीज नहीं होती। जैसे अगर अगर एक बात की जाए लॉजिकली, तो बल्ब बनाने में भी कितनी गलतियां लगी, 1000 से ज्यादा ऊपर लगी होंगी, लेकिन एक ही गलती बार बार रिपीट नहीं हुई ना। गलती का मतलब ये होता है कि एक दफा आप सीख लो।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: अपने स्टैट्स नाप लो। कुछ लोग क्या करते हैं,
3: ये वाली नहीं करनी,
2: जानबूझ करना एक ही चीज को रिपीटेडली, और फिर अल्लाह ताला उनको उसी सर्कल में घुमाता है जब तक वो अपना लेसन नहीं सीख जाते।
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी आसिफ भाई, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी। अच्छा, मुझे अंदाजा हो रहा है सारे के सारे आदमी ना डिसिप्लिन को बहुत ही मतलब कुछ थाम के चल रहे हैं, चकड़ के।
2: मैं एक बात बताऊं, मैं तभी कहती हूं कि आदमी, हमारे दीन में भी ये कहा गया है कि आदमी को सरबराह बनाया गया घर का, रीजन हाकिम। हाकिम का मतलब ये जो लीड करे, और लीडर विदाउट डिसिप्लिन के नॉट डू एनीथिंग।
3: एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा जी, रियाज भाई कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैम एंड सफा जी, मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन है। मोटिवेशन आपको नई शुरुआत प्रोवाइड करती है, जबकि डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाती है। दुनिया के जितने भी सेलिब्रिटीज और बड़े लोग हैं, उनकी जिंदगी हमको डिसिप्लिन दिखाती है। अगर विराट कोहली या रोनाल्डो अपना डिसिप्लिन छोड़ दें, खुद पर काम करना छोड़ दें, तो वो वैसे नहीं रहेंगे। मोटिवेशन स्टार्ट के लिए जरूरी है। एक बच्चा सुबह पेरेंट की मोटिवेशन से स्कूल तो जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन उसको बाकी सब कुछ सिखाता है। ओके जी, और इसके साथ ही मुबीन बुखारी ने हाथ जोड़ लिए और हंस भी रहे हैं साथ में। साथ ही साथ जी, डियर कैरन, अस्सलाम वालेकुम, बुध की सुबह मुबारक हो। आप दोनों को मेरा सलाम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। किस इसका मतलब ये खत किसी और को लिख रहे थे मुझे लग रहा है अरशद खान ये हमारे पास आ गया चलिए जी बाकी के मैसेजेस पढ़ते हैं लेकिन उससे पहले लेना एक छोटा सा ब्रेक

0: आप सुन रहे हैं यू मैटर
1: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
0: एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: राइट, तो छोटा सा ब्रेक लेके हम लोग आ गए हैं वापस और हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन और मोटिवेशन। और मुझे हैरत ये हो रही है कि सब लोग आज मेरे खिलाफ चल रहे हैं, मतलब कोई भी मेरे साथ नहीं है। खैर जी, तौफीक हैं, अस्सलाम वालेकुम, और कहते हैं मुझे और तुम्हें तौफीक अलवकरा से, और उसके साथ ही मुबीन बुखारी, नहीं सॉरी मोहम्मद यूसुफ कहते हैं मैं करता हूँ ये करेंसी नोट्स को सीधा ऑर्डर सिक्वेंस में रखना। सारे आदमी एक जैसे होते
3: हैं क्या?
2: मेरी आदत सी है पता नहीं क्यों, और वरना तो मुझे काउंट करना मुश्किल हो जाता है। और डिसिप्लिन ज़रूरी है जो हमें करना होता है। मोटिवेशन कोई भी दे के चला जाएगा, जैसे कि सफा जी ने कहा आई सेकंड हर। सारे लोग भाई आज सफा तुम्हारे
3: साथ। मुझे पता है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मोटिवेशन जो ना दूसरों से आती है। अगर मैं कहूँ ना कि मुझे मोटिवेशन नहीं फील होती तो शायद मेरे पास सर्कल ही नहीं है। द बिटर ट्रूथ इज I don't have that circle. जिसके पास दोस्त यार होते हैं, जिसके पास थोड़ी सी गैदरिंग होती है, कुछ होता है, तो वो इंसान मोटिवेटेड रहता है।
2: मैं अपने घर में वो बंदा हूँ, बंदी हूँ, एक ही बंदी हूँ अपने घर में जो कि मोटिवेशन देती रहती हूँ सबको। मुझे लगता है आदमियों में नहीं होती भाई।
3: मोटिवेशन देना है गाइस, मैंने कहा ना
2: आदमियों में, ना आदमियों में इस चीज का बहुत ही कोई फुकदान है। और मैं चूंकि तीन आदमियों के दरमियान रह रही हूँ, दोनों बेटे हैं मेरे और वो है मतलब हस्बैंड है, तो तीनों ही आदमी है, उनके दरमियान में मैं अगर माइनस हो जाऊँ ना तो किसी की जिंदगी में कोई मोटिवेशन ना रहे। ये एक फैक्ट है मतलब। और मुझे मतलब मेरा ये मामला है कि मैं वाकई नहीं रह सकती विदाउट मोटिवेशन। मेरी जिंदगी में अगर मोटिवेशन नहीं है, अगर ख्वाब नहीं है, तो मुझे ऐसी जिंदगी जिंदगी ही नहीं लगती।
3: मुझे मेरे अपने कुछ टाइम बता रही हूँ ना, कुछ टाइम पहले तक मेरा ये हाल था, लेकिन फिर मैंने हालात का कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप दूसरों को मोटिवेट करते करते ना खुद इतना थक जाते हो कि आप कहते हो भाई डिसिप्लिन में सही हूँ मैं, अब नहीं नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि मोटिवेशन के लिए ना आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है।
2: अच्छा चलें जी, अस्सलाम वालेकुम सफा जी, हम तो पिज्ज़ा खाते हैं टोस्ट नहीं। ये फ़र्क है मोटिवेशन और डिसिप्लिन। अब ये मुझे समझ में नहीं आई, शेख इरफान कासिम आप मतलब क्या किसको पकड़ना है?

0: अच्छा आ रही है, बात समझ में नहीं आ रही। हाँ पता अस्सलाम वालेकुम, मैं आप दोनों को सलाम पेश करता हूँ। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन इख्तियार करना चाहिए। कामयाबी के लिए नज़्म व ज़ब्त लाजमी है। और कबीर, अपने भाई कबीर आ गए हैं और कहते हैं, हाँ हाँ कबीर भाई, कबीर भाई जो हैं वो कहते हैं कि खुद से सच बोलने लगेंगे लोग तो सब आ जाएगा। और बात रही नोट्स की, तो वो मैं वॉलेट तक नहीं रखता मेरा तो। ये कबीर भाई तो मेरे भाई हो पक्के वाले।
1: मैं अरे भाई
0: कबीर मेरा भाई है।
1: मैं भी वॉलेट नहीं रखती
0: मैं भी कार्ड रखती हूँ।
1: मैं तो कार्ड भी नहीं रखती,
0: नहीं कार्ड तो
1: फोन पे रखती हूँ ना, फोन पर है ना वो टैब।
0: ओके एडवांस्ड बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हाल है मुदस्सिर भाई?
2: मैं
1: ठीक ठाक, आप सुनाए?
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: तो भाई मुदस्सिर बताएं, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है या डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है? वैसे बचपन से हमें स्कूल में डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है।
0: अच्छा कबीर से मैं पूछना चाहूंगी, कबीर सुन रहे हो तो बताओ डिसिप्लिन या मोटिवेशन?
1: कबीर डिसिप्लिन नहीं है। हाँ मुदस्सिर भाई अरे मुदस्सिर भाई रह गए। हाँ मुदस्सिर भाई आप यहीं पर हैं, हमें पता है। ये मावेश निकल जाती है कहीं ना कहीं। क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए,
0: नहीं डिसिप्लिन होना तो चाहिए भाई, मतलब होना तो चाहिए।
2: मेरा काम आज दिल नहीं था कि मैं काम के लिए जाऊं, डिसिप्लिन की वजह से काम पे निकले।
1: अब देखिए डिसिप्लिन आपको हरकत करवाता है, हरकत में बरकत है।
2: एनर्जी नहीं है, लो है बैटरी, लो है
1: बैटरी। किसकी, मेरी की आपकी या फोन की?
2: आप दोनों का लो हो गया ना, आप बहुत ज्यादा बात किया आज।
0: नहीं लेकिन हम तो लो नहीं फील कर रहे।
1: ये हाँ चार्जर अभी हाँ अभी मुंह में डालती हूँ मैं चार्जर करंट।
2: तो डिसिप्लिन भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए, ये दोनों जरूरी है। डिसिप्लिन तो लाजमी चाहिए, मैं डिसिप्लिन तो नहीं होगा तो वो काम भी नहीं चलता है ना।
1: हाँ ये बात है, डिसिप्लिन के बगैर काम चल नहीं सकता। और खास तौर पे जिंदगी गुजारने में डिसिप्लिन चाहिए भाई। अब झींगा लाला वो करते हुए जंगल में तो बैठ नहीं सकते।
2: जी जी, क्योंकि डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है कि मसलन तुम कितना काम करते हो आके तुम लाजिम जो उधर का रूल है जो डिसिप्लिन है वो तुम फॉलो करोगे। जो मसलन घर का जो है, घर का तो ऐसे ही नॉर्मल निजाम होता है, वो तो तुम्हारा दिल करता ही नहीं करता तुम तो वही करेगा, वो तो नॉर्मल है।
1: लेकिन अगर घर में भी डिसिप्लिन ना हो ना मेरे भाई तो घर उजाड़ हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: और ये तो मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, मैं मर्द हजरात को हैट्स ऑफ कहती हूँ इस बात के ऊपर कि मैंने बात नोट की है, मेरे अब्बा हो गए, मेरे हस्बैंड हो गए या बच्चे हो गए, इनकी ना अपनी एक डिसिप्लिन है इनका कि भाई हाँ इस बंदे ने इतने बजे खाना खाना है तो उसके लिए खाना बनता है। अगर वो ना हो ना उसकी लाइफ में डिसिप्लिन तो हम भी डिसिप्लिन से ना चलें। मैं कहती ना वो जो हाकिम बनाया गया ना मर्द हजरात को, वो एक लेवल पे एक चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है।
2: ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरा जो मर्द हजरात है ना वो पूरा ऐसा नहीं है।
1: हाँ ये
2: घर में दो मतदाते ऐसे होते हैं, जिस टाइम उसको खाना देता है, जिस टाइम तुम उसको चाय पिलाता है वो कुछ भी नहीं बोलता है। मैं अपना आपका बात करता हूँ, क्योंकि मैं खुद जब इधर से जाता हूँ तो मेरा डिसिप्लिन में इस टाइम खाना खाता हूँ, इस टाइम नाश्ता करता हूँ। जो मेरा बड़ा भाई है उसका कोई नहीं है, बस जिस टाइम उसको खाना खिलाना है क्या चाय पीना है क्या कुछ भी नहीं बोलता है।
1: उनका चेकअप कराया जाएगा,
0: सही हो गया।
2: जो नहीं उसका जो दिल है ना वो बड़ा है, वो बोलता है कि जो घर के हमारी खवातीन है ना वो हमारे लिए खाना पकाता है, कपड़े धोता है, घर साफ करता है, सबसे ज्यादा काम हमारी खवातीन करता है। तो हम लोग तो सिर्फ ये 12 घंटे 10 घंटा काम करते आ जाए आराम से घर में सो जाते हैं।
0: सही हो गया,
2: कोई काम नहीं होता है या दोस्तों के साथ चलता है तो जिसकी वजह से फिर वो कुछ नहीं बोलता है कि यार क्या, एक मैं हूँ और एक मेरा कजन है, मेरा कजन है। हम लोगों को टाइम पे नाश्ता, टाइम पे खाना, यानी सब कुछ ऐसा होना चाहिए। डिसिप्लिन घर में भी जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो जब डिसिप्लिन नहीं होते तो फिर वो बच्चे सीखते भी नहीं है।
0: सही हो गया भाई, चले मुदस्सिर भाई बिल्कुल एंड टाइम हो गया है तो हम आपसे इजाजत लेंगे। ठीक है, चलें बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जितने भाई बोल के गए ना, इनकी जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ये वॉशरूम से आके तौलिया बेड पे फेंकते हैं।

0: होंगे सारे के सारे, ये डिसिप्लिन है इनका, ये मैं कंफर्म बता रही हूँ आपको।
1: नहीं मुदस्सिर साहब ने एक बात बड़ी खूबसूरत बोली और ये बात सुनकर ना मुझे मुझे अपने घर की याद आ गई। मेरे मियाँ भी ऐसे बेचारे, कुछ भी कभी भी खिला दो खा लेंगे, जब उनको बताओगे ना उसकी तबीयत खराब है या शी इज ओवरलोडेड, नहीं करते।
0: चलो कबीर का मैसेज पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं आई थिंक द राइट अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन इज गुड बट ओवर डिसिप्लिनरी एक्शन स्किल्स योर मोटिवेशन, और जिसकी वजह से शायद कुछ शुरू किया होगा, इट्स लाइक F1 की रेस में कायदे से चलना सही है पर बीच में पिट स्पॉट इज ऑल्सो जरूरी। मोटिवेशन इज ऑल्सो सेल्फ अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा खुद से सच बोलने लगे लोग तो अपने आप मोटिवेटेड रहेंगे और बाकी डिसिप्लिन ढग मारने वाले विल फॉलो।
1: मुझे ना कबीर की बात सुन के ना सही वाला परेश रावल याद आ रहे हो, और नाज अपना अपना वाला, ओह 8 बज गए मेरी चाय का टाइम हो गया, 2 मिनट तुम लोग 2 मिनट ले।
0: मेरे हिसाब से तो कबीर जो है ना बंदा जो
1: डिसिप्लिन वाला नहीं है,
0: डिसिप्लिन वाला नहीं है, मोटिवेटेड
1: है, चिल बंदा है वो। और उसके साथ आप अगर बात भी करना है तो आपको तसल्ली इस बात की होती है, वो कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बैठकर आप आसमान की तरफ देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, बस वो
0: होना चाहिए। मतलब ये जो ये वाली जो चीज है ना, इस पार्क आपके अंदर जिंदा रहना चाहिए, ये आपको डिसिप्लिन भी देगा, सब कुछ देगा। जैसे कबीर का शो सभी बहुत पसंद करते हैं और उसके पीछे रीजन ये है कि वो बंदा ना मतलब डिसिप्लिन के साथ शो नहीं करता, वो दिल से शो करता है।
1: ये तो
0: ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उस चीज को डिसिप्लिन कर दो तो आओ शो करो निकल जाओ, लेकिन अगर आप दिल लगाओगे तो इट्स मीन के मोटिवेशन।
1: मुझे पहले दिन कबीर ने बात बोली थी, कबीर ने कहा था सफा जिस दिन ये हाथ फेडर पे कांपना बंद हो गए ना उस दिन समझ लिया डिसिप्लिन आ गया है, अब बोरिंग हो गई जिंदगी, अब ऑफिस छोड़ने का टाइम हो गया, ये नौकरी नौकरी नहीं करना,
0: नौकरी नहीं करना। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही, मतलब आपका पैशन जो है ना वो रहना चाहिए। आप पैशन रखो, आप अपने दिल से काम करो। कभी कभी ऐसा होता है हमें वो करना पड़ता है जो कि हम नहीं करना चाहते,
1: कबीर वाली बात है ना कि आप एक लेवल तक डिसिप्लिन फॉलो करो
0: तो वो हम करते हैं, लेकिन फिर भी दिल क्या चाहता है कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो,
1: तो उस दिल चाहता है ना उसके लिए ऑफ रोड होना पड़ता है,
0: उस दिल को मारना नहीं उस दिल को रखना है संभाल के,
1: ऑफ रोड होना पड़ता है, ऑफ रोड महंगा पड़ जाएगा।
0: चले रही तो हम इसके साथ ही लेंगे आपसे इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कल वीकेंड के शो पे,
1: सुनते रहे 107 दिल से देसी।

0: दिल को अल्लाह से काट रहा है, वो चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना दिखाई दे, मेरे लिए इसमें खैर नहीं। मजीद बसीरत का एक मैदान अपनी जात भी है, अपने आप को वैसा देखना जैसा मैं हकीकत में हूँ, न अपने नफ्स को इतना बड़ा बना दूं कि हर खूबी मुझे अपने अंदर नजर आए और हर खराबी दूसरों में नजर आए, और न अपने आप को इस कदर रोनता रहूं कि अल्लाह की अता करदा हर खूबी, हर सलाहियत और हर इम्कान का इनकार कर दूं। न खुद फरेबी न खुद अजियती, बल्कि अपने अंदर खैर है तो उसे अल्लाह की नेमत समझना, नुक्स है तो उसे तस्लीम करके इस्लाह करना, ये भी बसीरत है। और फिर हक का रास्ता यानी हिदायत का रास्ता हर वक्त फूलों से नहीं, आजमाइशों से गुजरता है। इसमें थकन हो सकती है, कुर्बानी है, आंसू हैं, मुखालफत और मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन साहिब बसीरत रास्ते की गर्द देखकर मंजिल का इनकार नहीं करता। दूसरी तरफ गुमराही का रास्ता बड़ा हमवार नजर आ रहा होता है, वहां फौरी फायदा मिल सकता है, तालियां बज सकती हैं, सहूलत हो सकती है, सवाल कम और ख्वाहिश की तस्कीन ज्यादा हो सकती है। मगर बसीरत कहती है रास्ते की आसानी उसके सही होने की दलील नहीं और हक की दुश्वारी उसके बातिल होने की दलील नहीं। यहीं शैतान की पूरी जंग शुरू हो जाती है। शैतान हमेशा हकीकत को खत्म नहीं कर सकता, इसलिए वो हकीकत की तस्वीर बदलने की कोशिश करता है। नेकी मौजूद है मगर उसे तुम्हारी निगाह में बोझ बना देगा, गुनाह मौजूद है मगर उस पर आराइश कर देगा, इताअत मौजूद है मगर उसे महरूमी की नजर में दिखाएगा। तो सामिन किराम, दुनिया फानी है, आखिरत यकीनी है, और इसको समझने के लिए कुरान की ज़रूरत है। कुरान सिर्फ अलमारी में मौजूद हो या सिर्फ ज़बान से पढ़ लिया जाए तो मकसद मुकम्मल नहीं होता, उसे तदब्बुर से पढ़ना, समझना, अहले इल्म की रहनुमाई में उसके मानी तक पहुँचना, बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक देना, तब आहिस्ता आहिस्ता दिल की आंख साफ होती है, फिर दुनिया वही रहती है मगर आपकी निगाह बदल जाती है। اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے اللہ ہمیں حق و حق ہی کی صورت میں دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل ہی کی صورت میں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، یہ دعا بھی کافی اہم ہے کہ مجھے حق پر چلا۔ ایک بات تو یہ ہے، ایک طرح کی دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ مجھے حق پر چلا، لیکن یہاں یہ بھی کہا گیا کہ مجھے حق کو حق دکھا دے، باطل کو باطل دکھا دے۔ क्योंकि अगर निगाह ही धोखा खा जाए तो कदम सही सिमत कैसे इख्तियार करेगा, और इसी तरह यानी बातिल को भी बातिल दिखा दे। चूंकि खतरनाक मरहला वो होता है जब गुनाह की कबाहत ही दिल से निकलने लगे। कल जिस बात पर दिल कांपता था आज वो मामूल लगने लगे, कल जिस मासियत पर नदामत होती थी आज उसके लिए दलीलें तलाश होने लगे। तो सामने कराम, इस दुआ की बहुत ही गहरे मानी है, हमें चाहिए कि हम इस दुआ को ज्यादा ज्यादा पढ़ें।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
0: तो सामने कराम, गुफ्तगू हो रही थी हमारे बसीरत के हवाले से। सलफ के उलमाए कराम ने, असलाफ ने इस बसीरत को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। इस सिलसिले में अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु के एक कौल ऐसा है जो इंसान के बातिनी सफ़र के लिए गोया एक पूरा नक्शा राह बन जाता है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बंदे की समझ और बसीरत में से है कि वो जानता हो कौन सी चीज़ उसके ईमान को बढ़ाती है और कौन सी घटाती है, वो इस वक्त ईमान में आगे बढ़ रहा है या पीछे हट रहा है, और शैतान उस पर किस रास्ते से हमला करता है। तो ये तीन जुमले हैं, मगर अगर इंसान उन्हें अपनी ज़िंदगी में वाकई समझ ले तो ये बसीरत नफ्स के तीन आयने बन जाते हैं। पहला आयना, मुझे क्या चीज़ बढ़ाती है और क्या चीज़ घटाती है। दूसरा, मैं मजमूई तौर पर बढ़ रहा हूँ या घट रहा हूँ। और तीसरा, शैतान मेरे पास आता कहाँ से। तो चलें पहले आयने को ज़रा करीब से देखते हैं। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मिन फिक्हिल अब्द यअलम मा ज़ाद मिन ईमानिही व मा नक़स मिन्हु। बंदे की बसीरत यह है कि वो जानता हो कौन सा अमल उसके ईमान में इजाफा करता है और कौन सा उसे कमजोर करता है। तो देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं कि नमाज ने की है, कुरान ने की है, वालिदैन की खिदमत ने की है, इल्म हासिल करना ने की है, ये सब अपनी जगह दुरुस्त है। अब सवाल एक और भी है, वो ये कि नेकियों में से कौन सी नेकी मेरे दिल पर सबसे ज्यादा असर डालती है, कौन सा अमल है जिसके बाद मेरा दिल अल्लाह के ज्यादा करीब महसूस करता है। कौन सी इबादत मेरे अंदर सबसे ज्यादा जिंदगी पैदा

करती है। इसी तरह मेरी जिंदगी में कौन सी बुराई मेरे ईमान को सबसे ज्यादा खोखला कर रही है। ठीक है, ये वाजह है कि हर गुनाह नुकसानदेह है, लेकिन इंसान को अपने नफ्स की साख भी पहचाननी चाहिए। हो सकता है किसी शख्स के लिए एक खास गुनाह वो दरवाजा हो जिससे दाखिल होने के बाद कई दूसरी कमजोरियां भी अंदर आ जाती हों। ये है अपने नफ्स का फिक्र, फिक्र नफ्स। हम उमूमन जानते हैं कि हलाल क्या है और हराम क्या है, मगर बसीरत का अगला दर्जा ये है कि इंसान ये भी पहचाने मेरे दिल की सेहत कहाँ बढ़ती है और कहाँ तेजी से गिरती है। सबने कराम, यही उसूल नेक अमाल के इंतखाब में बहुत अहम हो जाता है। हम में से हर शख्स रोजाना बहुत से खैर के काम करते हैं, कुरान की तिलावत, तहज्जुद, जिक्र, इल्म हासिल करना, वालिदैन की खिदमत, दावत और तालीम, रजा कराना खिदमत, तजवीद और किरात सीखना, किसी दीनी या तरबियती प्रोग्राम में शरीक होना, सब खैर हैं, अपनी जगह दुरुस्त हैं। मसला तब पैदा होता है जब खैर के काम आपस में जमा हो जाएं और वक्त महदूद हो। जैसे आपके पास एक शाम है, एक तरफ कोई इल्मी मजलिस है, दूसरी तरफ किसी जरूरतमंद की मदद का मौका है, तीसरी तरफ वालिदैन को आपकी जरूरत है, चौथी तरफ यानी आपका अपना कुरान, जिक्र और इबादत का मामूल है, और आप जाहिर सी बात है सब कुछ नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे। बसीरत का यहाँ एक नया बाब खुलता है जिसे हम फिक्हुल इख्तियार कहते हैं, इंतखाब की समझ। ठीक है, यानी जब दो या कई अच्छे रास्ते सामने हो तो ये जानना कि इस वक्त मेरे लिए किस रास्ते को तरजीह देना ज्यादा मुनासिब है। यहाँ एक जरूरी बात भी जहन में रहे, फराइज और लाजिम हुकूक अपनी शरी तरजीह रखते हैं, उन्हें महज जाती जोक की बुनियाद पर पीछे नहीं किया जा सकता। लेकिन जब मामला मुतअद्दद नफली और मशरू खैर के कामों में इंतखाब का और सबको जमा करना मुमकिन ना हो तो अपने नफ्स की बसीरत बहुत मदद देती है। आप खुद से पूछें, इन अमाल में कौन सा अमल मेरे ईमान पर सबसे ज्यादा गहरा असर डालता है। मसलन कोई शख्स कुरान के साथ बैठता है तो उसके अंदर अजीब तब्दीली आती है। आधा घंटा तदब्बुर से कुरान पढ़ता है तो दिन भर उसकी निगाह, जबान और अखलाक पर असर रहता है। किसी दूसरे शख्स के लिए तहज्जुद का वक्त ऐसा है कि रात की तन्हाई में दो रकातें उसके कल्ब को वो जिंदगी देती हैं जो उसे किसी और नफली अमल में इतनी शिद्दत से महसूस नहीं होती। तीसरा शख्स इल्म की मजलिस में बैठता है तो उसके अंदर ईमान के दरवाजे खुलते हैं। चौथा किसी जरूरतमंद की खिदमत करता है तो उसका दिल नरम हो जाता है, तकब्बुर टूटता है, दुनिया की हकीकत सामने आ जाती है और अल्लाह से ताल्लुक में भी इजाफा होता है। सब के दरवाजे एक जैसे नहीं होते और यही वो मकाम है जहाँ इंसान को दूसरों की जिंदगी की नकल करने के बजाय अपने दिल की कैफियत को समझना पड़ती है। किसी और की तहज्जुद देखकर जरूरी नहीं कि आपका सबसे मुअस्सर नफली दरवाजा भी वही हो। किसी और की इल्मी मसरूफियत देखकर जरूरी नहीं कि आपकी असल कुव्वत भी उसी मैदान में हो। बिल्कुल उसी तरह किसी और की सामाजिक खिदमत को देखकर ये लाजिम नहीं कि आप भी हर खैर का काम छोड़कर वही रास्ता इख्तियार कर लें। यानी सवाल ये नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, सवाल हमारा ये होना चाहिए कि अल्लाह ने मेरे लिए खैर का कौन सा दरवाजा ऐसा खोला है जिससे दाखिल होता हूँ तो मेरा ईमान सबसे ज्यादा जिंदा रहता है। ठीक है, ये पहचान लेना बड़ी बसीरत का काम है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि इंसान बाकी नेक अमाल छोड़ दे, बात ऐसी नहीं। असल बात यानी तर्क की नहीं, हजर की नहीं, छोड़ देना नहीं, असल बात मरकजियत की है। आप कुरान भी पढ़ें, जिक्र भी करें, वालिदैन की खिदमत भी करें, इल्म भी हासिल करें, दूसरों के काम भी आएं, लेकिन इन सब के दरमियान अगर आपने ये पहचान लिया कि एक खास मशरू अमल आपके कल्बी सफर में गैर मामूली तासीर रखता है तो उसे अपनी जिंदगी में खुसूसी जगह दीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, उसमें इखलास पैदा कीजिए, उसे हालात के रहम करम पर न छोड़िए। क्योंकि हो सकता है आपका वो महाज हो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो जहां खड़े होकर आप अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं। और यही अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल की गहराई है। यानी वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि नेकियां करो, बल्कि ये बता रहे हैं कि अपनी नेकियों के असर को भी पहचानो, अपने कल्ब पर उसका नक्श भी देखो, ये भी देखो कि कुरान ने तुम्हारे अंदर क्या बदला है, ये भी देखो कि नमाज के बाद गुनाह के मुकाबले में तुम कितने मजबूत हुए, इल्म ने तुम्हारे रवैये में कितना इजाफा किया है। क्योंकि कभी इंसान के पास आमाल की फहरिस्त बहुत लंबी होती है मगर कल्बी सफर बहुत मुख्तसर है और बसीरत इंसान को तादाद से उठाकर तासीर तक ले जाती है। समीने किराम, लोगों के मिजाज मुख्तलिफ हैं, सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं, कल्बी मैलान मुख्तलिफ हैं, तो लाजमन खैर के वो मैदान भी मुख्तलिफ होंगे जिनमें हर शख्स अपनी बेहतरीन सलाहियत के साथ काम कर सकता है। और शायद इसी हकीकत को समझ लेने की वजह से हमारे असलाफ में कोई इल्म का इमाम बना, कोई इबादत

0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. Your health matters.
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो आजकल बच्चों, नौजवानों, बड़ों और तकरीबन हर उम्र के अफराद में आम होता जाता रहा है और वो है आंखों की थकन। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल फ़ोन, काम के लिए कंप्यूटर और सोशल मीडिया, वीडियोस, मैसेजेस और रात को दोबारा मोबाइल स्क्रीन जो है वो हमारे सामने होती है। हमारी आंखें दिन का बड़ा हिस्सा जो है स्क्रीन्स को देखते हुए गुजार रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्क्रीन इस्तेमाल करने वाला शख्स आंखों का मरीज बन जाएगा, लेकिन लंबे अरसे तक बगैर वक्फे के स्क्रीन देखने से आई स्ट्रेन यानी आंखों की थकन हो सकती है। उसकी कुछ अलामत हैं जो कि जाहिर होती हैं कि आंखों में जलन है, खुश्की है, पानी आ रहा है, बहुत भारीपन है, धुंधला नजर आना शुरू हो गया है, सर में दर्द महसूस हो रहा है, आंखों के इर्द गिर्द डिस्कम्फर्ट है और फोकस करने में मुश्किल पेश आ रही है। इस तरह की शिकायत हो सकती हैं। एक अहम वजह ये भी है कि हम स्क्रीन को मुसलसल देख रहे होते हैं और आम हालात के मुकाबले में कम अपनी जो पलकें हैं वो झपक सकते हैं। इससे आंखों की जो सतह है वो हमें ड्राई महसूस हो सकती है। अब सवाल ये है कि इस मसले से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही आसान सा रूल है, वो हमें ज़रूर याद रखना है, और वो रूल है 20-20-20 का। यानी तकरीबन हर 20 मिनट के बाद तकरीबन 20 सेकंड के लिए और फिर तकरीबन जो 20 जो फिट है दूर किसी चीज़ को आप देखिए। इसका मकसद आंखों को मुसलसल एक ही फासले पर फोकस करने से वक्फा देना है। और दूसरी अहम बात यह है कि स्क्रीन की पोजीशन बहुत करीब भी ना हो और इतनी ऊंची भी ना हो आपको मुसलसल गर्दन ऊपर उठाना पड़े।

0: तो आंखों को मुतासिर कर सकती है। तो रेगुलर चेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा अपना आज का हम रूटीन देखें कि जैसे ही हम सुबह उठे या सुबह तक कितने घंटे जो है वो स्क्रीन हम देख चुके हैं। क्या दरमियान में कोई ब्रेक्स लिए? क्या आप मोबाइल को चेहरे के बहुत करीब रखकर इस्तेमाल करते हैं? क्या आप सोने से पहले काफ़ी देर तक फ़ोन देखते रहते हैं? तो फिर यह है कि आज से एक छोटी सी तब्दीली हम कर लेते हैं। हर कुछ देर के बाद स्क्रीन से आप अपनी नज़रें हटा लीजिए, पलकें जो हैं मामूल के मुताबिक छपकाइए, मुनासिब फासले से स्क्रीन देखिए, अपने बच्चों को भी ब्रेक्स की आदत डालिए, और आंखों में मुसलसल या गैर मामूली अलामत हों तो खुद से ट्रीटमेंट करने के बजाय आप आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। याद रखिए, हमारी आंखें हमारी ज़िंदगी के रंग हमें दिखाती हैं। उनका ख्याल रखने के लिए हमें हमेशा कोई बड़ी तब्दीली की ज़रूरत नहीं होती, बाज़ों का छोटी छोटी अच्छी आदत बहुत मददगार साबित होती हैं। आज ये मैसेज ये है कि स्क्रीन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपनी आंखों पर स्क्रीन को हावी ना होने दीजिए। अपनी आंखों को वक्फा दीजिए, मुनासिब रोशनी में काम कीजिए, और जो वार्निंग साइंस हैं उन्हें इग्नोर ना कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक अपनी आंखों का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि योर हेल्थ मैटर्स।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिना जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो।

0: अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। गेम चेंजर
2: सीजन 2 कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दूह हवाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। आज भी मेरे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपकी बोर्डम को खलास खली वली कर दी, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपकी बहुत काम आ सकती। सो एक एक करके जाएंगे क्योंकि हम मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो उससे पहले काम की बात कर लेते हैं। तो आज जो है वेबसाइट का नाम है goblin.tools, goblin.tools, ठीक है, goblin.tools। इसमें जाने के बाद आप कोई भी इसे टास्क बता सकते हैं कि भाई मेरे को बर्थडे प्लान करनी है, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या क्या करना चाहिए। ये आपको आइडियाज देगा, आपको बताएगा सबसे पहले ये करो, यहाँ जाओ, ये यहाँ जाओ, वहां जाओ, और आप उसको एक तरीके से चेक मार्क करके चलेंगे तो आपको मदद मिलेगी। मैं जानता हूँ बहुत लोग बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, सब कुछ पता होता नहीं क्या क्या करना है, बट कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं भाई, मेरे जैसे लोगों के लिए ये जिनको स्टेप बाय स्टेप बताया जाए, स्पून फीड किया जाए तो ज्यादा अच्छे से याद रहता है। एंड डेफिनेटली ये काम आएगा टीनेजर्स के लिए भी, इफ दे वर प्लानिंग समथिंग, यू नो, आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, इट विल जस्ट हेल्प यू टू जॉग डाउन योर मेमोरी के भाई ये कर लिया, ये रख लिया। इट इज अ वेरी हेल्पफुल टूल इन अ वे उन लोगों के लिए जो शायद मेरी तरह बोलते होंगे। सो goblin.tools, और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि यही टास्क है, और भी बहुत सारे टास्क हैं, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है। आप यूजुअली और भी टास्क दे सकते हैं और ये और भी टास्क में आपकी मदद कर सकती है वेबसाइट, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, ठंड रखो अभी से गुस्सा रहा है। ओके, अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। ये वेबसाइट बहुत बहुत काम की है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, या फिर आप बड़े हो चुके हैं, जस्ट यू जस्ट वांट टू नो कि कौन सा ये क्या है, आप किसी को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं केमिस्ट्री ये तो नो बताएगी नहीं, मुश्किल काम है, पर केमिस्ट्री से जुड़ी वेबसाइट है तो बच्चों के बहुत काम आएगी। इसका नाम है zperiod.app, यानी कि ऐप, तो जेड लाइक द अल्फाबेट जेड और पीरियड period.app। इस वेबसाइट पर जाके हर एलिमेंट की आपको जानकारी मिलेगी। फॉर एग्जांपल मुझे जानना है कि भाई आयरन के बारे में जानना है, तो आयरन के बारे में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसका पूरा प्रोजेक्शन आपको दिखेगा पूरे मोशन के साथ, एनिमेशन के साथ, फिर एक एक उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी क्या क्या खासियत है, सब आपको पता लग जाएगा। बहुत बहुत काम की चीज है, स्पेशली उन टीनेजर्स के लिए या बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री जिन्हें अच्छी लगती है। ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छी लगी यार, मुझे एलिमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं थी, बट मुझे अच्छा लगा कि मुझे भी थोड़ा सा जागरूक रख रही है वेबसाइट, ये थोड़ा अवेयर हूं इन चीजों से। ऑलराइट, नाउ वेबसाइट नंबर 3। तीसरी वेबसाइट है channelsurf.tv, चैनल channel surfer surfer.tv, सर्वर मत टाइप कर दीजिएगा, वो हमारे वाले नहीं, सर्फर, ठीक है, channelsurfer.tv। इस पे जाएंगे तो आपको YouTube मिलेगा, लेकिन पता किस तरीके से, पुराने केबल जैसे केबल टीवी आते थे उस जमाने के स्टाइल में आप YouTube देख सकते हैं, आपको सब बताएगा, अभी आप ये देख रहे हैं आने वाला सेक्शन ये है, आने वाला सेक्शन ये है, भाई बहुत कमाल की चीज है। और सबसे खास बात बताऊं, कोई एडवर्ड्स नहीं है, कमाल है, बिल्कुल पुराने केबल टीवी के स्टाइल में यूट्यूब देख सकते हैं आप, और प्लस कोई एड्स भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ इस वेबसाइट का तो मैं फैन हो गया, जाके देखिए, यू विल डेफिनेटली लव इट। और ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स। अब जरा बढ़ता हूँ मैं एक बहुत ही खास खबर की तरफ, और जो खबर जो है वो गूगल पिक्सल 11 प्रो एक्सएल के बारे में है। देखो लार्जेस्ट फोन की कैटेगरी में ये आ चुका है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि क्वालिटी स्क्रीन है यार। देखो लोग अभी ना दीवाने हो चुके हैं, आईफोन आ गया, आईफोन चाहिए, सैमसंग लॉन्च कर दिया, सैमसंग चाहिए, पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है, जबकि ध्यान देने की जरूरत है। जो न्यू मॉडल है वो 6 ग्राम लाइटर है, पिछले वाले से 0.1 mm स्मॉलर है, हर डायमेंशन के लिहाज से लास्ट ईयर के पिक्सल 10 प्रो के लिहाज से बहुत बढ़िया बनाया है भाई। तो अगर आप गूगल पिक्सल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि हैंग गूगल का तो फोन है क्या, बहुत बढ़िया है, इट रन्स एंड्रॉइड 17 एज इट्स स्मॉलर सिबलिंग, और साथ साथ जो अपडेट मिला है सपोर्ट का वो बहुत बढ़िया, और अपडेट बता कब तक की है, अगस्त 2033 तक भाई, और कितनी सपोर्ट चाहिए, और साथ में 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है गूगल AI प्रो सब्सक्रिप्शन,

0: और साथ में एक्सेस टू वीडियो जनरेटर, वो भी जेमिनी ओमनी, और हायर एआई यूसेज लिमिट्स मिलती है, 5 TB ऑफ क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है, गूगल हेल्प प्रीमियम। भाई ऐसे अगर मैं बेचने निकला, मैं बेच दूंगा गूगल पिक्सल आपको। तो अंडरस्टैंड, गूगल पिक्सल की भी मार्केट है, उस तरफ जाके तो देखिए, झांकी तो सही। हाँ, ये थी अपडेट्स, मिलते हैं अगली वाली में, स्टे ट्यून्ड।
1: अपडेट 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Absolute cinema.
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
4: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद RJ फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर दिन आपको एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में इत्तला करता हूं और आपको आगाह करता हूं कि कैसे आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। दोस्तों आज जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है और कुछ ऐसी फीमेल्स के लिए भी है जो गेमिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। वेल, वीडियो गेम बाइंग स्कैम, ये क्या स्कैम है? दोस्तों आजकल गेमर्स को नुकसान पहुंचाने का एक नया और बहुत चालाक तरीका है, जहां फ्रॉडस्टर्स गेमिंग कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। ये स्कैमर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अनऑफिशियल मार्केट प्लेस पर रेयर लिमिटेड एडिशन कंसोल, एक्सपेंसिव इन गेम कॉस्मेटिक्स और बहुत सस्ती डिजिटल गेम कीज के झूठे एड्स जो है वो लगाते हैं। कई बार आपके पास अगर कोई गेम नहीं है मार्केट में, आपको बहुत महंगा, या जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको बहुत ज्यादा महंगा गेम मिल रहा है, तो करते हैं ये लोग ऐसा है कि आपको एक कीज दे देते हैं या फिर एक URL देते हैं और कहते हैं कि अगर आपको गेम खरीदना है तो आप हमसे ये फला गेम खरीद लें जो कि ऑफिशियल 500 रियाल का है, 1000 रियाल का है, 300 रियाल का है, लेकिन हमारे पास ये सिर्फ 50, 60 या 100 रियाल का है। तो ऐसे में आप फंस जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये सस्ता गेम है, जल्दी से इसे खरीद लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन ये आपके साथ स्कैम हो सकता है। जब आप उसे डाउनलोड करते हैं तब जाके आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ स्कैम हुआ है।

0: पैसे सिर्फ नॉन रिफंडेबल पीयर टू पीयर पेमेंट एप्स के जरिए ही भेजे जाएं, इसलिए वो आपको प्रेशर डालते हैं और वादा भी करते हैं कि पेमेंट मिलते ही रिडेम्पशन कोड्स इंस्टेंट डिलीवर कर दिया जाएगा। मगर पैसे मिलने के बाद स्कैमर्स या तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं या फिर फेक डुप्लीकेट या चोरी किए गए कोड्स भेज देते हैं और तब तक आपको चपत लग चुकी होती है। इसका नतीजा ये होता है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म उस बायर के अकाउंट को इमीडिएटली और परमानेंट बैन कर देता है, जिससे गेमर की पूरी डिजिटल गेम लाइब्रेरी और सालों की मेहनत हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने के कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, उन पर नजर अगर डालें तो सबसे पहली जो चीज है वो आपको यही करनी है कि हमेशा ऑफिशियल स्टोर्स का इस्तेमाल करें। देखिए, इसके दो रीजन है, पहला स्कैम से बचने के लिए और दूसरा क्राइम से भी बचने के लिए। अगर आप इस तरह से कहीं से सस्ता गेम खरीद लेते हैं और वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है तो ये एक्चुअली में एक क्राइम है, और अगर आप क्राइम करते हैं तो इसकी सजा होती है, कई बार फाइन और कई बार जेल भी होती है। रिपीटेड वायलेशन अगर आप करेंगे तो आपको जेल भी होगी। हमेशा किसी भी गेम की या कॉस्मेटिक आइटम को सिर्फ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही खरीदें, अनऑफिशियल या सस्ती थर्ड पार्टी वेबसाइट पर भरोसा बिल्कुल ना करें, पीयर टू पीयर एप्स से पेमेंट ना करें। अगर कोई सेलर आपसे सिर्फ नॉन रिफंडेबल पेमेंट एप्स, ऐसे बहुत से हैं, क्रिप्टो करेंसी वगैरह है या फिर यू नो गिफ्ट कार्ड्स है, वाउचर है, उनके जरिए पैसे मांग रहा है तो समझ जाएं ये एक स्कैम है। हमेशा उन मेथड से पे करें जहां बायर प्रोटेक्शन और रिफंड का ऑप्शन मौजूद हो, और साथ ही साथ कई बार आपको ये डायरेक्ट बताते हैं कि रिफंड आसानी से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, आप बस पेमेंट करें, अगर आपको गेम पसंद नहीं आया तो आपको पेमेंट वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें रिफंड का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। उसके अलावा हमने हमेशा इस बारे में बात करी है, विच इज टू गुड टू बी ट्रू डील्स, इन डील से बचे। अगर कोई बहुत ही महंगी या रेयर चीज आपको एकदम सस्ती मिल रही है, आसानी से मिल रही है, इसकी कीमत बिल्कुल मार्केट वैल्यू से कम है, तो लालच में ना आए। स्कैमर्स हमेशा गेमर्स की जल्दबाजी और लालच का फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं, और ये तरीके अपना के हमेशा आप अपने पैसे को, आप अपने अकाउंट को बचा सकते हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। जैसे आज हमने वीडियो गेम के बारे में बात करी है दोस्तों, कल हम बात करने वाले हैं एक फेस्टिवल स्कैम के बारे में। क्या है वो फेस्टिवल स्कैम, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और मुलाकात होगी कल इस पर बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107, दिल से देसी।

इनका असल नाम था मार्कोस एवांजेलिस्टा डी मोरेस, लेकिन लोग इन्हें काफू से जानते हैं, ब्राजीलियन फुटबॉल के वन ऑफ द लेजेंड्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। जी हाँ, बात आज हम करेंगे काफू के बारे में, ब्राजील का एक्सप्रेस ट्रेन। काफू 7 जून 1970 को ब्राजील के साओ पाउलो में पैदा हुए। उनका फुटबॉल करियर साओ पाउलो FC से शुरू हुआ और बहुत जल्द ही उनकी स्पीड, स्टैमिना, अटैकिंग रन्स और डिफेंसिव एबिलिटी ने उन्हें ब्राजील के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। काफू की सबसे बड़ी खासियत उनकी इनक्रेडिबल फिटनेस थी। आज भी वो बड़े फिट देखते हैं, आज भी वो पूरे मैच में राइट फ्लैंक पर कंटिन्यूअसली अटैक भी करते हैं और डिफेंस में वापस भी आते हैं। इसी वजह से इटली में उन्हें एक्सप्रेस ट्रेन कहा जाता था। कहा गया है कि काफू को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। फीफा के मुताबिक उनकी एनर्जी और स्टैमिना उनकी पहचान बन चुकी थी। ब्राजील के लिए काफू ने 142 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जो ब्राजील मेंस नेशनल टीम के लिए एक रिकॉर्ड है। उन्होंने नेशनल टीम के लिए 5 गोल्स भी स्कोर किए। उनका इंटरनेशनल करियर 1990 से 2006 तक फैला रहा। लेकिन काफू का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड फीफा वर्ल्ड कप से मुतालिक है। वो फुटबॉल हिस्ट्री के वाहिद प्लेयर हैं जो 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप फाइनल्स में खेले, 1994, 1998 और सन 2002। 1994 में ब्राजील ने इटली को पेनल्टीज पर हराकर वर्ल्ड कप जीता। 1998 में ब्राजील फ्रांस के खिलाफ फाइनल हार गया था, जबकि 2002 में काफू ने ब्राजील की कप्तानी करते हुए जर्मनी को 2-0 से हराकर अपना दूसरा वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिफ्ट की। सो टोटल देखा जाए तो 4 वर्ल्ड कप्स 1994, 1998, 2002 और 2006 में ब्राजील को काफू ने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल्स में 20 मैचेस खेले, जो ब्राजील के लिए रिकॉर्ड है। अच्छा, वर्ल्ड कप का सक्सेस भी थोड़ा बता देता हूँ। 1994 का वर्ल्ड कप फाइनल काफू के लिए खास था। वो टूर्नामेंट में रेगुलर स्टार्टर नहीं थे, यानी प्लेइंग 11 में वो कभी भी इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन फाइनल में राइट बैक जोर्गिनो के इंजर्ड होने पर काफू फर्स्ट हाफ में सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे और ब्राजील के लिए इटली को पेनल्टीज में शिकस्त दी। 1998 में वो ब्राजील के स्टार्टिंग लाइनअप में थे और राइट बैक पोजीशन उनका पोजीशन बन गया था और टीम फाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल में जिदान के मैजिक के सामने ब्राजीलियन टीम लॉस्ट 3-0। 2002 में काफू का करियर अपने पीक पर रहा। ब्राजील ने रोनाल्डो, रिवाल्डो, रोनाल्डिनो और काफू जैसे बड़े स्टार्स के साथ टूर्नामेंट में फतेह हासिल की। फाइनल में जर्मनी को 2-0 से हराकर ब्राजील ने अपना 5वां वर्ल्ड कप टाइटल हासिल किया और काफू ने कप्तान के तौर पर ट्रॉफी उठाई। एंड दैट वाज अ मेमोरेबल पिक्चर, स्टिल आज भी फ्लैश होते रहता है, बिकॉज उस वर्ल्ड कप के बाद ब्राजील अभी तक कोई भी वर्ल्ड कप टाइटल नहीं जीत पाई है। अब क्लब करियर के बारे में बात करूं तो काफू ने साओ पाउलो FC के साथ अपने करियर का इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो गुजारा है। क्लब के लिए उन्होंने ब्राजीलियन चैंपियनशिप, कोपा लिबर्टाडोरेस, सुपर कोपा लिबर्टाडोरेस, रिकोपा सुदामेरिकाना और 2 इंटरकॉन्टिनेंटल कप्स जीते। साओ पाउलो के साथ उनके इंटरनेशनल सक्सेस जो है 1992 और 1993 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप विक्ट्रीज तक पहुंची। यूरोप में भी काफू काफी हिट हुए। रियल जारागोजा के साथ 1994, 1995 UEFA कप विनर्स कप जीता। इसके बाद इटली में एस रोमा का हिस्सा बने और सन 2000 से 2001 सीजन में सीरी ए टाइटल भी जीता। 2003 में काफू एसी मिलान में शामिल हुए। मिलान के साथ उन्होंने 2003-2004 सीजन में सीरी ए, 2006-2007 सीजन में UEFA चैंपियंस लीग, UEFA सुपर कप और 2007 फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता। इस तरह काफू ने यूरोप के फुटबॉल में, यानी क्लब फुटबॉल में भी अपनी लेगेसी एस्टैब्लिश की। दोस्तों, काफू का करियर सिर्फ ट्रॉफीज और स्टैटिस्टिक्स की वजह से रिमार्केबल नहीं था। उन्होंने मॉडर्न अटैकिंग फुलबैक का एक ब्लूप्रिंट दिया। स्पीड, स्टैमिना, डिफेंस, क्रॉसिंग और अटैक सब कुछ एक ही प्लेयर में, और यहीं से मॉडर्न फुटबॉल का जो अंदाज है कि डिफेंडर्स सिर्फ डिफेंड नहीं करेंगे, डिफेंडर्स को अटैक में भी जाना पड़ेगा। एंड आज के डेट में अगर आप लोगों ने फुटबॉल थोड़ा बहुत फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा
आई मीन अगर वर्ल्ड कप की बात करूँ या नो यूफा चैंपियंस लीग की बात करूँ या एएफसी एशिया में भी अगर आप देखें जो दो यू नो विंग प्लेयर्स हैं यानी जो राइट बैक और लेफ्ट बैक पोजीशन में जो खेलते हैं डिफेंस के जो फॉर्मेट में उन दोनों खिलाड़ियों को कंटिन्यूसली अप एंड डाउन करना पड़ता है बिकॉज इन द मॉडर्न फिलोसॉफी ऑफ फुटबॉल एवरी प्लेयर कैन अटैक. ये वो पुरानी बातें नहीं है आज से 60 साल 50 साल पहले जब डिफेंडर सिर्फ अपने ही पोजीशन अपने ही जोन पे खड़े रहते थे कोई भी बॉल आते है तो उसको किक आउट करते थे. नो आज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है एंड काफू इज वन ऑफ द आई वुड से या ट्रेंड सेटर फॉर दिस. और आज कोचेज अगर इस पॉलिसी को इस टैक्टिक्स को फॉलो करते हैं तो उसमें काफू यू नो इज द रोल मॉडल. 142 ब्राजील कैप्स 20 वर्ल्ड कप मैचेस 4 वर्ल्ड कप्स 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप फाइनल्स और 2 वर्ल्ड कप ट्रॉफीज. ये नंबर्स काफू को फुटबॉल की तारीख के सबसे यूनिक डिफेंडर्स में शामिल करते हैं. काफू ब्राजील का कप्तान वर्ल्ड कप चैंपियन और फुटबॉल का असली एक्सप्रेस ट्रेन. तो दोस्तों आपको आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा उम्मीद है और अगली बार एक और लाजवाब स्पोर्ट्स लेजेंड और स्टार्स के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamualaikum. आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट. मैं हूं आपकी आरजे महावश. इस पांच मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की. यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है. आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें. कतर का वर्षा समंदर और मोती की रिवायत के बगैर मुकम्मल नहीं होता. पुराने वक्तों में मोती हासिल करना एक अहम हुनर था. समंदर में उतरने वाले लोग मेहनत, सबर और तवज्जो के साथ ये काम करते थे. मोती की खूबसूरती ने ना सिर्फ तिजारत को बल्कि जीनत और दस्तकारी के हुनर को भी रंग दिया. मोती समंदर से मिलने वाली एक फितरी नेमत है. इसे कीमती बनाने उसकी चमक, सफाई और खूबसूरत शक्ल का किरदार होता है. पुराने जमाने में माहिर लोग मोती को बहुत एहतियात के साथ संभालते, साफ करते और मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते थे. मोती से जीनत की अशिया बनाना अपनी जगह एक हुनर है. हुनरमंद मोतियों को नाप, रंग और शक्ल के मुताबिक तरतीब देते हैं, फिर उन्हें धागे या किसी मुनासिब तरीके के साथ जोड़कर हार, कंगन, झुमके या दूसरी अशिया तैयार की जाती हैं। मोती की ज्वेलरी में सादगी और नफासत दोनों नजर आते हैं. मोती का असल हुसन उसकी हल्की सी चमक और पुरकशिश बनावट में होता है. जब मोतियों को खूबसूरत तरतीब के साथ जोड़ा जाता है तो एक ऐसी जीनत तैयार होती है जो रिवायत और खूबसूरती दोनों को जाहिर करती है. कतरी खवातीन की जीनत में सोने और दीगर जेवरात के साथ मोती को भी बहुत पसंद किया जाता है. खास तौर पर मोतियों की माला या दूसरी सजावटी अशिया लिबास को मुकम्मल कर सकती हैं. इसमें खानदानी याद और खुशी के मौके की अहमियत भी शामिल हो सकती है. पुराने वक्त में मोती की देखभाल बहुत जरूरी समझी जाती थी. उन्हें नरमी से साफ किया जाता और एहतियात से महफूज रखा जाता था. अच्छे जेवरात हमेशा सिर्फ पहनने की चीज नहीं होते बल्कि कदर और जिम्मेदारी के साथ संभाल के रखे जाने वाला सरमाया भी होते हैं. मोती की खास दिलचस्प बात यह है कि हर मोती अपनी शक्ल और चमक में थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है. इसी वजह से हाथ से बनने वाली ज्वेलरी में अपना एक खास हुस्न होता है. हर तार और हर मोती की तरतीब हुनरमंद की तवज्जो और सलीके को जाहिर करती है. मोती से जड़ी दस्तकारी में सबर बहुत अहम होता है. मोतियों को मुनासिब अंदाज में चुनना, उन्हें महफूज रखना और फिर खूबसूरत तरतीब में पेश करना वक्त लेता है. इस काम से हमें दर्स मिलता है कि बेहतरीन नतीजा आहिस्ता आहिस्ता कोशिश और तवज्जो से हासिल होता है. मोती की रिवायत बाजार और तिजारत से भी जुड़ी है. पुराने साहली इलाकों में मोती की खरीदो फरोख्त के लिए खास इंतजाम होता था. लोग मोती की पहचान, उसकी किस्म और उसकी सतह को समझने का तजुर्बा रखते थे. आज कतर में मोती और उससे मुतालिक वर्सा, म्यूजियम, बाजारों और सकाफती नुमाइशों में देखा जा सकता है. यहाँ लोग मोती की कहानी और उन्हें हासिल करने के पुराने तरीके और उनसे जुड़ी दस्तकारी के बारे में जान सकते हैं. नई नस्ल के लिए मोती की रिवायत को समझना बहुत अहम है. ये उन्हें बताती है कि उनके बुजुर्गों की जिंदगी समंदर से कितनी जुड़ी हुई थी और एक छोटा सा मोती भी मेहनत, सफर, हुनर और उम्मीद की एक बड़ी कहानी सुना सकता है. मोती से जुड़ी कहानियों में अक्सर खानदानी यादें भी शामिल होती हैं. किसी बुजुर्ग का जेवर, किसी खास मौके का तोहफा या किसी त्योहार पर पहनी गई माला, इन सब के साथ जज्बात जुड़े हो सकते हैं. इसीलिए पुरानी अशिया को संभाल कर रखना याद और विरसे दोनों की हिफाजत है. जदीद डिजाइन्स में भी मोती अपनी खूबसूरती कायम रखता है. डिजाइनर्स रिवायती मोतियों को नक्श और दिलचस्प जेवरात के अंदाज में पेश करते हैं. इसी तरह पुराना हुनर आज की पसंद से जुड़कर जिंदा रहता है. मोती की रिवायत हमें समंदर के एहतराम का पैगाम भी देती है. قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھاتے وقت احتیاط اور ذمہ داری دونوں ضروری ہوتے ہیں۔ قطر کے موتی صرف جدید زیورات کی خوبصورتی نہیں بلکہ ایک پوری ثقافتی کہانی ہے۔ ان میں سمندری سفر کرنے والوں کی محنت، ہنر مندوں کا سلیقہ اور خاندانوں کی یادیں شامل ہیں۔ آج کا کلچر مومنٹ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ موتی کی اصل چمک صرف اس کی سطح نہیں ہوتی، اس کی روشنی اس محنت، صبر اور ورثے سے بھی آتی ہے جو اس چھوٹی سی نعمت کے ساتھ جڑی ہے۔ موتی قطر کی بحری پہچان کا ایک خوبصورت نشان ہے جو ماضی کی یادوں کو آج اور مستقبل سے جوڑتا ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش، اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है उनकी कुर्बानियां सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां उनकी मेहनत उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू लिसनर्स स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स की एक और खूबसूरत और सबक आमोज एपिसोड में आप सबको खुशामदीद ये वो शो है जहां हम अल्लाह ताला के उन बरगजीदा रसूलों और नबियों की जिंदगी के वाकयात सुनते हैं जिन्हें अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई के लिए मुंतखब फरमाया उनके वाकयात सिर्फ माजी की कहानियां नहीं बल्कि हमारे आज के लिए भी बेशुमार सबक रखती हैं पिछले एपिसोड में हमने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद के बारे में सुना था कौम आद एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौम थी उन्हें अल्लाह ताला ने कुव्वत वसाइल तामीराती सलाहियतें अता की थीं उन्होंने अजीम इमारतें बनाई और अपनी ताकत पर फख्र किया लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका तकब्बुर था उन्होंने अल्लाह ताला की हिदायत को कबूल करने से इनकार किया और अपनी ताकत को हिफाजत का जरिया समझ लिया आज हम एक और ताकतवर और खुशहाल कौम के बारे में जानेंगे ये कौम थी समूत कौम समूत भी तरक्की याफ्ता थी उन्हें अल्लाह ताला ने जमीन में आबाद किया उन्हें ताकत दी और ऐसी सलाहियतें अता की कि वो पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर घर बना सकते थे वो मैदानों में शानदार महल बनाते और पहाड़ों को काट कर महफूज रहाइश गाहें तैयार करते थे लेकिन एक मर्तबा फिर मसला वही था तरक्की थी मगर शुक्र कम था ताकत थी मगर आजी नहीं थी दौलत थी मगर अतात नहीं थी और इसी कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत सोले अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा हजरत सोले अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वही बुनियादी पैगाम दिया जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का पैगाम था अल्लाह की इबादत करो उसके सिवा कोई माबूद नहीं लेकिन कौम समूद ने हजरत सोले अलैहिस्सलाम से एक निशानी का मुतालबा किया उन्होंने कहा अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो हमें कोई निशानी दिखाएं। अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम निशानी अता फरमाई एक ऊंटनी ये सिर्फ एक जानवर नहीं था बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक वाज़े निशानी और इम्तिहान था कौम को हुक्म दिया गया कि इस ऊंटनी को नुकसान ना पहुंचाया जाए उसे अल्लाह की जमीन में आजाद छोड़ा जाए और उसके बारे में अल्लाह के मुकर्रर करदा हुक्म की पाबंदी की जाए लेकिन क्या कौम समूत ने इस निशानी को कबूल किया क्या उन्होंने अल्लाह की बात मानी या उनका तकब्बुर उन्हें दोबारा तबाही की तरफ ले गया आज के एपिसोड में हजरत सालेह अलैहि सलाम और कौम समूत के इस सबक आमोज वाक्य को तफसील से समझते हैं हजरत सोले अलैहि सलाम से पहले कौम समूद इस सरजमीन में आबाद थी जैसे अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया था वो कौम मजबूत खुशहाल और हुनरमंद थी अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन में इक्तदार और वसाइल अता किए थे वो जमीन के मैदानों में इमारतें तमीर करते थे और पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर घर बनाते थे। ये बात खुद एक बहुत बड़ी इंसानी सलाहियत को जाहिर करती है। उनके पास इल्म था, हुनर था, मेहनत थी, मंसूबा बंदी थी और तामीर करने की गैर मामूली सलाहियत थी। लेकिन कुरान हमें ये नहीं सिखाता कि तामीर करना या तरक्की करना गलत है। तरक्की बजाते खुद कोई बुरी चीज नहीं। इमारतें बनाना, इल्म हासिल करना, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना और माशरे को बेहतर बनाना अल्लाह ताला की नेमतें हो सकती हैं। असल मसला उस वक्त पैदा होता है जब इंसान अपनी कामयाबी को देखकर उस जात को भूल जाए जिसने उसे कामयाबी हासिल करने की सलाहियत दी। कौम समूद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपने बनाए हुए घरों को देखते थे और खुद को महफूज समझते थे। वो अपनी ताकत को देखते थे और खुद को दूसरों से बढ़तर समझते थे। वो अपनी दौलत और मकाम को देखते थे और उन्हें महसूस होता था कि अब उन्हें किसी नसीहत या इस्लाह की जरूरत नहीं। लेकिन इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया की कोई दीवार इंसान को अल्लाह ताला के फैसले से नहीं बचा सकती। पहाड़ों के अंदर बने हुए मजबूत घर भी इंसान को हमेशा महफूज नहीं रख सकते। दौलत, ताकत, शोहरत और टेक्नोलॉजी सब महदूद हैं। अगर दिल अल्लाह से दूर हो जाए तो दुनिया की तमाम कामयाबियां भी इंसान को हकीकी कामयाबी नहीं दे सकती। अल्लाह ताला ने कौम समूद की तरफ हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम उसी कौम में से थे। वो अपनी कौम के हालात से वाकिफ थे। वो जानते थे कि उनकी कौम किस तरह जिंदगी गुजार रही है, उनके पास कितने वसाइल हैं और वो किस चीज पर फखर करते हैं। उन्होंने अपनी कौम को सबसे पहले वही बुनियादी दावत दी जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत थी। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये पैगाम बज़ाहिर बहुत सादा था लेकिन हकीकत में यही इंसान की पूरी जिंदगी की बुनियाद है। हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम ने उनसे दौलत नहीं मांगी, उन्होंने अपने लिए कोई महल नहीं मांगा, उन्होंने इक्तदार नहीं मांगा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरी कौमियत या मेरा खानदान तुमसे ज्यादा अहम है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें जमीन में जगह दी, तुम्हें वसाइल अदा किए और तुम्हें वो सलाहियत दी जिसकी वजह से तुमने ये शानदार तामीरात बनाई। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह से इस्तगफार करने और उसकी तरफ वापस आने की दावत दी। ये भी एक अहम सबक है। अल्लाह ताला की नेमतें हमेशा सिर्फ आराम के लिए नहीं होती, नेमतें एक इम्तिहान भी होती हैं। अगर अल्लाह ने हमें दौलत दी है तो ये देखना होगा कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर अल्लाह ने इल्म दिया है तो ये देखना होगा कि इस इल्म से दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं या फिर हम तकब्बुर करते हैं। अगर ताकत दी है तो ये देखना होगा कि हम कमजोरों की मदद करते हैं या उनको दबाते हैं। अगर कामयाबी दी है तो ये देखना होगा कि हम शुक्र करते हैं या खुद को सबसे बड़ा समझने लगते हैं। कौम समूद ने हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम से एक निशानी का मुतालबा किया। वो चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा

कि ऊंटनी किस तरह जाहिर हुई। इसलिए हमें उन बातों पर तवज्जो देनी चाहिए जो कुरान ने वाज़े तौर पे बयान की हैं, और ऐसी तफसीलात में नहीं जाना चाहिए जिनके बारे में कुरान ने हमें मालूमात नहीं दी। असल बात यह है कि वो ऊंटनी अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी थी, लेकिन ये सिर्फ एक हैरत अंगेज वाकया नहीं था, एक इम्तिहान था। कौम को हुक्म दिया गया कि वो उस ऊंटनी को नुकसान ना पहुंचाएं, उसे अल्लाह की जमीन में चरने दें और अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हुदूद का एहतराम करें। यहाँ हमें एक सबक मिलता है कि सिर्फ मौजा देख लेना ईमान की जमानत नहीं, सिर्फ किसी गैर मामूली वाकये पर हैरान हो जाना काफी नहीं। असल ईमान यह है कि इंसान अल्लाह की निशानी को पहचाने और फिर उसके हुक्म के सामने झुक जाए। कौम समूद के सामने हुक्म बहुत वाज़े था, ऊंटनी को नुकसान नहीं पहुंचाना था, उसे चरने देना था और अल्लाह के मुकर्रर करदा हुक्म की पाबंदी करनी थी। ये बज़ाहिर एक छोटा सा हुक्म था, लेकिन हकीकत में ये कौम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया, क्योंकि इस हुक्म का ताल्लुक सिर्फ एक जानवर से नहीं था, ये इस बात का इम्तिहान था कि क्या वो अल्लाह के हुक्म को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह देते हैं या नहीं, क्या वो अपनी ताकत को महदूद कर सकते हैं, क्या वो किसी ऐसी चीज का एहतराम कर सकते हैं जिसे अल्लाह ने एक निशानी करार दिया है, क्या वो ये कबूल कर सकते हैं कि दुनिया की हर चीज सिर्फ इंसान की मलकियत नहीं। ये वाकया हमें आज भी बहुत कुछ सिखाता है। एक शख्स के पास दौलत हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज खरीद सकता है, किसी के पास ताकत हो तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के हुकूक छीन सकता है, किसी ग्रोह के पास इख्तियार हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर लोगों को नजरअंदाज कर दे। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है, लेकिन इस इख्तियार के साथ जिम्मेदारी भी दी है। ऊंटनी ने कौम समूद के अंदर मौजूद हकीकत को जाहिर कर दिया। जो लोग ईमान रखते थे उन्होंने हजरत सौले अलैहिस्सलाम की बात कबूल की, लेकिन मुतकब्बिर लोग मुखालफत पे कायम रहे। यहाँ एक बहुत अहम सबक सामने आता है। बाज़ औक़ात इंसान कहता है कि अगर मुझे वाज़े दलील मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन जब दलील सामने आ जाती है तो वो कोई नई वजह तलाश कर लेता है, फिर कहता है कि ये काफी नहीं, फिर एक और सवाल, फिर एक और एतराज और फिर एक और बहाना। इसका मतलब ये है कि हमेशा मसला हमारा दलील की कमी नहीं होता, कभी मसला दिल का तकब्बुर होता है। अगर इंसान सच कबूल करने के लिए तैयार ना हो तो हजार दलीलें देखकर भी इनकार कर सकता है। कौम समूद के लिए ऊंटनी एक निशानी थी, लेकिन उसके साथ एक हुक्म भी था। यही हुक्म उनके किरदार का इम्तिहान बन गया। कौमी समूद के मुतकब्बिर लोगों ने उन अहले ईमान से सवाल किया जो हजरत सौले अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम वाकई जानते हो सौले अपने रब की तरफ से भेजे गए रसूल हैं? यह सवाल सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए नहीं था, इसमें शक और तमस्कुर का अंदाज भी था। वो चाहते थे कि अहले ईमान अपने ईमान से पीछे हट जाए, लेकिन अहले ईमान ने वाज़े जवाब दिया कि वो हजरत सौले अलैहिस्सलाम के जरिए भेजे गए पैगाम पर ईमान रखते हैं। मुतकब्बिर लोगों ने इसके जवाब में इनकार किया। ये वाकया हमें बताता है कि एक ही माशरे में रहने वाले लोग, एक ही बात सुनने वाले लोग और एक ही निशानी देखने वाले लोग भी मुख्तलिफ फैसले कर सकते हैं। एक शख्स ईमान ले आता है, दूसरा इनकार कर देता है। फर्क सिर्फ मालूमात का नहीं होता, फर्क दिल के रवैये का भी होता है। इंसान सच को कबूल करने के लिए कितना तैयार है, क्या वो अपनी गलती मान सकता है, क्या वो अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म के सामने झुका सकता है, यही असल इम्तिहान है। इस वाज़े हुक्म के बावजूद कौम समूद के कुछ लोगों ने ऊंटनी को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। कुरान करीम उनके इस अमल को अल्लाह के हुक्म से बगावत और सरकशी के तौर पर बयान करता है। ये सिर्फ एक जानवर को नुकसान पहुंचाने का वाकया नहीं था, यह अल्लाह ताला की वाज़े निशानी को रद्द करने का अमल था।

लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते थे। यह हमारी जिंदगी के लिए भी एक अहम सबक है। कभी कोई शख्स हमें ऐसी बात बताता है जो हमें पसंद नहीं आती, हम फौरन नाराज हो जाते हैं। हम समझते हैं कि शायद वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हर वो शख्स जो हमारी तारीफ करे जरूरी नहीं कि हमारा खैर ख्वाह हो, और हर वो शख्स जो हमारी इसलाह करे जरूरी नहीं कि वो हमारे मुखालिफ हो। कभी सख्त कभी सच्ची नसीहत ही हमारे लिए सबसे बड़ी खैर ख्वाही होती है। लिसनर्स, हजरत सोलेह अलैहि सलाम और कौम समूद का वाकया सिर्फ एक कदीम कौम की तारीख नहीं, इसमें हमारे लिए आज भी बेशुमार सबक मौजूद हैं। इनमें से चले कुछ अहम सबक की तरफ तवज्जो देते हैं। सबसे पहला सबक यह है कि नेमत भी एक इम्तिहान है। कौम समूद को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें अता की थीं। उन्हें ताकत दी गई, जमीन में वसाइल दिए गए, तामीर करने की सलाहियत दी गई, पहाड़ों को तराशने का हुनर दिया गया, महफूज घर बनाने की सलाहियत दी गई। लेकिन जब यही नेमतें उनके अंदर तकब्बुर पैदा करने लगी तो उनके लिए आजमाइश बन गई। हमें भी अपनी जिंदगी में यही सवाल करना चाहिए, क्या अल्लाह ने हमें दौलत दी है तो हम शुक्र करते हैं? क्या इल्म दिया है तो हम उसे सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं? क्या सलाहियत दी है तो क्या हम दूसरों के फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं? अगर कामयाबी दी है तो क्या हम आजजी इख्तियार करते हैं? हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी नेमत मुझे अल्लाह के करीब कर रही है या उससे दूर? दूसरा सबक था अल्लाह की निशानियों का एहतराम। कौम समूद के पास वाज़े निशानी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। आज हमारे सामने भी अल्लाह ताला की कुदरत की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। हम आसमान देखते हैं, जमीन देखते हैं, अपने जिस्म को देखते हैं, जिंदगी के निजाम को देखते हैं, दिन और रात का बदलना देखते हैं। लेकिन सिर्फ निशानी देखना काफी नहीं, हमें निशानियों से सबक भी लेना चाहिए। अल्लाह ताला की हिदायत हमें जिंदगी के सही रास्ते की तरफ बुलाती है। इस हिदायत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि हमारी ख्वाहिशात के खिलाफ है। कौम समूद के ताकतवर और बासर लोग हजरत सोलेह अलैहि सलाम की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन इससे हजरत सोलेह अलैहि सलाम का पैगाम गलत नहीं हो गया। सच्चाई का फैसला इस बुनियाद पर नहीं होता कि कितने लोग उसे मानते हैं। अगर एक गलत बात बहुत ज्यादा लोग कहने लगे तो वो सच नहीं बन जाती, और अगर सही बात को सिर्फ चंद लोग कबूल करें तो वो गलत नहीं हो जाती। एक मोमिन के लिए असल सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये बात अल्लाह की हिदायत के मुताबिक है। चौथा सबक हमें मिलता है कि अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म ना करें। ऊंटनी के वाकये में अल्लाह ताला ने एक वाज़े हुक्म दिया था कि उसे नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसे हमें एक वसी अखलाकी सबक मिलता है। हमें जानवरों के साथ रहम का मामला करना चाहिए, हमें इंसानों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, हमें कुदरती वसाइल का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, हमें जमीन को सिर्फ अपने फायदे के लिए तबाह नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें जमीन पर जिम्मेदारी के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है। ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों को दबाना नहीं बल्कि हिफाजत करना है। कौम समूद को मोहलत दी गई, उन्हें वापस आने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने उस मौके से फायदा नहीं उठाया। हमें अपनी जिंदगी में भी तौबा और इसलाह को मौखर नहीं करना चाहिए। अगर हमें मालूम है कि हमसे गलती हुई है तो आज ही इसे दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी का हक मारा है तो उसे वापस करना चाहिए। अगर किसी से ज्यादती हुई है तो माफी मांगनी चाहिए। दानिशमंद इंसान बहरान का इंतजार नहीं करता, वो उससे पहले ही अपना रास्ता दुरुस्त कर लेता है। कौम समूद का वाकया आज हमारी जिंदगी में भी मुख्तलिफ शक्लों में नजर आ सकता है। जब इंसान अपनी बनाई हुई चीजों पर फख्र करने लगता है और उस अल्लाह को भूल जाता है जिसने उसे बनाने की सलाहियत दी, तो ये कौम समूद के रवैये से मिलती जुलती कैफियत है। एक कारोबारी शख्स अगर सिर्फ मुनाफे के लिए लोगों के हुकूक पामाल करे

तो ये खतरनाक रवैया है। एक बासलाहियत शख्स अगर अपनी सलाहियत की वजह से दूसरों को हकीर समझने लगे तो ये तकब्बुर है। एक ताकतवर शख्स अगर कमजोर लोगों के हकूक छीन ले तो ये जुल्म है। एक माशरा अगर कुदरती वसाइल को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे और आने वाली नस्लों के बारे में ना सोचे तो ये जिम्मेदारी से दूरी है। और कभी ऐसा भी होता है कि कोई शख्स हमें मुखलसाना मशवरा देता है, हम जानते हैं कि उसकी बात दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ इसलिए कबूल नहीं करते क्योंकि उसको मानने से हमारी अना या सहूलत मुतासर होती है। हज़रत सोलह अलैहिस्सलाम का वाकया हम एक बहुत सादा मगर गहरी हकीकत याद दिलाता है। जो कुछ हमारे पास है वो हमेशा के लिए नहीं। हमारी दौलत आर्जी है, हमारी ताकत आर्जी है, हमारी शोहरत आर्जी है, हमारी इमारतें आर्जी हैं, हमारी कामयाबी भी आर्जी है। असल कामयाबी ये है कि इंसान अपने रब को पहचाने, उसकी नियमतों का शुक्र अदा करे और उसके हुक्म के सामने झुक जाए। लिसनर्स, आज की एपिसोड में हमने हज़रत सोलह अलैहिस्सलाम और कौम समूद के वाक़े पर गौर किया। कौम समूद ने एक निशानी का मुतालबा किया था। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कुदरत की एक वाज़े निशानी अता फरमाई, लेकिन वो निशानी उनके लिए सिर्फ हैरत का सबब नहीं थी, उनके लिए एक इम्तिहान थी। उन्हें हुक्म दिया गया था कि अल्लाह की ऊँटनी को नुकसान न पहुँचाएं और अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद का एहतराम करें, लेकिन उनके तकब्बुर, सरकशी और नाफरमानी ने उन्हें तबाही की तरफ पहुंचा दिया। उनके मजबूत घर उन्हें बचा नहीं सके, उनकी ताकत उन्हें ना बचा सकी, उनकी दौलत उन्हें ना बचा सकी, उनकी महारत उन्हें ना बचा सकी। इस वाक्य का सबसे बड़ा सबक यही है कि ताकत अगर आजी के बगैर हो तो खतरनाक बन सकती है, और कामयाबी अगर शुक्र के बगैर हो तो इंसान को अल्लाह से दूर कर सकती है। हज़रत सोलह अलैहिस्सलाम की दावत आज भी हमारे लिए वाज़े है। अल्लाह की इबादत करो, उसकी नियमतों को पहचानो, उसका शुक्र अदा करो, उसकी मखलूक के साथ इंसाफ करो, और जब हक सामने आए तो तकब्बुर की वजह से उसे रद्द ना करो। लिसनर्स, हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी नेमत, कामयाबी या सलाहियत पर फख्र करते हैं। फख्र करना और अपनी कामयाबी को महसूस करना ज़ाते खुद मसला नहीं है। असल सवाल ये है कि क्या हमारी कामयाबी हमें अल्लाह के करीब ले जा रही है? क्या हम कामयाबी के बाद भी आजिज हैं? क्या हम दूसरों के हुकूक का ख्याल रखते हैं? क्या हम नसीहत सुन सकते हैं? और क्या हम अपनी गलती तस्लीम करके अल्लाह की तरफ वापस आ सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो हमारी नेमत हमारे लिए खैर बन सकती है, लेकिन अगर नेमत हमें तकब्बुर, जुल्म और नाफरमानी की तरफ ले जाए तो हमें रुककर अपने दिल का जायजा लेना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी से मुनव्वर करे, हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बनाए, तकब्बुर और नाफरमानी से महफूज रखे और हमें हक को पहचानने और उस पर कायम रहने की तौफीक अदा फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट से मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। हेलो हेलो।

0: हेल्प लेनी पड़ती है सना से शकी भाई से कि प्लीज मुझे अपना चार्जर दीजिए तो फिर इस तरह से मुझे लगता है कि ये मेरा एक मसला बड़ा मसला बन चुका है अब मुझे बकायदा एक रिमाइंडर लगाना चाहिए सुबह सुबह मॉर्निंग्स में
1: यही मैं कहना चाह रहा था
0: मोबाइल चार्जर
1: हाँ एक
0: भूलना नहीं है मुझे
1: जो कहने का मतलब ये है कि अलार्म लगा सकते हैं
0: कुछ ना कुछ रहना चाहिए
1: भाई डेली बेसिस पे मुझे मोबाइल
0: याद दिलवा दिया करें क्या भूलते हैं सर्वर भाई सुबह सुबह
1: मैं मुझे जल्दी तो नाश्ते की रहती है मैं सही बताऊं अगर नाश्ता करके नहीं निकला हूं तो फिर दिन खराब हो ही जाता है
0: नाश्ते के बाद फिर खाने की जल्दी रहती है आपको
1: थोड़ा वक्त तो गुजर ही जाता है इतना कि न्यूज़ वगैरह कर लूं आते आते और उसके बाद हां जाहिर बात है फिर जल्दी शुरू हो जाती है बट सुबह सबसे ज्यादा जल्दी इसी बात की रहती है भूलता यूजुअली मैं नहीं हूं मैंने सारी चीजें सेट कर ली है
0: मैं कुछ लाता ही नहीं हूं
1: और मैं उनको चार चीजों में डिवाइड कर लिया मैंने वो मैं याद दिलाता
0: चार चीजों ने चार लोगों में डिवाइड कर दिया एक सना
1: लगे नहीं खाने की बात नहीं कर रहा मैं यार
0: अच्छा
1: पर्स मोबाइल चाबी और एक और चीज है जो मैं याद रखता हूँ कहना मुनासिब नहीं है आप समझ गई हैं तो वो मेरे साथ जरूर होती है सारी की सारी चीजें शायद मेरे साथ रोल लोग जो है वो रिलेट कर पाए तो मैं ये जरूर मैं अपने आप से दोहराता हूँ ये बात हाँ भाई पर्स मोबाइल चाबी और वो चौथी चीज तो मैं ये याद कर लेता हूँ उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि हाँ ये मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं और हाँ अब मैं आराम से निकल सकता हूँ जल्दी जैसे कि मैंने बताया कि मुझे नाश्ते की ही होती
0: है और जैसे आपने कहा ज्यादातर लोग ये तीन चीजें जरूर चेक करते हैं घर से निकलने से पहले फोन अपना वॉलेट और अपनी कीज ये तीनों चीजें जो आपने कही वो जर्नल एक
1: मैं देख रही थी तो भूलती ही नहीं होंगी पर्स क्योंकि इतना माशाल्लाह
0: चल रहा है साथ बड़ा और छूट रहा है मोबाइल चार्जर
1: हैवी और बड़ा और साइज उसका इतना बड़ा होता है कि वो आंखों से ओझल हो ही नहीं सकता अब हमारा तो बटुआ बेचारा छोटा सा कहीं ना कहीं घुस गया सोफे में चला गया इधर चला गया उधर चला गया या घर के किसी और शख्स ने उठा के उसमें से पैसे वैसे निकाल के कहीं और रख दिया
0: पैसे वो भी तो आपके में से कोई निकाले कुछ
1: हाँ
0: उल्टे डालने पड़ते हैं एक रियल रख लीजिए आप
1: मैं यकीन जाली है आपने इतनी अच्छी बात कही मेरी डेस्क पे एक रियाल पड़ा हुआ सुबह से अब मैं सोच रहा हूँ यार ये क्यों पड़ा हुआ है
0: आपके लिए मैंने रखा था ये पर्स में रख लीजिए खाली अच्छा नहीं लग रहा
1: छोड़ूंगा तो मैं नहीं जाहिर बात अगर वो लावारिस है तो है मेरा ही भले ही एक रियाल हो हेलो हाय वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु जी कौन है हमारे साथ
0: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खैरियत से अच्छे हैं उम्मीद करें आप भी खैरियत से होंगे
1: मोहम्मद भाई हमारे साथ
0: मोहम्मद जी
1: जी मोहम्मद भाई तो कैसे हैं कैसा गुजरा अभी तक का दिन
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अच्छा गुजर रहा है
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आगे भी अच्छा गुजरवाए भाई क्या बात है यार क्या बात है बांग्लादेश से हैं आप
0: हाँ बांग्लादेश बताया उन्होंने
2: बांग्लादेश
1: में कहाँ से किधर किधर
0: चिट्टागोंग
1: से अरे चिट्टागोंग में किधर
0: आपके पड़ोस से
2: बताइए
0: अरे ये कहीं से नहीं है हर जगह रेस्टोरेंट से हैं होटल से हैं हर बार होटल से हैं दुनिया में कहीं भी हो मैं होटल से
1: हाँ क्या क्या कहना चाहते हैं कुछ कह रहे हैं मेरे ख्याल में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मोहम्मद भाई क्या कह रहे हैं
2: नहीं मैं वही कह रहा है जो आप दोनों का ये जो काम होता है ना माशाल्लाह ये हम जितना ये परदेश में आते हैं ना ये सुन के पूरा दिन खुश रहता है मैदान पूरा भी यानी सब कुछ अच्छा रहता है
1: आपको अच्छा लगता है अच्छा और दूसरा जो हमारा बंगाली भाई है वो लोग भी सुनता है प्रोग्राम को क्या बात है यार
2: दोहा वाला
1: कबीर भी तो बंगाल से है
2: नहीं,
1: नहीं, किधर अरे वो बता नहीं रहा है आपको मोहब्बत ज्यादा बढ़ जाएगा इसलिए वो बांग्लादेश से है
2: नहीं, नहीं।
1: अरे उसका नाम पूरा मोहम्मद कबीरुल इस्लाम है मैं आपको बता रहा है आज आप पूछो उससे कभी फोन करके बताएगा
0: वो तो वहां पे उसको डांट पड़ी थी हाँ
1: वो हमारा बंगाली भाई है वो
2: मेरा हिंदी थोड़ा इधर इधर हो जाता है
0: अरे बहुत अच्छा बोल रहे
1: एक नंबर हिंदी अगर नहीं भी आता है और फोन मिलाएगा हमारा बंगाली भाई तो हम समझ जाएंगे

0: का क्या कहना चाह रहा है हमसे इंशाल्लाह ताला
1: पैसे मांग रहे हैं आपसे समझे हम
2: सलवार भाई का ना जो
1: भाई आप बहुत प्यारा बोलते हैं आपको किसी ने
0: प्यारा मेरा भाई मेरा भाई
1: बहुत प्यारा बोलते हैं माशाल्लाह
0: और मोहब्बत की
1: सलवार भाई आप
0: जी
2: मैं आपका बिरयानी का शौक है ना मुझे दावत देना चाहता है
0: अरे मेरा भाई मेरा भाई
1: खाने का शौक है मुझे भी शौक है आप इनको दावत दीजिए
0: मेरा भाई
1: सलवार भाई इनको दावत दीजिए
0: मोहम्मद भाई जैसा है यार दिल मना दिया आपने मेरा यकीन जानी
1: आप बहुत प्यारे इंसान है
0: बहुत ही अच्छी बातें भी आपकी यार
1: अब सवाल पूछने की गुंजाइश है हमारे पास
2: शुक्रिया भाई शुक्रिया
0: तो मोहम्मद भाई जब सुबह आप घर से निकलता है तो ऐसा कौन सा चीज है जो आप अक्सर भूल जाता है गाड़ी में जाने से पहले बैठने से पहले या आपको किस चीज का जल्दी ज्यादा रहता है
2: ये तो गाड़ी का चाबी है मैं हफ्ता में 3 दिन दोबारा आना पड़ता है
1: गाड़ी का अच्छा। चाबी नाइस
0: तो गाड़ी का चाबी कोई ऐसी जगह रखने का ना जो आपको दिख जाए और वो सबसे अच्छा जगह होता है एंट्री का जो डोर है ना घर का जो पहला दरवाजा है उसके पीछे आप टांग दीजिए एक उसमें हुक लगा दीजिए और तमाम चाबियां वहां टांग दीजिए और अंदर टांगिए ना उसको बाहर मत लगा दीजिएगा पता चला चाबी सब इस्तेमाल कर रहे घर के बाहर लगा दी मोहम्मद भाई ने
1: नहीं वो आइडिया क्यों नहीं बताते जो सरवर भाई आप अपनाते हैं ये अक्सर चाबियां कान पे टांगे घूमते हैं
0: वाह वाह वाह नादिया बहुत ही थका हुआ शेर था बहुत ही
1: लेकिन फायदेमंद है इनके लिए
0: जी मोहम्मद भाई तो अच्छा और जल्दी किस बात का होता है चाबी तो आप भूलता है जल्दी क्या करता है सुबह जाते वक्त घर से निकलने से पहले
2: नहीं जल्दी तो नहीं होता है फिर भी वो जो निकलने का टाइम है ना बुक तो ले लेता है मोबाइल तो ले लेता है दोनों मोबाइल का कोई मसला नहीं होता है लेकिन जब गाड़ी के पास जाता है ना तो जब पकड़ में हाथ देता है तो चाबी नहीं है
1: चाबी का मसला है
0: चलो यार मोहम्मद भाई कम से कम चाबी भूलने का और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ने का इंशाल्लाह
2: इंशाल्लाह आप दोनों का बहुत शुक्रिया है लेकिन
0: जुड़ता है
1: चलिए कभी कभी आपको आफ्टरनून में भी टाइम मिले तो जुड़िए
0: हमारे साथ भी जुड़िए इंशाल्लाह जरूर ओके
2: नहीं ये तो डेली हम सुनता है जो इसमें जो हमारा 2 बजे से नहीं सुन सकता है आधा घंटा हम डेली सुनता है हफ्ता में 5 दिन होता है तो हम 5 दिन ही सुनता है
1: चलिए जबरदस्त जितना भी आपको जब भी टाइम मिले जुड़िए भी हमारे साथ
0: जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई बहुत ही प्यारे हैं
1: बहुत ही शुक्रिया
0: बड़ी अच्छी बातें हैं आपकी यार
1: बहुत ही अच्छी बातें आपकी
2: पूरा आपने को सलाम अलैकुम पूरा आपने को सलाम है
1: हाँ जी सबको सलाम है
0: सबको सलाम कह रहे हैं मोहम्मद भाई प्यारे प्यारे बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई
1: बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज
0: क्या बात है यार देखिए
1: प्यारी बात की इन्होंने
0: मोहब्बतें
1: ना आपका नाम बड़ा अच्छा लगा
0: बहुत अच्छा मुझे भी ये सुनकर थोड़ा सा मैंने कहा यार इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं और ये नाम तो मेरा कभी किसी ने बताया नहीं हेलो
3: अस्सलाम
0: वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु कौन है हमारे साथ
3: ये आप लोग पहचानो गेस करो कौन है
1: आप पहचानिए और बताइए कौन है थोड़ा सा और बोलिए
0: मुदस्सिर भाई
3: सर सरोर भाई पहचाने सरोर भाई मैं तो बता दूंगा
0: मुदस्सिर भाई
3: मैंने फोटो देखा आपका फोटो मैंने फेसबुक में आज गौर से देखा है
1: आज गौर से आपका फोटो
0: कितना गौर से देख लिया
1: फोटो
0: क्या क्या देख लिया फोटो में आपने
3: मतलब आप मैं सब आपका देख लिया अभी
0: अच्छा
3: तो आप नहीं पहचानेंगे
0: तो क्या मेरे मतलब किसी ने कुछ कहा है ठिकाने लगाने के लिए मुझे या क्या मसला है
1: ये धमकी
0: धमकी समझूं या क्या समझूं नाम भी नहीं बता
1: रहा हाँ
3: मैंने आपका फोटो देख लिया मैंने पक्का इरादा किया आपको जरूर दावत
0: अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने कहा आप कह रहे हैं जरूर मैंने पक्का इरादा कर लिया इस बार आपको ही कुर्बान करूंगा ऐसी तो कोई बात नहीं भाई मैं बहुत ही
1: अच्छा आपको गौर से ये देखा नहीं मिस्कीन गरीब तो आप कहीं से भी नहीं है
0: अच्छा शक्ल से भी नहीं हूँ
1: नहीं जैसे आपको लोग देखते लगता है ये दूसरों को गरीब कर रहे
0: अच्छा है कौन हमारे साथ ये तो बताइए
3: मोहम्मद अय्यूब बलोच
1: भाई
0: यार क्या बात है देखिए माशाल्लाह बांग्लादेश से अब हम सीधे पहुंचे बलूचिस्तान क्या कहने यार हमारे लिसनर्स का भी जवाब नहीं हाँ
3: नाराज बलोच, नाराज बलोच
0: नाराज है। आप मुझसे नाराज है?
1: आप ही से होंगे।
3: हम नाराज

0: आप लोगों ने प्रोग्राम का टाइम ही बदल दिया।
1: ओ, ये मानते ही नहीं सर्वर भाई, मानते ही नहीं। क्या तरीका है टाइम बदलने का? व्हाट्स रॉन्ग विद यू?
0: टाइम हम सोते हैं।
1: हाँ, अगला आदमी सो रहा है, प्रोग्राम कर रहे हैं।
2: अच्छा, तो आप आपको आज पता चला कि हम लोग इस वक्त पे आ रहे हैं युब भाई?
0: नहीं नहीं, मैंने पहले भी एक बार फोन किया था, मैंने आपसे गुजारिश भी किया था कि मैंने कहा सुबह कर लो, आप लोग ड्यूटी में होते हैं एक बजे तक।
1: क्यों क्यों नहीं, मैंने भी इनसे बोला अयूब जी कि सुबह कर लो, नहीं समझ में नहीं आती बात। सर भाई क्या प्रॉब्लम है आपका?
0: सुनते हैं करते, पहले जैसे आपका शो सुनता था तो बहुत मजा आता था, अभी थके थके आ रहे हो, हम सो रहे होते आप बोल रहे होते।
1: ये बात तो सही है,
2: थके थके आ रहे
1: थके और सो रहे हैं सब कुछ।
0: अभी भी मैं फोन तो नहीं कर, इसलिए मैं आज ड्यूटी से लेट हो गया, इसलिए वो सुन रहा था लगा फोन ले, वरना
2: अरे यार एलन वो सो रहे होते
1: वरना सो जाते हैं।
2: अब इंशाल्लाह
1: कोशिश कीजिए, आप सुनिए सुबह कीजिए सर्वर भाई शो,
2: हमारे साथ जुड़ा करें और इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद सो जाया करिए झट से, क्या मसला है?
0: कोशिश करेंगे।
2: तो अयूब भाई, ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह सुबह आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, मतलब जिसको आप भूल जाते हैं और गाड़ी में या बाहर निकल के याद आता है, और ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप
1: घर के टेंशन
2: जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं?
0: मैं मोबाइल का चार्जर भूल जाता हूँ, बस
2: मोबाइल भूल जाता हूँ,
1: मोबाइल का चार्ज। अरे मेरी तरह
0: चार्ज भूल जाता,
1: चार्जर भूल जाते हैं। अयूब जी मैं खुद मोबाइल का चार्जर बहुत भूलती हूँ, तो हम दोनों एक ही
0: के लिए मुझे दो तीन दफा नीचे आना पड़ता है, फिर गाड़ी के पास आके फिर दोबारा जाना पड़ता है।
2: अच्छा, फिर भूल के चले जाते हैं
0: ये?
2: दो बार भूल रहे हैं, मतलब वापस आके कहते हैं ओहो ये तो मैं भूला था, मैं दोबारा आऊंगा। एक ही बार में अच्छा एक ही बार में ले लेते हैं भाई, चले जाते हैं, वो चार्जर जो है एक ही बार भूल रहे हैं। अच्छा, और सुबह जल्दी किस बात की रहती है अयूब भाई?
1: घर से जाने की,
0: ड्यूटी ड्यूटी जाना होता है।
2: ओके, नाश्ता करके जाते हैं घर से या बाहर करते हैं?
0: नाश्ता लेट करते हैं।
2: ओके,
1: हर कोई आपकी तरह नहीं है, पराठे खा के चलेगा।
2: चलिए,
1: इस चक्कर में सुबह का शो ये नहीं कर पाते कि मैं तो जब तक तीन चार ना खाऊं।
2: जवाब मिल गया भाई को कि हम सुबह क्यों नहीं अवेलेबल है,
1: ये इसलिए नहीं,
2: ये पराठों का जो मामला और सिलसिला है, पराठे जिम्मेदार है।
0: दावत देने सरवर भाई, मैं आप लोगों को दावत देने के लिए तैयार हूँ, आप बोले आप लोग उधर पार्सल नाश्ते का या दोपहर के खाने का जो भी आप लोग इख्तियार करो।
2: अहलन व सहलन भाई, बिल्कुल
1: और
2: बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसी बात नहीं है,
1: नहीं खिलाइए सर्वर भाई, आपको खिलाएंगे।
2: नहीं नहीं, इंशाल्लाह जरूर खाएंगे, आप क्या बात कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए, और जिस वक्त जरूरत पड़ेगी उस वक्त
0: स्वीट भी होगा, गुलाब जामुन भी होगा।
2: ओहो,
1: अब तो सर्वर भाई कल ही मंगाएंगे।
2: हाँ नहीं, अभी सोच रहा हूँ मैं, लंच के बाद ही भाई का नंबर नोट कर लो। हाँ नोट कर लो, ठीक है अयूब भाई।
0: नहीं आ सकते, मैं उधर भेज दूंगा गीता अमिता के जरिए।
2: हाँ हाँ,
1: अमिता के
2: हाथों भिजवा रहे,
0: अमिता नहीं गीता
2: तलवार।
1: चलिए, लेकिन आपकी मोहब्बत बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत
2: शुक्रिया,
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात,
2: और बड़ी ही अच्छी बातें आपकी, और बड़े अच्छे इंसान आप भाई, अल्लाह आपको खुश रखे।
1: आमीन,
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू,
1: अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे सर भाई हैं,
2: हो गए।
1: हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: अरे तो हमारे भाई,
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, अहलन वसहलन, कौन है ये तो बताइए, नाम तो बताइए।
3: बिलाहिर, बहुत काफी कोशिशों के बाद बिलाहिर नंबर मिल गया। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आप लोगों ने किसी बस का नंबर दिया हुआ है।
2: खादिम भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं?
3: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए मेरी बहन कैसी है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग खैरियत से,
3: अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों हर वक्त सरवर भाई खाने पीने की बातें करते हो, हमें भूख लग जाती है।
1: ये खाना इनका प्रॉब्लम
2: यार, मैंने तो कोई बात करी ही नहीं आज, मुझे तो दावतें आनी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
3: ना ना ना ना ना ना, आपने तो बिल्कुल
2: ना ना,
3: आप कब दावत दे रहे हैं?
1: अभी भी क्या है,
3: आप कब दावत दे रहे हैं?
2: मैं कब दावत दे रहा हूँ किसको?
1: ये सवाल बहुत ही,
2: मैं क्यों दूंगा भाई, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कौन सी दावत, किसकी दावत?
1: देखा
3: जो आपसे बात कर रहे हैं, जो आपके साथ ऑनलाइन है, कब दावत दे रहे हैं
1: बताइए सर, टाइम बता दीजिए,
2: वो कब दावत दे रहे हैं? खादिम कह रहे हैं वो लोग कब दावत दे रहे हैं, खादिम भाई भी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे उनको।
1: नहीं, आपसे पूछ रहे हैं आप कब दावत दे रहे हैं।
2: हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो दावत दी जाएगी उसके अंदर मैं तो हूँगा ही हूँगा, खादिम भाई भी हमारे साथ मौजूद होंगे, यही तो कहना चाह रहे हैं खादिम भाई।
3: अच्छा, अच्छा जी, बस सही है,
1: दावत के नाम पे इनकी अकल चली जाती है।
3: हाँ सरवर भाई, बस

0: जैसे कि आपसे दावत देने की दावत जो है ये हम जिंदगी भर नहीं खा सकते।
1: बिल्कुल
2: भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बात आपने सही कही है ये मैं मान लेता हूँ, इसका मैं एतराफ करता हूँ। ऐसी बात कोई है ऐसा नहीं है,
1: बहुत हद तक है ऐसी बात।
2: काफी दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत अच्छा चीज सुनाया।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो खादिम भाई सुबह सुबह क्या भूल रहे हैं तो बताइए, घर पे घर से निकलने से पहले, और जल्दी किस बात की रहती है?
0: जल्दी तो ड्यूटी के जल्दी रहती है, कभी लेट नहीं हुआ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह।
2: नहीं तो आपको सुबह परेशानी तो नहीं होती उठने में, या फिर ऐसा है कि आप?
0: नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं।
2: फजर के बाद सोते हैं?
0: नमाज नहीं नहीं
2: नहीं सोते हैं, तो इसलिए तो परेशानी हो ही नहीं
0: सकती। बहुत कम सोते हैं, कभी कभी
2: मुश्किल
0: नहीं तो कभी सोते नहीं, और नाश्ता बिल्कुल बराबर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि ये
2: नाश्ता बिल्कुल बराबर, मतलब अपनी हाइट के बराबर या किस तरीके से बराबर, समझे?
0: बस ये आप अपने अपने खुद
2: हमारी सेहत से मुताल्लिक,
0: मतलब आप खुद अपने आप को देखो ऐसे नाश्ता
2: माशाल्लाह। यार ये तो जबरदस्त बात हो रही है,
1: आपके बराबर का
0: मतलब
2: ये बिल्कुल वो फॉलो कर रहे हैं,
0: मोटे पराठे।
1: कौन बना रहे हैं सुबह सुबह पराठे?
2: खुद बना रहे हैं। हाँ भाई सवाल अच्छा,
0: मिलते
2: हाँ।
0: मिलते मिलते
1: अच्छा,
0: मिलते
1: मिल रहे हैं,
0: और साथ में आमलेट माशाल्लाह, वो तो हम लोग खुद बना सकते हैं माशाल्लाह, और चाय बहुत बड़ा कप, एक फोटो भेजूंगा आपको फिर।
2: वाह
1: वाह, पूरे दिन का कोटा सुबह ही।
0: जी जी जी बिल्कुल।
2: और भूलते क्या है सबसे ज्यादा?
1: शक्कर।
0: भूलने में अगर मैं आपको बताऊँ, शक्कर तो बहुत कम इस्तेमाल,
1: वो भूल जाते हैं डालना, कम से कम।
0: नहीं नहीं नहीं, बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, याद रहता है और कभी भूला नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत कम। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं नीचे आके बस में बैठ गया और वापस जल्दी बाके वो ड्राइवर को मैं बोला थोड़ा एक मिनट सफर में आता हूँ, तो सीधे जाके जब इधर उधर क्या नाम है टेबल पे देख रहा था, चश्मा अपना ढूंढ रहा था,
2: चश्मा भूल जाते हैं आप।
0: मैं भूल गया, भूला नहीं था, अभी चश्मा मैंने लगा के रखा हुआ है और लगाया हुआ है, और फिर भी मैं ढूंढ रहा हूँ।
2: वाह वाह वाह वाह, खादिम साहब बहुत अच्छे,
1: बहुत सही।
2: ये उनको पता था जो आपके साथ ऑफिस ले जा रहे थे आपको, कि आप ये हरकत कर रहे हैं अंदर जाके?
0: नहीं नहीं, किसी को पता नहीं था।
2: अल्लाह तेरा शुक्र।
0: बोलता क्या ढूंढने गए थे, मैं बोला चश्मा ढूंढने के लिए गया था, लेकिन वो तो मैंने पहना हुआ था चश्मा।
2: भाई वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: असल में ये हो जाता है,
0: हाँ वो नजर कमजोर है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं यही सोचता हूँ अल्लाह ना करे अगर भूल गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए।
2: अच्छा, नजर तो कमजोर हो गई भाई की? भाई
0: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
2: करीब की या दूर की?
0: और माइनस फाइव, करीब और दोनों दोनों दोनों, माइनस फोर माइनस फाइव है।
2: ओके, तो मतलब कितनी दूर, मतलब अगर मैं कितनी दूर से निकल जाऊँ कि आपको पता नहीं चलेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ।
0: अगर, अगर
1: आप तो दिख जाएंगे
0: में, आप तो दिख जाएंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा कि ये सर्वर भाई है कि कौन है,
1: मगर आइडिया हो जाएगा आपको देख के।
0: आइडिया हो जाएगा,
2: वो तो दिल से दिल को राह होती है भाई, वो तो मन की आंखों से मुझे,
1: माने मन की आंखें नहीं, ये मन दिख जाता है।
0: सर्वर भाई आप अगर दीवार के उस तरफ है ना, तो हम बोलेंगे सर्वर भाई उस तरफ खड़े हैं।
2: मेरा भाई कैसा, खादिम भाई जैसा।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
2: एलन, बहुत शुक्रिया भैया हमें कॉल करने के लिए,
0: बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
2: अरे यार, आप लोग वक्त निकालते हैं भाई डेली डेली, माशाल्लाह हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे लिए इससे खुश नसीबी और क्या होगी इससे ज्यादा यार, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: FM 107 का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम और ये सब दे रहे हैं हमें। यकीन करें कि जब भी मैं कॉल करता हूँ तो वो कहते हैं ना, वो हल्का हो जाता है, वो जो दिल
2: हल्का हो जाता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी परेशानियां दूर करे खादिम भाई,
0: बहुत शुक्रिया,
2: दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
0: इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नवंबर में इंशाल्लाह जाने का इरादा किया हुआ है, इंशाल्लाह
2: कामयाब करे खैर के साथ इंशाल्लाह।
0: सरोवर भाई अगर आपने कुछ भेजना है, मुश्किल नहीं है तो फिर मुझे दे दो, मैं लेके जाऊंगा साथ में।
2: नहीं मैं मंगा लूंगा इंशाल्लाह ताला, भेजना तो नहीं चाहूंगा, मंगा लूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है,
0: चलो ओके, बहुत शुक्रिया।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: घड़ी में हो रहे 2:05 और अब आइए भाई बढ़ जाते हैं मैसेजेस की जानिब। और यहाँ पर खूब सारे मैसेजेस हैं। तौफीक भाई हमारे साथ हैं, कहते हैं क्या सरो भाई नादिया, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: तौफीक अलवाकरा से यहाँ पर कुछ फोटोज भेजे हैं। आसिफ भाई का नंबर प्लीज। कौन से आसिफ भाई?
3: यहाँ तो बहुत सारे हैं।
2: मोमिन बुखारी हमारे साथ और कहते हैं, क्या कहते हैं, कहाँ से शुरू करूँ? गुड मॉर्निंग कतर तमाम लिसनर।
3: आफ्टरनून से शुरू।

0: हाँ
1: है।
0: यार वाला यही दिख रहा है मुझे सर। ये तो फिर दूसरी बातें हैं जो मैं पर्सनल मैसेज मुझे भेजते हैं मोबिन भाई, सबको विश कर रहे हैं भाई, सब आफ्टरनून समझ लें इसको और उनको भी बधाई दे दें। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद कबीरुल इस्लाम को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह
1: कबीरुल इस्लाम जी। वालेकुम अस्सलाम
0: मकसूद साहब ने सलाम भेजा है कबीरुल इस्लाम साहब को। ये सुबह वाले कबीरुल इस्लाम बांग्लादेश से आज हमने खुलासा किया तो ये उनको तो इंशाल्लाह ताला कल से
1: बांग्लादेश के पीछे से
0: कल सुबह आप इंशाल्लाह कबीरुल इस्लाम साहब को जरूर विश कीजिएगा। कहते हैं सलाम
1: सलाम
0: सरवर भाई या नाजिया बहम वही इसी तरीके से लिखा है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: आप दोनों को मैं डिलीवरी का काम करता हूं और जहां पे हैं वहां पे भी बताया है और डेली अच्छा। सुनता हूं आप लोगों को। आज पहली बार मैसेज किया है सुबह सुबह हमें nice. अपने शिफ्ट के जोन में जाने की जल्दी होती है और इसी जल्दी में नाश्ता भूल जाता हूं। आप कोई टिप दे दें खाना ना भूला करें। फहद जमाल है हमारे साथ। फहद भाई
1: हम यही कहेंगे कि हम टिप्स आपको बहुत सारी देंगे, एक नहीं बहुत सारी चीजें जो आपकी मॉर्निंग को स्ट्रेस फ्री बनाएंगी।
0: बिल्कुल बताएंगी। और फहद भाई मेरा भाई कैसा, फहद भाई जैसा पहली बार मैसेज किया, इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहिए।
1: और एक टिप जो बहुत ही कॉमन है वो मैं यही कहूंगी कि रात में ही थोड़ी तैयारी करके रखें।
0: रात में नाश्ता करके सो जाया करें,
1: नाश्ता करके क्या हर्ज हो गया? अपने कपड़े, अपनी क्लोथ्स, अपने आईडी, अपने कीज, अपने मोबाइल, अपने चार्जर, अपने चीजों को सबको बैग में रख लें। इससे क्या होगा ना, सुबह आपका रश कम होगा।
0: बात तो सही, बात तो
1: सही। और 10 से 15 मिनट पहले भी अगर आप उठ रहे हैं, थोड़ा सा लेट भी हो गए, फिर भी आप रिलैक्स फील करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है मैं कहती हूँ हमेशा हमेशा जस्ट राइट डाउन समवेयर।
0: मोहम्मद हुसैन कहते हैं भाई आपका सुपारी मिल गया है भाई साहब को। भाई मैं यही बात कह रहा था। अस्सलाम वालेकुम सुरभाई नाजिया मैम कैसे हैं
1: दोस्तों? जितने लोग भी कॉल कर रहे हैं ये भाई मुझे ना गुड आफ्टरनून।
0: मैं तो डेली कभी पर्स कभी ब्लूटूथ भूल ही जाता हूँ। सुबह का टाइम इतना कम होता है, टाइम इतना फास्ट भागता है।
1: टाइम
0: देखो तो 5:15 हो रहा होता है और एकदम से 5:30 हो गया होता है। मुमताज तेरे नाम से शुरू होती है मेरी सुबह, तेरे ख्यालों में ही ढलती है मेरी हर शाम। मुमताज भाई कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर भाई कैसे हैं आप? सर मैं अक्सर वो चीज़ भूल जाता हूँ जो पहले से सोचता हूँ कि सुबह अपने साथ लेकर जाऊँगा। सुबह निकलते वक्त याद ही नहीं रहता। मेरे साथ यूजुअली सिर्फ फ़ोन और गाड़ी की चाबी होती है, बाकी वॉलेट वगैरह सब गाड़ी में ही रहता है। और सर अक्सर मैं काम पर जाते वक्त, ड्यूटी पर जाते वक्त लेट हो जाता हूँ तो मैं अक्सर कपड़े गाड़ी में ही चेंज करता हूँ।
1: इतना
0: गोविंदा मेरा भाई अरबाज खान सलमान खान का भाई होकर हरकत है गोविंदा वाली। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को गुड आफ्टरनून। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त अपना फ़ोन या कभी अपने पानी की बॉटल भूल जाती हूँ। कौन है मैम? हमारे साथ समीरा अजीज हैं।
1: समीरा
0: तो शायद हम
1: इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें रात में ही आप प्लीज तैयार कर लें जिससे आपके भूलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं और फिर कुछ और मैसेजेस भी। हेलो
2: सलाम
1: वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। कौन है हमारे साथ?
2: मेरा नाम रियाज है।
0: अच्छा रियाज भाई अहलन व सहलन, कैसे हैं? खैरियत से हैं?
2: ये हमारे सर्वर भाई एक बार वो स्पीड पकड़ लेते हैं ना पढ़ने का।
1: हाँ वही होता है, फिर कॉल
2: हमको मुखा नहीं मिलता।
1: हाँ
0: अरे आज भाई हम कह रहे थे कि ये अगर हम मैसेज अदा नहीं करेंगे तो मैसेज भेजने वाले भी तो हमसे नाराज हो जाएंगे ना, तो मैसेज भी तो पढ़ना जरूरी है ना।
1: पर असली कहानी ये है
0: रियाज भाई
1: असली कहानी ये है कि दावतें भी मैसेजेस से ही आ रही है।
0: ज्यादा लोकेशन
1: तो फोकस वही है। हाँ, शेयर फोकस है। रहता है इनका,
2: इसका रुझान ज्यादा उस तरफ इसलिए जाता है कि मतलब शायद लिस्ट में किसी बिरयानी का जिक्र हो, किसी डिनर का जिक्र हो, किसी का।
0: समझ गए यार, ये तो पहचान गए मुझे।
1: माशाल्लाह समझदार है
2: माशाल्लाह। सर्वर भाई आपको मैं 2020 से सुनता आ रहा हूँ, 6 साल हो गए।
0: अच्छा
1: अलग बात है कि मतलब
2: कनेक्ट सुनता रहता हूँ लेकिन कार करने का मौका कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह FM 107 के साथ पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ।
0: अहलन व सहलन भाई, ये मोहब्बत है आपकी और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आफियत दे।
2: आप लोग ये मोहब्बत डिजर्व करते हो भाई।
0: अरे सर अरे अरे अरे अरे अरे अरे
2: कुछ भी नहीं है।
0: चलिए बस तो फिर एक दावत हो जाए।

0: बात है, क्या बात है भाई रियाज भाई,
1: तो रियाज जी छा गए बहुत
0: अच्छा होमवर्क कर रहे हैं
1: माशाल्लाह
0: कर रहे हैं
1: टॉपर है भाई
0: अच्छा,
1: टॉपर
0: इस तरीके के जब बातें होने लगती मुझे मुझे लगता है मुझे धमकियां दी जा रही हैं मंसूरा की तरफ आ रहा हूं
1: नहीं नहीं आपका जुगाड़ बढ़ता चला जा रहा है दावत का
0: अच्छा
2: दावत के लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ ना आप दावत दोगे तो छोटी मोटी दावत दोगे तो
1: छोटी तो नहीं होगी
0: इन बातों में एक बात का एहसास हुआ बड़ा बड़ी मोहब्बती मोहब्बत की बातें रियाज भाई की और सारी बातें बड़ी अच्छी मगर अफसोस ये हुआ कि अब मुलाकात नहीं हो पाएगी रियाज भाई से कैसे भी करके कोचिंग
2: हम सुबह सुबह सुबह एक बार के क्लास में मतलब हाजिर लगाते हैं सुबह सुबह तो हमें आइडिया हो जाता है आपका मतलब होमवर्क हमारा उधर हो जाता है ना
0: अच्छा कबीरुल इस्लाम साहब के साथ फ्रॉम बांग्लादेश यस मेरा भाई कैसा कबीर भाई जैसा फ्रॉम बांग्लादेश तो बस ठीक है यार मतलब कभी कभार नाम अपना पूरा बता देना चाहिए पब्लिक को पता नहीं क्यों छुपाया उन्होंने बट एनी हाउ अब पता चली गया आज तो इंशाल्लाह आप हमारा भी सलाम पहुंचाइएगा सुबह सुबह उनको मेरा और नाजिया का सलाम पहुंचाइएगा जरूर ठीक है तो ये तो बताइए कि सुबह जल्दी किस बात की होती है और क्या भूल जाते हैं
2: सरवर भाई मेरे मेरे एक एक दो बातें हैं कि एक तो गाड़ी की चाबी
0: चाबी
2: अक्सर मुझसे छूट जाती है
0: अच्छा मैं नहीं
2: हाँ ये मतलब मेरा
1: तो कान पे लटका गया
2: और मैं मेरा ये होता है कि मेरे पास अक्सर चाबी रहती है लेकिन मैं फिर भी भूल जाता हूँ कि मैंने लिया है कि नहीं
0: ये क्या बात है वापिस आते हैं फिर तो चाबी जबकि जेब में होती है वापिस आते हैं घर
2: वापिस आते हैं कभी तुम कभी मैं अच्छा मजे की बात यह है कि मैं अभी जैसे रूम पे जा रहा हूँ कोई चीज लेने के लिए या कुछ भी चाहिए होता है तो मैं जब तक रूम पहुंचता हूँ तो रूम में खड़ा हो जाता हूँ और सोचता हूँ मैं किस लिए आया हूँ
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह बस इसी तरह एक आध बार अपना बटुआ मेरे साथ भूल जाइएगा इंशाल्लाह ताला नहीं नाजिया के साथ भी ऐसी होता है रियाज भाई एक्चुअली ये जब इनके साथ जो भी होता है साथ निभाने वाले सुबह घर घर के जो भी अफराद में से कोई एक फर्द भी होता है अगर तभी चाबी वगैरह जैसे भूल जाती है तो कहते हैं ओ हो जाओ जब जल्दी से नाजिया चाबी देख कर आओ कहाँ है ये जाती है देखती है टेबल पर रखी है जहाँ भी टंगी है वापस आके बताती है कि हाँ चाबी वहीं पे थी तुमने तो कहा था मैं देख के आऊँ तो ये देख के आ जाती है वापस लेके नहीं जाती फिर भी तीन चार चक्कर इसी में लग जाते हैं सुबह इनके
1: वाह आप यही चक्कर लगा रहे मेरे घर के ही चक्कर लगा रहे हो इसीलिए भूल रहे हैं सब काम
2: आप नाजिया के बारे में तो बोल रहे हो अभी आपको अपना बताना पड़ेगा
1: हाँ अपना बताइए
0: यार मैं हूँ इतना अच्छा रियाज भाई क्या करूँ सभी से बात करनी है और नाजिया दो चार
1: मैसेजेस भी
0: अदा करके और फिर आगे बढ़ते
1: बिल्कुल यहाँ पे हमें मैसेज है मोहम्मद यूसुफ जी का हम दोनों को सलाम का है
0: सलाम रहमतुल्लाह
1: कैसे हैं आप दोनों
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: होप वेल एंड वेलकम टू एनर्जी आर दिल से देसी और हैप्पी वाली वेंसडे आफ्टरनून भी कहते हैं फिर आगे कहते हैं मोहम्मद यूसुफ जी कि सुबह यूजुअली मुझे अटेंडेंस पंच इन करने की जल्दी होती है मैं नहीं चाहता कि ऑफिस लेट पंच इन करूं ये बहुत सही कहा आपने कभी कभी कार की कीज भूल जाता हूं वैसे तो हमेशा कार की कीज मेरे ट्राउजर के पॉकेट में ही होती है लेकिन कभी हॉल में हुक में हैंग कर दिया तो सुबह सुबह निकलते वक्त भूल जाते हैं
0: पर
1: इट्स रियली रेयर क्योंकि सब चीजों के पीछे बताएं क्या स्किल है ऑर्गेनाइज्ड होने की स्किल जो सरवर भाई के पास से छू के भी नहीं
0: अरे यार करीम भाई कह रहे हैं कि हमें भी तो भाई किसी दिन कॉल किया करिए नाजिया करीम भाई हमारे कॉल के इंतजार में भाई
1: भाई हम तो कहते हैं
0: मेरा भाई कैसा सरवर भाई जैसा मोहम्मद अशफाक हमारे साथ बढ़ते हैं आगे मुबीन बुखारी साहब का यहाँ
1: कॉल ले लूं क्या
0: क्या हाल है अस्सलाम वालेकुम सर जी के खबर
1: खबरदार दार रहे क्या हेलो
3: हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि कौन है हमारे साथ
3: आसिफ अंसारी
1: अरे आप ही का तो नंबर मांग रहा था कोई अभी और तफीक जी

0: कर रहे थे ना आसिफ का ही, तो उन्होंने बोला था नंबर दे दो, आप ही का था। अगर ऐसा नहीं, अगर हमें, चलिए पूछ लेंगे तौफीक जी से, आसिफ अंसारी जी का मांग रहे थे कि किसी और का। कैसे हैं आप, खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों भी खैरियत से हैं। आज पूछ ये रहे हैं कि वर्किंग डेज में सुबह सुबह निकलते वक्त आप कुछ भूल जाते हैं, जल्दी में होते हैं?
1: वॉलेट
0: आप भूल जाते हैं? ओहो, ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, आप कैसे भूल जाते हैं?
1: एक्चुअल चेंज करने में रात को जो है ट्राउजर रह जाता है ना अक्सर करके।
2: अच्छा,
0: अब सर्वर दूसरे कौन से हैं, मैं हत्यालू?
1: इतना पैसा नहीं होता, परेशान मत हो।
0: अच्छा, कार्ड होता है
2: इसमें, तो हमें परेशान कहाँ होना था?
1: नहीं, कार्ड वार्ड होते हैं भी आगे नहीं इंडिया के।
0: अच्छा
2: अच्छा,
0: तभी आप कम परेशान होते हैं, ये कुछ भी कहीं में छूटे
2: तो फिर क्या हो गया? फिर तो ठीक है, अब चार पांच जगह छोड़ दिया करें सामान को, क्या मसला है, कोई ऐसी बात नहीं।
1: वैसे सरवर भाई आज दावत बांट रहे थे, मैंने कहा मैं भी हिस्सा ले लेता हूँ।
2: अरे अहलन वसहलन, बिल्कुल बिल्कुल सर,
0: मुझे लगता है सरवर भाई आपको
2: मैं टाइम अनाउंस करूंगा, इंशाल्लाह ताला सब पहुंचे वहाँ पे।
0: आप दावत दे रहे हैं लोगों को,
1: फाइनल सारे पहुंच जाए और आप ना पहुंचे,
0: इसके तो
2: क्या समझदारी की बात करी है आपने।
1: और नादिया जी की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी,
2: एक ही चीज,
1: खुद तो चार्जर भूल जाते हैं और दूसरों को बता रहे रात से प्रिपेयर कर लिया करो अपने आप को।
0: नहीं देखिए, ये चीज तो मैं अपने आप को भी कहती हूँ, रात में प्रिपेयर करो, और जब मैं रात में करती हूँ तब मुझे परेशानी नहीं होती।
2: ये चार्जर को प्रिपेयर करके जहाँ भी प्रिपरेशन चल रही है, जो बड़ा काम चल रहा है रात में सामान जमा करने का, उसमें रखती भी है मगर फिर भी भूल रही है।
0: रात में नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं रात में फोन चार्ज करती हूँ।
2: मैं तो यार बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो साबित करे थे।
0: नहीं देखिए, मैं
1: इतना बड़ा बैग होता है, वो भूलने का कोई सवाल ही नहीं है।
2: नहीं तो उसके अंदर
0: बैग भी तो चेंज होते रहते हैं,
2: उसके अंदर सामान खोने का तो सवाल है, भूलने का सवाल नहीं।
0: लेकिन बैग्स भी तो हम लोग चेंज रहते रहते हैं ना अपने आउटफिट के हिसाब से। अरे तो दो चार में मेरे पास चार फोन और चार चार्जर तो नहीं है। और सबसे बड़ा चार्जर के साथ मसला है कि रात में चार्जिंग पे लगा होता है फोन, तो कई बार सुबह सुबह, उन्हें हमेशा नहीं, कई बार ऐसा हुआ।
2: नहीं, हमने मान लिया, नादिया से गलती नहीं हो सकती भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने कहा
1: आज तक अपनी गलती मानी है,
2: अब फिर कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए
0: मैंने आते ही मान ली।
2: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भाईजान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, शुक्रिया, थैंक यू सो
0: मच।
2: सादत आफरीदी हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, ड्राइव करते वक्त आपको सुन रहा हूँ और अचानक से ख्याल आया कि आप कबीर भाई को दोहा वाला कबीर के बजाय बंगाल वाला कबीर बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो वहां से भी हैं, दोहा के भी हैं, बंगाल के भी हैं, हर जगह का मेरा आदमी, तो मतलब मेरा दोस्त, मेरा
0: जगा,
2: भाई,
0: जगह
2: जगह जगह जगह जगह से पाए जाते हैं, और पाए खाने वाले पाए नहीं है कभी आपने जगह जगह पे पाए, तो साहब कहते हैं
0: वैसे उनका ताल्लुक टेंशन से है।
2: कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई मैं आजकल में तो बात करते करते भूल जाता हूँ। अच्छा, बात करते करते भूल जाता हूँ, क्या बात कर रहा हूँ? फिर जिस बंदे से बात
0: करता हूँ, ये तो सर्वर भाई की भी बात है,
2: उससे पूछता हूँ
0: आज तक इन्होंने सर्वर
2: मैं, फिर बताओ भाई ये बात थी।
0: अरे भाई यही प्रॉब्लम सर्वर भाई में है,
2: ये नाम नहीं बताया,
0: ये बात करेंगे, अब मुझे याद ही नहीं
2: है।
0: बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी, सब लोग आ गए बैठ गए। हाँ बताइए
2: भाई, अरे नाम तो बताते आप। हेलो भाई,
0: सर्वर भाई आपने मुझे कहा था कि दो बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताऊं, आज तक आपको याद नहीं, याद ही नहीं आती भैया।
2: क्या हम पूछ सकते हैं सर्वर भाई के वास्ते कितने हैं वास्ते?
0: हाँ ऐसे कैसे आए वास्ता लगा कर,
2: मेरे वेस्ट तो नहीं कहना चाह रही है और इतनी गलत टाइप कर दी हो। आसिफ भाई कह रहे हैं कि हमारे सरोवर भाई कैसा, पैसा ही पैसा, और इस पे कॉल करो नाजी के गुजाइश है,
0: हमारे पास कॉलर
2: हैं, हमारे पास आसिफ भाई, अगर वक्त मिल गया और हमारे पास भी वक्त रह गया तो जरूर इंशाल्लाह ताला। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक
2: अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बिल्कुल ठीक है, आप कैसे है?
3: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुदस्सिर बात कर रहा हूँ।
2: मुदस्सिर भाई, मुदस्सिर भाई बहुत दिनों बाद तशरीफ लाए। नहीं नहीं, वो वाले नहीं है, ये मुदस्सिर भाई 2 to the power 2 है।
0: अच्छा, ये वो नहीं है।
3: नहीं, मैं वही हूँ जो तुमको बचाया था नाजिया में एक दिन।
0: अच्छा, ये वही है
2: आपको बचा लिया था?
3: हाँ।
2: यार क्या आपने गलती करी है, अल्लाह की कसम, जाने देते भाई, क्यों बचाया?
3: नहीं नहीं नाजिया, नहीं नाजिया, मैं मुझसे उस दिन कुछ नहीं बोला था। अच्छा टाइम कम है, मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं जब घर से निकलता था तो फिर मैं फर्स्ट में कार का की भूल जाता था।
2: ओके,
3: तो फिर मैंने ऐसा किया, वो जो घर का की नहीं होता है और साथ में उसमें लगा दिया, क्योंकि जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो वो की जरूरत होती है।
2: सही सही सही सही सही सही।
3: और दूसरा बात ये, जैसे नाजिया मैम ने बोला ना कि जब तुम रात को थोड़ा सेटिंग करोगे ना तो फिर चीज भूल नहीं जाती और जल्दी में। तो मैं पहले ज्यादा रात में सेटिंग करता हूँ।
0: वैसे सही कह रहे, रात में चीजें अगर आप तैयारी कर लेते हैं
3: तो परेशानी नहीं। सब कुछ मैं एक टेबल पे रखता हूँ जब सुबह निकलता हूँ।
2: बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, देखिए सब मुदस्सिर भाई की कोशिश करें। ओके भाई, ओके अल्लाह हाफिज।
0: भाई मुझे ये बहुत ही जबरदस्त कॉलर लगे। टू द पॉइंट बात करना,
2: दूसरों की मदद करना इनका मकसद ज्यादा था।
0: और देखो टू द पॉइंट इन्होंने बात की, शॉर्ट में बहुत ही अच्छी क्रिस्प बात। एंड यू नो
2: अली मकसूद हमारे साथ हैं और सबका सलाम दुआ।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: हुसैन भाई थे ये जिससे पहले मैसेज हम अदा कर रहे थे
0: और हमारे साथ एक और कॉलर,
2: इस नंबर पे कॉल करेंगे भाई तो हम नहीं रिसीव कर सकते, व्हाट्सएप वाले पे कॉलर हैं और टाइम भी कम है।
0: हेलो
4: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जसीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसीम भाई कैसे हैं? बहुत सारे लोग नादिया कॉल करने के लिए कह रहे हैं बट हमारे पास लाइन बिजी है,
4: टाइम ही नहीं मिलता। टाइम मेरा भी लास्ट में देख के उठा रहा है कि हाँ चलो टाइम कम है, जल्दी से उठा दो।
2: है है है, क्या शेर सुनाया भाई। वाह जसीम साहब, खैरियत से हैं आप? तो क्या ऐसी चीज है जो जैसी भाई भूल जा रहे हैं आप रात में, जो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं आप, और क्या ऐसा है जो भूल जाते हैं सुबह और जल्दी किस बात की रहती है?
0: इन्हें सोने की जल्दी रहती है।
2: वॉलेट भूल जाते हैं
4: जी हाँ। नहीं ये बात भी सही है कि मुझे सोने की जल्दी रहती है, ये भी बात सही है।
0: हाँ नहीं आपने बताया तो मैं सो जाता हूँ।
4: सुबह को जल्दी से सो जाओ।
2: अच्छा तो वॉलेट ज्यादातर भूल रहे हैं, तो उसको कुछ मतलब ये आदत को सही करने के लिए कुछ किया कभी?
0: जरूरत ही नहीं पड़ी
4: अभी तक तो कुछ ट्राई नहीं किया भाई, तो बता दो कुछ टिप हो तो।
0: सबसे बड़ी टिप है कि रात में थोड़ी तैयारी करनी है।
2: नहीं तो वॉलेट में कुछ ऐसा होता है जब भूलने के बाद फर्क पड़े हमारी जिंदगी में?
4: तो भाई साहब वॉलेट में सब कुछ
0: नहीं नहीं, आईडी कैरी जरूर कीजिए।
2: नहीं नहीं आईडी की बात नहीं कर रहा मैं, तो माल की बात कर रहा
0: हूँ। माल तो चलो जो हाल आपका है वो है,
4: सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है
0: कॉपी पेस्ट।
4: कार्ड
2: भी उसी में होते हैं। हाँ नहीं ये तो बात है यार। और ज्यादातर चाबी और बटुआ मर्द हजरात, और मेरे ख्याल में
0: ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका होता है, और कहीं रैंडम कोई चेकिंग हो जाए कुछ हो जाए तो उस चीज का भी ख्याल रखिए थोड़ा सा।
2: सभी को हमारे भाइयों को पता है कि
0: मोबाइल में भी लोग रखते हैं, ठीक है,
2: बट उसको फिजिकली
0: दोनों तरह से रखिए,
2: बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइसेंस भी, आपकी आईडी भी,
0: इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं,
2: ख्याल करें।
0: और वो आपकी गाड़ी में भी होने चाहिए, और अगर आप पर्स में रखते हैं, अपने वॉलेट में रखते हैं, तो वहाँ भी होना चाहिए। सो बस तैयारी थोड़ा सा पहले कीजिए, और कोशिश कीजिएगा, तैयारी नहीं हो सकती तो थोड़ा सा पहले उठ गए सुबह अगर हो सके।
4: इंशाल्लाह मैंने एक चीज और कोशिश की थी, बताऊंगा बाद में, टाइम कम है बाद में बताऊंगा।
0: और एक चीज मैं आपको और मैं टिप देना चाहूंगी, आपका जो फोन है या वॉलेट है यानी जो भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उनकी एक फिक्स जगह बनाइए। पहले मैं भी अपना फोन इधर उधर डालती थी, फिर मैं पता चला फोन ढूंढ रही हूँ कहाँ है, कहाँ है, इसके नीचे उसके नीचे, फिर मैंने सेट कर लिया कि ये मेरी फिक्स प्लेस है, और फिर मुझे सुबह सुबह किसी तरह की कोई हासिल वसल नहीं होती, आसानी से वहां से मिल जाता है। तो सी इफ इट वर्क्स फॉर यू, कोशिश कीजिएगा। चलिए
2: ऑलराइट जासिम भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।
0: और एक और कॉलर ले लेते
2: हैं। कॉल मी के मैसेजेस बहुत हैं
0: अभी हमारे पास, जो कॉल्स आई हैं
2: मजबूरी भी बता रहे हैं। बहरहाल हाँ बिल्कुल, हमारे पास लाइन, दोनों ही लाइन हमारी फुल है, और अभी हम एक कॉलर से कनेक्ट हो रहे हैं।
0: हो गए। हेलो अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों खैरियत से, आप कैसे हैं?
5: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपना लंच बॉक्स जाना वो जाना वो करता हूँ, भूल जाता हूँ।
2: जानबूझ के तो नहीं भूल रहे आप? कौन बना, खुद बनाते हैं या कोई बना के दे रहा है आपको?
5: नहीं नहीं खुद बनाता हूँ भाई।
2: खुद बनाते हैं तो जानबूझ के नहीं भूल रहे होंगे, कोई और बना के दे रहा होता और अच्छा नहीं लग रहा होता तो आदमी यूजुअली भूल जाता है, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता
5: हूँ। खुद बनाता भाई, खुद बनाता हूँ,
2: खुद बनाते हैं।
5: आज भी मैं छूट गया, आज भी जरा।
2: अच्छा तो फिर आज से ऐसा, क्या नाम बताया भाई ने?
0: बताए
2: अशफाक भाई आज से ऐसा करें कि
5: बहन बताया
2: अच्छा नहीं उसको ऐसा करें कि आज से आप लंच बॉक्स में कुछ रखें नहीं, चालाकी करिए जरा लंच बॉक्स के साथ, आप समझे ना उसके अंदर कुछ हो गई नहीं, आप भूली हो गए तो लंच बॉक्स कच्ची हो गई हमारी
5: मेरे ख्याल में जो है ना अभी

0: मैं सोच रहा हूँ कि जो गाड़ी की चाबी है ना वो नहीं मैं भूलता।
1: अच्छा, तो वो उसमें रख दिया करें,
2: लंच बॉक्स में रखिए
1: और जल्दी में उसको चबा मत जाइएगा, दांतों की भी उम्र होती है, मैं आपको बता दूं।
0: ओके भाई, टाइम शो है,
1: ओके भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़।
2: आखिरी
1: कॉल जो आ रही है, शॉर्ट आ रही है, बीच में एक मैसेज भी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपसे कौन नंबर पे बात हो सकती है? सरूर भाई, शमशाद है हमारे साथ, दो बार शमशाद
2: बता दीजिए उन्हें नंबर,
1: पहले वाले शमशाद को भी वही बता दूं, दूसरे वाले को भी,
2: दोनों को।
1: तो भाई नंबर है 4434377443447।
2: एक कॉलर हमारे साथ है।
1: हाँ, हेलो।
2: यस यस,
1: बिल्कुल, लबीबा सलाम रहमतुल्लाह।
3: अस्सलाम वालेकुम हबीबी।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वो खैरियत से हैं तौफीक भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत सब ठीक ठाक।
1: जल्दी से ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जो सुबह भूल रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज है जिसकी आपको जल्दी रहती है?
3: सुबह तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब बेगम बोलती है सुबह वाकत से ये चीज लाओ, पांच छह चीज बोलती है ना, मैं दो चीज लाता हूँ, तीन चार चीज भूल जाता
1: हूँ। वो तो आपकी चालाकी है, क्योंकि आप जानबूझ के भूल रहे हैं ताकि पैसा कम खर्च हो।
3: मैं सर्वर हूँ क्या, पैसे बचत नहीं करता हूँ, भूल जाता हूँ।
1: अब वो सब यही कहते हैं, नाम मेरा ही बदनाम हो रहा है, काम सब अपने अपने कर रहा है।
3: तेरे क्या करें, तेरा बॉडी ऐसी है ना, इसलिए बोलते आदमी लोग।
1: क्या मतलब है यार, उससे क्या मतलब है, ये भी कनेक्ट ही नहीं हुआ है।
2: सर्वर भाई,
1: ये तो नदी वाली बात हो गई।
2: सर्वर भाई, आप अपने घुटनों से निकाल लीजिए।
1: तौफीक भाई, कल इंशाल्लाह आपको अल्लाह तौफीक दे और हमारे साथ आप कनेक्ट होइएगा, तो इसका जवाब आप कल लेके जाइएगा मुझसे, अभी वक्त बहुत कम है। शुक्रिया बहुत बहुत कॉल करने के लिए,
2: थैंक यू सो मच।
1: ऑलराइट देन,
2: जाते जाते दोस्तों आपसे यही कहेंगे कि एक ऑर्गेनाइज्ड मॉर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो सिर्फ आपका वक्त नहीं बचाती, आपके पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाती है, स्ट्रेस फ्री बनाती है, और उसकी शुरुआत करनी तो भाई लोगों रात से ही पड़ेगी।
1: बिल्कुल, उसकी शुरुआत कीजिए, और सभी से माजरत जिनसे बात नहीं हो पाई, जिनको हम कॉल नहीं कर पाए, जिनके मैसेज नहीं ले पाए और जिनकी कॉल भी अटेंड नहीं कर पाए, इंशाल्लाह ताला कल
2: माजरत मत कीजिए, दावत अनाउंस कीजिए।
1: इंशाल्लाह ताला कल आप हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा, इस वक्त पे 1:30 बजे सरवन नाज़िया आपको मिलेंगे ओनली ऑन FM 107।

इनका असल नाम था मार्कोस एवेंजेस्टेला डी मोरेस, लेकिन लोग इन्हें काफू से जानते हैं, ब्राजीलियन फुटबॉल के वन ऑफ द लेजेंड्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। यहां बात आज हम करेंगे काफू के बारे में, ब्राजील का एक्सप्रेस ट्रेन। काफू 7 जून 1970 को ब्राजील के साओ पाउलो में पैदा हुए। उनका फुटबॉल करियर साओ पाउलो FC से शुरू हुआ और बहुत जल्द ही उनकी स्पीड, स्टैमिना, अटैकिंग रन्स और डिफेंसिव एबिलिटी ने उन्हें ब्राजील के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों में

में शामिल कर दिया। काफू की सबसे बड़ी खासियत उनकी इनक्रेडिबल फिटनेस थी। आज भी वो बड़े फिट देखते हैं, आज भी वो पूरे मैच में राइट फ्लैंक पर कंटिन्यूअसली अटैक भी करते हैं और डिफेंस में वापस भी आते हैं। इसी वजह से इटली में उन्हें एक्सप्रेस ट्रेन कहा जाता था। कहा गया है कि काफू को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। फीफा के मुताबिक उनकी एनर्जी और स्टैमिना उनकी पहचान बन चुकी थी। ब्राजील के लिए काफू ने 142 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जो ब्राजील मेंस नेशनल टीम के लिए एक रिकॉर्ड है। उन्होंने नेशनल टीम के लिए 5 गोल्स भी स्कोर किए। उनका इंटरनेशनल करियर 1990 से 2006 तक फैला रहा। लेकिन काफू का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड फीफा वर्ल्ड कप से मुतालिक है। वो फुटबॉल हिस्ट्री के वाहिद प्लेयर हैं जो 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप फाइनल्स में खेले, 1994, 1998 और सन 2002। 1994 में ब्राजील ने इटली को पेनल्टीज पर हराकर वर्ल्ड कप जीता। 1998 में ब्राजील फ्रांस के खिलाफ फाइनल हार गया था, जबकि 2002 में काफू ने ब्राजील की कप्तानी करते हुए जर्मनी को 2-0 से हराकर अपना दूसरा वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिफ्ट की। सो टोटल देखा जाए तो 4 वर्ल्ड कप्स 1994, 1998, 2002 और 2006 में ब्राजील को काफू ने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल्स में 20 मैचेस खेले, जो ब्राजील के लिए रिकॉर्ड है। अच्छा, वर्ल्ड कप का सक्सेस भी थोड़ा बता देता हूँ। 1994 का वर्ल्ड कप फाइनल काफू के लिए खास था। वो टूर्नामेंट में रेगुलर स्टार्टर नहीं थे, यानी प्लेइंग 11 में वो कभी भी इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन फाइनल में राइट बैक चोर्गिनो के इंजर्ड होने पर काफू फर्स्ट हाफ में सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे और ब्राजील के लिए इटली को पेनल्टीज में शिकस्त दी। 1998 में वो ब्राजील के स्टार्टिंग लाइनअप में थे और राइट बैक पोजीशन उनका पोजीशन बन गया था और टीम फाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल में जिदान के मैजिक के सामने ब्राजीलियन टीम लॉस्ट 3-0। 2002 में काफू का करियर अपने पीक पर रहा। ब्राजील ने रोनाल्डो, रिवाल्डो, रोनाल्डिनो और काफू जैसे बड़े स्टार्स के साथ टूर्नामेंट में फतेह हासिल की। फाइनल में जर्मनी को 2-0 से हराकर ब्राजील ने अपना 5वां वर्ल्ड कप टाइटल हासिल किया और काफू ने कप्तान के तौर पर ट्रॉफी उठाई। एंड दैट वाज अ मेमोरेबल पिक्चर, स्टिल आज भी फ्लैश होते रहता है, बिकॉज उस वर्ल्ड कप के बाद ब्राजील अभी तक कोई भी वर्ल्ड कप टाइटल नहीं जीत पाई है। अब क्लब करियर के बारे में बात करूं तो काफू ने साओ पाउलो एफसी के साथ अपने करियर का इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो गुजारा है। क्लब के लिए उन्होंने ब्राजीलियन चैंपियनशिप, कोपा लिबर्टाडोरेस, सुपर कोपा लिबर्टाडोरेस, रिकोपा सुदामेरिकाना और 2 इंटरकॉन्टिनेंटल कप्स जीते। साओ पाउलो के साथ उनके इंटरनेशनल सक्सेस जो है 1992 और 1993 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप विक्ट्रीज तक पहुंची। यूरोप में भी काफू काफी हिट हुए। रियाल जारागोजा के साथ 1994, 1995 वीएफए कप विनर्स कप जीता। इसके बाद इटली में एस रोमा का हिस्सा बने और सन 2000 से 2001 सीजन में सीरिया टाइटल भी जीता। 2003 में काफू एसी मिलान में शामिल हुए। मिलान के साथ उन्होंने 2003-2004 सीजन में सीरिया, 2006-2007 सीजन में वीएफए चैंपियंस लीग, वीएफए सुपर कप और 2007 फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता। इस तरह काफू ने यूरोप के फुटबॉल में यानी क्लब फुटबॉल में भी अपनी लेगेसी एस्टैब्लिश की। दोस्तों, काफू का करियर सिर्फ ट्रॉफीज और स्टैटिस्टिक्स की वजह से रिमार्केबल नहीं था। उन्होंने मॉडर्न अटैकिंग फुलबैक का एक ब्लूप्रिंट दिया। स्पीड, स्टैमिना, डिफेंस, क्रॉसिंग और अटैक सब कुछ एक ही प्लेयर में, और यहीं से मॉडर्न फुटबॉल का जो अंदाज है कि डिफेंडर्स सिर्फ डिफेंड नहीं करेंगे, डिफेंडर्स को अटैक में भी जाना पड़ेगा। एंड आज के डेट में अगर आप लोगों ने फुटबॉल थोड़ा बहुत फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर वर्ल्ड कप की बात करूं या यूफा चैंपियंस लीग की बात करूं या एएफसी एशिया में भी अगर आप देखें, जो दो विंग प्लेयर्स हैं यानी जो राइट बैक और लेफ्ट बैक पोजीशन में जो खेलते हैं डिफेंस के जो फॉर्मेट में, उन दोनों खिलाड़ियों को कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन करना पड़ता है, बिकॉज इन द मॉडर्न फिलोसॉफी ऑफ फुटबॉल एवरी प्लेयर कैन अटैक। ये वो पुरानी बातें नहीं है आज से 60 साल 50 साल पहले, जब डिफेंडर सिर्फ अपने ही पोजीशन अपने ही जोन पे खड़े रहते थे, कोई भी बॉल आते है तो उसको किक आउट करते थे। नो, आज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है एंड काफू इज वन ऑफ द
I would say a trendsetter for this. और आज coaches अगर इस policy को, इस tactics को follow करते हैं, तो उसमें काफू, you know, is the role model. 142 Brazil caps, 20 World Cup matches, 4 World Cups, 3 consecutive World Cup finals और 2 World Cup trophies. ये numbers काफू को फुटबॉल की तारीख के सबसे यूनिक डिफेंडर्स में शामिल करते हैं. काफू ब्राजील का कप्तान, वर्ल्ड कप चैंपियन और फुटबॉल का असली एक्सप्रेस ट्रेन. तो दोस्तों, आपको आज का यह स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा उम्मीद है, और अगली बार एक और लाजवाब स्पोर्ट्स लेजेंड और स्टार्स के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

सिबलिंग्स के साथ बैठ के करें, हर चीज के लिए जो है बजट एलोकेट कीजिए, और अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर आएंगे, भले से आप सैंडविच जनरेशन ही क्यों ना हो। सब आपको अहमियत भी देंगे, आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर हेल्दी हैं तभी आप एक हेल्दी फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। अभी के लिए मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए, देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107,
2: दिल से देसी।
3: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
4: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
3: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
5: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड खुश आमदेद फ्यूचर करियर में, वो प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं उन करियर्स की जो हमारी दुनिया, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे फ्यूचर वर्कफोर्स को शेप कर रही हैं। मैं हूं आपकी आरजे महावश। लिसनर्स, जरा सोचिए, अगर सुबह आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, घर में लाइट्स ऑन करते हैं, स्कूल या ऑफिस में कंप्यूटर यूज करते हैं, एयर कंडीशन चलाते हैं, तो इन सब के पीछे एक चीज कॉमन है, एनर्जी। हमारी मॉडर्न लाइफ एनर्जी के बगैर इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल कर रहे हैं। कई डेकेड से दुनिया ने इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रीज की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ऑयल, नेचुरल गैस और कोल जैसे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया। इन एनर्जी सोर्सेज ने दुनिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन वक्त के साथ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस भी सामने आए। इसीलिए दुनिया के बहुत से कंट्रीज अब एनर्जी के नए और क्लीनर सोर्सेज की तरफ भी मूव कर रहे हैं, और यहाँ से शुरू होती है हमारी आज की डिस्कशन। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे नेचुरल सोर्सेज से एनर्जी हासिल करना जो नेचुरली रिप्लेनिश होते रहते हैं। इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे एरियाज शामिल हैं। आपने सोलर पैनल्स अपने आसपास जरूर देखे होंगे, शायद आपने विंड टर्बाइंस की पिक्चर्स देखी हों, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन टेक्नोलॉजीज के पीछे कितने डिफरेंट प्रोफेशनल्स काम करते हैं? एक सोलर प्रोजेक्ट सिर्फ सोलर पैनल से नहीं बनता, उसके लिए इंजीनियर्स चाहिए होते हैं जो सिस्टम डिजाइन करें, टेक्नीशियन चाहिए होते हैं जो इक्विपमेंट इंस्टॉल और मेंटेन करें, एनर्जी एनालिस्ट डेटा को स्टडी करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स पूरी टीम और प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोफेशनल्स सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को एवोल्यूट करते हैं, और रिसर्चर्स फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने पर काम करते हैं। यानी रिन्यूएबल एनर्जी एक सिंगल करियर नहीं है, ये करियर्स का एक पूरा इकोसिस्टम है, और इसीलिए आज का एपिसोड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स पसंद है तो रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग आपके लिए ऑप्शन हो सकती है। अगर आप एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के इश्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं तो एनवायरमेंटल साइंस या सस्टेनेबिलिटी आपको एक डिफरेंट पाथवे दे सकती है। अगर आपको डेटा और टेक्नोलॉजी पसंद है तो एनर्जी एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एनर्जी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की जा सकती हैं। और अगर आप लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके लिए सूटेबल करियर हो सकता है। तो लिसनर्स, आज के एपिसोड में हम

सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, हम एक्सप्लोर करेंगे कि इस फील्ड में फ्यूचर के कौन सी जॉब्स डेवलप हो रही हैं, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाना चाहिए, कौन सी स्किल्स इम्पॉर्टेंट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनर्जी इंडस्ट्री को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रही है और कतर में यंग पीपल के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो सकती हैं। और अब वक्त है आज की वर्कफोर्स हेडलाइन का। दुनिया के एनर्जी सिस्टम्स ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जब कंट्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीनर एनर्जी सॉल्यूशंस पर फोकस करती हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती है। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, रिसर्चर्स और सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल्स सब फ्यूचर एनर्जी वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एनर्जी ट्रांजिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का चेंज नहीं, ये जॉब्स और स्किल्स का भी चेंज है। और जो स्टूडेंट्स आज अपनी साइंस, टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हैं, वो फ्यूचर के इस चेंजिंग वर्कफोर्स के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं। अब वक्त आ गया है आप सब के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे का। क्या आप ऐसे करियर में काम करना पसंद करेंगे जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करे और साथ ही फ्यूचर को पावर करने में भी अपना रोल अदा करे? जरा सोचिए, क्या आप फ्यूचर में सोलर एनर्जी सिस्टम डिजाइन करना चाहेंगे? क्या आप विंड टर्बाइन्स के साथ काम करना पसंद करेंगे? क्या आप एनर्जी डेटा को एनालाइज करके कंपनीज को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करना चाहेंगे? या फिर आप फ्यूचर की ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पर रिसर्च करना चाहेंगे? आपका जवाब जो भी हो, एक बात क्लियर है, एनर्जी का फ्यूचर बदल रहा है और इसके साथ फ्यूचर करियर्स भी बदल रहे हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, फ्यूचर करियर की आज के एपिसोड में हम रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया को और करीब से एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कल की एनर्जी इंडस्ट्री में आपके लिए कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। मैं हूं आवश, आप सुन रहे हैं फ्यूचर करियर। फ्यूचर करियर लिस्टनर्स, अब वक्त है हमारे शो के सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट का, जॉब्स फॉर टुमारो। आज हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी करियर्स की। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे जहन में सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स या ग्रीन टेक्नोलॉजी का तस्वीर आता है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ मशीन्स और टेक्नोलॉजी का नाम नहीं, इसके पीछे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स और बहुत से दूसरे प्रोफेशनल्स की एक पूरी टीम काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसमें ऐसे नेचुरल सोर्सेस से एनर्जी हासिल की जाती है जो दोबारा रिप्लेनिश हो सकते हैं, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में कंटिन्यूसली अवेलेबल होते रहते हैं। इनमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे एरियाज शामिल हैं। और जैसे जैसे दुनिया क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ मूव कर रही है, इन फील्ड्स में नए करियर्स भी डेवलप हो रहे हैं।

पर सोलर सिस्टम्स किस तरह सबसे बेटर परफॉर्म करेगा। वो सोलर इंस्टॉलेशन का डिजाइन तैयार करते हैं, लोकेशन एवल्यूट करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करते हैं। बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स में वो इंस्टॉलेशन और इम्प्लीमेंटेशन को भी मैनेज करते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है तो सोलर इंजीनियरिंग आपके लिए इंटरेस्टिंग करियर हो सकती है। अगला करियर है विंड एनर्जी स्पेशलिस्ट। दुनिया के कई कंट्रीज में विंड टर्बाइंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का इम्पोर्टेंट सोर्स बन चुकी हैं। विंड एनर्जी स्पेशलिस्ट विंड प्रोजेक्ट के लिए सुइटेबल लोकेशन असेस करते हैं। वो विंड रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं, टर्बाइंस की परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। इस करियर में इंजीनियरिंग के साथ एनवायरमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग भी यूजफुल होती है। अब एक ऐसा करियर जो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं बल्कि लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन भी डिमांड करता है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मैनेजर। सोचिए, एक बहुत बड़ा सोलर या विंड प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सप्लायर्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। इन सब को कोऑर्डिनेट करना, डेडलाइंस मैनेज करना, बजट पर नजर रखना और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स इंश्योर करना प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। अगर आप नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड हैं, लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं और लीडरशिप स्किल्स रखते हैं तो ये करियर आपके लिए सूटेबल हो सकता है। चौथा करियर है एनर्जी एनालिस्ट के। आज की दुनिया में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कंपनीज को ये समझना होता है कि एनर्जी कहाँ और कितनी यूज हो रही है। एनर्जी एनालिस्ट डेटा कलेक्ट और एनालाइज करते हैं, वो एनर्जी परफॉर्मेंस एवल्यूट करते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं और फ्यूचर एनर्जी डिमांड का फोरकास्ट करने में मदद करते हैं। उनके एनालिसिस कंपनीज को कॉस्ट कम करने, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करने और बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं। अगर आपको नंबर्स, डेटा और एनालिटिक थिंकिंग पसंद है तो एनर्जी एनालिस्ट एक स्ट्रॉन्ग करियर हो सकता है। एक और ग्रोइंग करियर है सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट। आज बिजनेसेस के लिए सिर्फ प्रॉफिट इम्पोर्टेंट नहीं रहा, कंपनीज ये भी देख रही हैं कि वो इन्वायरमेंट पर अपने इम्पैक्ट को किस तरह कम कर सकती हैं। सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को एनर्जी मैनेजमेंट, कार्बन रिडक्शन, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के हवाले से एडवाइस देते हैं। ये करियर उन स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है जिन्हें एनवायरनमेंट के साथ बिजनेस और स्ट्रेटजिक प्लानिंग में भी इंटरेस्ट हो। और अब बात एक इमर्जिंग फील्ड की, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर एनर्जी टेक्नोलॉजीज में एक प्रॉमिसिंग एरिया माना जाता है। इस फील्ड में प्रोफेशनल्स हाइड्रोजन प्रोडक्शन सिस्टम्स, एनर्जी स्टोरेज, रिसर्च और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पर काम कर सकते हैं। ये अभी डेवलपिंग फील्ड है और इसीलिए स्टूडेंट के लिए रिसर्च और इनोवेशन की नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सकती हैं। लिस्टनर्स, रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर सिर्फ सोलर पैनल्स या विंड टर्बाइंस तक लिमिटेड नहीं। इस फील्ड में इंजीनियरिंग से लेकर डेटा एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस और रिसर्च तक बहुत से करियर पाथ्स मौजूद हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल्स दोनों की जरूरत होगी। अगर आप फ्यूचर में ऐसा करियर चाहते हैं जहां आप टेक्नोलॉजी के साथ काम करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें और सस्टेनेबल फ्यूचर का हिस्सा बने
to renewable energy.

0: को अपनी करियर लिस्ट में ज्यादा कंसिडर करें। फ्यूचर करियर में हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि इन करियर्स के लिए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना चाहिए और अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए। तो सुनते रहें FM 107।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
0: लिस्टनर्स, किसी भी सक्सेसफुल करियर का सफर सिर्फ जॉब से शुरू नहीं होता। इस सफर की बुनियाद एजुकेशन, स्किल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से तैयार होती है। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही एजुकेशनल पाथवे नहीं है। इस सेक्टर की खूबसूरती यह है कि डिफरेंट इंटरेस्ट एबिलिटीज रखने वाले स्टूडेंट इसमें अपनी जगह बना सकते हैं। किसी को इंजीनियरिंग पसंद है, किसी को एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज में इंटरेस्ट है, किसी को डेटा और टेक्नोलॉजी पसंद है, जबकि कोई लीडरशिप और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग की। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंजीनियरिंग एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल पाथवे है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स कंसिडर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सोलर पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स विंड टर्बाइंस और दूसरे एनर्जी सिस्टम्स के डिज़ाइन और मेंटेनेंस में अपना रोल अदा कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पोल्यूशन रिडक्शन और सस्टेनेबल सिस्टम से रिलेटेड चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको फिजिक्स, मैथ्स और टेक्नोलॉजी पसंद है, तो इंजीनियरिंग आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट मशीन से ज़्यादा इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी में है, तो एक और ऑप्शन है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस स्टूडेंट्स को क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी जैसे टॉपिक्स समझने में मदद देती है। इस फील्ड में स्टूडेंट्स ये सीखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज एनवायरमेंट को किस तरह अफेक्ट करती हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से किस तरह मैनेज किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का रोल इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि किसी भी लार्ज प्रोजेक्ट को डेवलप करते हुए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को समझना जरूरी होता है। आप एनवायरमेंटल स्टडीज के बाद सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, रिसर्च और पॉलिसी जैसे एरियाज में भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जो लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बहुत लार्ज स्केल पर हो सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल टीम्स, बजट्स, डेडलाइंस और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना होता है, इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज भी वैल्यूएबल है। अगर आप इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल स्टडीज के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करते हैं, तो आप फ्यूचर में टेक्निकल नॉलेज को लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। लिसनर्स, मॉडर्न एनर्जी सेक्टर में सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन काफ़ी नहीं। आज एनर्जी इंडस्ट्री इंक्रीजिंगली डेटा ड्राइवन हो रही है, इसलिए स्टूडेंट्स को बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के साथ डेटा एनालिसिस, स्प्रेडशीट्स, डिजिटल टूल्स और रेलेवेंट सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी चाहिए। अगर आप डेटा को समझ सकते हैं, उसमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूजफुल डिसीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं,

तो आप एनर्जी इंडस्ट्री में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन करियर सक्सेस सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का नाम नहीं। एक सक्सेसफुल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोफेशनल को कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और एडेप्टेबिलिटी की भी जरूरत होती है। सोचिए, एक इंजीनियर के पास बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन वो अपनी टीम को अपना आइडिया एक्सप्लेन नहीं कर सकता। या एक प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग में अच्छा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आने पर डिसीजन नहीं ले सकता। ऐसे प्रोफेशनल के लिए करियर ग्रोथ मुश्किल हो सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स को क्लासरूम के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स पर भी काम करना चाहिए। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यूनिवर्सिटी में बुक्स और लेक्चर्स आपको थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं, लेकिन इंटर्नशिप आपको इंडस्ट्री का रियल एक्सपीरियंस दे सकती है। स्टूडेंट्स एनर्जी कंपनीज, इंजीनियरिंग फर्म्स, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च सेंटर्स और रेलेवेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में इंटर्नशिप या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज सर्च कर सकते हैं। अगर इंटर्नशिप इमीडिएटली अवेलेबल ना हो तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोजेक्ट्स, साइंस कॉम्पिटिशंस, इंजीनियरिंग सोसाइटीज या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक्सपीरियंसेस आपको ये समझने में हेल्प करेंगे कि क्लासरूम में सीखी हुई नॉलेज रियल वर्ल्ड में किस तरह यूजफुल होती है। अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको अपने करियर का फैसला यूनिवर्सिटी के फाइनल तक नहीं पोस्टपोन करने की जरूरत है। आज से छोटी छोटी चीजें शुरू करें। साइंस और मैथ्स को सीरियसली लें। रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में रीड करें। सोलर पावर, विंड एनर्जी, बैटरीज, एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें। साइंस और इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछना सीखें। करियर वही स्टूडेंट बिल्ड करते हैं जो सिर्फ ये नहीं पूछते कि मुझे क्या पढ़ना है, बल्कि ये भी पूछते हैं कि मैं इस नॉलेज को रियल वर्ल्ड में किस तरह यूज कर सकता हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी एक रैपिडली चेंजिंग फील्ड है, इसलिए इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्टिन्यूस लर्निंग जरूरी होगी। आज का स्टूडेंट कल का इंजीनियर, रिसर्चर, एनालिस्ट, कंसल्टेंट या प्रोजेक्ट लीडर हो सकता है, और हो सकता है कि आप में से कोई फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करे जो एनर्जी के इस्तेमाल का तरीका ही बदल दे। इसीलिए अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखें, अपनी स्किल्स डेवलप करें और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते रहें, क्योंकि फ्यूचर के करियर्स सिर्फ आज की जॉब्स को फॉलो करने से नहीं, बल्कि कल की जरूरतों को समझने से बनते हैं। लिसनर्स, टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री को रैपिडली चेंज कर रही है और एनर्जी सेक्टर भी इस ट्रांसफॉर्मेशन से अलग नहीं। हमने अपने पिछले सेगमेंट में रिन्यूएबल एनर्जी का डिफरेंट जो करियर्स और एजुकेशनल पाथवेज के बारे में बात की थी, और अब वक्त है हमारे सेगमेंट AI एंड वर्क का। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रही है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम हम एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी के ऑलमोस्ट हर फील्ड में सुनते हैं। लेकिन जब बात एनर्जी की हो तो AI का रोल और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड नेचुरल कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। सूरज की रोशनी हर वक्त एक जैसी नहीं होती और हवा की स्पीड भी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। तो एनर्जी कंपनीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज ये है कि वो पहले से कैसे एस्टिमेट करे कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी और कंज्यूमर्स को कितनी एनर्जी

0: सबसे इम्पोर्टेंट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द करियर्स ऑफ टुमारो. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक चेक चेक चेक टाइम चेक इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए शाम के 4:01 यानी ये वक्त है
0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो

0: ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: तो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है, कैसा गुजरा आज का दिन? हाँ अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी का, तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन एफएम 107 पर। मैं हूँ आपके फॉर अमिता द रिक्वेस्ट शो पर। और आज की थीम, ओ हो, मुझे लगता है टोटली एक्शन पैक्ड म्यूजिकल एडवेंचर होने वाली है, क्योंकि गाने बहुत तरह के होते हैं और हर गाने का हमारी ज़िंदगी में ना एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही, वो कहते हैं ना, एक अलग ही सीन चल रहा होता है। तो मैंने सोचा कि आज हम वो पावरफुल सॉन्ग्स प्ले करेंगे जो आपको ना ऐसे बिल्कुल एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। आई नो हर एक गाने की एक अपनी फील है, और जैसे कि चलो मैं एग्जांपल देती हूँ, पठान फिल्म का वो गाना, ओहो झूमे जो पठान, आज भी मतलब जब हम सुनते हैं तो क्या वाइब आती है। और जब हमें अगर हम वीडियो इमेजिन करते हैं, देन वी सी कि किस तरह से शाहरुख खान की एंट्री हो रही है एंड हाउ ही इज ग्रूविंग, और ओह क्या फील है, क्या म्यूजिक है। बस आज इसी तरह के गाने हम प्ले करने वाले हैं। तो यही थीम है एक्शन थ्रिलर स्पेशल। वो कौन से गाने हैं जो कि एकदम अल्टीमेट एनर्जी बूस्टर है आपके लिए, कि उसको सुनकर आपको लगता है कि अगर आप जिम गए भी नहीं तो भी आप जिम में ही हो। सो कम ऑन, थिंक अबाउट दोस पावरफुल सॉन्ग्स और मुझसे शेयर करें अपनी रिक्वेस्ट 666-22107 पर, 666-22107 पर अपने नाम के साथ अपनी रिक्वेस्ट शेयर करें, अपने डेडिकेशंस मुझसे शेयर करें। और जब हम बात करते हैं पठान की, तो ये गाना हम कैसे प्ले नहीं करेंगे। हाँ चलिए चलिए आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक, वॉल्यूम बढ़ाओ, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: यस वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. तो कैसे हैं आप? कैसा लगा आपको गाना, पहला गाना हमारे शो का, झूमे जो पठान? आई रियली लव दिस सॉन्ग. व्हाट अ बीज, व्हाट अ ग्रूव. हाँ, अभी हम पहली रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये रिक्वेस्ट आई है हमको अरहम की और मैसेज किया उन्होंने. कहते हैं कि अमिता ये पर्टिकुलर गाना मेरा फेवरेट है और जब भी मुझे लगता है कि मैं लो फील कर रहा हूँ ना, मुझे फुल एनर्जी चाहिए, मैं बस इस गाने को इंजॉय करता हूँ. समझ गया ना कौन सा गाना है? Yes, Street Dancer 3D का मुकाबला. I know it's a recreated song, लेकिन इसमें भी वो बात है जो पहले सॉन्ग में थी. मतलब सुन के अच्छी फीलिंग आती है एंड स्पेशली प्रभु देवा का परफॉर्मेंस. इसके बाद अगली रिक्वेस्ट की है और ये है रोहेल. कह रहे हैं कि अमिता ये गाना प्ले कर दो, बेनी दयाल और नीति मोहन की आवाज़. एंड क्यों सुनना चाहते हैं वो ये गाना? क्योंकि ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फ़ैन हैं. कहते हैं कि जब उनका इस गाने में वीडियो देखते हैं वो परफॉर्म करते हुए, सो ही फील रियली एनर्जाइज्ड. ओके, कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज प्ले करें. चलिए, तो ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आने वाले हैं और आप कौन सा वो गाना सुनना चाहते हैं जो आपको बिना किसी वर्कआउट के फीलिंग कराता है कि भाई आपने वर्कआउट कर ली है. ओए होए होए, ये गाना सुनकर अब आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल्स लो नहीं होंगे. तो सोचिए उस गाने का नाम, सोचिए वो कौन सा गाना है जिसे आप लूप पर सुन सकते हैं. 666-22107, 666-22107 पर हमसे शेयर करो अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशंस और अभी वॉल्यूम बढ़ा लो क्योंकि बड़े ही पावर पैक सॉन्ग्स आपकी राहों में आने वाले हैं. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: रूम कर शेक अप आंखों में फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अप दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
3: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
2: गेम चेंजर Season 2. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
4: यस वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप देखो आज की जो द रिक्वेस्ट शो की थीम है ना मैं अभी से हमारे लिसनर्स को बताना चाहती हूँ आज बिल्कुल स्लो मो वाले गाने नहीं बजने वाले मतलब आराम से एकदम हौले हौले नहीं नहीं नहीं आज मैंने कहा वो गाने हम सुनेंगे जो कि आपको एक वो कहते हैं ना एक एनर्जी बूस्टर रहते हैं आपके लिए एक एकदम से रश आपको देते हैं कि आप अपनी जगह से अपने आप उठ जाते हैं हिलने लग जाते हैं कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए मुझे अपने काम करने हैं इस गाने ने मुझे एकदम जोश दे दिया यस ऑल द जोशीले सॉन्ग्स ऑफ लाइफ यस उन गानों की थीम है तो वही गाने आपको रिक्वेस्ट करने ठीक है सो 666-22-107 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपनी डेडिकेशंस भेजो चाहो तो गानों के पीछे की स्टोरी भी भेज सकते हो कि क्यों आपको वो गाना पसंद है कि नहीं अभी हमें दीपक का मैसेज है और कहते हैं कि अमिता ये वाला गाना प्ले कर दो एंड बिफोर आई प्ले दिस सॉन्ग आपको बताना चाहती हूँ कि इस गाने को शंकर महादेवन शान केके ने गाया है लेकिन एक साथ स्टूडियो में नहीं अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टूडियो पर और फिर इन तीनों की आवाज़ को एक साथ किया गया तो ऐसा लग रहा है कि साथ में खड़े होकर माइक पे ये गाने गा रहे हैं कैन यू इमेजिन दिल चाहता है मूवी का ये गाना So definitely, ये गाना पूरा पूरा मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसके बाद एक रिक्वेस्ट आई है ये है सलमान की रिक्वेस्ट है फारूक भाई के लिए और शाहरुख खान के फैन है मतलब क्या बात है और मतलब जरा सोचिए सलमान जी ने रिक्वेस्ट की है फारूक भाई के लिए और गाना शाहरुख का है अभिजीत की आवाज में ये पूरा गाना है अपार्ट फ्रॉम द कोरस एंड लेट मी टेल यू कि वो दौर था जब शाहरुख खान एंड अभिजीत मतलब ऐसा कहा जाता था दोनों मेड फॉर ईच अदर है हाँ तो बादशाह ओ बादशाह ये गाना भी पूरा पूरा आपको आगे सुनाने वाली हूँ और आपकी जिंदगी का वो कौन सा गाना है वो कौन सा जोशीला गाना है जिसे आप फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं और चार्ज्ड अप हो जाते हैं यस सो 666-22-107 666-22-107 पर आपको रिक्वेस्ट करनी है अपने नाम के साथ अपनी डेडिकेशन भेजिए और अपनी वन लाइनर स्टोरी भी भेज सकते हैं और अभी के लिए चलिए नॉस्टैल्जिक मोड में जाते हैं दिल चाहता है मूवी के इस गाने के साथ कहीं ना जाए बने रहे FM 107 पर दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें

0: marketing@qmc.qa.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
2: जेन सी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें. इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
4: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है. पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप. ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर. एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
5: हां जी, वेलकम वंस अगेन. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. द रिक्वेस्ट शो की थीम आज बड़ी सिंपल है. आज हम वो पावर पैक सॉन्ग्स सुनना चाहते हैं जो हमें एक, वो कहते हैं ना कि एक इंटरनल रश देते हैं और एक फीलिंग आती है कि हाँ भाई, हम जिंदगी का कोई भी काम आराम से कर सकते हैं अगर हमने ये सुन लिया तो. कौन से वो गाने हैं जो आपके पावर बूस्टर्स हैं? ठीक है, शेयर करो 6666221107 पर अपने डेडिकेशंस और गाने आपको क्यों पसंद है, क्यों सुनना है वो पर्टिकुलर गाना, ये भी बता सकते हो. ठीक है, अभी अगली रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं. अबीरा की रिक्वेस्ट है एंड वो सुनना चाहती है ये वाला गाना. भाई सारे गोविंदा और सलमान के फैंस के लिए आई रियली लव दिस सॉन्ग. एंड आई शुड टेल यू कि पार्टनर फिल्म का ये गाना है जिस फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन साहब और उनकी लगभग 17 मूवीज में गोविंदा ने साथ में मतलब काम किया है. उनके वो फेवरेट हीरो रहे एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम पार्टनर में हमने उनको देखा. चलो ठीक है, ये गाना पूरा पूरा मैं आपको सुनाऊंगी और उसके बाद हमारे वन ऑफ दी रेगुलर लिसनर मोहम्मद यूसुफ खान की रिक्वेस्ट है और वो सुनना चाहते हैं भूल भुलैया 2 का ये गाना. हाँ, ये गाना भी बड़ा कमाल का है, मतलब इसको भी, इसमें भी वाइब है कि नहीं. तो चलो, ये दोनों ही गाने आपकी राहों में पूरे पूरे आ रहे हैं और आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सोचिए ना, वक्त भागे जा रहा है. जल्दी सोचिए और लिख के दीजिए 6666221107 पर. कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ FM 107 पर. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वेलकम वेलकम, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। कैसा लग रहा है द रिक्वेस्ट शो पर आज के पावर पैक सॉन्ग, मतलब सुनकर लिटरली बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, और अगर ड्राइव कर रहे होगे ना तो एक अलग एक ग्रूवी अंदाज होगा। लेकिन अभी जो अगली रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट इसकी रिक्वेस्ट मुझे कई बार आई है, लेकिन आज मैं ये गाना प्ले करने वाली हूँ। एंड बिफोर आई प्ले दिस सॉन्ग, मेरी लाइफ की स्टोरी ये है कि इस गाने में मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई अमिता मिमिक करो, और मिमिक करती हूँ तो फिर खूब मजाक उड़ाते हैं। आई नो कि अभी मेरा शो सुन रहे हैं एंड डेफिनेटली दे गोना लव इट। और ये रिक्वेस्ट है शैब्स की, गाना है क्या बात है, हिमेश रेशमिया एंड रानू मंडल। हिमेश अकेले नहीं है, हाँ ये गाना आप आगे सुनेंगे। और उसके बाद आयरा की रिक्वेस्ट है व्हाट अ सॉन्ग, ऊंची है बिल्डिंग 2.0, अनु मलिक नेहा कक्कर, ये कॉम्बिनेशन ही किलर है भाई, इसे सुनकर कोई कैसे ग्रूव नहीं करेगा। हाँ सो डेफिनेटली ये दोनों ही गाने आपकी राहों में पूरे पूरे आने वाले हैं, सो गेट रेडी फॉर इट। और आप कौन सा गाना है जो सुनना चाहते हैं 666-22-107 पर हमसे शेयर करें अपने नाम के साथ, अपने डेडिकेशंस के साथ। एंड आज की थीम है ओनली जोशीले सॉन्ग्स, तो कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हाँ जी, वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। द रिक्वेस्ट शो बिल्कुल अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचते जा रहा है जनाब। आपकी रिक्वेस्ट वाकई में दिल को छूने वाली थी, मजे ही आ गए। हाँ, वेल अब अगली रिक्वेस्ट की तरफ हम रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले क्विज टाइम का टाइम है।
0: क्विज टाइम,
1: तो क्विज टाइम पे बड़ा सिंपल है, आपको गाना पहचानना होता है और अभी हम इस बड़े ही फेमस गाने की धुन आपको सुनाएंगे। गाना पहचानो कौन सा है, बीच से सुना रही हूँ। तो गैस करो ये गाना कौन सा है, क्योंकि ये गाना अगर आपने गैस कर लिया तो पूरा पूरा आपके नाम हो जाएगा। लेकिन अभी जिस गाने की रिक्वेस्ट आई है, उफ, इसमें क्या कमाल का उर्मिला मातोंडकर का वो कहते हैं ना डैजलिंग परफॉर्मेंस था। एंड यू नो, मतलब लगभग 20 किलो के उनका अटायर और उनकी ज्वेलरी थी जब उन्होंने इस पर्टिकुलर गाने में परफॉर्मेंस दी। ये रिक्वेस्ट है आरिफ की, सो लेट्स एंजॉय, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

क्या बात है, मतलब इस गाने को सुनते हैं मुझे अभी भी अपने स्कूल कॉलेज के दिन याद आते हैं, जब हमें हर एक जो प्रोग्राम होता था उसमें सारे बच्चों को इकट्ठा करके बोला जाता था कि चलो इसमें परफॉर्मेंस दो। मतलब अभी हमने एंजॉय किया एफएम 107 पर, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और वक्त अब बिल्कुल भागते जा रहा है। तो क्विज टाइम पर मैंने आपको एक गाना बीच से सुनाया और कहा जल्दी से इस गाने को पहचानो, तो मोहम्मद यूसुफ खान ने, इरफान ने और इनका नाम क्या है, सोहेल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और दीपक ने सही जवाब दिया है, मोहम्मद ने सही जवाब दिया है एंड द सॉन्ग इज एक पल का जीना। तो डेफिनेटली ये गाना अब आपकी राहों में आ रहा है और इसी के साथ अब आप मुझे देंगे इजाजत, आपकी मेरी मुलाकात होगी कल वीकेंड स्पेशल में। तब तक क्या करना है, हमारे एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और अपने आरजे अमिता को भी वहीं ढूंढिएगा, ठीक है। जाते जाते ये कह दूं, हम है राई प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: एक्सपर्ट काउंसलिंग, प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टिप्स और रियल लाइफ डिसीजन के साथ हम ढूंढेंगे बेहतर और मजबूत फैमिली रिलेशनशिप का रास्ता। सुनिए प्रोग्राम फैमिली मैटर्स विद आरजे नाजिया ओनली ऑन एफएम 107। फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।
1: सलाम आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं शो फैमिली मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नाजिया।
2: फैमिली मैटर्स
1: दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो शायद हर घर, हर फैमिली, हर सोसाइटी को किसी ना किसी तरह से टच करता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सीरियस है। आज हम बात करेंगे ब्रेकिंग द स्टिग्मा अराउंड डिवोर्स एंड मैरिज इज ओवर बट पेरेंटिंग इजंट। यानी शादी तो खत्म हो जाती है लेकिन माँ बाप होने का फर्ज ये कभी कहीं किसी पॉइंट पे एंड नहीं होता। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एंड हो सकता है, माँ बाप का होना कभी खत्म नहीं होता। देखिए, आज के इस मॉडर्न जमाने में डिवोर्स जो है वो पहले की तरह टैबू नहीं रहा। लोग अब इस पर ओपनली बात करते हैं। कई लोग टॉक्सिक मैरिजेस से निकलने को एक हेल्दी डिसीजन समझते हैं और हम भी कहते हैं बिल्कुल सही है, और कई केसेस में ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब लोग अलग होते हैं तो असल इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? सिर्फ हस्बैंड और वाइफ पर या उन बच्चों पर जो उन दोनों की दुनिया होते हैं? आज हम डिवोर्स के रीजंस, उसके फैमिली पर असरात, बच्चों की इमोशनल स्ट्रगल्स, मैरिज को बचाने की इम्पोर्टेंस और सेकेंड मैरिज के हवाले से भी बात करेंगे। पहले समझते हैं कि डिवोर्स आजकल इतने कॉमन क्यों हो रहे हैं। वैसे तो मैं ये कहूंगी कि हर डिवोर्स की कहानी, उसके सिनेरियो, उसकी सिचुएशन अलग होती है। कोई भी शादी एक दिन में तो नहीं टूटती। इसके पीछे साल या सालों का फ्रस्ट्रेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसअपॉइंटमेंट्स और शायद इमोशनल डिस्टेंस होता है। कुछ कॉमन फैक्टर्स जो हमें और आपको समझ में आते हैं, जो काफी जेनरिक हैं, उसमें देखा गया है कि एक कॉमन रीजन है कम्युनिकेशन की कमी। दो लोग एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं। बातें कम, अजम्पशंस बहुत ज्यादा। जब फीलिंग्स प्रेस नहीं होती तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं और फिर छोटी छोटी बातें बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाती हैं। वहीं एक और बड़ा इशू है ट्रस्ट का। ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन होता है और जब ट्रस्ट टूट जाए रिलेशनशिप को रीबिल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? चाहे डिसऑनेस्टी हो, इमोशनल बिट्रेयल हो या किसी भी और फॉर्म की चीटिंग हो, ट्रस्ट के बिना रिलेशनशिप सरवाइव करना मुश्किल होता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो आज के दौर के डिवोर्स का एक बड़ा रीजन बन रही है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। पैसा, कहने को तो हम कहते हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन हाँ, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत सी मैरिजेस को डैमेज कर रहा है। जॉब खत्म हो जाना, डेट या कर्जे होना, या डिफरेंट तरह की स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और ये सारी चीजें ऑल टुगेदर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को नेगेटिव वे में ट्रिगर करती हैं। ये सब टेंशन क्रिएट करती हैं जो धीरे धीरे रिलेशनशिप को अफेक्ट करती हैं। एक और चीज यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहूंगी जो डिवोर्स की बड़ी वजह बन रहा है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। और शायद इसका लिंक आज की हमारी सोशल मीडिया की फेक लाइफ या फिर रियल लाइफ से जुड़ा है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप्स का एक बहुत ही फैंटेसी वर्जन क्रिएट कर दिया है। परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट हॉलीडेज, परफेक्ट लाइफ। रियलिटी में परफेक्शन जैसा कुछ नहीं है। जब एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से ज्यादा हो जाएं, तो डिसअपॉइंटमेंट पैदा होता ही होता है। वे एक और रीजन जो डिवोर्स की बड़ी वजह बन रहा है वो है फैमिली का इंटरफेरेंस। कई मैरिजेस में इशू हस्बैंड और वाइफ के दरमियान कम और फैमिलीज के दरमियान ज्यादा होते हैं। हर रिलेशनशिप को हेल्दी बाउंड्रीज की जरूरत है। जब बाउंड्रीज वीक हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एक और चीज मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी और वो है इमोशनल नेगलेक्ट। देखिए, कई लोग फिजिकली साथ होते हैं लेकिन इमोशनल

0: दूर हो जाते हैं। एक वक्त आता है जब पार्टनर को महसूस होता है कि वो रिलेशनशिप में अकेला रह गया है और इमोशनल लोनलीनेस दोस्तों बहुत पेनफुल होती है। एक और चीज जो रिश्तों को तबाह कर देती है वो है अब्यूज और टॉक्सिक एनवायरमेंट। ये वो सिचुएशन है जहां कॉम्प्रोमाइज की एडवाइस देना ठीक नहीं होता। फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, कॉन्स्टेंट ह्यूमिलेशन, इन सिचुएशंस में सेफ्टी और डिग्निटी सबसे पहले। कभी कभी डिवोर्स एक चॉइस नहीं, आपकी और हमारी जरूरत बन जाता है। अब बात करेंगे रीजंस की, तो हमने बात कर ली, और अब बात करना चाहूंगी कि डिवोर्स का फैमिली पर क्या असर होता है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हम एक टॉक्सिक रिलेशन में ना रहें, उससे बाहर निकलें। जैसे मैंने कहा कि ये चॉइस नहीं, ज़रूरत भी बन जाता है। बहुत से लोग इस लेवल तक परेशान होते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं होती बट टू क्विट, यानी वहाँ से निकलना ही एक बेस्ट ऑप्शन होता है, जो कि बुरा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका असर जो है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ पर नहीं पड़ता। जब हस्बैंड और वाइफ अलग होते हैं तो सिर्फ दो लोग सेपरेट नहीं हो रहे होते हैं, पूरी फैमिली सिस्टम चेंज हो जाता है। घर का एनवायरमेंट है, रूटीन्स है, रिलेशनशिप्स है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, सब कुछ बदल जाता है। कई लोग तो कहते हैं कि हमारा डिवोर्स हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन जब बच्चे हो तो डिवोर्स सिर्फ दो लोगों का पर्सनल मैटर नहीं रहता, उसका इफेक्ट फैमिली के हर मेंबर पर पड़ता है। और इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ता है। जब पेरेंट्स डिवोर्स का डिसीजन लेते हैं तो अडल्ट्स लॉजिकली सोच सकते हैं, लेकिन बच्चा लॉजिकली नहीं, इमोशनली सोचता है। उसको सिर्फ इतना समझ में आता है कि मेरा घर टूट गया, मम्मी और डैडी अब साथ नहीं रहते, मेरी दुनिया बदल गई, मैं शायद अकेला हूं। देखिए, बच्चों को समझाना, उन्हें समझा के चुप करा देना, ये एक सलूशन नहीं है। बच्चे जैसा महसूस करते हैं वैसा करते हैं, और वो देख कर करते हैं जो आप कर रहे हैं, जो उनके आसपास हो रहा है। बच्चा खुद को रिस्पॉन्सिबल समझे, ये हम चाहते हैं, लेकिन क्या हमारा बिहेवियर भी वैसा है? बहुत से बच्चे डिवोर्स के बाद ये सोचते हैं कि शायद ये डिवोर्स मेरी वजह से तो नहीं हुआ, मैं अच्छा बच्चा नहीं था। ये गिल्ट भी कई बार उनके अंदर बहुत ही गहरा और एक नेगेटिव असर छोड़ती है। बच्चे को स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। जब घर का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उनका फ्यूचर जो है वो हिलने लगता है, उन्हें अपने फ्यूचर का डर लगने लगता है। मेरे साथ क्या होगा, मैं किसके साथ रहूंगा, मैं तो अब्बा को भी चाहता हूँ, मैं अम्मा को भी चाहता हूँ, क्या मम्मा मुझे छोड़ देगी, क्या डैडी मुझे प्यार करना छोड़ देंगे, क्या मैं दोनों से एक साथ कभी नहीं मिल पाऊंगा। और यही सवालात जो है वो बच्चों के जहन में घर कर जाते हैं। और कई बार जो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो माँ बाप के डिवोर्स सेपरेशन के बाद एकदम अलग तरीके से रिएक्ट और बिहेव करते हैं। बच्चे स्कूल में फोकस करना लूज कर देते हैं, ग्रेड्स गिर जाते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि उनका दिमाग इमोशनल स्ट्रेस से भरा हुआ है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि वो विड्रॉ हो जाते हैं, कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ ज्यादा चुप रहने लगते हैं, कुछ हर वक्त गुस्सा करने लगते हैं, और हर बच्चा अपना पेन अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। कई बच्चे जो ब्रोकन फैमिलीज में ग्रो होते हैं, उनके अंदर फ्यूचर रिलेशनशिप को लेकर एक डर भी पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि शादियां हमेशा टूटती हैं, ट्रस्ट हमेशा टूटता है, और ये इम्पैक्ट अडल्टहुड तक जाता है। और कई बार इस तरह का इम्पैक्ट जो है वो उन्हें एक अलग तरीके का शख्स बनाता है, जिसे हमारी और आपकी सोसाइटी सो कॉल्ड अच्छा या सिविल ह्यूमन नहीं कह सकती। देखिए, हर डिवोर्स जो है वो बच्चों के लिए बुरा है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, माँ बाप का अलग होना हर बच्चे के लिए बहुत बुरा है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात भी हमें समझनी है, वो ये कि हर हाल में डिवोर्स जो है वो हार्मफुल है। ये जवाब मैं तो क्या पता नहीं कोई भी दे पाएगा कि नहीं, बट हाँ, शायद जो दो लोग जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं, जो ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं, उनके लिए तो मैं कहूंगी कि एक अच्छा सलूशन है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें।

हैं, वॉयलेंस है, अब्यूज कर रहे हैं एक दूसरे को, टॉक्सिटी है, तो ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों के लिए, उनके ब्रेन के लिए काफी डैमेजिंग है। कई दफा पीसफुल सेपरेशन ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि डिवोर्स के बाद भी पेरेंट्स को पेरेंटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। एक्स स्पाउस बनना अलग बात है, एक्स पेरेंट बनना मुमकिन ही नहीं। अब यहाँ पर मैं बात करूंगी को पेरेंटिंग की इम्पोर्टेंस की भी। अगर डिवोर्स हो जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है को पेरेंटिंग, यानी पेरेंट्स अपने डिफरेंसेस साइड पर रखकर बच्चों के वेलबींग को प्रायोरिटी दें। बच्चों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उन्हें किसी एक पेरेंट को चूज करना है, उन्हें दोनों की मोहब्बत और सपोर्ट की जरूरत होती है। बच्चों को वेपन मत बनाइए। कई पेरेंट्स गुस्से में बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, मम्मी ऐसी है, डैडी वैसे हैं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। ये अप्रोच बच्चे को इमोशनल बैटलफील्ड में डाल देती है और सबसे ज्यादा नुकसान ना आपका है ना किसी और का, सबसे ज्यादा नुकसान बच्चे का है। इसीलिए शायद मैरिज को बचाना इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर मैरिज बचाना इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये अगेन ऐसा सवाल है जिस पर मैं जवाब नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, माँ बाप को बचाना एक बच्चे के लिए, या माँ बाप का साथ में खड़े रहना, या एक रिश्ते में बंधे रहना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। खास करके वैसे तो बच्चे हमेशा ही बच्चे रहते हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, लेकिन अगर बच्चा छोटा है तो ये मैरिज बचाना बहुत जरूरी है। देखिए, हर मैरिज की अपनी कीमत भी होती है। हर मैरिज को हर कीमत पर कंटिन्यू करना ये मैं नहीं कहूंगी कि जरूरी है, डिफरेंस समझना जरूरी है। आजकल लोग कभी कभी बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, माइनर सा कॉन्फ्लिक्ट या टेम्परेरी डिसएग्रीमेंट्स, इन सब को एंडिंग पॉइंट नहीं बनाना है। इन्हें मैरिज का एंडिंग पॉइंट मत बनाइए। रिलेशनशिप्स एफर्ट्स मांगती है, पेशेंस मांगती है, कॉम्प्रोमाइज मांगती है, फॉरगिवनेस मांगती है और शायद टाइम मांगती है। तो अगर ये सारी चीजें हम देने में कामयाब हैं तो हो सकता है जाहिरी तौर पे कुछ वक्त तक हमारा रिश्ता उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नजर ना आए, लेकिन यकीन मानिए वो रिश्ता वक्त के साथ धीरे धीरे और मजबूत होने लगता है। मैरिज को बच्चे के लिए बचाइए और इसके लिए ओपन कम्युनिकेशन हो, जरूरत पड़े तो काउंसलिंग के लिए आप जो है वो झिझके नहीं, हेजिटेट ना करें। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है रिश्ते को मजबूती देने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि वक्त, हर रिश्ता वक्त चाहता है। एम्पैथी, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए उन टूल्स का इस्तेमाल करना जो बच्चों के हक में और इस रिश्ते को बचाने के हक में जरूरी हो। कभी कभी प्रोफेशनल हेल्प एक रिलेशनशिप को नई जिंदगी देती है। कितने सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर लोगों ने, आई मीन जैसे पेरेंट्स ने, शायद मुझे कपल से ज्यादा पेरेंट्स कहना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि माँ बाप कभी भी जुदा ना हो। लेकिन अगर सिचुएशन वर्स्ट हो, अगर रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गई है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो, एब्यूज हो, मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही हो, तो फिर अलग होना हेल्थी डिसीजन शायद है। इस्लाम भी जुल्म में रहने की मजबूरी या जुल्म सहने के लिए नहीं कहता। अगर वाकई इस तरह की कोई मजबूरी बड़ी है तो फिर अलहदगी बेहतर है, लेकिन ये अलहदगी भी डिग्निटी और वेलबींग को मद्देनजर रख कर की जानी चाहिए। अब एक और चीज आती है, वो है सेकेंड मैरिज का ऑप्शन। कहने को तो ये टॉपिक और ये बात काफी सेंसिटिव है और इसका जवाब मैं तो पता नहीं मैं क्या दूं, मगर मैं ये कह सकती हूँ कि शायद हर इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है ना। सेकेंड मैरिज कामयाब हो सकती है और शायद नहीं भी। कई बार एक डिवोर्स फादर इमोशनली हील हो चुका होता है, रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, बच्चों की जिम्मेदारी भी समझने लगता है, तो सेकेंड मैरिज एक पॉजिटिव स्टेप होता है ऐसी जगह। लेकिन उसको ये समझना होगा कि बच्चे उसकी लाइफ का एक परमानेंट पार्ट है। नए स्पाउस को भी ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी, और अगर आपको लगता है कि ये रियलिटी नए स्पाउस नहीं एक्सेप्ट कर सकती, तो ऐसे केस में आप खुद अकेले माँ और बाप दोनों का रोल निभाएं। वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल्स के लिए, तो सोसाइटी अक्सर डिवोर्स्ड वुमेन के लिए डबल स्टैंडर्ड भी रखती है, लेकिन रियलिटी ये है कि एक डिवोर्स्ड वुमेन भी कंपेनियनशिप, रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस का

उतना ही हक रखती है जितना एक मेल रखता है। अगर वो इमोशनली रेडी है, हेल्दी रिलेशनशिप चूज करती है और बच्चों के वेलबींग को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो सेकेंड मैरिज उसके लिए भी एक पॉजिटिव डिसीजन होना चाहिए। लेकिन जब बच्चे हों तो चैलेंजेस भी होते हैं। सेकेंड मैरिज सिर्फ दो लोगों की शादी तो नहीं है, अब ये दो फैमिलीज की शादी है, दो फैमिली सिस्टम का इंटीग्रेशन है। और ये प्रोसेस बिलीव मी आसान बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चों को नए पेरेंट फिगर को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट बिल्ट होने में सालों लग जाते हैं, उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप नेचुरली डेवलप हो। और हाँ, कई बच्चे महसूस करते हैं कि अगर वो स्टेप पेरेंट से अटैच होंगे तो शायद ओरिजिनल पेरेंट हर्ट हो जाएंगे, और ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उन्हें इमोशनली डिस्टर्ब रखती है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं कहूंगी, वो जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है पेशेंस। सेकेंड मैरिज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस। प्यार हो ना हो, पेशेंस हो, एक्सेप्टेंस हो, और शायद इसी से रिश्ता ग्रो कर पाता है। वहीं सेकेंड मैरिज के लिए रिस्पेक्ट का होना फिर भी जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन, पेशेंस और शायद बच्चों की इमोशनल नीड्स को भी समझना। जहाँ अडल्ट सिर्फ अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और जहाँ फैमिली की कलेक्टिव वेलबींग प्रायोरिटी पर रखी जाती है, वहाँ हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों, शादी सिर्फ दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये एक इमोशनल इकोसिस्टम है, और जब ये इकोसिस्टम टूटता है तो उसकी आवाज सिर्फ कोर्ट रूम तक नहीं जाती, वो बच्चों के दिलों तक जाती है, पेरेंट्स के जमीर तक जाती है, और कई दफा जनरेशंस तक सुनाई देती है। डिवोर्स को जज करना हमारा काम नहीं है। हर कहानी, जैसे मैंने कहा, हर कहानी के पीछे का दर्द अलग होता है, सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, सिचुएशन अलग होती है। लेकिन एक बात जो हमें और आपको हमेशा याद रखनी है, मैरिज खत्म हो सकती है, पेरेंटिंग नहीं। हस्बैंड और वाइफ अलग हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। हस्बैंड और वाइफ की नाराजगी बढ़ सकती है, लेकिन बच्चों की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। आपका रिलेशनशिप चेंज हो सकता है, लेकिन बच्चे का हक नहीं। अगर मैरिज बच सकती है तो उसे 100% कोशिश करें बचाएं। कम्युनिकेशन से बचाएं, रिस्पेक्ट से बचाएं, किसी और काउंसलिंग के थ्रू बचाएं, या कोई और तीसरा चौथा बंदा इसमें काम कर सकता है, क्योंकि ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। उन्हें अपनी जंग का हिस्सा मत बनाइए। उन्हें आपको और फादर या मदर के बीच किसी एक को चूज करने पर मजबूर मत कीजिए। उन्हें किसी एक के प्यार से महरूम मत रखिए, क्योंकि बच्चे डिवोर्स पेपर्स नहीं समझते, वो सिर्फ समझते हैं तो वो है मोहब्बत और आपका साथ। और जब माँ बाप अपने डिफरेंसेस के बावजूद भी बच्चों के लिए मिलकर खड़े रहते हैं, तब बच्चे सीखते क्या है, ये कि रिलेशनशिप टूट नहीं सकते, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। इंसानियत खत्म नहीं हो सकती, जिम्मेदारी मोहब्बत कभी नहीं टूटती, चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए। और शायद यही हमारी असली टीचिंग और प्रीचिंग है। चलिए दोस्तों, मैं एक छोटा सा किस्सा और एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। स्कूल में एनुअल साइंस कॉम्पिटिशन चल रहा था। क्लास 8 के दो स्टूडेंट्स, अली और समीर, दोनों अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने वाले थे। अली जब स्टेज पर गया तो कॉन्फिडेंस से बोला, उसने अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, जजेस के सवालों के जवाब दिए और मुस्कुराते हुए वापस अपनी सीट पर आ गया। दूसरी तरफ था लड़का समीर, वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसका प्रोजेक्ट भी जबरदस्त था, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर गया उसके हाथ कांपने लगे। वो बार बार अपनी बात भूल रहा था और बेहद नर्वस नजर आ रहा था। कंपटीशन वो हार गया, लेकिन कंपटीशन के बाद टीचर ने दोनों को बुलाया। टीचर ने अली से पूछा, तुम इतने कॉन्फिडेंट स्टेज पर कैसे दिख रहे थे? अली मुस्कुराया और बोला, मैम जब भी मैं किसी चीज से डरता हूँ, मेरे पेरेंट्स कहते हैं, बेटा जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं, और इसीलिए मुझे पता होता है कि घर जाकर मुझे तो सपोर्ट ही मिलेगा, इस वजह से मैं शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता हूँ। फिर यही सवाल टीचर ने समीर से पूछा। समीर ने

हल्की सी आवाज में कहा, मैम मेरे पेरेंट्स डिवोर्स के बाद अलग हो चुके हैं। मैं जब भी कोई अच्छी या बुरी बात शेयर करना चाहता हूँ, समझ में नहीं आता किससे करूँ। घर में अक्सर टेंशन है, कभी लगता है कि कोई मेरी बात सुनने वाला ही नहीं है, कोई मेरे साथ बैठने वाला ही नहीं है और कोई मुझे सेफ एनवायरमेंट देने वाला नहीं है। टीचर कुछ पल के लिए खामोश रह गई। उसने देखा कि दोनों बच्चों की इंटेलिजेंस में फर्क है। समीर एक इंटेलिजेंट बच्चा होने के बावजूद कॉन्फिडेंट नहीं है, और ये सिर्फ फर्क इतना सा नहीं कि एक बच्चा जो है वो इमोशनल सिक्योरिटी के साथ है और दूसरा इमोशनल सिक्योरिटी के बगैर। ये भी है कि उसका फ्यूचर स्टेक पर है। अली को पता था कि अगर वो गिर गया तो उसे संभाल लेंगे उसके पेरेंट्स। समीर को ये डर है कि वो अकेला है, तन्हा है, और यही वजह थी कि अली का कॉन्फिडेंस उसकी बुक से नहीं, उसके घर के एनवायरमेंट से उसे मिला। और समीर की स्ट्रगल उसकी एबिलिटी की कमी नहीं है, उसके इमोशनल जख्मों की वजह से थी। बस दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हर ब्रोकन फैमिली का बच्चा कामयाब शायद होता है और शायद नहीं भी, और शायद गलत रास्ते पे भी चला जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं दावे से कहूँगी कि हर कंप्लीट फैमिली का बच्चा एक अच्छा इंसान ज़रूर बनता है। एक सच बात ये भी है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रोटी, कपड़ा, तालीम ये नहीं चाहिए, उन्हें इमोशनल सेफ्टी भी चाहिए। जब माँ और बाप एक दूसरे की इज्जत करते हैं, बच्चे इज्जत सीखते हैं। जब घर में मोहब्बत होती है, बच्चे मोहब्बत बांटना सीखते हैं। और जब घर में लड़ाई, नफरत और टूटे हुए रिश्ते होते हैं, तो बच्चे अक्सर उन जख्मों को बोझ समझ के सालों तक उठाते रहते हैं। यहाँ पर ये बात हमें और आपको याद रखना जरूरी है कि बच्चे वो नहीं बनते जो हम उन्हें सिखाते हैं, बच्चे अक्सर वो बनते हैं जो वो घर में रोज देखते हैं। इसीलिए अगर आप अपने बच्चों को एक बेहतरीन फ्यूचर देना चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ अच्छे स्कूल में मत डालिए, बल्कि एक सेहतमंद घर, मोहब्बत भरा एनवायरमेंट और इमोशनल सिक्योरिटी भी दीजिए। क्योंकि बच्चों की जिंदगी की सबसे पहली यूनिवर्सिटी उनका घर है, सबसे पहला स्कूल उनका घर है, और सबसे पहले टीचर्स उनके पेरेंट्स हैं। जी हाँ, उनके पेरेंट्स यानी माँ और बाप दोनों। दोस्तों, आज जब हम बच्चों की परवरिश, हेल्दी होम और ब्रोकन फैमिलीज, डिवोर्स की बात कर रहे थे, तो एक बात बार बार दिल में आ रही थी, और वो ये कि बच्चों को परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए होते, बच्चों को प्रेजेंट पेरेंट्स चाहिए होते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो उनकी बात सुन सके, जो उनकी छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर खुश हो सके, जो उनके डर को समझ सके, और जो उन्हें ये एहसास दिला सके कि चाहे दुनिया बदल जाए, घर उनके लिए हमेशा एक सेफ प्लेस रहेगी। सोचिए, दुनिया के बहुत से कामयाब लोगों की कहानियों में एक कॉमन चीज़ मिलती है, किसी ना किसी का यकीन, किसी माँ की दुआ, किसी बाप का हौसला, किसी टीचर का भरोसा, और ऐसा जो उनसे ये कहता हो, मुझे तुम पर यकीन है। ओलंपिक चैंपियंस हो, साइंटिस्ट हो, वर्ल्ड लीडर्स या एंटरप्रेन्योर्स, इनकी जिंदगी के पीछे अक्सर एक सपोर्ट सिस्टम होता है, क्योंकि टैलेंट कॉन्फिडेंस देता है और सपोर्ट करेज देता है, और जब टैलेंट और करेज मिल जाए तो कमाल पैदा होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आज सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की बात नहीं कर रही थी, आज मैं उस आम बच्चे की भी बात कर रही हूँ जो स्कूल से घर आता है और जैसे सिर्फ आकर ये देखना चाहता है कि उसके माँ बाप दोनों उसके साथ हैं। कभी कभी एक बच्चे की पूरी जिंदगी बदलने के लिए मिलियन डॉलर्स नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मिनट आपकी जेन्युइन तवज्जो चाहिए होती है, सिर्फ एक हक चाहिए होता है, सिर्फ एक एहसास चाहिए होता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। आज के दौर में पेरेंट्स बच्चों के लिए सब कुछ अरेंज कर देते हैं, बेस्ट स्कूल, गैजेट्स, एक्टिविटीज, लेकिन कभी कभी बच्चे इन सबसे ज्यादा उस चीज को मिस करते हैं, और वो चीज है पेरेंट्स का वक्त। याद रखिए, कोई भी बच्चा कल ये याद नहीं रखेगा कि उसके पास कौन सा फोन था, कौन सा गैजेट था, लेकिन वो ये जरूर याद रखेगा कि उसके पेरेंट्स उसके साथ दोनों खड़े थे बुरे वक्त में कि नहीं, उसे कितना सुना जाता था, उसे कितना वैलिडेट किया जाता था, उसे कितना समझा जाता था। क्योंकि बचपन की यादें चीजों से नहीं, रिश्तों से बनती हैं।

0: और जब घर में मोहब्बत, इज्जत और इमोशनल सिक्योरिटी होती है तो बच्चा जिंदगी के तूफानों का भी सामना करना सीख जाता है। और जब घर में जंग का मैदान बन जाए और जंग का मैदान बना रहे तो बच्चे अक्सर वो जख्म लेकर जवान होते हैं जो किसी को नजर नहीं आते। और इसीलिए अगर माँ बाप नहीं या बाप नहीं या माँ नहीं तो बच्चे जो हैं वो शख्स नहीं बन पाते जो हम चाहते हैं। तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए प्रिपेयर मत कीजिए, उन्हें ऐसा आज दीजिए जैसे वो कल याद करें, फख्र महसूस करें। उनके सामने एक दूसरे की इज्जत कीजिए, उनके सामने एज अ पेरेंट मोहब्बत का इजहार कीजिए, उनके सामने मसाइल को तमीज और हिकमत से सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा आपकी बातें कम और आपका रवैया ज्यादा सीखता है। बस अब जाते जाते मुझे लगता है कि मैं अब क्या ही कहूँ। आज हमने बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना कि कई बार मैरिजेस जो हैं वो एंड हो जाती हैं लेकिन पेरेंटिंग ओवर नहीं होती। और जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसके पास कोई डिग्री नहीं होती, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके पास सिर्फ और सिर्फ साथ होता है माँ बाप का, भरोसा होता है, भरोसा अपने माँ बाप पर। और उस भरोसे को मजबूत बनाना या तोड़ना हमारे हाथ में है। जब आज आप अपने घर लौटे, अपने बच्चों को गले लगाइए, उनकी बात सुनिए, उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें एहसास दिलाइए कि आप हैं उनके लिए, वो अकेला नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए एक छोटा सा मोमेंट हो लेकिन उस बच्चे के लिए ये उसकी पूरी दुनिया हो। आखिर में सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगी, बच्चे वो याद नहीं रखते कि आपने उनके लिए कितना कमाया था, वो ये याद रखते हैं कि आपने उनके लिए कितना वक्त निकाला था। और शायद पेरेंटिंग की सबसे बड़ी कामयाबी भी यही है कि हम कितना वक्त दे पा रहे हैं और क्या हम अपने आप को एज ए पेरेंट समझ पा रहे हैं, क्या हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड में रख पा रहे हैं, क्या हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर पा रहे हैं। ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो जब भी रिश्तों में कमजोरी आए, रिलेशनशिप्स खास करके अगर एज अ पेरेंट देखा जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, माहौल जो है वो टॉक्सिक होने लगे, तो सबसे पहले कोशिश क्या कीजिए कि आप अपने वॉलेट में एक अपने बच्चे की फ़ोटो रखें और उस फोटो को निकालें, देखें और फिर खुद को ये तसल्ली दें कि मुझे ये रिश्ता बचाना है, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए। और ये बात मैं दोनों से कह रही हूँ, आई मीन टू से कपल से कह रही हूँ जो किसी ना किसी वजह से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का शिकार हो रहे हैं और शायद वो वहाँ से वापस आ सकते हैं। और एक कड़ी जो उनको मजबूती से जोड़ के रखती है वो है बच्चे। जी हाँ, बच्चे या बच्चा आपकी वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आपकी वो सबसे बड़ी, मैं कह सकती हूँ आपका सबसे बड़ा गोल होना चाहिए अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। ये नहीं कहूँगी कि अपनी जिंदगी कुर्बान कर दीजिए, अपनी खुशियाँ अपने बच्चों की बेहतर फ्यूचर के इर्द गिर्द ढूंढिए। और यकीन मानिए जब इस तरह के रिश्तों को आप बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको ऊपर वाले यानी अल्लाह की तरफ से भी एक हिम्मत मिलती है और आप रिश्तों को बेहतर तरीके से सवार पाते हैं, निखार पाते हैं, और यही खूबसूरती है रिश्तों की। चलिए, मुझे लगता है कि आज हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत कुछ जाना, सीखा, काफ़ी इमोशनल टॉपिक भी था, डिवोर्स जैसा टॉपिक। और फिर हमने और आपने समझा कि रिश्ता तोड़ना तो बड़ा आसान है लेकिन उसे निभाना, बनाए रखना बड़ा मुश्किल, और जोड़ पाना तो शायद उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल। कोशिश कीजिए कि हर रिश्ते को अहमियत दी जाए, हर रिश्ते में ट्रस्ट हो, मोहब्बत हो, और वो रिश्ता कामयाब बनाने का, उस रिश्ते को कायम रखने का काम जो है वो एक का नहीं है, दोनों का है। तो बस एज ए पेरेंट मिलजुल के काम कीजिए और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाइए। फिलहाल मुझे यानी नासिया और शहबाज अंसारी हम दोनों को इस शो से इजाजत दें। देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: ओए चौका, ओए छक्का, ओए नो बॉल चौका पड़ गया। ओए
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे आज ऐसी आवाज सुनने को मिलेगी क्योंकि आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच में यही हो रहा भाई। वेस्ट इंडीज ने इतना कूटा है, इतना ज्यादा कूटा है कि 400 से ज्यादा रन बना दिए हैं 50 ओवर में। और इधर इंडिया भी खेल रही है भाई, इंडिया ने भी 22 ओवर में ऐसा कूटा है 213 रन बगैर किसी विकेट के। रोहित और गिल खेल रहे हैं यार, आज तो यही आवाज आएगी मैं बता रहा हूँ। 6:02 इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है
4: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
5: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
3: अमाम या क्या मजेदार मैच आ रहा भाई, अगर तुम लोग ये नहीं देख रहे हो तो देखो मेरा भाई, नहीं भी देख रहा हो अपडेट ले सकते हो लियो भाई। कोई ओवर ऐसा नहीं जा रहा जिसमें चौका छक्का ना लग रहा हो, और एक दो ऐसा भी नहीं है कि एक चौका लग रहा हो फिर रन हो रहे हो, एक चौका लग रहा हो एक छक्का लग रहा हो, दो छक्के लग रहे हैं एक चौका लग रहा है, तीन चौके लग रहे हैं एक छक्के लग रहे हैं। भाई क्या मस्त पाटा विकेट, एकदम पाटा एकदम चपटा भाई, किधर भी बैट घुमाओ बैट पे आ रही है बॉल। और फिर इतना ज्यादा रन बना लिया है, 400 से ज्यादा रन हो गए हैं, उसको चेज कर रही है इंडिया और बगैर किसी विकेट के 200 से ज्यादा रन अभी तक बना लिए हैं इंडिया ने बगैर

0: पर किसी विकेट की क्या बात है यार। गिल ने तो अपनी सेंचुरी पूरी कर ली है और रोहित जो है अभी 89 पे खेल रहा है। तो ये हल्की सी अपडेट मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दे दिया जाए, मजा तो आ रहा है। बाकी ओए छक्का लगा, ये आवाज बीच बीच में सुन सकते हैं आप, छक्का भी लग रहा है, नो बॉल फेंक दे रहे हैं भाई वेस्ट इंडीज वाले। फिलहाल ये शो है अनप्लग्ड इवनिंग, जहां पर आपको बेहतरीन से गाने सुनने को मिलेंगे और सवाल भी होते रहेंगे। लेकिन इन सबके बीच, यानी कि चौके छक्के के बीच, स्कोर अपडेट के बीच, आपको ये भी मैं बताता रहूंगा, यानी कि एफएम 107 पे कि सवाल क्या है आज का। चलो सवाल से शुरू कर लेते हैं, बड़ा ही लाजवाब आज का सवाल। वो बूढ़े लोग कहते थे ना कि अरे बेटा मेहनत करो, मेहनत तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अब्बा लोग कहते हैं, अम्मा लोग कहती हैं, मेहनत करो बेटा, मेहनत से सारा काम होता है। लेकिन मैंने ना जाने कितने ऐसे लोग को वो देखा, कोई मेहनत नहीं कर रहा भाई, एकदम लल्लू किस्म की आदमी है, कपड़ा सही से पहनना नहीं आ रहा है, उनकी चाल बेहतरीन नहीं हैगी, लेकिन भाई 30,000 रियाल कमा रहे हैंगे, 40,000 रुपया सैलरी हो रही हैगी, इतना टैलेंट भी नहीं। आप सोच रहे होगे कि भैया कपड़ा पहनना नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है भाई वो एकदम पढ़ाकू आदमी हो, रणछोड़ दास झांचड़ हो, क्या मालूम किसी को भाई, हो सकता है उसको कपड़ा पहनना नहीं आ रहा, रंगीन कपड़ा पहन रहा सफ़ेद के ऊपर एकदम गुलाबी चमकदार है, नारंगी कपड़ा पहन रहा, नारंगी शर्ट पहन रहा है, लेकिन दिमाग उसका रणछोड़ दास हो तो फजील भाई ये भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है मेरा भाई। ऐसे चोमू चोमू दुनिया में लोग हैं भाई, जिनकी अच्छी खासी सैलरी हैगी और कोई काम नहीं ज्यादा अच्छा आता होगा। मैं तो बस कहता हूं उनकी लक की बात हैगी, क्या लक लेके चल रहे हैंगे भाई यार, मैंने आज देखा है। तो बस उसी पर मेरा सवाल भी है, और सवाल यह है यार कि इंसान जो है अपना करियर दो तरीकों से बना सकता है, एक स्कैम करके, नहीं वो तो शो अलग करता हूं, वो वाला नहीं। आपके दिमाग में आया होगा ना कि गलत काम करके, स्कैम करके। इंसान दो तरीके से करियर बनाता है, या तो हार्ड लक से है, जिसमें खूब वो मदद कर, वो अपनी कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, बढ़िया मेहनत करता है और फिर उसकी जिंदगी बन जाती है, या फिर लक। ठीक है, इन दोनों से काम हो रहा है जो मुझे भी दिखाई पड़ रहा है भाई, लक बहुत बड़ी चीज है। तो आपने जो अपना करियर अभी तक बनाया है, अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी जो बनाई है, आपको क्या लगता है कि आपने जो जिंदगी अपनी बनाई है वो लक से बनाई है, या लक से बन गई है, या फिर आपने सच में अपनी इस जिंदगी के लिए बहुत मेहनत करी है, ये मैं जानना चाहता हूं। अब आपको ये बताना है, नंबर है 666-22-107, 666-22-107, जहां पर आप बता सकते हैं कि आपने अपनी जिंदगी जो बनाई है वो हार्ड मेहनत करके, हार्डकोर मेहनत करके, हार्डवर्क करके, या फिर लक के जरिए आपने अपनी जिंदगी बनाई है। कुछ लोग अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब करते हैं कि सही वक्त पे अगर सही अपॉर्चुनिटी पकड़ लो फजीन, जिंदगी वही बनती है ना। कई लोग अमीर बन सकते हैं, पैसे वाले बन सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, अपने बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सही जगह पे सही वक्त पे अपॉर्चुनिटीज ग्रैब ना करें, ऐसे डायलॉग सुने आपने, वो वाले लोग भी आते हैं कि अपॉर्चुनिटीज ग्रैब ना करें, ग्रैब करना होता है, अगर वो नहीं करोगे तो नुकसान हो जाता है, वहीं पर सबसे बड़ा नुकसान होता है, इंसान अपनी जिंदगी को हाथ से गवा बैठता है, अपने करियर को हाथ से गवा बैठता है। लेकिन आप बताए, आपने अपने करियर को कैसे बनाया, हार्ड वर्क से या लक से? नंबर 666-22-107, जहां पर आप जवाब दे सकते हैं। मैसेज की तरफ हल्लू हाथ से रुख करते हैं। सबसे पहला मैसेज सलाम का आया हुआ, वालेकुम अस्सलाम। फिर ये मैसेज है, क्या भाई जब भी कोशिश किया जिंदगी बनाने की तो जिंदगी ने हमें बना दिया आगे से, आए हाय। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है बाबू। लेकिन इसमें लक वाला कुछ तो, अगर आप कतर में हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा तो लक है ना। फिर एक और मैसेज है मुबीन साहब का, सलाम करने के बाद दुनिया भर के मैसेज लिख दिया माशाल्लाह। 162 वाले भैया फिर कॉल आ गई, मैं रोज बता रहा हूँ भाई, लोग रोज भूल जा रहे हैं क्या भाईजान? 443-443-77 वाला नंबर है, इस पर आप कॉल करें, ये सही सिस्टम से कनेक्ट हुआ है ये मोबाइल, लैंडलाइन कहते हैं ना, हाँ लैंडलाइन कनेक्ट हुआ है,
1: इसी पर कॉल करें। 162 वाले जो भी भैया, मैं आपका कॉल व्हाट्सएप पे काट रहा हूँ। 443-443-77 है नंबर, 443-443-77। सवाल बड़ा सिंपल सा है, आपको तो पता चल गया। बाकी अब मैसेज, सॉरी कॉल की तरफ बढ़ते हैं। किसी दूसरे

0: से नंबर से आई थी कॉल, आई थी इसलिए कहा क्योंकि वो कट गई। खैर सवाल,
1: मेरे सवाल का जवाब दो, दो ना।
0: हाँ जी, सवाल ये है कि आपने अपनी जिंदगी जो बनाई, आपने अपना करियर जो बनाया वो हार्ड वर्क से बनाया, मेहनत करके बनाया, हाथ पैर मार हुए बनाया एकदम, है ना, कि जगह जगह पे जाते थे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, आपने जगह जगह पे इंटरव्यू दिए हैं, आपने मेहनत करी है, आपने अपना यू नो वक्त गवाया है, दुबले हो गए हैं आप, धूप में चले हैं आप, या फिर आपको लगता है कि लक से आपको ये काम मिला है, कि स्किल तो है भाई साहब थोड़ी बहुत, लेकिन लक का एक बहुत बड़ा असर रहा है, ये ज़रूर बताइएगा। नंबर है 666-22107, 666-22107। 162 वाले भैया मैंने बता तो दिया, दूसरा नंबर है भाई वो 443-443-77। एक बार हिंदी में भी कर दूं, क्या मालूम नहीं समझ में, 443-443-77 इस नंबर पे कॉल करेंगे तो अपन उठा लेंगे। बाकी यह है कि भाई डिलीवरी का काम करते हैं और इतने पैसे आते हैं कि जितना बंदा बस जी सके। अरे ऐसा ना कहो यार, क्या यार, ये तो गलत बात है यार, ये नहीं कहना चाहिए आपको। क्या है कि इंसान देखो, इसमें मेहनत तो है लेकिन कहीं ना कहीं काम भी तो है, और कहीं ना कहीं इतने पैसे हैं कि आप अपना मुल्क छोड़ के आप यहाँ पर हैं, है ना, तो अब ये हार्ड वर्क है ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये मत कहो कि यार बंदा बस जी सके यार। आप कहीं ना कहीं इंशाल्लाह इस काम से भी, इस मेहनत से भी कुछ ना कुछ बन जाता है। आप बैक इन अदर कंट्रीज सोचें, वहां पर तो इतना भी सही से नहीं मिल रहा, कई बार तो इतना ज्यादा लेट हो जा रहा है कि भाई वो आ नहीं रहा है, दो दो महीने लेट हो जा रहे हैं पेमेंट मिलने में, सैलरी मिलने में। यहां पर टाइम पर तो आता, उल्टा लॉ बनाया कि भाई 7 दिन के अंदर अंदर देना है, वरना फिर गवर्नमेंट देती है अगर नहीं दिया 7 दिन के अंदर। तो ये तो प्लस पॉइंट एटलीस्ट है। बाकी एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखो, जब मैं काम की बात कर रहा था, मेहनत की बात कर रहा था, लक की बात कर रहा था, उसामा भाई को अपने 500 रियाल याद आ गए। अरे भाई, मैसेज आया होगा आपके पास और उम्मीद है कि उस मैसेज के थ्रू आपको पता चल गया होगा क्या डिटेल रही होगी। रमदान में 500 रियाल जीते थे, तो अपडेट आ गया होगा यार आपके पास, तो मैसेज आया होगा। फिर है भयानक नाजिर भी और तो ना टोटका, क्या मुबीन भाई कुछ तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खैर 162 वाले नंबर वाले जो भैया थे उनको समझ में आ गया कहाँ पर कॉल कर रहा है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: अच्छा, मैं पहली जगह कॉल कर रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, कैसे है मेरा भाई, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम राना सक्ले है।
0: भाई आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपने कहीं कनेक्ट किया है ब्लूटूथ से?
2: गाड़ी का ब्लूटूथ है जिससे मैं।
0: अच्छा ठीक है, तो अभी बताएं फिर, आवाज क्लियर तो नहीं है लेकिन
2: लाउडली बोलो।
0: नहीं, मुझे लगता है कि आप धीरे, नहीं नहीं धीरे बोलें तो काम चल जाएगा, लेकिन क्लियर आवाज नहीं, अगर नहीं होगी तो हम दोबारा बताएंगे, आप ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो आवाज क्लियर हो जाएगी।
2: अच्छा,
0: नाम क्या बता रहे थे आप?
2: राना सकलेन।
0: सकलेन
2: जी, सकलेन।
0: अरे वाह, ओके। तो सकलेन साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप आज के सवाल पे?
2: मैं तो जवाब देना चाहूंगा लक।
0: लक बहुत जरूरी है।
2: लक बहुत जरूरी है।
0: क्यों ऐसा आपको लगता है?
2: मैंने तो लक के थ्रू ही जो कुछ किया है, इसलिए मैं इंटरेस्टेड था जब मैंने आपका ये सुना है कि लक या मेहनत, तो मैंने लक को ही प्रेफर करूंगा। लक जरूरी है, मेहनत आप कितनी भी कर लेना, लक साथ नहीं दे रही ना, तो आप कामयाब नहीं हो सकते।
0: मेहनत कितनी भी कर रहे, लक साथ नहीं दे रही। अच्छा, ये मैंने अपने अब्बा में ही देखी है। अब्बा हमारे बहुत मेहनती थे, लेकिन कई बार अम्मी भी कहती थी, पता नहीं जब ये काम करने जाते हैं एकदम लास्ट मोमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर आखिर में काम ही नहीं होता, काम कोई और ले जाता है, कोई और कर जाता, कोई और पैसे ले जाता। ये बात तो मैंने देखी है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं अब्बू को। और कई लोग ऐसे हैं जो यू नो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, बट उनके पास फ्लो जो है पैसे का, करियर का जो रहता है, बहुत अच्छा रहता है। ये इस बात को मैं मानूंगा।
2: बड़ी अच्छी लेवल तक क्रिकेट खेलने गया हूँ, लेकिन लक नहीं थी ना,
0: लक नहीं,
2: तो वहाँ कामयाब नहीं हुआ।

0: मैदान के मैट तो अभी निकले हुए हैं, इस बार अच्छे मैट लग रहे हैं उम्मीदन, तो बता दिए कब तक शुरू होगा, हम लोग को अभी डिटेल्स नहीं आई है।
1: लास्ट 3 दिन से ही हमारी जो रिफ्रेश कोर्स चल रहे थे, अंपायरिंग के रिफ्रेश कोर्स कंप्लीट हुए हैं। लास्ट 3 दिन से हम कंटिन्यू फ्यूचर ऑफिस जा रहे थे ओलंपिक टावर में, और ये जो हमें जो इन्फॉर्मेशन है कि अक्टूबर मिड में या एंड में स्टार्टिंग शुरू
0: हो। चले ठीक है, ये आउट ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार आप हमें डोमिनेटर को, जब भी आप अंपायरिंग कर रहे होंगे डोमिनेटर टीम से मैं खेलूंगा, तो एलबी का देख लिएगा, ठीक है? लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, मजा आया, और माशाल्लाह इंशाल्लाह कभी अगर ऐसा लगा मौका तो मुलाकात भी होगी ग्राउंड पे इंशाल्लाह, ठीक है?
1: इंशाल्लाह।
0: ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ओके, फिलहाल 6:14 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और सवाल बड़ा जरूरी और इस पर बहुत क्लीन जवाब दिया है कि लक बहुत बड़ा होता है। अगर आपको करियर बनाना है, बिजनेस बनाना है, कुछ भी है, एक तो अपॉर्चुनिटी, सही अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, और ऊपर से जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि लक जरूरी है, और ऑब्वियसली हार्ड वर्क के साथ कभी कभार लक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाता है और आपका, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, आपका बिजनेस चल जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क ही काम करता है, किसी किसी का कहता है लक जरूरी है, हार्ड वर्क करे ना करे भाई। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नहीं लूंगा बस, बट उसका लक इतना तगड़ा है भाई हर एक मामले में। मैं पिछले जहां एक जगह जॉब करता था वहां पर भी वो काम करता था। अच्छा, वो ये भी है कि मैं जब कानपुर में था तो वो कानपुर में था, जब मैं कतर आया तो अभी वो गल्फ कंट्री में ही है, और मतलब आसपास ही है अपने, ठीक है? तो वो अभी जब यहाँ काम कर रहा है तो यहाँ पर भी, और अपने जब मुल्क में था वहां पर भी, भाई जब कुछ भी कांड कर दे वो, गंदे से गंदा कांड, बच जाता था यार वो आदमी। मतलब आप लिटरली मानो, एक गाना था ना, खलीबली हो गया है दिल, उस पे उसने ऐसा डांस किया था कि उसने पैर चलाया और पैर से सीपीयू बंद हो गया और पूरा सिस्टम ऑफ। मतलब ये ऐसा बड़ा कांड था जिसके वजह से आपकी नौकरी भी खतरे में आ सकती थी। भाई कुछ नहीं हुआ उसको, पीठ पे 2 मुक्का मारा मेरे बॉस ने, वो भी मजाक में, भाई उसके रिलेशन अच्छे हो गए यार। ये कौन सा तरीका है यार, जिसमें आप गुनाह भी कर रहे हैं लेकिन आपका लक इतना बढ़िया है कि आपका बॉस से कनेक्शन और बढ़िया हो जा रहा है। वाह भाई वाह, सही है। बाकी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपके मैसेज की तरफ बाद में आएंगे। सवाल वही है लाजिम, जिसका आपको जवाब देना है 6:22:107 पे, और सवाल ये है कि लक आपके करियर में सामने आया है या फिर हार्डवर्क से आपका करियर बना है, ठीक है? आपको ये जवाब देना, नंबर है 666-221-07।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं, ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
2: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
3: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज, ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
2: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
4: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स न सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
6: आज ही राब्ता करें
5: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
7: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
8: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: हांजी, FM 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का अनप्लग्ड इवनिंग शो, और वक्त आ गया है कि सवाल के जवाब पर बढ़ा जाए। सवाल बड़ा सिंपल सा था कि आपने अपने करियर को बिल्ड करने के लिए हार्ड वर्क का सहारा लिया है या फिर आपका लक बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि अच्छा, परसेंटेज वाइज भी अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि यार 60% तो लक है और 40% स्किल है, मेहनत है। क्योंकि इस काम में मैं तकरीबन 2012 से लगेला था यार, बहुत लंबा वक्त। कॉलेज से ही अपन चालू कर दिए थे, है ना, स्टेज पे चढ़ना, वहाँ पर बातें, वहाँ पर सारी चीज़ें करना, और फिर उसके बाद वहाँ से निकल कर कहीं और कुछ काम करना। और कितने भी सारे आरजेस को देखो ना, उनसे पूछो, वो पक्का एक बार ज़रूर बताएंगे कि उन्होंने कॉल सेंटर में काम किया। पक्का कोई ना कोई कॉल सेंटर में ज़रूर रहा होगा, भले कुछ वक्त के लिए, और मैं भी 8-10 दिन के लिए तो था। तो मुझे लगता है कि ये ना मैंडेटरी होता है, जैसे कि आप एनुअल एग्ज़ाम की तरफ पहुंचे उससे पहले होता है, क्वार्टरली हाफ ईयरली तो देना ही देना है। वैसे ही ज़रूरी है कि अगर आप आरजे बनना चाहते हैं तो एक बार आपको कॉल सेंटर में बैठना पड़ेगा। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और अस्सलाम वालेकुम फजील भाई। वालेकुम अस्सलाम। नाम है इनका फहद, कहते हैं नाम अब सही हो गया आपका भाई। लक है, नाम अब सही हो गया आपका, मैं समझा नहीं। खैर भाई, लक के बगैर करियर नहीं बनता भाई। मैं एक एग्जांपल हूँ, मैंने एविएशन मैनेजमेंट में बैचलर किया है, More than 50 applications rejected and now I am working as a delivery driver and I'm still hopeful के कभी ना कभी तो मेरी मेहनत रंग लाएंगे इंशाल्लाह जमाल का कहना है और यार ये तो सच में अगर आपने एविएशन मैनेजमेंट का कोर्स किया है बैचलर किया है मेहनत करी है उसमें तो ये तो बनता है कि आपको इसी फील्ड में कहीं अच्छी जॉब मिले और सच में लक भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर आप यू नो कुछ अच्छा कर सकते हैं होता क्या है कि कई बार जैसे मेरा एक दोस्त है उसने एनिमेशन किया है दुनिया की चीज़ों में करा है भाई उसने काम लेकिन कभी सेल्स में चला जाता है कभी वो किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए दुकान दुकान जाता है अभी आजकल वो मुंबई में है राइटिंग कर रहा है और किया है एनिमेशन की दुनिया में काम उनने तो क्या कर रहे हैं अच्छा खैर एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आती है ना कि एक स्किल पे लोग ना डेडिकेटेड होकर काम नहीं करते तो वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है मेरा एक दोस्त है उसने भी MBA किया है लेकिन वो उसका अपना काम है अपना बिजनेस है बट आज भी वो मुझसे ये कहता है कि यार अगर गल्फ में यार काम मिल जाए मज़ा आ जाएगा तो मैं ये कहता हूँ कि भाई किसी एक स्किल पर अगर होता ना तो मैं कुछ आइडिया दे भी सकता हूँ लेकिन एक स्किल पर अगर आप लंबे वक्त तक काम नहीं करते हैं तो फिर किस फील्ड में आप जाएंगे अब जैसे मेरा दोस्त है वो चार चार फील्ड में जो मुंबई वाला है वो चार चार फील्ड में तो पता ही नहीं है किस किस जगह काम करना है जहां पर पैसा मिल जाए वहां काम कर लेंगे उसके अलावा जो बिजनेस वाला दोस्त है उसका तो अब तो बिजनेस ही करना है भाई साहब और कुछ नहीं कर सकते फिर हिशाम भाई का है सलाम वालेकुम सलाम एक और भाई है नाम है मोहसिन कहते हैं भाई मुझे तो लक ही लगता है और मेरी माँ की दुआ ही है जिसकी वजह से मेरा करियर अच्छा माँ की दुआ है जिसकी वजह से तो हमारा भी यार माँ की दुआ भी हमारा कौन सा अब्बा की लात है यार हमारा भी थोड़ा थोड़ा लक तो है फिर एक और मैसेज है और इनका नाम है आकिब आकिब कहते हैं कि असली तो हार्डवर्क है लक साथ साथ चलता है हार्डवर्क करो लक साथ साथ चलता है ऐसे कैसे हो सकता है लक साथ साथ चलता है भाई मैं तो हार्डवर्क भी करता हूँ और लक जो है कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि एकदम पीछे पीछे रहता है फिर कहता है भाई मैं यहां नहीं हूं अपना रास्ता बदल लेता है लक कभी कभार लक को ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करने का मन करता है कि कर नहीं सकते वरना कोड़े वाले भैया हमारे बदन पे कोड़ा इस्तेमाल कर देंगे बाकी नाम तो नहीं लिखा है रॉयल रॉयल लिखा है करके नाम सलाम वालेकुम सलाम इन्होंने लिखा नो रिस्क नो जेम जेम बोले तो मैं जेम नहीं समझ पाया भाई जेम बोले तो क्या ज्योमेट्री जिंदगी क्या कहना चाहिए रे भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा रहेगा बाकी एक कॉल की तरफ बढ़ते हेलो अस्सलाम वालेकुम
6: वालेकुम अस्सलाम
3: मैं एकदम चकाचक जनाब आपका नाम और कहां से बात कर रहे हैं आप
6: मैं मोहम्मद सुलेमान वो तो पाकिस्तान से बेसिकली लेकिन इधर कतर में जॉब कर रहा हूँ एज अ ड्राइवर कार ड्राइवर
3: ओके तो जनाब आप पाकिस्तान से हैं सवाल आपने सुना आप क्या कहना चाहेंगे कि लक बहुत जरूरी है या फिर हार्डवर्क बहुत जरूरी है करियर बिल्ड करने के लिए
6: जी मैं इसमें ये बताऊंगा कि हमारा एक टीचर था वो यही बता रहा था कि अगर आप सही तरह से मेहनत करोगे तो आप जरूर पास होंगे अच्छे नंबरों से और नहीं करोगे बाकी किस्मत की बात है जो इंस्पेक्शन वाले आते हैं ना एग्जाम में हाँ। वो आपको सख्ती कर सकता है वो लक की बात है हाँ। वो सही मतलब आपको मौका देता है कि कर लो हाँ। वो लक की बात है अगर आपने मेहनत किया तो मेहनत से आप जरूर आगे जा सकते हैं
3: यार ये आपके टीचर ने बहुत जबरदस्त कहा अब मेरा एक सवाल यहाँ पर है सुलेमान साहब ठीक है सवाल ये के मानिए एक बंदा है वो चिट बना के लाया एग्जाम में बैठा है उसने बहुत चीटिंग ईटिंग करके यू नो बढ़िया नंबर नंबर ले आया और दूसरा उसी एग्जाम में बैठा था वो भी चिट विट लेके आया था लेकिन उसको टीचर ने पकड़ लिया तो अब यहाँ पर लक कहेंगे मेहनत कहेंगे दिमागदारी कहेंगे क्या कहेंगे भाई इसमें क्योंकि वो पकड़ा गया जिसके पास चिट था वो सूता गया उसके नंबर तो आए नहीं उल्टा वो जलील होके चार के सामने निकला है
6: यही है लक है ना तो सर जी लक तो हर टाइम तो नहीं मिलता है ना हर टाइम तो जिंदगी हम नहीं गुजार सकते हमें मेहनत करना चाहिए हालात का मुकाबला करना चाहिए बस लास्ट यही ऑप्शन है
3: तो मतलब सुलेमान साहब कह रहे हैं कि आप मेहनत करके 35 नंबर ले आओ ठीक है चिट लेके 80 नंबर मतलब है ना
6: ऐसा ही है
3: ऐसे
6: तो क्या चीटिंग किया तो आगे क्या करोगे।
3: अरे वाह, क्या यार, ये भी बहुत बेहतरीन बात आपने कही। और मुझे तो बातों बातों में कभी यार होता है ना, ख्याल आ जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं चिट लेकर गया हूँ एग्जाम में, लेकिन कभी निकाला नहीं, क्योंकि मेरे को इतना डर लगता था कि पकड़ गए तो बेटा बहुत जलील हो गए। और ये थॉट मेरा इतना बेहतरीन था कि मेरे को ये था कि भाई 40 नंबर आ जाए वो सही है, जिल्लत के 80 नंबर नहीं चाहिए मेरे को। आप देखे ना, पूरा कॉलेज आपको देख रहा होगा फिर पिटते हुए, और फिर उसी में एक तो मैं जहां पर पढ़ता था वहां पर फीमेल्स भी थी, फीमेल्स के सामने मर्दों की इज्जत नहीं कम होनी चाहिए भाई। तो वो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन सुलेमान साहब, आपने बहुत उम्दा बताया, आपके टीचर को माथे पे चुम्मी दीजिएगा, ठीक है? ओके मेरा भाई, ओके, थैंक यू। यार ऐसे टीचर मिल जाए ना, मैं तो एक टीचर पे भी अगले हफ्ते सवाल लेकर आ रहा हूँ, सोच रहा हूँ टीचर पर भी एक सवाल होना चाहिए। क्या मस्त टीचर थे, नहीं? माथे पे ऐसे ही टीचर जो होते हैं, इनके वजह से ही रणछोड़दास वाला जो है वो टीचर बनता है। उसने जिंदगी में इतना बेहतरीन अचीव किया है, हालांकि आजकल उसके लिए परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया टीचर था वो। अब बाकी जिनको जिनको पता है उनको पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? खैरियत?
3: मैं बहुत अच्छा हूँ, खैरियत है। आप सुनाए, आप कैसे मेरा भाई?
9: अल्हम्दुलिल्लाह।
3: क्या चल रहा है आजकल?
9: हम लोग थोड़ा हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं आपकी बातों को सुनकर।
3: अरे बस आप लोग ये कह देते हैं ना, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, मेरा दिल खुश हो जाता है, पता है? आप लोग तो हमारी बात पे फिर भी हंस लेते हैं यार, हमारी घरवालियां नहीं हंस रही हैं, पता है? हाँ भाई, वो उनका तो ऐसा एकदम पारा चढ़ा रहता है उनका भाई, पता नहीं क्यों।
9: अच्छा,
3: खैर अब ये सब छोड़िए, आप बात पे, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है?
9: जी
3: तो बताएं आज के सवाल
9: है कि पहला नंबर तो इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो आप रिक्स लें, पहला नंबर। दूसरा नंबर, किसी भी नामुमकिन ये नहीं बोले हमसे नहीं होगा।
3: हाँ सही, अपने आप पे भरोसा करना सबसे पहली चीज।
9: जी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं कतर आने के लिए 2004 में जब मैं ट्राई कर रहा था तो हमें लोग बुला नहीं रहे थे, और बुलाया भी तो ऊंट और बकरी के कामों में, ठीक है? थोड़ा सा मैं वक्त लूंगा आपका। और 1 साल 3 महीना वहां रहा, और मैं इंडिया में ट्रोला ड्राइवर था, और जंगल में वहां पे गाड़ियां थी, तो मेरे अंदर मालूम था भाई हमें इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। तो मैंने उसको जब स्टार्ट किया तो उस कफील ने हमने पूछा कि तुम इस गाड़ी को चलाना जानते? मैं बोला ये तो कुछ नहीं, मैं ट्रोला जानता हूँ।
3: अरे वाह, क्या बात।
9: तो उसने क्या किया, ऐसा 1 साल 3 महीना हमें हो चुका था वहां पे, तो उसने मेरा फटाफट, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वीजा देता हूँ, तुम इंडिया जाओ और तुम अब सऊदी के वीजे पे आना, ट्रोला ड्राइवर के वीजे पे।
3: अरे वाह, मतलब आप इसी के लिए तलाश में थे?
9: तलाश में था मैं।
3: अरे वाह, तो पहले आपको कोई ऐसे कामों के लिए बुला रहा था जिसके लिए आप चाहते नहीं थे, लेकिन आपकी मेहनत इस तरह से थी, आप ऐसे लोगों के बीच अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली कि आपने वो काम करके दिखाया और फिर आपको वीजा मिला माशाल्लाह।
9: उसके बाद में जब मैं आया वहाँ पे, काफी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सऊदी कतर पूरा में चलता रहा, पूरे कतर सऊदी में चला। उसके बाद में कुछ वहाँ पे जो था तो वहाँ पे काम वगैरह बंद हो गया, फिर मैं इंडिया गया। फिर मैं इंडिया जा करके 1 साल घर पे रहा, घर पे रहने के बाद फिर यहाँ पे हमने यहाँ का वीजा मंगवाया एक दोस्त से, फिर उसने मुझे बंदूक बनाया, बंदूक का काम किया। उसके बाद में अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुद की कंपनी है कतर के अंदर।
3: क्या बात है, जबरदस्त मेरा भाई। तो कितने साल हो गए आपको उस बात को लेकर?
9: जी मेरे को टोटल गल्फ कंट्री में 20 ईयर हो गया।
3: अरे वाह यार,
9: और जब तक आप रिक्स नहीं लेंगे आपका कोई काम नहीं होगा। सबसे पहले अपने दिमाग में ये निकाल लें कि हमसे नहीं होगा,
3: नहीं हो
9: भाई, आप इंसान है, आप सही तो होगा, लोहा भी तो आखिर हवा में उड़ रहा है, किसकी वजह से? दिमाग की वजह से।
3: क्या बात है, ये देखो बहुत बहुत जबरदस्त बात कही है साहब ने कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये ना ये डिसबिलीफ। अच्छा, ये किसी बहुत बेहतरीन, मुझे याद नहीं आ रहा किसी शख्स ने ये बात कही भी थी भाई।
9: गाड़ियां, मेरी बात सुन ले सर, आज भी हमारी गाड़ियां खराब होती है तो मैं खुद उस पार्ट्स को खोलता हूँ, देखता हूँ हमसे नहीं हुआ 99% तो मैं मैकेनिक के पास जाता। अभी कल की मैं बता रहा हूँ, हमारा सेल खराब हो गया, मैं उसे गया बनाने के लिए, उन्होंने बोला 300 रुपया लगेगा। भाई क्या ये वो खराब है, उन्होंने बोला एक मिनट मैं खुद खोलता हूँ, तेजारी 300 रुपए का मिलता है। तो मैं सोचा खोल लेता हूँ, खराब है तो खराब है, नया लगाएंगे, नहीं तो पुराना तो है ही हमारा ऑलरेडी। मैंने उसको खिला था, अंदर में क्या था, कार्बन खराब था, कार्बन आपको 20-25 रुपए का मिलता है।
3: मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि आप अपने आप पे बिलीव रखें, और एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि कभी भी मजाक में भी अपने बारे में नेगेटिव ना बोले कि हमसे नहीं होगा, और यही बहुत इम्पोर्टेंट।
9: अगर आप आगे के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहला नंबर आप अपनों से दूर रहे।
3: हाँ क्या, अरे यार ये तो थोड़ा सा भाई, कहते हैं ना कि एक बड़ा आदमी आखिर में एक ऐसी बात बोल जाता है जो बड़ी तकलीफ वाली होती है लेकिन सच होती है, वो भी आपने बोल दी।
9: इसलिए मैं एक शहर बोलना चाहूंगा कि जिसके आंगन में अमीरी का सजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। आपके हालात खराब रहेंगे तो आपका साया भी आपका साथ छोड़ देगा, रिश्तेदार की तो बात ही छोड़ देगा,
3: रिश्तेदार को तो छोड़ देगा।
9: हालात अगर आपके अच्छे हैं, मेरी बात सुने सर, हालात अगर आपके अच्छे हैं और गैर किसी आदमी को या किसी को लेके भी आप जा रहे हैं तो बोलेगा ये तो क्लास फेलियर उसकी फ्रेंड है। अगर आप गरीब है और अगर अपने घर की किसी फैमिली को आप साथ ही लेके जा रहे हैं तो बोलेगा ये जरूर कोई गलत औरत है।
3: खैर बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और भी लोग हैं लाइन पे, हम उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही, मुझे लगता है काफी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी आपकी बात, थैंक यू सो मच।
9: जी जी, कभी भी रिस्क लें और कभी भी किसी भी चीज को नामुमकिन ना समझे।
3: करेक्ट करेक्ट, बहुत शुक्रिया भाई।
9: जी जी, ओके भाई,
3: सलाम अलैकुम। खैर इनकी बात भी सही है, बीमारों के पास रहें और रिश्तेदारों से दूर रहें। एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं।
9: जी
3: वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, क्या नाम है आपका?
10: फजल भाई।
3: फजल साहब कैसे हैं?
10: अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज का टॉपिक जरा एक बार रिपीट कर दें।
3: टॉपिक, अरे वाह, बोलना भी है, कॉल भी कर लिया लेकिन टॉपिक याद नहीं। टॉपिक है भाई के आप अपने करियर को आपने कैसे बनाया है, करियर को आपने हार्ड लक के थ्रू बनाया या फिर आपका लक बहुत अच्छा था, आई मीन हार्ड वर्क के थ्रू या लक के थ्रू?
10: सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली है, वो अल्लाह ताला कभी मौका दे तो बनाऊंगा। नाम है सबर।
3: हाँ, सब्र।
10: सबर।
3: अच्छा,
10: तो सबर के बगैर करियर नहीं है।
3: सबर के बगैर
10: करियर नहीं है। आपको अगर चाहे जॉब करियर हो या बिजनेस करियर हो, सबसे पहले अपने अंदर सबर लाना है।
3: हाँ।
10: उसके बाद आपको लाना है कंसिस्टेंसी।
3: लेकिन फहद भाई, काम करते हुए सबर ना, ऐसा तो नहीं कि ऐसे बैठे बैठे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे सबर करे, वो वाला नहीं।
10: वैसा तो होगा ही नहीं ना। हाँ, आप घर में बैठ के क्या सबर कर रहे हो?
3: सही,
10: काम के दौरान सबर की बात हो रही।
3: हाँ सही बात। तो दोस्तों काम करके सब्र की बात हो रही है, जैसे कि आपने चाय चढ़ा दी है तो चाय पत्ती को अपना काम करने दे, उसके लिए सब्र चाहिए, धीमी आंच में खोलने दे।
10: देखिए बॉस आपको डांट दिया तो आप ये नहीं बोलें कि बॉस खराब है, आप ये बोलें कि भाई मेरी गलती की वजह से बॉस ने डांटा।
3: आप बॉस है ना पक्का, ये बात बॉस ही लोग कहते हैं पता है।
10: बॉस को बुरा बोलने की जरूरत नहीं है सर, ये बोलिए कि मेरे काम जो आज खराब हुआ उसकी वजह से बॉस ने डांटा, मैंने क्यों काम खराब किया। देखिए हमारी जो गलती होती है ना, वो क्या करते हैं ना, हमको वो कहते हैं ना पतली गली चाहिए, हम लोग ब्लेम दूसरे पर डालने की चक्कर में लगे रहते हैं।
3: हाँ ये बात
10: मेरी गलती है।
3: और मालूम है बेस्ट चीज क्या है, जब मैं कतर आया हूँ, कतर में सबसे जो लाजमी और मुझे लगता है हर इंसान को सीखनी भी चाहिए और बेस्ट मैंने सीखा है, वो ये है कि अगर गलती है तो एक्सेप्ट कर लो भाई, ये जबरदस्ती हीरो बनने की जरूरत नहीं कि अरे वो उसके ऊपर उसने ऐसा गलती करा तो मैंने ऐसे किया, उस पर डाल देते हो ना काम, वो मत करो, गलती एक्सेप्ट कर लो। और यहाँ पर बहुत ही जेन्युइनली आपको गलती एक्सेप्ट करने पर ना कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन हमारे मुल्क में दूसरे को ऊपर डाल देते हैं।
10: दूसरी बात ये है साहब कि अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे ना तो आपको जबरदस्त लर्निंग मिलेगी।
3: आई वाह क्या बात है फहद भाई, बता दिए आपकी, आपका प्रोफेशन क्या है, आप एआई वाले हैं ना कोई?
10: जी मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह कतर में 16 साल हो गए हैं, मैं लाइफ कोच भी हूँ, स्टार्टअप कंसल्टेंट भी हूँ और मेरा मेन बिजनेस जो है वेबसाइट डेवलपमेंट।
3: अरे वाह भाई, किसी को भी अगर फहद जमाल भाई से कनेक्ट करना है तो मेरे को बोलो, मैं नंबर दूंगा।
10: देखिए मैं आपके लिसनर्स को एक बात कहना चाहूंगा, आप जॉब में हो, बिजनेस में हो या स्टार्टअप हो, ये दो चीज पकड़ लें, सबर एंड कंसिस्टेंसी।
3: सबर और कंसिस्टेंसी, इसके साथ आपका काम आसान हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फहद भाई, बहुत ही आला बात बताई आपने।
10: आखिरी लाइन, आपको आखिरी लाइन बोल के मैं खत्म करूंगा। स्टीव जॉब्स एप्पल, उन्होंने जो लाइन बोली थी मैंने वो अपने दिमाग में बुट्टी बांध ली।
3: क्या है?
10: बी हंगरी बी स्टूपिड।
3: बी हंगरी बी
10: स्टूपिड। बी हंगरी बी स्टूपिड। बी हंगरी का मतलब सबको मालूम है भाई, हमेशा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना। स्टूपिड का मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना।
3: करेक्ट,
10: भेड़ बकरियों की तरह मत सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो।
3: सही है। खैर इतने तो स्मार्ट हो चुके हैं लोग कतर में आते हुए कि फ्री वाईफाई का काफी इस्तेमाल करा है, ऐसे कोट बहुत सुने होंगे लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत ही जबरदस्त बात करी है आपने, और फिर आप जैसे लोग जब ये बातें बताते हैं ना तो मुझे लगता है कि जो सुनने वाले हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और सुन भी सकते हैं।
10: कल एक बात बताई थी, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कॉलर्स के लिए, व्हाट्सएप पे जो मेटा का बटन है फूल वाला, उसको यूज करें, वो बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको देता है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, 75% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन।
3: भाई ऐसा आप तो कर रहे हैं जैसे लग रहा है कमीशन मिल लिया आपको है भाई। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया फाद साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है क्योंकि कुछ ही देर में अजान का वक्त भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया,
10: बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, आपके लिसनर ने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया,
3: बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके तो दोस्तों ये थे हमारे साथ फहद भाई, और एक छोटा सा जल्दी से ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, सवाल क्या, एक खत, खत के बारे में बात होती है। जैसे कि अगर एक छोटा सा खत आपको अपने लक को लेकर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अगर आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं और लक अगर सुन रहा हो, कभी कभार होता है ना कि आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं वो बात हो जाती है, तो सोचिए ये वक्त वही है जब आप लक को कुछ कहना, कुछ लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, छोटी सी बात अपने लक को, ताकि आपका करियर और बेहतर हो जाए, बेहतरीन हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ऑलरेडी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, तो भी आप लिख सकते हैं डियर लक अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। 666-22-107 पे लिखिए। एक छोटा सा ब्रेक दिल से तेज़।
11: दोस्तों गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
12: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
13: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
3: जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील और वक्त आ गया है लोगों के मैसेज पढ़ने का, और ये मैसेज है खादिर साहब का, और खादिर ने बहुत लंबी बात लिखी है। खादिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, आई हैड द हार्डेस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज ऑफ वर्क इन इंडिया। इवन आई वॉज वर्किंग ऑन एन एरिया विच इज़ कम्प्लीटली इन द जंगल इन रिमोट एरियाज। आई सक्सीडेड ऑल दो द डिफिकल्टीज वर माई फ्रेंड। ओ When I was sleeping there were scorpions roaming in bed. मैं कभी डरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन गुड पोजिशन, हार्ड वर्क पेज। तो आप जब भी मेहनत करते हैं तो एक वक्त आता है जब वो आपको मिलता है, जो आपकी मेहनत है उस मेहनत का फल आपको मिलता है। दिस इज द अच्छा सैंपल एग्जाम्पल भी यार स्कॉर्पियंस, पता है मुझे पता है आप कार की बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा लिखा खादिर साहब ने, आई वर्कड इन सऊदी ओमान दुबई, आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस बट आई स्ट्रगल्ड एंड हार्डशिप्स। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी व्हेन लक नॉक्स द डोर। हाँ, अपॉर्चुनिटी सही वक्त पर पकड़ना सबसे ज़रूरी चीज़ों में से भी एक है। किस्मत बड़ी अजीब चीज़ है, अरशद खान कहते हैं कभी भी पलट सकती है। फिर अब खत की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब लिखते हैं डियर लक, तीन लफ्ज़ों में क्या खूबसूरत बात कही है इन्होंने। कहते हैं डियर लक प्लीज़ वेक अप आई हाय
14: पेली जी नागिन निकाली मुन्ना पर डोला अलग
3: उठेगी उठेगी अभी सो रही है ये आवाज से उठेगी बाकी 2020 वाले जो भी भैया हैं कॉल कर रहे हैं अब वक्त नहीं है कि हम कॉल उठा पाएं आपका वक्त जो है वो निकल चुका है अस्सलाम वालेकुम फजल भाई वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है मैं बहरीन से सुन रहा हूं अरे साहब बहुत देर हो गई जुल्फ़िकार साहब थोड़ा लेट आए लेकिन कोई बात नहीं दुरुस्त आए जाने का वक्त भी हो गया है बहुत कम वक्त बाकी है जल्दी से और मैसेज पढ़ लेते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब ने लिखा है डियर लक चमक जाओ आहा क्या बात है इस बात में ही तो बात है डियर लक चमक जाओ उसके अलावा एक और ये मैसेज है अब्दुल भाई कहते हैं सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम डियर लक कब पलटोगी
15: ये भाई साहब
3: ये वन वर्ड आप लोगों को बड़ा खतरनाक होते हैं सलाम डियर लक जैसी चल रही है वैसी चलती रहो क्या ना देना हटका झटका ना देना झटका ना देना अरे भाई हटके ना देना झटका मत देना और ऐसे ही लक को साथ में लेकर चलते रहो अस्सलाम वालेकुम ये नाम क्या था भाई आप पिछले वाला अब्दुल था क्या था खैर एक और मैसेज है कहते हैं मैसेज आया लिख दिया अभी तक कभी कभार मेरे को ऐसा शिक करना पड़ता अपने सर की क्या लिखा है फिर एक और मैसेज आ जाए तो फैल साहब का डियर लक आई होप यू आर डूइंग वेल बिकॉज आई एम डेफिनेटली नॉट जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट कुड यू प्लीज स्टॉप प्लेइंग हाइड एंड सीक विद मी आई एम ट्राइड ऑफ सर्चिंग फॉर यू एवरीवेयर प्लीज विजिट मी सम टाइम इवन अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी विल डू आई प्रॉमिस आई वोंट आस्क फॉर टू मच योर्स अनफॉर्चुनेटली अ पर्सन वेटिंग फॉर यू बड़ा दुख है इसमें यार भाई इंशाल्लाह दुआ करते रहो तुफैल भाई के लिए सब अच्छा हो बाकी इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल शाम 6 बजे फैसल भाई सलाम करते हुए बहुत देर कर दी आपने अभी इस वक्त अजान का वक्त सुनते रहे FM 107 दिल से देसी
16: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अज़ान का वक्त हो गया है।
17: अल्लाहु अकबर।

मेजर जनरल नासिर मोहम्मद ईसा अल सैयद और मुतादद ऑफिसर्स ने शिरकत की। इस मौके पर इस बात पर जोर दिया गया कि कैदियों की इसलाह, रहनुमाई और बहाली के लिए दीनी और अखलाकी कदरों को फरोग देना नहायत अहम है। कुरान हिफ्ज करने वाले कैदियों की हौसला अफजाई इस बात का सबूत है कि मुतालिका इदारे कैदियों की शख्सियत साजी और उन्हें मुआशरे में मुस्बत किरदार के साथ दोबारा शामिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। ये कदम वजारत दाखिला और मुतालिका इदारों की उन कोशिशों का हिस्सा है जो कैदियों की इसलाह, रिहैबिलिटेशन और मुआशरे में कामयाब वापसी को यकीनी बनाने के लिए की जा रही है। सामईन, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के मंजूर शुदा तरीकाकार के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए चंद बुनियादी शराइत और मराहिल पूरे करना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने वाले शख्स के पास शनाख्ती सबूत यानी आईडी प्रूफ, जाती तस्वीर या पर्सनल फोटो और मेडिकल मुआयना जिसमें नजर और सेहत का जायजा शामिल है होना लाजमी है। और वहीं मुकीम अफराद के लिए वैलिड रेसिडेंस परमिट भी दरकार होता है। लाइसेंस हासिल करने के लिए लाइट व्हीकल्स और मोटरसाइकिल्स और वहीं मुख्तसर जिस्मानी माजूर अफराद के लिए कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर की गई है, जबकि हैवी व्हीकल्स, मशीनरी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेंट का तस्दीक शुदा ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेना और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों टेस्ट कामयाबी से पास करना जरूरी है। टेस्ट की कामयाबी के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को ड्राइविंग स्कूल के ट्रैफिक ऑफिस से या फिर मैतराश ऐप और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन प्रिंट करवाया जा सकता है। वजारत दाखिला का कहना है कि आपकी खिदमत करना हमारे लिए बाइस मसरत है, मगर याद रखिए कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना सड़क इस्तेमाल करने वालों की सलामती के लिए खतरा बन सकता है। रियासत कतर ने अरब इंटीरियर मिनिस्टर्स काउंसिल के रुकन मुमालिक के लाइजन ऑफिसर्स के छठे इजलास में शिरकत की जो तुनिसिया में काउंसिल के जनरल सेक्रेटरीट के मरकज पर मुनक्किद हुआ। इजलास में मुजरिमाना मुकदमात और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से मुतालिक उमूर पर बहस की गई, जहां वजारत दाखिला के वफ्द की क्यादत असिस्टेंट डायरेक्टर अरब एंड इंटरनेशनल पुलिस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मेजर मोहम्मद अब्दुल्ला अल बुनैनी ने की। इजलास के दौरान एजेंडा में शामिल मुख्तलिफ मौजूदात का जायजा लिया गया और उन पर मुनासिब सिफारिशात मंजूर की गईं। ये शिरकत अरब ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और कानूनी तावन को मजबूत बनाने और मुश्तरका दिलचस्पी के मामलात में राबते और हम आहंगी को फरोग देने की कोशिशों का हिस्सा है। सामईन, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने इंडस्ट्रियल एरिया के व्हीकल इम्पाउंड यार्ड स्ट्रीट 52 में इम्पाउंडेड गाड़ियों की आम नीलामी या पब्लिक ऑक्शन का ऐलान किया है। ये नीलामी इतवार 4 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और दो हफ्तों तक जारी रहेगी। नीलामी का वक्त दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक मुकर्रर किया गया है। दिलचस्पी रखने वाले अफराद नीलामी में शामिल गाड़ियों का मुआयना बुध और जुमेरात यानी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक व्हीकल कंपाउंड यार्ड इंडस्ट्रियल एरिया स्ट्रीट 52 में कर सकते हैं। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने अवाम को दावत दी है कि वो मुकर्रर औकात और शराइत के मुताबिक नीलामी में शिरकत कर सकते हैं। मजीद तफसीलात और शराइत मालूम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ऑफिशियल चैनल से राब्ता किया जा सकता है। रियासत कतर ने अरब इंटीरियर मिनिस्टर्स काउंसिल के जेरे इंतजाम मुख्तलिफ इदारों की 41वीं कोऑर्डिनेशन मीटिंग में शिरकत की जो जमहूरिया तुनिसिया में काउंसिल के जनरल सेक्रेटरेट के हेडक्वार्टर्स पर मुनक्किद हुई। वजारत दाखिला के वफ्द की क्यादत इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में हेड ऑफ गल्फ एंड अरब अफेयर सेक्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुर्रहमान बिन हमद अल थानी ने की। इजलास के दौरान एजेंडा में शामिल मुख्तलिफ मौजूदात पर बहस की गई और अरब ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और इदारी तआवुन को मजीद फरोग देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के इख्तिताम पर एजेंडा के मुताबिक कई अहम सिफारिशात मंजूर की गईं और उन पर मुनासिब फैसले किए गए। ये शिरकत अरब ममालिक के दरमियान मुश्तरिका सिक्योरिटी तआवुन, हम आहंगी और तजुर्बात के तबादले को मजबूत बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। और जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने ऐलान किया है कि सोम ऐप के जरिए नए खास व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स जारी किए जा रहे हैं। इन नंबर्स के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का ऑप्शन जुमेरात 1 अक्टूबर 2026 सुबह 10 बजे सोम ऐप के मुखसस सेक्शन में फाल कर दिया जाएगा। दिलचस्पी रखने वाले अफराद अपनी पसंदीदा नंबर प्लेट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और पहली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के 72 घंटों के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होगा।

डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट की मुद्दत खत्म होने के बाद दिलचस्पी रखने वाले अफराद के दरमियान 24 घंटे की इंटरनल ऑक्शन मुनक्किद होगी। अगर किसी नंबर में सिर्फ एक शख्स दिलचस्पी जाहिर करता है तो वो नंबर उसे मुकर्रर कीमत पर दे दिया जाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा अफराद दिलचस्पी का इजहार करें तो उनके दरमियान ऑक्शन होगी और नंबर सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले शख्स को दे दिया जाएगा। अवाम सोम ऐप के जरिए मुख्तलिफ कैटेगरीज में दस्तयाब खास रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकती हैं और अपनी पसंद का नंबर मुंतखब कर सकती हैं। सोम ऐप को गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर और ह्यूआई ऐप गैलरी से डाउनलोड किया जा सकता है। वजारत दाखिला आपकी खिदमत करने के लिए हमेशा हाजिर है। समीन, इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वीकली बुलेटिन का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचता है। प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: इसमें PSA हाई हो सकता है.
1: ठीक है.
0: जब हाई हो तो इट डजंट मीन के उसको प्रोस्टेट कैंसर है, क्योंकि ये कुछ और कंडीशन में भी हाई हो सकता है.
1: ठीक है.
0: जैसे प्रोस्टेटाइटिस. प्रोस्टेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट, व्हिच कुड बी ड्यू टू एनीथिंग. हो सकता है इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन वगैरह से. इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर से भी हाई हो सकता है. इसके अलावा कुछ प्रोसीजर कब जब आप करते हैं तो इवन देयर वाज, मतलब ये है कि कहते थे कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट वगैरह वो मेल पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए चेक करते हैं, तो वो उसमें भी वो है कि ये कॉन्सेप्ट था कि हो सकता है ये प्रोस्टेट के एग्जामिनेशन की वजह से थोड़ा हाई चला गया है. लेकिन यूजुअली इसके जो वो है लाइफ टाइम है, या मतलब जो हाफ टाइम जो होता है क्लियर होता है, वो तकरीबन 2-3 दिन में. अगर आप किसी पेशेंट का हाई आता है ड्यू टू वट एवर रीज़न, या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हाई है, तो उसको ट्रीट करने के बाद वो दोबारा फॉलो करते हैं 2 हफ्ते में, और इस तरह देखते हैं
1: दोबारा भी टेस्ट करते हैं,
0: PSA करते हैं, नीचे आया है नहीं आया. अगर परसिस्टेंटली हाई है तो यहाँ पे फिर हमें सस्पिशियस हो जाता है कि हो सकता है इसको प्रोस्टेट ट्यूमर हो. तो फिर आगे उसके मुताबिक और इन्वेस्टिगेशन, इमेजेस और बायोप्सीज होती हैं.
1: ठीक है
0: जी.
1: उसमें जैसे मुख्तलिफ टेस्ट हैं, जैसे MRI है.
0: वेरी इम्पोर्टेंट. MRI जो है वो आप कह सकते हैं कि आजकल गोल्ड स्टैंडर्ड है. MRI से, और ख़ासकर MRI में, इनमें आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं उसमें, इसको MRI डिफ्यूजन जो MRI है मल्टी पैरामीट्रिक, तो उसमें वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोस्टेट का वॉल्यूम कितना है, इसके कौन से लोब में ट्यूमर है,
1: और एग्जैक्टली
0: और जी उसके साथ जो ग्लैंड है, जैसे सेमिनल वेसिकल है, ब्लैडर नेक है, पीछे रेक्टल वाल होता है, तो ये कहाँ कहाँ इनके वो जड़ें गई हैं, जैसे इन्फिल्ट्रेशन हुई है. तो ये हमें मतलब कभी कभार इवन बायोप्सी से पहले भी अंदाज़ा हो जाता है.
1: ठीक.
0: लेकिन बायोप्सी जो है वो वी हैव टू डू बायोप्सी, क्योंकि वो उसके बगैर आप नहीं कंफर्म कर सकते.
1: अच्छा, करनी है आपको बायोप्सी, जैसे भी कोई भी ग्रोथ
0: बायोप्सी. हाँ,
1: जरूरी है.
0: मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में ज़रूरी है.
1: अच्छा.
0: लेकिन कभी कभार हमारे पास ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जैसे वो 75-80 ईयर ओल्ड है.
1: अच्छा.
0: उसको स्ट्रोक भी हुआ है, वो बेड बाउंड है या व्हील चेयर पे है, और उसके वो बाय चांस इन्वेस्टिगेशन में PSA बहुत हाई आ जाता है. स्कैन करते हैं तो पता चल जाता है कि वो ऑलरेडी स्प्रेड भी हो गया है, अक्सर बोन में चला जाता है.
1: अच्छा.
0: तो ऐसे पेशेंट का PSA फॉर एग्जांपल उसका आता है 100 में 100 200 300 1000 तक, मतलब हम पेशेंट देखते हैं.
1: ठीक है.
0: तो इतना हाई हो, बोन डिजीज भी हो, तो उस पेशेंट को मतलब हमने हार्मोनल ट्रीटमेंट के अलावा कोई एक्टिव ट्रीटमेंट देनी भी नहीं होती, ना कीमोथेरेपी, क्योंकि उनकी जनरल कंडीशन ऐसी होती. तो उन पेशेंट में कभी कभार फिर हम इग्नोर कर लेते हैं.
1: अच्छा,
0: जस्ट उसके क्लिनिकल पैरामीटर, रेडियोलॉजिकल पैरामीटर, उन पे डिपेंड करके. लेकिन जो बंदा ठीक ठाक है उसमें हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, कि सर्जरी होनी चाहिए, रेडिएशन, और जो ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी देनी चाहिए, क्या करना चाहिए. तो उनमें बायोप्सी ज़रूरी है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं बायोप्सी में कि ये प्रोस्टेट कैंसर कौन से ग्रेड का है, इसका स्कोर कितना है, इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, और आगे इसमें जो हम टेस्ट करते हैं कि मौरूसी है या नहीं है.
1: अच्छा,
0: कौन से जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, उन जेनेटिक म्यूटेशन के बिना पे आगे इसकी ट्रीटमेंट की जो है वो फर्दर जैसे डिसाइड करते हैं, तो हम इन बायोप्सी के रिपोर्ट पे डिपेंड करते हैं.
1: जी लिस्टर, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसके जो टेस्ट हैं MRI जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि उसकी डायग्नोसिस में, मगर भी बायोप्सी जो है वो मस्ट है. मगर फिर एज रिलेटेड या और कुछ फैक्टर्स की बिना पर जो है वो हम उस बायोप्सी जो है अगर जब नहीं करते तो उसकी ये रीज़न हो सकती हैं. और फिर ये कि इस पर सारी जो ट्रीटमेंट है वो भी डिपेंड करता है. और फिर हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे ये कि क्या ये जो पूरी जैसे कि जैसे अगर डायग्नोज हो जाता है जो कैंसर है, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है, या जो मुख्तलिफ

0: एंड टू पेशेंट जो है उसकी सिम्टम्स उसके अलामात देखने के बाद फिर जो इलाज है उसका फैसला किया जाता है।
1: जी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
0: थैंक यू।
1: इसमें ये है कि हमें अभी पता चल गया कि पेशेंट के सिम्टम्स थे
0: जी,
1: तो PSA किया, हाई है, MRI किया, सस्पेक्टेड है, ट्यूमर है, बायोप्सी कर लेते हैं, बायोप्सी से हमें पता चल गया कि इसका ट्यूमर जो है वो लो रिस्क है या इंटरमीडिएट है, हाई रिस्क है। तो हाई रिस्क जो पेशेंट होते हैं उनमें फिर हम बॉडी स्कैन करते हैं, पहले CT स्कैन और बोन स्कैन करते थे ताकि हमें पता चल जाए कि ये कहाँ स्प्रेड तो नहीं हुआ। MRI से पता चल जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में है या उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है या लिम्फ नोड तक पहुंच गया है या नहीं पहुंचा। और आजकल जो है अल्हम्दुलिल्लाह कतर में जो है न्यूक्लियर मेडिसिन है, PET PSMA स्कैन उसको कहते हैं, पॉजिट्रॉन जो इमिशन टोमोग्राफी है जिसमें एक्टिविटी पता चलती है किसी भी कैंसर की।
0: ठीक।
1: जो दूसरे कैंसर है उनमें FDG जो डाई देते हैं या जो कंट्रास्ट देते हैं जो शुगर रिलेटेड कंट्रास्ट होते हैं, तो जो भी हमारे जिस्म में कैंसरस सेल्स होते हैं तो उसमें अपटेक होता है, वो लाइट अप होते हैं।
0: ठीक। और
1: टेस्ट हो जाता है इसमें जो है इसमें स्पेशल कंट्रास्ट दिया जाता है जिसको PSMA कहते हैं, प्रोटीन स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन जो होता है। तो ये जहाँ जहाँ पे भी प्रोस्टेट कैंसर के स्पॉट्स गए होते हैं या ट्यूमर्स गया होता है, जैसे बोन में मोर कॉमन है, 80-90% को बोन में चला जाता है, लिम्फ नोड में, कुछ पेशेंट के लिवर और उसमें भी, तो उसमें ये अपटेक हम देखते हैं। तो फिर हम फुल पिक्चर को डिस्कस करते हैं, हमारे जो मेडिकल अनकोलॉजिस्ट हैं, रेडिएशन अनकोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, और हमारा एक कंबाइन क्लिनिक भी होता है। जिन पेशेंट का अगर प्रोस्टेट कैंसर लो रिस्क है या सिर्फ प्रोस्टेट तक महदूद है जिसको हम Stage 1 या 2 कह सकते हैं
0: जी,
1: तो इन पेशेंट के तो अगर वो क्लिनिकल कंडीशन मतलब जनरल हेल्थ सही है, फिट है, तो ये सर्जरी के लिए जाते हैं।
0: ठीक।
1: सर्जरी के बाद फिर हम दोबारा डिस्कस करते हैं कि कुछ इसके ट्यूमर के बकाया कुछ तो रह नहीं गया
0: जी, ठीक है।
1: और जो पेशेंट Stage 3 होते हैं जिसमें कभी कभार ये ट्यूमर काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसमें दो ऑप्शन हम पेशेंट को देते हैं। यंगर पेशेंट को, यंगर से मेरा मुराद है कि यंगर देन 60 जो है उनको हम ऑप्शन देते हैं सर्जरी या फिर रेडिएशन और हार्मोनल ट्रीटमेंट की।
0: ठीक है।
1: जो थोड़े से एल्डरली पेशेंट होते हैं 65 और 70 अबाव और अभी भी Stage 3 है, तो उनको हम प्रेफर करते हैं कि रेडिएशन दें और हार्मोन दें। हम हार्मोन इंजेक्शन शुरू करते हैं
0: जी,
1: फिर तकरीबन 2-3 महीने के बाद इनकी रेडिएशन होती है, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इक्वल टू सर्जरी।
0: ठीक है।
1: और
0: तो
1: जो
0: सर्जरी करने के बाद फिर करते हैं या नहीं, फिर उस वक्त सर्जरी नहीं,
1: नहीं,
0: नहीं
1: उस वक्त फिर सर्जरी नहीं होती, हम वो ऐसे उसको रेडिएट करते हैं जैसे मतलब कि आपने उसकी सर्जरी कर ली, पूरा वो बर्न करते हैं उस एरिया को और यहाँ पे जो है वो रेडिएशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हम IMRT और VMRT जो वॉल्यूमेट्रिक रेडियोथेरेपी है या इंटेंस मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी है वो देते हैं, विच इज़ आजकल स्टैंडर्ड है और इसके बिल्कुल रिस्क और कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है। आज से 15-16 साल पहले जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन हुआ करती थी उसकी टॉक्सिस वगैरह बहुत ज्यादा थी, अभी जो है वो काफी कम है
0: जी।
1: और जो पेशेंट Stage 4 है
0: जी,
1: उनकी फिर अलहदा एक स्टोरी है।
0: ठीक है
1: जी।
0: इसमें जैसे स्टेजेस हैं, जैसे और भी कोई भी जब बात करते हैं कैंसरस डिजीज की, तो उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं वो, इसमें भी उसी तरह
1: बिल्कुल
0: से?
1: बिल्कुल, इसमें भी हम देखते हैं कि ट्यूमर जो है ट्यूमर का साइज कितना है, कौन से लोब में है, दोनों लोब में है या एक में है, T1 है, T2 है, T3 है या T4 है। उसके बाद साथ इसके लिम्फ नोड देखते हैं कि इसके रीजनल लिम्फ नोड तक डिजीज है, जो पेल्विक लिम्फ नोड्स हैं, इंगुएनल लिम्फ नोड्स हैं, नॉन रीजनल लिम्फ नोड हैं जैसे पैरावोर्टिक लिम्फ नोड है, अगर वहां तक पहुंचे तो इसको नॉन रीजनल लिम्फ नोड कहते हैं, तो वो एक्चुअली उसमें वो एक किस्म का मेटास्टैटिक हो जाता है। या फिर ये देखते हैं Stage 4 है, जैसे बोन में चला गया है, लिवर लंग में चला गया है जी।
0: जी मेटास्टैटिक ये कि पूरी जैसे बॉडी में जिस्म में अलग अलग कोई बोन्स में लिवर में या

0: मतलब किसी और जगह पर जो है वो फैल सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: लिसनर्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर की, और जैसे कि बहुत बड़ी तादाद में जो अफराद हैं उसमें मुबतला हैं, मुतासर होते हैं पूरी दुनिया में भी, और कतर के स्टैटिस्टिक्स भी हमने आपके सामने रखी। तो डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, कैसे। और डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जैसे आपने हमें बताया कि इसकी जो जैसे स्क्रीनिंग वगैरह भी की जाती है, मगर हमारे लिसनर हैं, उनका क्वेश्चन है, एक हमारे साथ हैं उनका अहमद, कह रहे हैं कि उनकी उम्र जो है वो 55 है, और रात को वो 2-3 बार यूरिन जो है वो यूरिन के लिए उठना पड़ता है, तो क्या वो ये समझें कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का ख़तरा है?
2: नहीं, जैसे मैंने बताया कि अबाउ द एज ऑफ 50 प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है या इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, तो कुछ पेशेंट रूटीनली जाना शुरू कर देते हैं, मतलब रात को 2-3 दफ़ा, 1 दफ़ा, जितने भी एज गुजरती जाती है। तो ये है कि इसको लोअर यूरिन ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं।
0: ठीक,
2: ये है कि अभी हर एक बंदे को जो अबाउ 50 है उसको ये सिम्टम्स किसी ना किसी दर्जे में शुरू हो जाते हैं।
0: जी ठीक है,
2: बार बार आना, पहले जो है वो बंदा कॉफ़ी, टी, पानी, और यंग जब होते हैं तो घंटों घंटों नहीं जाता था, अभी मतलब थोड़ी देर में वो जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है तो उसकी वजह से पूरी ब्लैडर इवैक्यूएशन नहीं होती। लेकिन ये है कि ये सिम्टम्स हो तो वो हेल्थ सेंटर में जाके जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर केयर फिजिशियन है उसे डिस्कस कर सकता है, और वो PSA रिक्वेस्ट करेगा।
0: ठीक है,
2: तो PSA टेस्ट करके उसके मुताबिक वो फिर डिसाइड करेगा कि PSA अगर हाई है तो उसको फिर फर्दर मतलब वो यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेगा और उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, अल्ट्रासाउंड या मसलन MRI वगैरह की ज़रूरत पड़े तो तब हम कह सकते हैं। इस तरह हर एक बंदा जो है, जैसे हमने बताया कि बिनाइन प्रोस्टेटिक जो है जो कैंसरस नहीं होता वो मोस्ट कॉमन है, 90%, ओनली जो 10% है उस इस सिचुएशन में वो कैंसर हो सकता है। तो इसलिए डेफिनेटली इनको जाना पड़ेगा हेल्थ सेंटर में या प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे भी है, और PSA टेस्ट कराना पड़ेगा।
0: ठीक जी, डॉक्टर साहब हमारे एक और लिसनर हैं, नाम नहीं लिखा मगर पूछ रहे हैं कि आप जो इलाज का फैसला करते हैं, जैसे आपने अभी बात की कि कभी सर्जरी की जाती है या उसको रेज जो हैं वो लगाई जाती हैं या फिर रेडिएशन की बात करें, और मगर ये कि फिर कब किस वक्त आप करते हैं, क्या इसमें नई जो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि सुनने में आ रहा है और जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, तो ये जो पुरानी सारी चीज़ें हैं उसी तरह से की जाती हैं?
2: हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जैसे मैंने बताया कि बायोप्सी हो जाए, हमें पता चल जाए स्टेज क्या है, रिस्क क्या है,
0: ठीक है,
2: इसमें हम लोग रिस्क देखते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं लो रिस्क, कुछ होते हैं वेरी लो रिस्क। उसमें मतलब आप इसकी जो बायोप्सी प्रोस्टेट की लेते हैं, ये पहले हम 4 बायोप्सियाँ लेते थे, ट्रस्ट बायोप्सी कहते हैं, अल्ट्रासाउंड से करते हैं, फिर 6 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 12 हो गई, तो मुख्तलिफ लोब से मुख्तलिफ जगह पे पंक्चर करते हैं। अभी कुछ लोग तो इवन जो है MRI गाइडेड जहाँ पे मतलब लेजन नज़र आ रहे हैं, तो इसके बाद पैथोलॉजिस्ट उसको रिव्यू करता है। अगर प्रोस्टेट ट्यूमर स्टेज 1 स्टेज 2 है, लो रिस्क है या वेरी लो रिस्क है, कुछ पेशेंट को वेरी लो रिस्क को हम ट्रीट भी नहीं करते, उनको कहते हैं हम आप सर्वेलेंस करें, आप मतलब अगले 6 महीने में दोबारा PSA चेक करते हैं, साल में दोबारा फिर बायोप्सी करते
0: जैसे
2: हैं,
0: आम जुबान में जैसे आम हम कहें तो फॉलो अप करते
2: हैं। लेकिन इसमें यह है कि इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कुछ पेशेंट की एक एंजाइटी होती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है कि भाई मुझे ट्यूमर है और आप कह रहे हैं कि फॉलो अप करो, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, तो ये डिस्कशन हम पेशेंट के साथ करते हैं कि अगर कोई पेशेंट वरिड है कि वो कहते हैं नहीं बस वो ट्यूमर निकाल दें तो डेफिनेटली जो स्मॉल ट्यूमर होते हैं वेरी लो रिस्क इसमें फिर सर्जरी होती है लेकिन अभी सर्जरी के नेमल बदल अदर ऑप्शन आए हैं जिसको नैनो नाइफ कहते हैं नैनो नाइफ टेक्नोलॉजी है यूरोलॉजिस्ट यूज करते हैं इसके अलावा एसबीआरटी है
0: ये नाम है लिसनर्स लाइक ये मेडिकल टर्म्स है مختلف نام ہے تو اس کی جو ہے ٹرانسلیشن نہیں یہ مختلف ٹیسٹ ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں
2: تو یہ سٹیریوٹیکٹک باڈی ریڈیو تھراپی جو SBRT ہے اس میں فوکس ریڈیشن دیتے ہیں کچھ ہے بریکیو تھراپی کہتے ہیں اس میں باہر سے ریڈیشن نہیں دیتے بلکہ پروسٹیٹ میں مختلف سیڈز ڈالتے ہیں ریڈیو ایکٹیو میٹیریل کے اور وہ وقت کے ساتھ پروسٹیٹ کے جو ٹیومر ہیں اس کو وہ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں
0: ٹھیک
2: تو ڈیفینیٹلی نیو ٹیکنالوجی نیو ہے تو سرجری جو ہے وہ پہلے اوپن سرجری ہوا کرتی تھی پھر اس کے بعد لیپروسکوپک شروع ہوئی ابھی آج کل روبوٹک ہوتی ہیں ایون ہمارے سینٹر میں روبوٹک پروسٹیٹیکٹمی ہوتی ہے جس میں کمپلیٹلی پروسٹیٹ کو ریموو کیا جاتا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ یہ ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی ہے لیکن ہم ڈیسائیڈ کیسے کرتے ہیں کہ اس کی سرجری ہونی چاہیے اس کی ریڈیشن یا ہارمونل تو وہ سٹیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے
0: ان کی
2: بائیوپسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایم آر آئی کے ریزلٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیٹ پی ایس ایم ایس سکین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے پیشنٹ کی فزیکل کنڈیشن ابھی ایک پیشنٹ ہے ہی 70 ایئر اولڈ اس کو شوگر بھی ہے بلڈ پریشر بھی وغیرہ کافی موربیڈیٹیز ہیں تو اس کے لیے ایک بڑی سرجری کمپلیکیشن بعد میں پروسٹیٹ لیک کا مسئلہ ہوتا ہے ہیلنگ صحیح نہیں ہوتی تو ان کو ہم پریفر کرتے ہیں کہ ریڈیشن اور ہارمونل ٹریٹمنٹ دیں
0: اچھا ٹھیک
2: اور جو ینگر پیشنٹ ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہی ول ٹالریٹ دی سرجری تو پریفر ہم کرتے ہیں سرجری کبھی کبھار کچھ پیشنٹ سرجری کرنے کے بعد بھی ان کو ریڈیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے
0: ٹھیک ہے
2: اگر وہ ٹیومر کے مارجن پوزیٹیو ہو وغیرہ جی
0: سٹیج
2: پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب ریموو کرتے ہیں اس کے بعد ہم پی ایس اے چیک کرتے ہیں تو اگر پی ایس اے انڈیٹیکٹیبل نہیں ہے تو اس سچویشن میں انڈیٹیکٹیبل کا مطلب ہے کہ پی ایس اے یوزولی ہم جو دیکھتے ہیں 0.05 سے نیچے ہو تو اس کو انڈیٹیکٹیبل کہتے ہیں تو کچھ پیشنٹ میں پھر رسک فیکٹر آ جاتے ہیں جیسے مارجن پوزیٹیو ہے یا اس کے لمف نوڈ وغیرہ نا اور سرجری کرنے کے بعد پی ایس اے انڈیٹیکٹیبل ہے
0: اچھا ٹھیک
2: لیکن
0: یہ وہ ٹیسٹ ہے جو ہم
2: جو بلڈ میں کرتے ہیں
0: ہاں
2: جو پہلے ہائی تھا ابھی سرجری کے بعد مطلب انڈیٹیکٹیبل ہو گیا ہے
0: ٹھیک ہے
2: تو پھر ہم
0: سب ایک کال ہے ہم اپنے لسنرز کی طرف چلیں گے السلام علیکم ہلو
3: جی السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام
3: جی ڈاکٹر صاحب میں محمود بول رہا ہوں
0: جی جی کیا کیسے ہیں آپ کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے جی
3: ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی
0: جی ضرور
2: جی السلام علیکم جی محمود صاحب
3: جی ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے ٹھیک ہیں
2: الحمدللہ اللہ کا فضل ہے جی تھینک یو
3: جی بڑا اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے
0: تھینک یو
2: تھینک یو
3: اور یہ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ اولڈ ایج ریلیٹڈ ڈیزیز ہے تو میں اسی کیٹیگری کو میں فال کرتا ہوں
2: اللہ خیر کرے
0: جی
3: مجھے تو تھوڑا سا یہ آج کل پرابلم آپ کو میری شاید بیک گراؤنڈ کا پتہ ہی ہے اور یو آر دا ڈاکٹر انہوں نے مجھے ڈانٹ کے کہا تھا کہ جا کے ہاسپٹل میں
0: جی کیونکہ وہی ہم نے پوچھا کہ کب جو ہے وہ جانا چاہیے پیشنٹ کو کہ کنسلٹ کرنا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا بھی ہے جی
3: جی نہیں ڈاکٹر صاحب کی بڑی مہربانی ہے مجھ سے تو میں ابھی وقت ضائع کیے بغیر آپ سے ذرا گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے فریکوینٹ یورینیشن کا ذرا پرابلم ہو رہا ہے
2: جی
3: تو پھر یہ ہے کہ وہ اس میں ارجنسی بھی ہو جاتی ہے مجھے بھاگ کے جانا پڑتا ہے اور ویک فلو ہے
2: جی
3: کچھ عرصے سے 6-7 مہینے سے تو یہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے سلسلے میں
2: اس میں یہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ जो प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्जमेंट की वजह से कभी कभार इसके लिए जो हैं वो यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है, वो फ्लोमीट्री वगैरह करते हैं जिसमें वो देखते हैं कि मसला क्या है, कोई ब्लैडर की वजह से है, ब्लैडर के मसल वीक हो गए हैं या ब्लैडर हाइपर एक्टिव हो गया है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से स्फिंक्टर जो है उसमें कोई मसला आ गया है, लेकिन साथ साथ फिर वो जो है पीएसए टेस्ट करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जब ये सिम्टम्स हो, पर्टिकुलरली अबाउ द एज ऑफ 50। तो अगर फॉर एग्जांपल पीएसए हाई हैं तो फिर वो रिक्वेस्ट करेंगे फर्दर इमेजेस, अपार्ट फ्रॉम वो फ्लोमेट्री वगैरह, वो डायनेमिक जो स्टडीज़ होती हैं, अपना उनका एक चेयर होता है वो देखते हैं उसमें, एमआरआई पीएसए के बाद अगर पीएसए गॉड फॉरबिड अगर हाई आ जाता है तो उस सिचुएशन में फिर एमआरआई की ज़रूरत पड़ेगी। एमआरआई से एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि इज़ देयर एनी, मतलब कोई लीजन है। अगर फॉर एग्जांपल पीएसए में कोई एमआरआई में कोई ट्यूमर नज़र नहीं आ रहा तो फिर वो जस्ट ऑब्ज़र्व करते हैं, आफ्टर 2 to 3 weeks दोबारा पीएसए रिपीट करते हैं, लेकिन अगर एमआरआई में कोई फोकस है तो उसके बाद फिर वो दे विल गो फॉर ट्रस्ट बायोप्सी। तो बायोप्सी पे फिर पता चलेगा कि किस ग्रेड का ट्यूमर है। जैसे मैंने अपने टॉक में शुरू में बताया कि जो स्टडी हुई थी अमेरिका में, उन्होंने देखा कि 80-year-old जो जेंटलमैन है, इनकी जब ऑटोप्सीज हुई थी उनमें 70% में प्रोस्टेट था, लेकिन 1/3 of those patient को कभी महसूस भी नहीं हुआ होगा कि कोई मसला है, और जिनको पता चल भी जाता है कि मसलन को प्रोस्टेट कैंसर है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे 100% हम डायग्नोस करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के साथ, तो ओनली 30% जो है वो डिज़ीज़ की वजह से उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है, वो दे डाई फ्रॉम द प्रोस्टेट कैंसर, लेकिन जो 70% है दे विल लिव विद प्रोस्टेट कैंसर, और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, एंड ही विल लिव विद इट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी, ही मे डाई फ्रॉम समथिंग एल्स, मतलब कार्डियक वगैरह वो भी हो सकती। तो जनरली स्पीकिंग जैसे आपने बताया, इसके लिए बेहतर यही है कि बंदा यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और पीएसए टेस्ट करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पीएसए टेस्ट पे डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उस पर हम फिर डिपेंड करेंगे आगे फर्दर स्कैन करने के लिए इंशाल्लाह।
3: वो उसमें ऐसा है कि मैं कुछ अर्सा पहले, कुछ 6-7 महीने पहले मैं डॉक्टर साहब के पास गया था, वहीं हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर नाजी हैं
2: जी जी,
3: तो उन्होंने क्रिस्पोस्कोपी की थी और कहा कि मामूली से एनलार्जमेंट है आपके प्रोस्टेट में, ग्लैंड में जो।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
3: तो लेकिन उस वक्त मेरा जो टीपीएसए जो था 3.16 था।
2: ठीक है,
3: 3.16 एनजीएमएल। तो लेकिन यह कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट 80 years old। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, शुड आई गो टू द हॉस्पिटल?
2: अगर 3.16 था तो दिस इज कंसिडर्ड फॉर योर एज नॉर्मल ना। तो देखें अगर फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर नाजी से अगर आपने ऑलरेडी कंसल्ट किया है, लेकिन उसमें जो यूरोलॉजिस्ट हैं दे टेक केयर ऑफ मतलब यूरिनरी जो सिम्टम्स वगैरह के हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आप वो फ्लोमीट्री वगैरह भी करनी पड़ेगी ताकि वो देख लें। इसमें कभी कभार मसाने के मसल्स वगैरह रिलैक्सेशन और हाइपर एक्टिविटी का मसला भी आ जाता है
3: जी जी।
2: हाँ,
3: तो आप फाइनली ये सजेस्ट करते हैं कि शुड आई गो टू द हॉस्पिटल, उनसे अपॉइंटमेंट ले लूं डॉक्टर साहब से?
2: मेरे ख्याल में हाँ, आपको ये जो सिम्टम अगर इससे आप काफ़ी वो हैं, आपके लिए मसला पैदा है, तो डेफिनेटली फिर यूरोलॉजी से आप कांटेक्ट करें या फिर मैं हम बात कर लेंगे कि व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट।
3: ओके जी,
0: अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि कब किस वक्त, ये पूछने वाली थी कि हमें क्या जैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना जो है किस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है।
2: जी जी
0: जी
2: ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, ख़ासकर वो पेशेंट या वो लोग جنکی فیملی ہسٹری ہے, کیونکہ ایون جو اس کی جو اسکریننگ وغیرہ تھا تو میجورٹی آف دا گائیڈ لائنز وہ کہتے ہیں کہ اباؤ دا ایج آف 50 اسکریننگ شروع کرتے ہیں, لیکن ابھی کچھ ایڈجسٹڈ گائیڈ لائن ہے پرٹیکولر جن کی پازیٹیو فیملی ہسٹری ہے, کسی کو گھر میں مطلب اس کے فادر یا برادر ان کو پروسٹیٹ, تو وہ ایون ینگر اباؤ دا ایج آف 40 ہم ریکمینڈ کرتے ہیں پی ایس اے اسکریننگ ٹیسٹ.
0: ٹھیک.
4: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
5: فٹ بال کا اصلی رنگ, اصلی جذبہ اور اصلی دھماکہ لے کر آ رہا ہے محمد امین. اٹس اے گول شو جہاں ہر میچ کی ہر کک ہوگی لائیو, ہر گول بنے گا ایک سیلیبریشن.
6: ہائی لائٹس, کمنٹری اور سپورٹی وائبس کا فل پیکج. اگر فٹ بال ہے آپ کا پیشن تو یہ شو ہے آپ کا الٹیمیٹ مزہ. ڈونٹ مس اٹ, اٹس دا گول شو ود محمد امین ایوری سنڈے اینڈ تھرسڈے ایٹ 1 PM لائیو آن FM 107 دل سے دیسی.
1: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی.
0: جی سنس, آج ہم بات کر رہے ہیں پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبد الرحمٰن زار گل جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں این سی سی آر ایچ ایم سی میں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب ہمیں بہت ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پر تھے کہ کس طرح سے جیسے پیشنٹ کو کنسلٹ کرنا کس وقت بہت ضروری ہو جاتا ہے, وہ اس کی علامات پر ڈپینڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑی اگر ہم قطر کی بھی بات کرنا چاہیں تو کیا وجوہات ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ کیسز, نئے کیسز جو ہیں ہر سال ڈائگنوز ہوتے ہیں, کوئی خاص وجہ ہے کیا؟
2: جنرلی مطلب اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو یہ ایک جو ہیں آلموسٹ, کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ سنگل کینسر سینٹر ہے, کینسر رجسٹری ہے, تو ایگزیکٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ انسیڈنس ہائی ہے. لیکن کیونکہ باقی ملکوں میں اگر آپ یہ کمپیئر کریں تو ادر جی سی سی کنٹری میں بھی تقریباً یہی ریشو ہے. البتہ یہ ہے کہ سنگل سینٹر ہونے کی وجہ سے سارے کیسز جو ہیں یہاں پہ آتے ہیں, تو ایگزیکٹلی ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. اور بلکہ یہ ہے کہ پاپولیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے,
0: آس پاس بھی کنٹریز ہیں وہاں سے بھی پیشنٹ جو ہیں یہاں
2: ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں, جیسے عمان سے, بحرین سے, کچھ پیشنٹ ہم سعودیہ وغیرہ سے بھی دیکھتے ہیں جو علاقہ نزدیک ہے دمام وغیرہ کا نا, تو اٹ دیٹ از وائی مطلب وہ لگتا ہے کہ ہائی ہے. لیکن جنرلی اٹ از مطلب جو ورلڈ کے جو انسیڈنس وغیرہ ہیں اس کے تقریباً کمپیریبل ہے.
0: جی ڈاکٹر صاحب, ایک جو ہے وہ جیسے بایوپسی کی ہم بات کریں,
2: جی
0: ہر اس میں ہی میں یہ سوال کرتی ہوں, مگر یہ کہ عام طور پر جس کے خیال یہ کیا جاتا ہے یا پیشنٹ ہیں یا عام طور پر پبلک میں کہ جیسے ہی بایوپسی کی جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ خدا نخواستہ اگر کینسر ہے تو بہت زیادہ فلیئر اپ ہو جاتا ہے, پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو آپ کے تھرو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ ایسا ہی ہے, یہ جو کانسیپٹ ہے عام طور پر بایوپسی کا کہ جیسے بایوپسی کرتے ہیں تو اس سے جو
2: کینسر سپریڈ ہو جاتا
0: ہے؟ جی سپریڈ ہو جاتا ہے.
2: نہیں یہ
0: اب تھوڑا کم ہوا ہے یہ کانسیپٹ.
2: ہاں اس میں یہ ہے کہ جس اس کو سیڈلنگ کہتے ہیں, یوزولی جو کڈنی کینسر ہے اس میں ہم پریفر نہیں کرتے بایوپسی لینے کی, اس میں رائٹ اوے اس کی نیفریکٹومی یا پارشل نیفریکٹومی یا ریڈیکل نیفریکٹومی ہوتی ہے. لیکن جو کیسز ہیں جہاں پہ ہم ٹریٹمنٹ دینا چاہتے ہیں پہلے سرجری سے, تو اس میں پھر بایوپسی کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو पता चलना चाहिए कि क्या है,
0: किस टाइप
2: का ट्यूमर है. इवन प्रोस्टेट कैंसर 99% जो है वो एडिनोकार्सिनोमा होता है. अच्छा. जो एक टाइप है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं,
0: लेकिन जैसे लैब में ही पता
2: जी
0: चलता है,
2: जो जो पैथोलॉजिस्ट है वो लैब में जाके माइक्रोस्कोप के नीचे खलिये देखता है, तो जो खलिये हैं उनको एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं. लेकिन इसमें और भी वेरियंट हो सकते हैं. कभी कभार इसमें जो रेयर टाइप है जैसे लिम्फोमा भी हो सकता है, मेटास्टैटिक मतलब कहीं और से आया, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, सार्कोमा, तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर कहते हैं, बड़े अग्रेसिव होता है, तो ये ट्यूमर भी हो सकते हैं. तो आपको डेफिनेटली बायोप्सी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आजकल जो है आपको पता चलना चाहिए कि सिर्फ ये ना कि कौन से कैंसर सेल्स हैं, बल्कि उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, उनकी हार्मोनल स्टेटस क्या है. क्योंकि आजकल जो ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड करते हैं, जिसको हम प्रिसिजन मेडिसिन कहते हैं, कि मतलब ट्यूमर डायरेक्टेड थेरेपी. पहले मतलब यही था कि सर्जरी कर लो, जो खासकर मेटास्टैटिक है कीमोथेरेपी दे दो, तो अभी ये ज़रूरी नहीं है. कुछ पेशेंट, कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत ही नहीं होती, उनके लिए उनमें हम ड्राइवर म्यूटेशन देखते हैं. उस ड्राइवर म्यूटेशन के मुताबिक प्रोस्टेट में इसी तरह वो हैं, हो सकता है कि उसका जो इलाज है वो सिर्फ हार्मोनल इंजेक्शन से ही हो,
0: ठीक है,
2: और कुछ हार्मोनल टैबलेट्स ही हों, या कोई टारगेटेड ट्रीटमेंट है उससे ट्रीटमेंट भी हो सकती है.
0: जी. रक्सो हमारे लिसनर हैं, नाम इन्होंने भी मेंशन नहीं किया, सलाम कह रहे हैं आपको.
2: वालेकुम सलाम.
0: और कह रहे हैं कि वो यूरिन जो है वो पास नहीं कर सकते, और जो टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी, तो क्या ये इसकी भी एक रीज़न हो सकती है? और कह रहे हैं कि व्हाट शुड आई डू, और ये कि वो जो मेडिसिन दे रहे हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल की, कॉन्कर है कोर और लिसिनोप्रिल है और अटोरवास्टनी, मतलब ये अपनी मेडिसिंस के नाम उन्होंने लिखे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की और हाई बीपी की जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं.
2: अच्छा.
0: तो क्या ये वजह हो सकती है? मगर ये कि आपने अपनी एज नहीं लिखी, और अगर आप एज लिखते हैं तो वो ज़्यादा जो है,
2: मुझे लगता है कि ये पेशेंट शायद इब्राहिम तो नाम नहीं इसका,
0: नाम मेंशन. अच्छा. नहीं किया हुआ जी. आप बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है और एज भी बता दीजिए, तो डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकें. जी.
2: तो इनको मतलब शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह
0: वो तो है, कोलेस्ट्रॉल तो हाई होगा तो मेडिसिन ले रहे हैं.
2: हाँ.
0: तो ब्लड प्रेशर भी होगा.
2: हाँ.
0: जी.
2: तो ये मतलब जो रिस्क है, अगर फैमिली हिस्ट्री वगैरह नहीं है
0: जी,
2: तो रिस्क एक नॉर्मल जैसे 1 out of 6 इंडिविजुअल में प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है.
0: ठीक है.
2: तो शुगर या ब्लड प्रेशर के होने से ये रिस्क नहीं बढ़ता.
0: अच्छा. ठीक.
2: मतलब इसके साथ कोई इसकी वो नहीं है. लेकिन अगर आप दूसरी एंगल से देखें, अगर पेशेंट हेल्दी है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका शुगर कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, ही विल बी डूइंग बेटर कंपेयर टू वो पेशेंट जो मतलब उसका वेट ज़्यादा है, या वो स्मोकिंग भी कर रहा है, उसको शुगर. अच्छा. भी है
0: जी.
2: उसको ब्लड प्रेशर भी है, तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं, तो चांसेस मतलब कंपेरेटिवली बढ़ सकते हैं.
0: ठीक है
2: जी.
0: तो अभी ये इनके जो रीज़न है वो क्या आपने कहेंगे, कंसल्ट करें किसी से, या जैसे यूरिन का मसला हो रहा है?
2: हाँ, यूरिन का मसला हो रहा है. अगर इफ़ ही इज़ अबाउ 50 या मतलब जनरली देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेल पेशेंट के लिए. यूरिन जो सिम्टम्स ये कह रहे हैं ना, अगर यूरिन में ब्लड है
0: जी,
2: तो इसको तो राइट अवे मतलब यूरोलॉजिस्ट से या मतलब किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें वेरी इम्पोर्टेंट है. इस पे, इस टॉपिक पे हम कभी बात कर सकते हैं ब्लैडर ट्यूमर के.
0: ठीक.
2: क्योंकि मेल पेशेंट में हेमेचूरिया जिसे हम कहते हैं, ब्लड इन यूरिन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट.
0: डॉक्टर साहब एक कॉल है. जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी हेलो अस्सलाम. जी जी. प्रोग्राम हेल्थ गाइड. जी आप कौन बात कर रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही. वालेकुम
2: सलाम. सलाम.
0: क्या पूछना चाहेंगे?
2: अल्हम्दुलिल्लाह.
7: पूछना यह था कि टॉपिक तो हमारा वो नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा सा सलाह लेना चाह रहे थे. समथिंग एक महीना से पाँव है ना जो तलवा होता है उसके ऊपर का ना जब सो के उठते हैं या फिर थोड़ा देर बैठ कर तो वो बहुत पेन करता है, चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: अच्छा,
7: तो ये क्या?
2: हाँ, अगर आपको शुगर वगैरह है तो पहले तो ये जरूर, अच्छा शुगर नहीं है तो फिर आप इस तरह हैं कि कुछ आप अपना वो देखें, ब्लड चेक कराएं कि आपका हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, आयरन डिफिशेंसी एनीमिया तो नहीं है, वाइटामिन्स की कोई वाइटामिन B12 की कमी तो नहीं है। तो वाइटामिन अगर हीमोग्लोबिन से है तो वाइटामिन B12 की टेबलेट लें तो इंशाल्लाह ये जो वो तलवे में जो वो बर्निंग सेंसेशन है वो ठीक हो जाएगी।
7: जो नस है ना वो ऐसा लगता है नस पे कुछ पट रहा है, इस तरह से पेन हो।
2: बिल्कुल।

0: तो आप कुछ मल्टी वाइटामिन लें, अपना ब्लड टेस्ट कराएं और
1: कंसल्ट जरूर करिए,
0: और फिर जो हेल्थ सेंटर से या किसी से कंसल्ट करके कि वो देख लें आपका ब्लड टेस्ट करा दें। ठीक
1: है, ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें बायोप्सी की भी बात की, मगर एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी को, जैसे हमारे लिसनर हैं, पूछ रहे हैं कि उनके वालिद को कैंसर था, उन्होंने भी एज नहीं लिखी, तो पूछ रहे हैं कि उन्हें स्क्रीनिंग किस उम्र में शुरू करनी है।
0: तो वालिद को ये कौन सा कैंसर?
1: प्रोस्टेट कैंसर।
0: प्रोस्टेट कैंसर
1: जी, जी।
0: अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रोस्टेट कैंसर किस एज में था
1: जी,
0: क्योंकि अभी जैसे हमने बताया कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट 65-70 उनको हो सकता है, लेकिन वैसे भी इनको कम से कम अगर जिस एज पे इनके वालिद साहब को हुआ है उससे 10-15 साल पहले स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ही 65 तो इसको 50 अबव करना चाहिए। अगर ही वाज 60 ईयर ऑफ एज तो प्रेफरेबली फिर ये है कि इनको अबव द 40 एज और 45 एज इनको पीएसए वगैरह चेक कराना चाहिए, इनको यूरोलॉजिस्ट से मिलके उनको बताना चाहिए कि मेरे वाले साहब को प्रोस्टेट ट्यूमर था, तो इस सिचुएशन में इसको फिर अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। अर्ली डिटेक्ट होने का यही फ़ायदा है स्क्रीनिंग का, कि जितने अर्ली स्टेज में आप डिज़ीज़ को डिटेक्ट करते हैं तो उसकी उतनी आसानी से ट्रीटमेंट हो जाती है, उतनी उसकी प्रोग्नोसिस सही होती है। जितना भी ट्यूमर बढ़ता रहता है, सर्वाइवल 5 ईयर जो सर्वाइवल है, 10 ईयर सर्वाइवल है, रिकरेंस फ्री सर्वाइवल है, डिज़ीज़ फ्री सर्वाइवल, ये सब कुछ इम्प्रूव हो जाते हैं।
1: ठीक डॉक्टर साहब, क्या जो डाइट है, ये एक्सरसाइज है, ये स्मोकिंग है
0: जी,
1: अगर वो अगर आप उस पर कंसंट्रेट करते हैं तो उससे क्या प्रोस्टेट कैंसर का जो रिस्क है कम हो जाता है?
0: डेफिनेटली, आई मीन हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट कंट्रोल
1: जी,
0: रेगुलर एक्सरसाइजेस, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, वाटर, फोकस ऑन वेजिटेबल, ये कुछ ऑब्जर्वेशन में देखा गया है ऑल्सो कि जो सिट्रस फ्रूट वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो आपके जो स्मोकिंग वगैरह, ये एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग वगैरह, इसको अवॉइड करते हैं आप।
1: अच्छा, ठीक।
0: हाँ, और जो निकोटीन वगैरह, निकोटीन पैच और ये चीज़ें जो हैं, अल्कोहल, तो ये अगर ये आप कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली रिस्क इज कम विल बी लोअर कंपेयर टू दोज पेशेंट के जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, वेट को कंट्रोल नहीं करते, ब्लड प्रेशर उससे हो जाता है, शुगर हो जाता है, तो इस तरह सारे रिस्क बढ़ सकते हैं।
1: ठीक
0: जी,
1: कंसेंस ये प्रोग्राम अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो आप जुमे को सुबह 8 बजे ये प्रोग्राम पेश किया जाता है रिपीट में, तो आप उसे सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर अपने हमारे तमाम जो लिसनर्स हैं, ख़वातीन जो हैं, ख़ास तौर पर जो मेल हज़रात हैं, तो उसमें जो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आपने हमें बहुत सारी जो मालूमात दी हैं, अगर कुछ अहम बातें या 2 या 3 अहम बातें कि वो ज़रूर याद रखनी चाहिए, वो आप बता दीजिए या मैसेज आप दे दीजिए, क्या कहना चाहेंगे?
0: जी, पर्टिकुलरली वो पेशेंट, वो लोग जिनके फैमिली हिस्ट्री है, उनमें उनके रिलेटिव्स जैसे इनके फादर हैं या इनके भाई हैं, या कभी कभार बहनों में अगर ब्रेस्ट कैंसर है, पर्टिकुलरली यंग एज में कोई है, 50 से यंगर एज में ब्रेस्ट कैंसर भी है, ओवेरियन ट्यूमर है या पेंक्रियाटिक वगैरह ट्यूमर था, तो उन्होंने उसकी जेनेटिक टेस्टिंग नहीं की, तो उनको चाहिए कि वो उस एज से 10 साल पहले, या मतलब ये बात अपने हेल्थ सेंटर में बताए कि वो रेफ़र करेंगे जेनेटिक काउंसलर में, तो वो पूरा उसकी डिटेल और जो हिस्ट्री बना के वो देखेंगे कि कितना रिस्क है, इनको پروسٹیٹ کینسر ہونے کا, کوئی اور کینسر بھی ہو سکتا ہے, کبھی کبھار کچھ سنڈرومز وغیرہ ہوتے ہیں. ایک بات یہ, عام پاپولیشن کے لیے جو ہیلدی سب ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی سمپٹمس ہے تو وہ پی ایس اے وغیرہ چیک کرا کے اپنے ہیلتھ سینٹر میں اور یورولوجسٹ سے فالو کریں.
1: ٹھیک, بہت شکریہ. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے ڈاکٹر عبدالرحمان زارگل, فوزے شفیق اور میرے ساتھ رہے اسلی بھنڈارا. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Smart money.
2: Welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी host नासिया. और आज के segment में हम बात करने वाले हैं sandwich generation की. आजकल एक बहुत ही important term सुनने को मिलती है sandwich generation. और ये उन लोगों के लिए use किया जाता है जो एक ही वक्त में अपने बच्चों और अपने aging parents दोनों की responsibility उठाते हैं. और वो बीच में सैंडविच की तरह फंस जाते हैं. जी हाँ, इन इस जनरेशन को सबसे ज्यादा जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है. एक तरफ उनके बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ है, फ्यूचर है, वहीं दूसरे तरफ पेरेंट्स की केयर है, मेडिकल नीड्स है और शायद इमोशनल सपोर्ट भी है. देखिए, आज के जमाने में ये सिचुएशन बहुत कॉमन है. लोग ज्यादा लंबी जिंदगी जी रहे हैं और साथ ही बच्चों की एजुकेशन, लिविंग एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं. नतीजा ये है कि मिडिल एज अडल्ट को दोनों जनरेशन की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं और शायद इसी जिम्मेदारी के चलते उनका फाइनेंशियल स्टेटस डगमगाने लगता है. हर महीने बच्चों की फीस है, ट्यूशन है, घर के एक्सपेंसेस है, साथ ही अगर पेरेंट्स रिटायर कर गए हैं तो उनके हेल्थ इश्यूज हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, ये सारी जिम्मेदारियां. यानी एक ही वक्त में बच्चों के प्रोवाइडर और पेरेंट्स के केयर गिवर. ये है सैंडविच जनरेशन की असल तस्वीर. और इस सिचुएशन का सबसे बड़ा चैलेंज है फाइनेंशियल प्रेशर. एक तरफ बच्चों का फ्यूचर, उनकी प्लानिंग, दूसरी तरफ पेरेंट्स की मेडिसिन, हॉस्पिटल विजिट्स और उनकी डेली नीड्स. कई दफा इंसान की इनकम अच्छी होती है लेकिन फिर भी सेविंग्स नहीं हो पाती. हर महीने पैसे आते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में खर्च हो जाते हैं और शायद इसी वजह से लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस फील करते हैं. अब देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो प्रेशर नहीं, एक इमोशनल प्रेशर भी है. पेरेंट्स को वक्त देना, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, उनकी इमोशनल नीड्स को समझना और साथ ही बच्चों की सारी नीड्स पूरी करना बहुत ही चैलेंजिंग. कई लोगों को लगता है कि वो हर काम आसानी से कर नहीं सकते और शायद हर काम के लिए पैसे चाहिए. जबकि मैं कहूँगी हर काम के लिए मैनेजमेंट चाहिए, टाइम मैनेजमेंट. दिन के 24 घंटे के लिए सबसे ज्यादा 24 घंटे को डिवाइड करना आपका सबसे बड़ा और टीडियस टास्क है. सैंडविच जनरेशन के लोग अक्सर जॉब, फैमिली और केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दरमियान बैलेंस बनाने की कोशिश करते रह जाते हैं और कई दफा ये बैलेंस क्रिएट ही नहीं हो पाता. इस सिचुएशन में हमें और आपको फाइनेंशियली खुद को सिक्योर और स्टेबल करना बहुत इम्पोर्टेंट है. देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सैंडविच जनरेशन के लोगों को अपने वेलबींग का भी ख्याल रखना चाहिए.

खूबी आपके पेरेंट्स पे खर्च कर सके। बजटिंग, इमरजेंसी फंड्स और क्लियर कम्युनिकेशन फैमिली को स्ट्रेस से निकालता है। सैंडविच जनरेशन के लोग फैमिली की बैकबोन होते हैं, वो दो जनरेशन के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं। ये रोल आसान नहीं होता, लेकिन बड़ा कीमती है, और सबसे जरूरी बात ये कि वो दूसरों का ख्याल रखते हैं।

आने और ये प्लानिंग आप अकेले ना करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के करें, सिब्लिंग्स के साथ बैठ के करें। हर चीज के लिए जो है बजट एलोकेट कीजिए और अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर आएंगे, भले से आप सैंडविच जनरेशन ही क्यों ना हो। सब आपको अहमियत भी देंगे, आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर हेल्दी हैं तभी आप एक हेल्दी फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। अभी के लिए मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से दिल।

0: 107 presents Tech Update. Tech Update.
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। आज भी मेरे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपकी बोर्डम को खलास खली वाली कर दी और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपकी बहुत काम आ सकती। सो एक एक करके जाएंगे क्योंकि हम मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो उससे पहले काम की बात कर लेते हैं। तो आज जो है वेबसाइट का नाम है goblin.tools, goblin.tools, ठीक है, goblin.tools। इसमें जाने के बाद आप कोई भी इसे टास्क बता सकते हैं कि भाई मेरे को बर्थडे प्लान करनी है, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या क्या करना चाहिए। ये आपको आइडियाज देगा, आपको बताएगा सबसे पहले ये करो, यहां जाओ, ये यहां जाओ।

0: आ जाओ और आप उसको एक तरीके से चेक मार्क करके चलेंगे तो आपको मदद मिलेगी। मैं जानता हूँ बहुत लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सब कुछ पता होता नहीं क्या क्या करना है, बट कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं भाई, मेरे जैसे लोगों के लिए ये जिनको स्टेप बाय स्टेप बताया जाए, स्पून फीड किया जाए तो ज्यादा अच्छे से याद रहता है। एंड डेफिनेटली ये काम आएगा टीनेजर्स के लिए भी, इफ दे आर प्लानिंग समथिंग, यू नो आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, इट विल जस्ट हेल्प यू टू जॉट डाउन योर मेमोरी के भाई ये कर लिया, ये रख लिया। इट इज अ वेरी हेल्पफुल टूल इन अ वे उन लोगों के लिए जो शायद मेरी तरह बोलते होंगे। सो goblin.tools, और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि यही टास्क है, और भी बहुत सारे टास्क हैं, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है, आप यूजुअली और भी टास्क दे सकते हैं और ये और भी टास्क में आपकी मदद कर सकती है वेबसाइट, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, ठंड रखो अभी से गुस्सा आ रहा है। ओके अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। ये वेबसाइट बहुत बहुत काम की है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, या फिर आप बड़े हो चुके हैं, जस्ट यू जस्ट वांट टू नो कि कौन सा ये क्या है, आप किसी को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं केमिस्ट्री ये तो नो बताएगी नहीं, मुश्किल काम है, पर केमिस्ट्री से जुड़ी वेबसाइट है तो बच्चों की बहुत काम आएगी। इसका नाम है zperiod.app, यानी कि ऐप, तो जेड लाइक द अल्फाबेट जेड और पीरियड period.app। इस वेबसाइट पर जाके हर एलिमेंट की आपको जानकारी मिलेगी। फॉर एग्जांपल मुझे जानना है कि भाई आयरन के बारे में जानना है, तो आयरन के बारे में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसका पूरा प्रोजेक्शन आपको दिखेगा पूरे मोशन के साथ, एनिमेशन के साथ, फिर एक एक उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी क्या क्या खासियत है, सब आपको पता लग जाएगा। बहुत बहुत काम की चीज है, स्पेशली उन टीनेजर्स के लिए या बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री जिन्हें अच्छी लगती है। ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छी लगी यार, मुझे एलिमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं थी, बट मुझे अच्छा लगा कि मुझे भी थोड़ा सा जागरूक रख रही है वेबसाइट, ये थोड़ा अवेयर हूं इन चीजों से। ऑलराइट, नाउ वेबसाइट नंबर 3, तीसरी वेबसाइट है channelsurf.tv, चैनल channel surfer surfer.tv, सर्वर मत टाइप कर दीजिएगा, वो हमारे वाले नहीं, सर्फर, ठीक है, channelsurfer.tv। इस पे जाएंगे तो आपको YouTube मिलेगा, लेकिन पता किस तरीके से, पुराने केबल जैसे केबल टीवी आते थे उस जमाने के स्टाइल में आप YouTube देख सकते हैं, आपको सब बताएगा, अभी आप ये देख रहे हैं आने वाला सेक्शन ये है, आने वाला सेक्शन ये है, भाई बहुत कमाल की चीज है। और सबसे खास बात बताऊं, कोई एडवर्ट्स नहीं है, कोई एडवर्ट नहीं है, कमाल है, बिल्कुल पुराने केबल टीवी के स्टाइल में YouTube देख सकते हैं आप, और प्लस कोई एड्स भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ इस वेबसाइट का तो मैं फैन हो गया, जाके देखिए, यू विल डेफिनेटली लव इट। और ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स। अब जरा बढ़ता हूँ मैं एक बहुत ही खास खबर की तरफ, और जो खबर जो है वो गूगल पिक्सल 11 प्रो एक्सएल के बारे में है। देखो लार्जेस्ट फोन की कैटेगरी में ही आ चुका है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि क्वालिटी स्क्रीन है यार। देखो लोग अभी ना दीवाने हो चुके हैं, आईफोन आ गया, आईफोन चाहिए, सैमसंग लॉन्च कर दिया, सैमसंग चाहिए, पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है, जबकि ध्यान देने की जरूरत है। जो न्यू मॉडल है वो 6 ग्राम लाइटर है, पिछले वाले से 0.1 mm स्मॉलर है, हर डायमेंशन के लिहाज से लास्ट ईयर के पिक्सल 10 प्रो के लिहाज से बहुत बढ़िया बनाया है भाई। तो अगर आप गूगल पिक्सल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि गूगल का तो फोन है क्या, बहुत बढ़िया है, इट रन्स एंड्रॉइड 17 एज इट्स स्मॉलर सिबलिंग, और साथ साथ जो अपडेट मिला है सपोर्ट का वो बहुत बढ़िया है, और अपडेट बता कब तक की है, अगस्त 2033 तक भाई, और कितने सपोर्ट चाहिए, और साथ में 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है गूगल AI प्रो सब्सक्रिप्शन, और साथ में एक्सेस टू वीडियो जनरेटर वो भी जेमिनी ओमनी, और हायर AI यूसेज लिमिट्स मिलती है, 5 TB ऑफ क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है, गूगल हेल्थ प्रीमियम, भाई ऐसे अगर मैं बेचने निकला मैं बेच दूंगा गूगल पिक्सल आपको। सो अंडरस्टैंड गूगल पिक्सल की भी मार्केट है, उस तरफ जाके तो देखिए, झांकी तो सही। हाँ ये थी अपडेट्स, मिलते हैं अगली वाली में, स्टे ट्यून्ड।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
1: FM 107.
2: Log into our website.

अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो आजकल बच्चों, नौजवानों, बड़ों और तकरीबन हर उम्र के अफराद में आम होता जाता रहा है और वो है आंखों की थकन। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल फ़ोन, काम के लिए कंप्यूटर और सोशल मीडिया, वीडियोस, मैसेजेस और रात को दोबारा मोबाइल स्क्रीन जो है वो हमारे सामने होती है। हमारी आंखें दिन का बड़ा हिस्सा जो है स्क्रीन्स को देखते हुए गुजार रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्क्रीन इस्तेमाल करने वाला शख्स आंखों का मरीज बन जाएगा, लेकिन लंबे अरसे तक बगैर वक्फे के स्क्रीन देखने से आई स्ट्रेन यानी आंखों की थकन हो सकती है। उसकी कुछ अलामत हैं जो कि जाहिर होती हैं कि आंखों में जलन है, खुश्की है, पानी आ रहा है, बहुत भारीपन है, धुंधला नजर आना शुरू हो गया है, सर में दर्द महसूस हो रहा है, आंखों के इर्द गिर्द डिस्कम्फर्ट है और फोकस करने में मुश्किल पेश आ रही है। इस तरह की शिकायत हो सकती हैं। एक अहम वजह ये भी है कि हम स्क्रीन को मुसलसल देख रहे होते हैं और आम हालात के मुकाबले में कम अपनी जो पलकें हैं वो झपक सकते हैं। इससे आंखों की जो सतह है वो हमें ड्राई महसूस हो सकती है। अब सवाल ये है कि इस मसले से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही आसान सा रूल है, वो हमें ज़रूर याद रखना है और वो रूल है 20-20-20 का, यानी तकरीबन हर 20 मिनट के बाद तकरीबन 20 सेकंड के लिए और फिर तकरीबन जो 20 जो फिट है दूर किसी चीज़ को आप देखिए। इसका मकसद आंखों को मुसलसल एक ही फासले पर फोकस करने से वक्फा देना है। और दूसरी अहम बात यह है कि स्क्रीन की पोजीशन बहुत करीब भी ना हो और इतनी ऊंची भी ना हो कि आपको मुसलसल गर्दन ऊपर उठाना पड़े। कंप्यूटर स्क्रीन बैठने की पोजीशन जो है वो आरामदेह होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन को आंखों के बहुत करीब रखकर लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने से भी हमें गुरेज करना है। रोशनी का भी खास ख्याल रखना ज़रूरी है। बिल्कुल अंधेरे कमरे में बहुत रोशन जो स्क्रीन है देखने के बजाय कमरे में आप मुनासिब रोशनी रखिए। और एक आम गलती ये है कि बहुत से अफराद मुसलसल स्क्रीन को देखते हैं और ये सोचते हैं कि सिर्फ ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने से मसला हल हो जाएगा। असल बात सिर्फ ब्राइटनेस नहीं बल्कि लाइटिंग, डिस्टेंस, ब्रेक्स, स्क्रीन टाइम और जो ओवरऑल आई हैबिट्स हैं वो हैं। बच्चों के मामले में वालिदैन का किरदार बहुत अहम है। बच्चे खेल या वीडियोस में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उन्हें वक्त का अंदाज़ा नहीं रहता। इसलिए स्क्रीन इस्तेमाल करने के दौरान ब्रेक्स और आउटडोर एक्टिविटी को रूटीन का हिस्सा बनाना बहुत ही बेहतर है। आंखों के लिए सिर्फ स्क्रीन से ब्रेक लेना ही काफ़ी नहीं, मुनासिब नींद, बैलेंस डाइट और ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अहम है। और एक बहुत अहम बात, हर आंख की शिकायत को सिर्फ स्क्रीन की वजह समझना दुरुस्त नहीं है। अगर नज़र मुसलसल धुंधली रहती है, आंख में दर्द है, नज़र अचानक कम हो जाए या रोशनी की चमक या बहुत ज़्यादा जो नए फ्लोटर्स हैं नज़र आएँ तो फिर आप आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट ज़रूर कीजिए। ख़ास तौर पर अगर किसी शख्स को डायबिटीज़ है या कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो आंखों को मुतासिर कर सकती है तो रेगुलर चेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा अपना आज का हम रूटीन देखें कि जैसे ही हम सुबह उठे या सुबह तक कितने घंटे जो है वो स्क्रीन हम देख चुके हैं। क्या दरमियान में कोई ब्रेक्स लिए? क्या आप मोबाइल को चेहरे के बहुत करीब रखकर इस्तेमाल करते हैं? क्या आप सोने से पहले काफ़ी देर तक फ़ोन देखते रहते हैं? तो फिर यह है कि आज से एक छोटी सी तब्दीली हम कर लेते हैं। हर कुछ देर के बाद स्क्रीन से आप अपनी नज़रें हटा लीजिए, पलकें जो हैं मामूल के मुताबिक छपकाइए, मुनासिब फासले से स्क्रीन देखिए, अपने बच्चों को भी ब्रेक

0: बचा सकते हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। जैसे आज हमने वीडियो गेम के बारे में बात करी है दोस्तों, कल हम बात करने वाले हैं एक फेस्टिवल स्कैम के बारे में। क्या है वो फेस्टिवल स्कैम, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और मुलाकात होगी कल इस पर बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट,
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबका खैर मकदम है। आज हम कुरान करीम की एक ऐसी आयत पेश करने वाले हैं जिसे बहुत से अहले इल्म ने किताबुल्लाह की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत करार दिया है। ये वो आयत है जो टूटे हुए दिल को सहारा देती है, मायूसी के अंधेरों में रहमत का चिराग रोशन करती है और बंदे को ये पैगाम देती है कि अल्लाह का दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ। इरशाद खुदावंदी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم। اے نبی کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है, यकीनन वही बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। समय कराम ज़रा इस आयत के आगाज़ पर गौर कीजिए कि अल्लाह ने यह नहीं फरमाया ए मेरे नेक बंदो, ए मेरे परहेजगार बंदो, ए मेरे इबादत गुजार बंदो, फरमाया या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ु अला अन्फुसिहिम, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर हद से बढ़कर जुल्म किया है। समय कराम ये निदा कैसी रहमत की निदा है, ये कैसा करम है, ये कैसा रब है जो गुनाहगार को भी मेरे बंदो कहकर पुकारता है। अगर अल्लाह ताला सिर्फ ये फरमाता कि गुनाहगारों मायूस न हो तो भी उम्मीद का दरवाज़ा खुल जाता, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने गुनाहगारों को अपनी तरफ नस्बत दी है, या इबादी ए मेरे बंदो, वो अल्लाह ताला बंदे को ये एहसास दिला रहा है कि तुम गुनाहगार हो सकते हो, कमज़ोर हो सकते हो, ख़ताकार हो सकते हो, लेकिन तुम मेरे दरवाज़े से खारिज नहीं हुए। तुम्हारा रब अब भी तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारा रब अब भी तुम्हें अपनी रहमत की तरफ दावत दे रहा है। समय कराम इसराफ़ का माना है हद से बढ़ जाना, यहाँ मुराद है गुनाहों में हद से बढ़ जाना, मासियत में आगे निकल जाना, अपने नफ्स पर जुल्म करना, गलतियों और ख़ताओं से ज़िंदगी को बोझल कर लेना। बाज़ लोग गुनाह करते करते एक मरहले पर ये सोचने लगते हैं कि अब मेरा क्या बनेगा, इतने गुनाह हो चुके हैं, इतनी ख़ताएँ हो चुकी, इतनी कमज़ोरियाँ हो चुकी, अब शायद अल्लाह मुझे माफ़ न करे। यही वो लम्हा है जब शैतान बंदे को मायूसी के

होगी और मुझसे उम्मीद रखोगे, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करता रहूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं। फिर फरमाए इब्न आदम लो बलगत ज़ुनूबुक अनान अस्समा थुम अस्तगफरतनी गफरतु लक, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाए फिर तुम मुझसे बख्शिश मांगो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। फिर फरमाया लो अतैतनी बिकुराब अल-अर्ض खताया थुम लकीतनी ला तुशरिकु बी शैआ लअतैतुका बिकुराबहा मगफिरा, अगर तुम जमीन भर गुनाह लेकर मेरे पास आओ लेकिन मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ तो मैं तुम्हें उतनी ही मगफिरत अता करूंगा। समने किराम, ये है हमारा रब जो हमें डराता भी है लेकिन उससे कहीं ज्यादा उम्मीद दिलाता है। वो हमें पुकारता है, तौबा की दावत देता है, इसलिए जब तक जान हलक तक न पहुंच जाए, जब तक मौत की आखिरी घड़ी न आ जाए, तौबा का दरवाजा खुला है। सुनने किराम, आज की गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अगर किसी इंसान से कोई गुनाह सरजद हो गया है तो उसे फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अपने रब से माफ़ी तलब करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ एक नहायत अहम बात को भी समझना ज़रूरी है और वो ये है कि अल्लाह ताला अपने हुकूक तो अपने फजल करम से माफ़ फरमा सकता है मगर बंदों के हुकूक का मामला बहुत हसास है। अगर किसी ने अपने भाई पर जुल्म किया हो, किसी का माल दबाया हो, किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाया हो, किसी की गीबत की हो, किसी पर बहतान बांधा हो, किसी का हक मारा हो, तो उस हक को वापस करना भी ज़रूरी है। इसीलिए अहले इल्म फरमाते हैं अल्लाह ताला के हुकूक तो उसकी रहमत से माफ़ हो सकते हैं लेकिन बंदों के हुकूक उस वक्त तक माफ़ नहीं होते जब तक हकदार खुद माफ़ न कर दे। लिहाजा जिस शख्स के जिम्मे किसी इंसान का हक है उसे चाहिए कि दुनिया ही में उस हक को अदा कर दे, माफ़ी मांग ले, सुलह कर ले और अपने मामलात दुरुस्त कर ले, क्योंकि क़यामत के दिन न दिरहम होंगे न दीनार होंगे न माल दौलत काम आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी पर जुल्म किया होगा उसकी नेकियाँ मजलूम को दे दी जाएंगी और अगर नेकियाँ ख़त्म हो जाएँ तो मजलूम के गुनाह ज़ालिम पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सामने किराम, अभी भी मौका है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, ज़िंदगी बाकी है, इसलिए अपने रब से भी ताल्लुक दुरुस्त कीजिए और बंदों के हुकूक भी अदा कीजिए। याद रखिए ये दुनिया चंद दिनों की ज़िंदगी है, अक्लमंद वो है जो इस मुख्तसर ज़िंदगी के बदले हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करे। इतनी अजीब बात होगी कि कोई इंसान चंद रोज़ फ़ायदे, चंद लम्हों की ख्वाहिश या थोड़े से दुनियावी नफ़ा की खातिर ऐसी जन्नत को खो दे जिसका कोई इख्तिताम नहीं, ऐसी नेमतों को छोड़ दे जो कभी ख़त्म नहीं होंगी और ऐसी अबदी कामयाबी को कुर्बान कर दे जो हमेशा बाकी रहने वाली है। ये तो किसी कम अकल ताजर का सौदा होगा। दानिशमंद इंसान हमेशा नफ़ा नुकसान को देखकर फैसला करता है और सबसे बड़ा नफ़ा अल्लाह की रज़ा और आखिरत की कामयाबी है। समीने किराम, दीन इस्लाम की एक बड़ी खूबसूरती ये है कि उसने इंसान को न सिर्फ उम्मीद सिखाई है, न सिर्फ खौफ बल्कि दोनों के दरमियान एतदाल का रास्ता सिखाया है। मोमिन अल्लाह की रहमत से मायूस होता है और न अपने आमाल पर इतना मुतमईन होता है कि अल्लाह की पकड़ को भूल जाए। यही वजह है कि उलमाए सलफ हमेशा इस बात की तालीम देते थे कि बंदे के दिल में खौफ भी हो और उम्मीद भी। इस मौजू पर एक नहायत खूबसूरत वाक़ा ताबई याला बिन ज़ियाद रहमहुल्लाह का मिलता है जिसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही में तालीकन नकल किया है। याला बिन ज़ियाद लोगों को वाज़ो नसीहत किया करते थे, कभी वो लोगों को अल्लाह के अजाब से डराते और गुनाहों के अंजाम से आगाह करते। एक मरतबा किसी शख्स ने उनसे कहा, आप लोगों को इतना डराते हैं क्या आप उन्हें अल्लाह की रहमत से मायूस करना चाहते हैं? याला बिन ज़ियाद रहमहुल्लाह ने नहायत हिकमत भरा जवाब दिया, फरमाया क्या मैं लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस कर सकता हूँ जबकि अल्लाह खुद फरमा रहा है या इबादी الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। फिर फरमाया लेकिन उसे अल्लाह ने यह भी फरमाया है ना कि गुनाहों में हद से बढ़ जाने वाले और नाफरमानी करने वाले अगर तौबा न करे तो उनके लिए आग है। यानी दीन सिर्फ उम्मीद का नाम नहीं और सिर्फ खौफ का नाम भी नहीं। कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें जन्नत की बिशारतें सुनाई जाएं।

0: मॉडर्न लाइफ फास्ट है लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रही हैं एफएम 107, शो है इस्लामिक मॉडर्न लाइफ और मैं हूं आपके साथ आपके आरजे महवेश खान। आप सबको एक दफा फिर से इस्लामिक मॉडर्न लाइफ में खुश आमदेद। हमने पिछले एपिसोड में एक साथ ये सफर तय किया है कि मसरूफ जिंदगी में ईमान को कैसे जिंदा रखा जाए, काम और इबादत में तवाजुन कैसे हो, जहनी सेहत की अहमियत क्या है और डिजिटल डिसिप्लिन के जरिए दिल और वक्त को कैसे महफूज बनाया जाए। आज हम एक ऐसे मौजू की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो दिल को छुएगा, जिसके बगैर जिंदगी अधूरी लगती है और जिसकी कामयाबी या नाकामी हमारी खुशी, सुकून, हत्ता के ईमान पर भी असर डालती है। और वो है ताल्लुकात, मोहब्बत, एतमाद, गुफ्तगु, रफाकत, कुर्बानी, बर्दाश्त। ये सब वो धागे हैं जो हमारी जिंदगी की चादर बुनते हैं। चाहे आप शादीशुदा हो, शादी के मुंतजर हो, या वालिदैन, भाई बहन, रिश्तेदारों के ताल्लुकात में निभा रहे हो, हम सब ऐसे रिश्ते चाहते हैं जो सुकून दें, हमें थकाए नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आज की मॉडर्न लाइफ में जहाँ तवक्कात भी ज़्यादा हैं और आजमाइशें भी, हम ऐसे ताल्लुकात कैसे बनाएं जो हमारे दीन की खूबसूरती की अक्कासी करें। इंशाल्लाह आज हम मॉडर्न रिलेशंस को इस्लामिक दार की रोशनी में देखेंगे, नरमी, मोहब्बत और रहमत के साथ। आज के दौर में ताल्लुकात का मसला कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं, बल्कि ये खामोश बहरान है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरों, दिलों और सोचों में दाखिल हो चुका है। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं, मगर हकीकत में वो पहले से ज्यादा दूर हो चुके हैं। एक ही कमरे में बैठे अफराद मोबाइल में गुम, स्क्रीन से जुड़े, मगर एक दूसरे के दिल से कटे हुए। हम बात करते हैं मगर सुनते नहीं, हम देखते हैं मगर समझते नहीं, हम साथ रहते हैं मगर महसूस नहीं करते। यही वो मकाम है जहां से ताल्लुकात कमजोर होना शुरू होते हैं। सोशल मीडिया ने हमें एक नई दुनिया दिखाई है, ऐसी दुनिया जहां हर शख्स खुश नजर आता है, हर रिश्ता कामिल लगता है, हर तस्वीर में मुस्कुराहट है। लेकिन ये मुस्कुराहटें अक्सर फिल्टर्स के पीछे छुपी होती हैं। हम रोजाना देखते हैं जबरदस्त कपल्स, सरप्राइज गिफ्ट्स, कुछ रोमांटिक कैप्शंस, परफेक्ट मैरिज गोल्स, और फिर हमारा दिल सवाल करने लगता है हमारे रिश्ते में क्या कमी है, ये जिंदगी इतनी खूबसूरत क्यों नहीं है। ये कंपैरिजन दिल में शिकवे पैदा करता है, कनाद खत्म करता है और नेमत को जहमत बना देता है। हालांकि इस्लाम हमें सिखाता है कि बरकत मवाजने में नहीं, शुक्र में है। आज बहुत से ताल्लुकात बज़ाहिर कायम हैं, मगर अंदर से खाली हो चुके हैं। अगर हम बात करें शोहर बीवी की, तो एक ही छत के नीचे मगर अलग अलग दुनियाओं में। वालदैन और बच्चे एक ही घर में, मगर बात करने का वक्त ही नहीं है। वजह, मसरूफियत, थकन और मुसलसल स्क्रीन टाइम। हम दिन भर दुनिया से बात करते हैं, मगर रात को अपने करीबी लोगों से बात करने की ना ताकत बचती है ना ही हिम्मत। और ये है जज्बाती फासला, इमोशनल डिस्टेंस। غلط فہمیوں کو یہ جنم دیتا ہے, اعتماد کو کمزور کرتا ہے اور تعلق کو ایک رسپانسبلٹی بنا دیتا ہے. بس آج کا انسان جلدی میں ہے, جلدی پسند, جلدی ناپسند, جلدی رشتہ, جلدی جدائی. پھر ایسی بہت سی ایپس, فوری چیٹس نے انسان کو ایک پروفائل بنا دیا ہے, جیسے چند تصویریں, کچھ الفاظ, ایک فیصلہ. لیکن اسلام تعلق کو وقت دیتا ہے, سمجھ دیتا ہے اور گہرائی دیتا ہے, کیونکہ اسلام جانتا ہے رشتے جلدی نہیں حکمت سے بنتے ہیں. ان تمام حالات کے پیچھے اسلام ہمیں ایک بنیادی حقیقت یاد دلاتا ہے, تعلق آزمائش بھی ہے اور نعمت بھی. اگر ہم اسے نفس کے مطابق چلائیں تو آزمائش, اور اللہ کے طریقے پر چلائیں تو نعمت. اسلام تعلقات کو سکون کا ذریعہ بناتا ہے, کمپیریشن کا نہیں, دکھاوے شو آف کا نہیں. اب ہم تعلقات کی اصل حقیقت کی طرف آتے ہیں, یعنی تعلقات صرف اتفاق یا اتفاقیہ ملاقاتیں نہیں بلکہ اللہ کی نشانی اور رحمت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتے ہیں, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ, اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی. یہ آیت ہمیں تین اہم باتیں سکھاتی ہے. سب سے پہلے سکینہ, یعنی سکون. تعلقات کا مقصد ذہنی اور جذباتی سکون حاصل کرنا ہوتا ہے. دوسرا موادہ, یعنی محبت, ایک دوسرے کے ساتھ دل میں نرمی اور دلچسپی رکھنا. اور تیسرا رحمہ, رحمت, برداشت, معافی اور نرمی سے رویہ اختیار کرنا. دیکھیے, آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تعلقات کا اصل مقصد ڈرامہ, حسد یا مقابلہ نہیں بلکہ دلوں کی نرمی اور سکون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو. یہ میسج بہت واضح ہے. اسلام میں تعلقات کی کامیابی صرف باہر کی کامیابی نہیں بلکہ گھر اور قریبی لوگوں کے لیے بہترین رویہ اختیار کرنے سے آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی اہلیہ اور گھر والوں کے ساتھ نرم, رحم دل اور شکر گزار رہتے تھے. چھوٹے چھوٹے اعمال جیسے تعریف, ہاتھ بٹانا یا مسکراہٹ, یہ سب تعلقات میں برکت پیدا کرتے تھے. لسنرز, تعلقات آسان نہیں بلکہ ایک امتحان اور امانت ہے. ہر رشتہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے ساتھ آیا ہے, اور ہر تعلق ہمیں صبر, محبت اور قربانی سکھاتا ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تعلقات میں صرف خوشی تلاش کرنا کافی نہیں بلکہ صبر, برداشت اور نرمی کے ساتھ برتاؤ بھی ضروری ہے. یہاں ہم لیں گے ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. سنتے رہے ایف ایم 107 تلسی دیسی.
0: مودرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں اینڈلیس کوئسچنز. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور مودرن لائف کو, تو سنیے یہ شو اسلامک مودرن لائف, جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے.
1: جی لسنرز, ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 قطر, اور شو ہے یہ اسلامک ماڈرن لائف. ہم بات کر رہے ہیں آج تعلقات کے حوالے سے, اور اب آتے ہیں ایک اور اہم نقطے پر. آج کے تعلقات میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ وہ ہے توقعات کا دباؤ اور موازنہ, یعنی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہونا اور ساتھ میں کمپیریشن. اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو وہ ہمیں ویسے ہی پرفیکٹ کپلز دکھاتا ہے, اور ہمیں بہت ساری ایسی پوسٹ دکھائی دیتی ہیں جس میں بہت ساری گفٹ, محبت کا اظہار, بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انریلسٹک ہوتی ہیں, اور انریلسٹک स्टैंडर्ड्स भी हमें सिखा जाती हैं और हमारा दिल यह सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर मेरा रिलेशनशिप ऐसा क्यों नहीं, क्या मैं या मेरा जो शरीके हयात है उसमें कुछ कमी है। और ये सोच आपके ताल्लुकात में, आपके रिलेशंस में फासला पैदा करती है और सुकून को खत्म करने लगती है। हमें याद रखना चाहिए हर रिश्ता अल्लाह की निशानी है, ना कि सिर्फ खुशी या फिर शो ऑफ का जरिया। ताल्लुकात की कामयाबी एतमाद, मोहब्बत, सुकून और रहमत से आती है, ना कि मवाजने और दिखावे से। छोटे अमाल, नरमी और दुआएं ताल्लुकात को मजबूत और बरकत वाली बनाती हैं। अब हम ताल्लुकात के एक और पहलू की तरफ बढ़ते हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। ताल्लुकात में ज़हनी सुकून, जिम्मेदारी और रूहानी पहलू। इस्लाम में रिश्ते सिर्फ जज्बात या खुशी का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक अमानत और अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। हर रिश्ता एक छोटा सा मुआहदा है। वालदैन अपने बच्चों के साथ, शौहर बीवी के साथ, बीवी शौहर के साथ, दोस्त और रिश्तेदार अपने ताल्लुकात में। ये सिर्फ मोहब्बत का अमल नहीं, बल्कि एतमाद और जिम्मेदारी का भी तकाजा है। अगर हम इसे सिर्फ ज़ाती खुशी की बुनियाद पर चलाएं तो ताल्लुकात कमज़ोर हो जाते हैं। इस्लाम हमें याद दिलाता है कि रिश्ता एक अमानत है और अमानत का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ा फरीज़ा है। ये नुक्ता आज के दौर में ख़ास तौर पर अहम है, क्योंकि हम अक्सर ताल्लुकात को इस्तेमाल और आसानी के जाविये से देखते हैं और दिल की गहराई और वक्त की अहमियत भूल जाते हैं। लिसनर्स, सुकून, सकीना सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि ज़हनी और जज्बाती तवाज़ुन है। जब ताल्लुक मोहब्बत, रहमत और समझदारी पे मबनी हो तो ज़हनी दबाव कम होता है, दिल में एतमाद पैदा होता है। मगर आज के दौर में गैर हकीकी तवक्कात, मुसलसल मवाजना और सोशल मीडिया की नुमाइश सबसे पहले दिल में बेचैनी, हसद और मायूसी पैदा करते हैं। लिहाजा ताल्लुकात में सुकून तलाश करने का पहला कदम यह है कि हम अपने दिल को बाहर की गैर ज़रूरी तवक्कात से आज़ाद करें। ताल्लुकात सिर्फ जज्बात या अमाल पर मबनी नहीं होता। इस्लाम हमें बताता है कि ताल्लुक को मजबूत करने का सबसे ज़्यादा ताकतवर ज़रिया अल्लाह की याद और दुआ है। मिसाल के तौर पे शौहर बीवी एक साथ बैठकर अल्लाह से दुआ करें कि उनका रिश्ता मोहब्बत और सुकून से भरा हो। वालदैन बच्चों के लिए दुआ करें और बच्चे भी अपने वालदैन के लिए। ये छोटे मगर रूहानी अमाल ताल्लुकात में बरकत पैदा करते हैं और उन्हें सिर्फ दुनियावी दबाव से महफूज रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। और ये हमें बताता है कि ताल्लुकात में सबसे अहम चीज़ आमाल और रवैया है, ना कि सिर्फ अल्फाज या दिखावे। नरमी, शुक्रगुजारी, एहतराम और बर्दाश्त, ये सब छोटे छोटे अमल हैं जो ताल्लुकात को मजबूत और कायम रखते हैं। नज़र्स, आज के दौर में ताल्लुकात पर दबाव बढ़ गया है और ये चंद तरीकों से आता है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, सोशल मीडिया और एप्स अक्सर तवज्जो खींच लेते हैं और सामना करने की बातें कम हो जाती हैं। गैर हकीकी तवक्कात, यानी जो मीडिया है, फिल्म्स, ड्रामास, वो अमूमन ताल्लुकात को गैर हकीकी मेयार यानी अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पर रखते हैं। फिर कुछ ऐप्स और ऑनलाइन रबते रिलेशंस को जल्दी और सतही बना देते हैं, जबकि इस्लाम में ताल्लुक को वक्त, समझदारी और नरमी चाहिए होती है। ये सब रिलेशंस में एक फासला पैदा करते हैं और हकीकी सुकून और मोहब्बत की कमी पैदा करते हैं। अब हम कुछ

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है, ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है। अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे के पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। विदारत दाखला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।